दिनों की बैंक हड़ताल टली, आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़ कांड में सियासत शुरू। बीजेपी और आपके सोशल मीडिया वार के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग।

और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आज शाम फिर से पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ जो कि एक बैंक से जुड़ी है। दरअसल आपको ये बता दें कि आज से होने वाली 3 दिनों की बैंक हड़ताल अब टल गई है। आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियंस के संगठन यूएफबीयू की बैठक के बाद इस पर सहमति बन गई और इस बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई और कुछ फैसले भी लिए गए हैं जिसके बाद इस हड़ताल को टाल दिया गया है। तो 3 दिनों की बैंक हड़ताल होनी थी जो कि आज से होने वाली थी, उसको टाल दिया गया है। आईबी और यूएफबीयू के बीच बातचीत हुई जिसके बाद इस हड़ताल को टाल दिया गया। तो 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया गया था जो अब टल गई है।

0: बाद से जो हड़ताल होने वाली थी 3 दिनों तक उसको टाल दिया गया है। एक बैठक हुई, उसमें बातचीत के दौरान यह फैसला लिया गया। आईबी और यूएफबीयू के बीच बातचीत में सहमति बन गई है, जिसमें से 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसको अब टाल दिया गया है। तो आज होने वाली थी यह हड़ताल। बैंक कर्मियों की मांगों पर तत्काल समिति गठित होगी, जिसमें बातचीत की जाएगी इन मुद्दों पर। आईबी और यूएफबीयू के एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। बचे हुए शनिवार की छुट्टी की मांग पर विचार अभी समिति करेगी, बैठक होगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा। मांगे आप समझिए, पीएलआई योजना पर आईबीए के साथ चर्चा शुरू की जा सकती है, और साथ ही स्केल आईबी और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए भी चर्चा हो सकती है जिस बैठक में। वहीं 8 मार्च 2024 की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आईबी और यूएफबीयू के बीच बातचीत पर सहमति बनी है। तो 3 दिनों की हड़ताल इसीलिए टाल दी गई है, जो 3 दिनों की आज से हड़ताल शुरू होने वाली थी उसको टाल दिया गया है। बैठक हुई जिसमें बातचीत हुई, और आगे भी जो बैठक होगी इन पूरे मुद्दों पर, जो मांग है उसको लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी। तो 3 दिनों की हड़ताल का जो ऐलान था अब वो टल गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे, और इसी बीच उन्होंने वहां पर खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है प्रवेश वर्मा का, जिसमें वो एक युवक को आप देख सकते हैं थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है।
1: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे, और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा। दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे, और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
0: तो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए तो प्रवेश वर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने क्या सफाई दी सुनिए।
2: 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
3: जी जर्नैल जी।
4: जी प्रवेश भाई, क्या हाल?
3: बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
4: मैं तिलक नगर में हूँ।
3: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
5: कहाँ रह गए सर?
2: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
0: अब बात कर लेते पंजाब के जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए भारी बवाल की। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद भारी बवाल मच गया है। दरअसल आरोप लगा है कि छात्रा के रेप के बाद उसने खुदकुशी कर ली, और जिससे कि छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। हंगामे के बीच पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें कि रेप की धाराएं जोड़ी गई। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है।
6: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी, जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की, इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
7: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें, उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीओ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
6: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
8: जो झूठी और मनगढ़ंत खबरें और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
6: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
9: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है, वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
6: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
10: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते, वो अंदर नहीं आने देते, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
6: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है।
11: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
12: लड़की का पता चला अभी?
11: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है, तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर उसमें कार्रवाई।
6: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा, कहा कि SIR का फैसला सर्वसम्मति से था और कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ECI नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी होगी, ये कहा गया है। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को क्यों नजरअंदाज किया गया।

0: सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तलक जाएगा।
1: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी। ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
2: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल। And it shows that these people who are supposed to and who are at the highest level of our election system and the institutions that run our elections, they have party leanings. Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
0: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुबीर सिंह संधु और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
3: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की। कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
4: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
0: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
5: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है। कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
6: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं, हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
7: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
8: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
9: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया, जो उसकी मौत की वजह बना, और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जांच जारी है और इसे लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: रात के 2 बजे फोन कर चला था, माँ मुख बहुत दूरी ऐसे यहाँ थे मुख मारी से तार बिचार तक मैं देख लो कोट मर्चे की कथा ना देख लो मेडिकल और देखी चलो ताई डेड बॉडी पड़ी है।
0: निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे।
1: जोखम से बोलोट से दाग हाथों से दाग फेरा से दाग ইয়াতে আছে ডাক মইটো ভাবো এইটো দলবদ্ধ ধর্ষণ গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই মই এই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है, तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत विश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाए और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
1: लगभग इसवाली मो मर्डर हुई है गोटी के व्यवस्था मो एक ना जानू एक गम ना पाऊँ कुने की कोड़ी से केवल मैं डेड बॉडी तो पाई निश्चय विचारी से मोर स्वाली जने के कोस्टो पाई मोड़ी से तेरे को हस्ती दिवो लगे এইখিনি মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছো, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছো, শাস্তিটো পাব লাগে দোষীয়ে, সম্পূৰ্ণ শাস্তি, সম্পূৰ্ণভাৱে শাস্তি পাব লাগে।
0: নিমিষা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত সমাজ শাস্ত্ৰ কি ছাত্ৰা থি আৰু ধাৰাপুৰ কি ৰহনে ৱালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি বজা আৰু ঘটনাক্ৰম কো লেকৰ কাই সৱাল হে জিসকা জৱাব পুলিচ কি যাঁচ আৰু পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হে। পূৰ্ণ বিকাশ বোৰা, গুৱাহাটী, আজ তক।
3: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम ढा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में भी देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और इन 60 घंटों में 56 लोगों की जान भी जा चुकी है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मॉनसून से अलग नहीं बल्कि मॉनसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
4: आपको बता दें मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेस वे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको, टोल देखिए, टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
4: आप लोग भाई सब, क्या नाम है आपका?
5: प्रशांत सिंह।
4: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
5: प्रयागराज।
4: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
5: पानी भरा हुआ, आप भी देख लीजिए सामने भरा,
4: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
5: अब इतना जल भराव, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
4: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था, तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
6: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
7: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में है, जहाँ पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? क्या सपने में आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या है पितरों और पूर्वजों के स्वप्न का अर्थ और प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

आज से होने वाली 3 दिनों की बैंक हड़ताल टली। आईबी और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। बैंक कर्मियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। दिल्ली में मंत्री थप्पड़ कांड में सियासत शुरू। बीजेपी और आप के सोशल मीडिया वार के बीच राहुल का भी हमला। प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक। मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा। योगी सम्राट रेखा गुप्ता से लेकर शुभेंदु और हेमंत का कांग्रेस पर हमला। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी। रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा। कैंपस में बवाल, आज शाम फिर से पत्थरबाजी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत। वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

0: पूजा शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो कि बैंक से जुड़ी है। आपको बता दें कि आज से होने वाली 3 दिनों की बैंक हड़ताल अब टाल दी गई है। दरअसल IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियंस के संगठन UFBU की बैठक के बाद इस पर सहमति बन पाई है। जो हड़ताल आज से शुरू होने वाली थी, 3 दिनों तक चलने वाली थी, उसको टाल दिया गया है। इस बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई और कुछ फैसले भी लिए गए हैं जिसके बाद इस हड़ताल को टाल दिया गया। 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया गया था और आज से इस हड़ताल की शुरुआत होने वाली थी जिसको अब टाल दिया गया है। बैंक यूनियंस और IBA के बीच सहमति बन गई है जिसमें यह फैसला लिया गया है और जल्द एक समिति का गठन भी होगा जो बैंक कर्मियों की मांग है उस पर उसमें चर्चा की जाएगी। तो चलिए अब मांगे क्या है ये आप समझिए। IBA और UFBA के बीच बातचीत होने वाली थी और जो 3 दिनों की हड़ताल थी उसको अब टाल दिया गया है। 28 से 30 सितंबर तक यह हड़ताल शुरू होने वाली थी। बैंक कर्मियों की मांगों पर तत्काल समिति गठित होगी, जो बैंक कर्मियों की मांग है उसमें उस पर चर्चा की जाएगी। IBA और UFBU ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया है। बचे हुए शनिवार की छुट्टी की मांग पर विचार करेगी समिति उसमें और साथ ही PLI योजना पर IBA के साथ चर्चा शुरू की जा सकती है ऐसा माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि स्केल IBA और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए भी चर्चा हो सकती है। 8 मार्च 2024 की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा होगी जो आगे बैठक होने वाली है उसमें। वही आम आदमी पार्टी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। वीडियो आप देखिए, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड ने युवक को दूर हटाया। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने वाला वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक प्रवेश वर्मा के लिए वीडियो भी बनाया है और गिरफ्तारी की मांग की है।
1: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
0: तो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए तो प्रवेश वर्मा ने भी सफाई दी है, सुनिए।
2: 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
3: जी जर्नैल जी।
4: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
3: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
4: मैं तिलक नगर में हूँ।
3: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
5: कहाँ रह गए सर?
2: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब के जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए भारी बवाल की। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी के बाद भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल आरोप लगा है कि छात्रा ने रेप के बाद खुदकुशी की जिससे कि छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। हंगामे के बीच पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है जिसमें कि रेप की धाराएं जोड़ी गई। साथ ही मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है।
6: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दहक उठी। जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। देर रात तक यूं ही हंगामा बरपा रहा, आक्रोश की आग धधकती रही और दिन निकलने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे पर जबरदस्त तनातनी दिखी और इन सब के पीछे रही एक अफवाह। दरअसल शनिवार को एक छात्रा ने खुदकुशी की। इस बीच अफवाह फैली कि रेप के चलते छात्रा ने अपनी जान दी और ये बात फैलते ही भारी विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया।
7: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हो उठा है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हजारों जो छात्र हैं वो अब सड़कों पे बैठे हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें उनका कहना है कि लगातार इंस्टेंसेस हैं रेप के, सुसाइड के, वो आ रहे हैं और उसी बीच में उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, कुछ टाइम पहले यहां पर इंस्टेंस हुआ और उसी वजह से अब सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है और आपको बता दें कि लगातार एड्रेस करने की कोशिश, एलपीयू ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट निकाला है, उन्होंने कहा है कि ये फेक रूमर्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
6: यूनिवर्सिटी से देर रात आई इन तस्वीरों से साफ है कि यहाँ हंगामा किस कदर था। एक अफवाह के बाद कैसे छात्र बेकाबू हो गए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस धधक उठा। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन रेप की खबर को सिर्फ अफवाह बता रहा है।
8: झूठी और मनगढ़ंत खबरों और अफवाहों का पुरजोर खंडन करता है। यूनिवर्सिटी के ध्यान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी अकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है।
6: पुलिस भी रेप की बात को सिर्फ अफवाह बता रही है, साथ ही छात्रा के खुदकुशी की वजहों की जाँच की जा रही है।
9: देखो, जो सुसाइड हुआ था उसके हमने पेरेंट्स बुलाया, पहले चार दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सुसाइड कर गई थी और उसके हम पेरेंट्स बुलाया, बकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम करने से बाद हमने उसकी बॉडी जड़ी है वो डेड बॉडी उनके परिवार के हवाले में कर दी। अभी जो पॉइंट हटा रहे हैं, रेप हुआ, रेप किस लड़की के साथ हुआ, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर रेप हुआ, किस हॉस्टल में हुआ, कौन से लड़के ने किया, ये तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हम उसको बोलते हैं कौन सी लड़की है, वीडियो है तो उसको देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी।
6: उधर प्रशासन के दावों के बीच छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह थमता नहीं दिख रहा। सुबह हाईवे पर सैकड़ों छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का सवाल हॉस्टल में सुरक्षा को लेकर भी है।
10: हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो ब्रदर और फादर को होते हैं वो अंदर नहीं आने देते, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसेफ है। अब वो हमारे फादर और ब्रदर है, उनको अंदर नहीं आने देते, पर जो उनके वर्कर्स हैं वो तो सेफ है और कर भी वही रहे हैं।
6: छात्रों के हंगामे के बाद अब पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़ ली हैं, साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है।
11: FIR हमने दर्ज कर दी है, सिट इसमें फॉर्म कर दी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके तफ्तीश करेंगे, साइंटिफिक तफ्तीश करेंगे और अगर कल्प्रिट हुआ तो जरूर पकड़ेंगे।
12: लड़की का पता चला अभी?
11: नहीं, अभी हमें अभी कोई नहीं, अभी जस्ट FIR हुई है, तो हम CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है और अगर कुछ पता लगता तो जरूर इसमें कार्रवाई।
6: अब एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों को समझाने का सिलसिला भी चल रहा है। जालंधर से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
0: चुनाव आयोग पर घमासान थमने के बजाय और गहरा हो गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कई सवालों पर अपना पक्ष रखा, कहा कि SIR का फैसला सर्वसम्मति से था और कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा पत्र किसी पॉलिसी विवाद का हिस्सा नहीं था और ECI नेट की स्वतंत्र समीक्षा भी होगी, ये कहा गया है। लेकिन सियासत पूछ रही है कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट था तो आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को क्यों नजरअंदाज किया गया।

0: चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा।
1: अभी बहुत कुछ होगा, पहली बार एनडीए के भीतर से आवाजें शुरू होनी हो गई हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से आवाजें उठेंगी। ये सरकार अंतिम सांसें गिन रही है।
2: इट्स कम्प्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल, कम्प्लीटली अनएथिकल, एंड इट शोज दैट दीज पीपल हु आर सपोज्ड टू एंड हु आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ आर इलेक्शन सिस्टम एंड द इंस्टीट्यूशंस दैट रन आवर इलेक्शंस, दे हैव पार्टी लीनिंग्स। Not only they have party leanings, but they are actively propagating those parties. And he needs to resign. And he needs to resign now.
0: ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
3: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की। कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं।
4: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। हम लोग जागरूक थे, तैयार थे, इसलिए 2024 में सरकार बना ले गए। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया।
0: जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
5: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है। कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
6: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं, हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
7: रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
8: मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
9: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूँ, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है, चुनाव आयोग संधु और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? एसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत पर बवाल की। एक छात्रा की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद की साजिश के तहत छात्रा को फंसाया गया, जो उसकी मौत की वजह बना, और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जांच जारी है और इसे लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है।

0: 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत की असल वजह क्या है? कैसे गुवाहाटी के एक स्टे होम में अचानक निमिषा की मौत हो गई? सवाल यह है कि निमिषा की मौत कैसे हुई? उनके पिता बताते हैं कि रात को 2 बजे निमिषा ने अपनी माँ को फोन किया था और बताया था कि उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है।
1: रात के जूता बजा फोन कर चला था, माँ मुख बहुत बुरी है, इसे यहाँ पे मुख मारी है, सतार भी सतार तक नहीं देख लो, बहुत मर से की कथा ना देख लो, मेडिकल और देखी चलो ताई डेड बॉडी पड़ी है।
0: निमिषा के पिता बताते हैं कि उसके चेहरे और शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे,
1: जोखम से बोलो से दाग, हाथों से दाग, फेरा से दाग, ইয়াতে আছে ডাক, মই তো ভাবো এইটো দলবদ্ধ ধর্ষণ, গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে ইয়াৰে উচিত বিচার হব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই। মই
0: बता दें कि निमिषा ठाकुरिया अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ शुक्रवार को गुवाहाटी के आजारा इलाके के एक होम स्टे में रुकी हुई थी। शनिवार की सुबह उसका शव मिला। आसिफ की माने तो निमिषा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है, हालांकि पुलिस उसके दावे को सच नहीं मान रही और जांच कर रही है। आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गुवाहाटी की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरोप है कि लव जिहाद वाली साजिश के तहत निमिषा ठाकुरिया की जान ली गई। मौत की पूरी जांच और इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने NH-17 जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया।
2: ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहती है जो बहुत ही चिंतनीय है, तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है हेमंत विश्व शर्मा जी, उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इसके ऊपर कुछ ध्यान दें, और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये आग्रह है कि ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अधिक से अधिक और कठोर से कठोर कानून बनाएं और इसको जितना जल्दी हो सके कम करने की कोशिश करें।
0: इस विरोध प्रदर्शन के बीच निमिषा का परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। लव जिहाद वाला एंगल आने के बाद इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है।
1: मर्डर मर्डर एको ना जानो, एको गम ना पाऊं कोने की करिसे, केवल मय डेड बॉडी तो पाइछो, निश्चय बिचारिछो मोर स्वाली जेने के कष्ट पाए मरिसे तेनको हस्ति दिबो लागे, এইখিনি মই সরকারের ওসরত অনুরোধ করেছো, পুলিশ প্রশাসনের ওসরত অনুরোধ করেছো, শাস্তিটো পাব লাগে দোষীয়ে, সম্পূর্ণ শাস্তি সম্পূর্ণভাবে শাস্তি পাব।
0: নিমিষা গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি মে সমাজশাস্ত্র কি ছাত্রা থি আর ধারাপুর কি রহনে ওয়ালি থি। ফিলহাল উসকি মৌত কি ওয়াজা আর ঘটনাক্রম কো লেকার কাই সওয়াল হ্যায় জিসকা জবাব পুলিশ কি যাঁচ আর পোস্টমর্টম রিপোর্ট কে বাদ হি সামনে আনে কি উম্মীদ হ্যায়। পূর্ণ বিকাশ গোরা, গুয়াহাটি আজ তক।
3: सितंबर खत्म होते होते मौसम सितम ढा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है और मौसम की ऐसी ही मार यूपी में भी देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है और इन 60 घंटों में 56 लोगों की जान भी जा चुकी है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का ये दौर मॉनसून से अलग नहीं बल्कि मॉनसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से ज्यादा प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेस वे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
4: आपको बता दें मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेस वे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको, टोल देखिए, टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेस वे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिशें करने लगी। एक्सप्रेस वे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
4: आप लोग भाई साहब क्या नाम है आपका?
5: प्रशांत सिंह।
4: प्रशांत जी आप कहाँ जा रहे थे?
5: प्रयागराज।
4: प्रयागराज जा रहे थे तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
5: पानी भरा हुआ आप भी देख लीजिए सामने, भरा
4: पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
5: अब इतना जल भराव इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके निकलेंगे?
4: पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे अगर आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन आपको कि जेसीबी से गड्ढा को खोदा जा रहा है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखी गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद जिस तरीके से दुश्वारियां यहाँ पर लगातार दिख रही है।
0: ये कोई पहली बार नहीं है जब गंगा एक्सप्रेस वे पर जल भरा हुआ है। 1.5 महीना पहले जब बारिश के दौरान टोल प्लाजा पर पानी भर गया था तब भी इसी तरीके से पानी निकालने की कोशिश हुई थी। तब 3 दिनों तक लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई थी लेकिन उस घटना के बाद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब जरा यूपी के बांदा की तस्वीरें देख लीजिए। भारी बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। ये अतर्रा का सामुदायिक अस्पताल है जहां इतना पानी भर गया कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
6: इस प्रकार से यहां देखिए मरीज निकल रहे हैं, यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस देखिए यहां पानी में खड़ी हुई है, जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: अब जरा प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। बारिश और तेज हवाओं के बीच संगम नगरी का मौसम बदल गया है। गंगा में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि गंगा यमुना किनारे न जाएं।
7: प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। रुक रुक कर तेज धीमी बारिश हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। लेकिन हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं जहां पर ये समुद्र जैसी लहरें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन ने भी तेज हवाओं को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगाई है। फिलहाल यहां पर मौसम बदल गया है और इसी बदले मौसम में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगी हुई है और नावें हिल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल कोई हादसा ना हो इस वजह से प्रशासन ने भी नौका संचालन पर रोक लगाई है।
0: यूपी के श्रावस्ती में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कहीं पेड़ धराशायी हुए तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित हुई। राप्ती इलाके में मौसम का असर सीधे आम जिंदगी पर पड़ा। एटा में करीब 30 घंटे की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश भारी पड़ी और फसलों के नुकसान की तस्वीरें सामने आई। बदायूं में भी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई है। पेड़ गिरे, कच्चे मकान धराशायी हुए, धान की फसल को नुकसान की खबरें हैं। कुल मिलाकर बादल कहर बरपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: क्या आपको बार बार सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? क्या सपने में आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या है पितरों और पूर्वजों के स्वप्न का अर्थ और प्रभाव? जानिए मेरे

सीसी पर सियासी संग्राम में बीजेपी का क्षेत्रीय अटैक, मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, योगी सम्राट रेखा गुप्ता से लेकर शुभेंदु और हेमंत का कांग्रेस पर हमला। दिल्ली में मंत्री थप्पड़ कांड में सियासत शुरू, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वार के बीच राहुल का भी हमला, प्रवेश वर्मा का आरोप, आप विधायक ने की थी कमीशन की मांग। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कांड की जांच जारी, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट का गुस्सा, कैंपस में बवाल, आज शाम फिर से पत्थरबाजी। आज से होने वाली 3 दिनों की बैंक हड़ताल टली, आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला, बैंक कर्मियों की मांगों को लेकर तत्काल गठित की जाएगी कमेटी। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम जीवन में जो सपने देखते हैं, निद्रा में जो स्वप्न देखते हैं, कभी कभी उनके बड़े गहरे असर होते हैं, बड़े गहरे अर्थ होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के स्वप्न देखते हैं तो इसका आपके जीवन से क्या संबंध बनता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:13 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 10:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:16 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्प

पर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सपनों के बारे में। आपको पूर्वजों और पितरों के सपने, जिनका देहांत हो चुका है, उनके सपने कब और कैसे आते हैं, स्वप्न होते क्या हैं और कब आते हैं। देखिए, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि निद्रा में, नींद में अगर कोई घटना दिखे, कोई प्रसंग दिखाई दे तो वो सपना है, लेकिन सपने वास्तव में नींद में नहीं आते, निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में आते हैं, जिसको तुरिया अवस्था कहा जाता है। ना तो आप सो रहे हैं ना तो जग रहे हैं, उसके बीच की जो स्थिति है जिसको कच्ची नींद कहते हैं, उसमें सपने आते हैं। सपने आने के पीछे आपका खान पान, आपकी मानसिक स्थिति और माहौल का विशेष असर होता है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग समय के स्वप्न का अलग अलग असर होता है। एक ही तरह का स्वप्न कोई नौजवान आदमी देखे, कोई वृद्ध आदमी देखे, कोई स्त्री देखे, उसके फल कथन में अंतर होगा।

अलग सपनों का असर जान सकते हैं। सपनों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होती जाएंगी, नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते होंगे कि मैं सो जाता हूं, सुबह आंख खुलती है, मुझे कोई सपना नहीं आता। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते होंगे कि मैं रात भर सोने की कोशिश करता हूं, नींद गहरी नहीं होती, मुझे सपने आते रहते हैं। तो किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं? देखिए, जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, ऐसे लोग दिन भर विचार ज्यादा करते हैं, दिन भर ज्यादा सोचते हैं, उनको सपने ज्यादा आते हैं। जो लोग रात में या कभी भी ढेर सारा खाना एक साथ खाते हैं, पेट पर प्रेशर पड़ने की वजह से भी सपने ज्यादा आते हैं। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता, उन्हें ज्यादातर अजीब सपने आते हैं। जो ज्यादातर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, दिन भर अपशब्द बोलते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, उन्हें ज्यादातर खराब या अजीब सपने आते हैं। अगर मन पे किसी तरह का प्रेशर हो, मन के ऊपर किसी तरह का दबाव हो, तो भी चिंता में आपके मन में विचार आने लगते हैं और बहुत सारे तरीके के सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो मुख्यतः सपने जो हैं वो कॉन्शियस माइंड से नहीं आते, वो सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं, और ज्यादातर सपने आपके विचारों की वजह से, आपके सोच की वजह से, आपके चिंता और तनाव की वजह से पैदा होते हैं।
चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

से धन पा सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, लेकिन काम टालने से आज बचना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

परेशानी होगी, प्रियजनों से वाद विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न गणेश प्रसाद जी ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 10 सितंबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री किस तरह के करियर में जाएगी। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। कौन से क्षेत्र में तैयारी करने पर सफलता मिलेगी? गणेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर ये प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की या शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करें तो उसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। 2028 का समय इनकी सफलता का समय लग रहा है और उस समय इनको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें, 8-10 रत्ती का माणिक्य, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में। रविवार को सवेरे इनको माणिक्य पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो हर सपने का कोई ना कोई फल है, कोई ना कोई अर्थ है। तो क्या जिनकी मृत्यु हो गई है या जो हमारे पुराने पूर्वज थे उनके सपनों का कोई विशेष अर्थ होता है, कोई विशेष फल होता है? देखिए, आम तौर पर जिनका देहांत हो चुका है ऐसे लोगों के या पूर्वजों के सपने कुछ न कुछ संकेत देते हैं। ये आने वाले दुर्घटनाओं से, आने वाली समस्याओं से रक्षा भी करते हैं और कभी कभी कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है या दुर्घटना होने वाली है इसकी सूचना भी देते हैं। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। इस वजह से उस मृत व्यक्ति के बड़े सपने आते हैं लेकिन इन सपनों का अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये आपके मन का प्रोजेक्शन है। आप लगातार जो सोच रहे हैं वही आपके सपने में आ जाता है। ये मन का खेल है, मेंटल प्रोजेक्शन है। कभी

आएगी। अगर सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप सफलता की ऊंचाइयां छुएंगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर सपने में किसी पूर्वज के साथ कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य खराब होता दिख रहा है तो समझिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया मुझे कि सपने में मैंने देखा अपने मृत्यु जिनकी हो चुकी है, पिताजी को, दादाजी को जिनका देहांत हो चुका है, और वो कुछ खाने को मांग रहे हैं। अगर ऐसा कोई स्वप्न आता है तो आप किसी गरीब व्यक्ति को अगले ही दिन भोजन करा दीजिएगा और मन में प्रार्थना करिएगा कि इसका फल मेरे पूर्वजों की आत्मा को मिले, तो वो तृप्त होंगे, संकट कम हो जाएगा। कोई वस्त्र मांग रहा है स्वप्न में पूर्वज, तो किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दे दीजिए और मन में प्रार्थना करिए कि इसका फल मेरे पूर्वज को मिले। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे इस तरह के दिखने वाले स्वप्न बंद हो जाएंगे। आम तौर पे जो आत्माएं अतृप्त होती हैं या जिन लोगों की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है, ऐसे लोग अपने परिजनों के स्वप्न में आकर अपनी बात कहने का प्रयास कई बार करते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मृत्यु हुए लोगों के सपने दिखाई देते हैं। देखिए, पूर्वजों और पितरों का अगर कोई बुरा स्वप्न दिखा है आपको, या पूर्वजों और पितरों की तरफ से संकेत अच्छे नहीं दिखे हैं आपको, आने वाले समय के लिए अशुभता की सूचना दे रहे हैं, तो जिस दिन आंख खुल गई, रात में आपने सपना देखा, खराब सपना था, पूर्वजों का था, पितरों का था, तो अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके फल, खास तौर से लाल फल हो, सेब हो या अनार हो, ये ले जा करके आप मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह उठने के साथ स्नान करके कोई एक फल मंदिर में दान करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर ईश्वर की, पूर्वजों की कृपा बनी रहे, उस स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

बेहतर होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,

परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि स्त्रियों को श्मशान में नहीं जाना चाहिए। जहां पर डेड बॉडी जलाई जाती है वहां महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, श्मशान में स्त्री के जाने से नुकसान होगा और पुरुष के जाने से नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर पुरुष जा सकते हैं श्मशान में तो स्त्रियां भी जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, चूंकि स्त्रियों का मन ज्यादा कोमल होता है, वो चीजों पे चिंता ज्यादा करती हैं, अपने मन में चीजों को बैठा लेती हैं, इसलिए उनको तनाव ना हो, बेवजह की चिंता ना करें, इसलिए ऐसा कहा गया है कि श्मशान में ना जाएं। लेकिन अगर कोई स्त्री श्मशान में चली जाती है, किसी के देहांत पर, परिवार का किसी का देहांत हो गया, महिला भी परिवार के साथ श्मशान में चली जाती है, तो उससे कोई बड़ा दोष या कोई बड़ा पाप नहीं लगता। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

वे होंगे नंबर दो, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नंबर तीन, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर चार, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। नंबर पांच, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर छह, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर सात, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर आठ, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। नंबर नौ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में यथाशक्ति जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करिएगा, आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक सफेद फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

शुभ होगा। मेष राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है। आज शाम के समय शिव मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा, आपको बहुत सारे लाभ जरूर मिलेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हत्या आरोप पर बवाल, छात्रों का पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, कई पुलिसकर्मी घायल। एलपीयू के बाहर हिंसक प्रदर्शन, छात्रों ने पुलिस वाहनों पर किया पथराव, दो गाड़ियों में आग लगाने का आरोप। रेप के दावे पर एफआईआर दर्ज, अज्ञात के खिलाफ केस, एसआईटी में पुलिस के साथ छात्र प्रतिनिधि भी शामिल, पुलिस को अब तक नहीं मिला घटना की पुष्टि करने वाला सबूत। एलपीयू में 10 दिन के लिए रेगुलर क्लासेस सस्पेंड, हिंसक प्रदर्शन के बाद छात्र घर लौटे, हिंसक प्रदर्शन के बाद एलपीयू में क्लासेस बंद, 28 सितंबर से 10 दिन की छुट्टी। एलपीयू हिंसा पर बीजेपी नेता राजकुमार गुप्ता का बयान, कहा प्रदर्शन का हक लेकिन पथराव और तोड़फोड़ गलत। प्रवेश वर्मा के थप्पड़कांड पर दिल्ली में सियासत गरम, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री के खिलाफ एफआईआर की मांग। सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर आमने सामने बीजेपी मंत्री प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी विधायक जनरल सिंह, बहस के बीच थप्पड़ का वीडियो वायरल। थप्पड़कांड पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला, संजय सिंह बोले मंत्री को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थप्पड़ विवाद पर प्रवेश वर्मा की सफाई, बोले परिवार को गाली देने के बाद गुस्से में हुआ रिएक्शन, आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ वीडियो पर राहुल गांधी का हमला, बोले सत्ता का ऐसा चेहरा जो अब वोटर्स से नहीं डरता। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला तेज, जयराम रमेश बोले पैमाने पर वोटर्स को हटाना लोकतंत्र के लिए खतरा। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर प्रियंका गांधी का हमला, प्रियंका बोली राजनीतिक झुकाव वाले सीईसी निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे। एसआईआर पर बीजेपी का पलटवार, विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद, बीजेपी बोली गंदी वोटर लिस्ट से फायदा उठाने वाले अब क्यों परेशान। एसआईआर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना, योगी बोले संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार सवाल उठाकर भरोसा कमजोर कर रही है कांग्रेस। एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को जी किशन रेड्डी ने घेरा और वो बोले कि जहां पर कांग्रेस जीती वहां पर एसआईआर सही, जहां हारी वहीं पर सवाल। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान, मुकुल वासनिक बोले ईसीआई को जवाबदेह बनाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। एसआईआर पर आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग पर सीधा हमला, संजय सिंह बोले बीजेपी ज्ञानेश कुमार के साथ क्यों खड़ी है। एसआईआर विवाद पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस पर का राहुल गांधी पर पलटवार, फडणवीस बोले वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी की सोच चोरी हो गई। 2.8 करोड़ मृत वोटर्स के नाम हटाने के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस का सवाल, पवन खेड़ा बोले बाकी 10 करोड़ से ज्यादा नाम कहां गए। सीईसी ज्ञानेश कुमार पर केरल में भी सियासी हमला तेज, वीडी सतीशन बोले ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को डेथ सेंटेंस दिया। राम मंदिर आंदोलन पर योगी का बड़ा बयान, योगी बोले बजरंगी सावधान रहे, राम आंदोलन को बदनाम करने वाले कल नहीं मौजूद। बाबरी भक्त वाले बयान पर योगी का विपक्ष पर हमला, योगी बोले जो राम मंदिर के विरोधी थे वही अब राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे। एसआईआर को लेकर अखिलेश का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, अखिलेश बोले 2029 में वोट देने वालों के नाम 2022 में काटे गए। एसआईआर पर योगी के समर्थन को लेकर अखिलेश का पलटवार, अखिलेश बोले अगर इलेक्शन कमीशन घोटाले में शामिल है तो बीजेपी भी इसमें शामिल है। एसआईआर और वोट कटने के आरोपों पर अखिलेश का हमला जारी, बोले चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम न करे अपनी साख बचाए। शुभेंदु अधिकारी पर हुमायूं कबीर का विवादित बयान, कबीर बोले अल्लाह उनका टिकट बुक करे, दुनिया से जल्द चले जाए। शुभेंदु अधिकारी पर हुमायूं कबीर के विवादित बयान पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का पलटवार, कहा अब मुस्लिम भी उन्हें वोट नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद का लॉलीपॉप अब काम नहीं आएगा। 1000 से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने की चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपीआई पेमेंट पर 0.4% शुल्क लगाने के खिलाफ याचिका, केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। यूपीआई पर एमडीआर लागू करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में पारदर्शिता और नियमों पर उठे सवाल। पंजाब में सरकारी बंगलों पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया सरकारी आवासों के दुरुपयोग का आरोप। गायत्री बिश्नोई के बयान से बढ़ा बंगाल विवाद, खेरा बोले उनके जवाब से आम आदमी पार्टी नेताओं के सरकारी आवास में रहने का मामला खुला। बीजेपी नेता आरपी सिंह का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला, बोले दिल्ली को लूटने वाले अब पंजाब को लूटने पहुंचे। हरसिमरत कौर बादल ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा, बोली पंजाब के सरकारी बंगलों में बाहरी लोगों को क्यों दी जा रही है सुविधाएं। जयपुर नगर निगम में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी पर भी बीजेपी का कब्जा, सरोज कंवर को मिले 89 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी सलमान को मिले 58 वोट। दिल्ली के अलीगांव में 2000 घरों को तोड़ने का नोटिस, इलाके के लोग धरने पर बैठे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान के पिछले हिस्से की टक्कर, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित, गुवाहाटी से बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट। दिल्ली में एनटीए परिसर की सुरक्षा अब करेगी सीआईएसएफ, गोपनीय क्षेत्रों की होगी कड़ी निगरानी। अमरावती के मोजरी में सेवा संकल्प यात्रा का स्वागत, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविन्द्र चौहान ने तुगडोजी महाराज की समाधि के दर्शन किए। बिहार के बगहा में गंडक के उफान से लक्ष्मीपुर के गोदाम टोला में मचा हाहाकार, 100 घरों में कमर तक पहुंचा पानी। पूर्वी चंपारण में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाई अलर्ट, गंडक के तटवर्ती इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। गंडक के बढ़ते जलस्तर से बिहार के गोपालगंज में अलर्ट, निचले इलाकों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश से ऋषिकेश में खतरे के निशान पर गंगा, दरअसल श्रद्धालुओं को किया जा रहा है शिविर सचेत। उत्तराखंड के टिहरी में मौसम में बदली करवट, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड ने दी दस्तक। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, काजापिन घाटी और शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई के इलाकों में बदला मौसम। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड, सड़क से बीआरओ ने हटाया मलबा। महाराजगंज में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। ओडिशा के भद्रक में भी तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन की ओर से पानी निकासी की कोशिशें जारी। रायगढ़ में महानदी में उफान, गंगरेल बांध के 14 गेट खुले, शिवनारायण का संपर्क भी टूटा। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में लगातार बारिश हो रही है, चिरबासा में सड़क पर आया भारी मलबा, मौसम खुलने पर शुरू होगा काम। यूपी के हरदोई में बारिश बनी आफत, अब तक 8 लोगों की मौत हुई, 30 पशुओं की मौत, वहीं 330 घर क्षतिग्रस्त हुए। बाराबंकी में भारी बारिश का कहर, पेड़ दीवार गिरने की वजह से 3 की मौत, 700 से ज्यादा गांव की बिजली गुल। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के चलते जोरदार बारिश, तेज रफ्तार से चली हवाएं। छत्तीसगढ़ में लगातार बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद लगातार 5 दिनों तक हुई है भारी बारिश, जिस वजह से पूरे बस्तर के हालात बिगड़े। इंदौर के राजबाड़ा में सिटी बस ने 3 लोगों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के हापुड़ में मामूली बात पर हिंसक झड़प, दोनों पक्ष में लाठी डंडों से मारपीट, वीडियो वायरल। जयपुर के शिव मंदिर में बुजुर्ग पुजारी की लात घूसों से पिटाई, पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में लिया। मोगा में महिला एसएचओ गिरफ्तार, 50,000 रूपये रिश्वत लेते विजिलेंस ने पकड़ा। सूरत क्राइम ब्रांच ने चर्च में हुई चोरी के 2 मामलों का किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, पादरी की वेशभूषा में घुसकर चोरी करता था आरोपी। नोएडा में होटल की खिड़की से गिरकर सीईओ के निजी सहायक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फरुखाबाद में गड्ढे में भरे पानी में डूबने की वजह से बच्चों की मौत हुई, 2 बच्चों की मौत हुई, नहाने गए 5 बच्चों में से 2 की गई जान। झांसी के गरौठा थाने में किसान नेता की अचानक से बिगड़ी तबीयत, इंस्पेक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जान। ओडिशा में खोरदा में डीजे की तेज आवाज के बीच पीएनबी भवन की गिरी छत, 1 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। बोकारो में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान मैदान पर गिरा खिलाड़ी, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने की मौत की पुष्टि। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। राजकोट में एक्टिवा को कार ने मारी टक्कर, पति पत्नी और बेटी की मौत। झारखंड के लोहरदगा में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बाद अपराधी बाइक सवार होकर भाग निकले। वहीं मुंगेर में ट्रक चोरी के बाद शराब मामले में फंसी बिहार पुलिस, ऐसे में एसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया। पटना में गैरेज संचालक को अपराधियों ने मारी गोलियां, घायल की हालत नाजुक। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर चलती एमजी हेक्टर कार में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा होते होते चला। मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, चालक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। फरीदाबाद के सीही गांव में 200 मीटर गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, एनडीआरएफ ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के रोहतास में 5 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस के भेष में कर रहे थे वसूली। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से छेड़खानी का सीसीटीवी फुटेज आरजेडी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, सरकार को घेरा, घटना के दिन ही आरोपी को भेजा जा चुका है। एशियन गेम्स में भारत अफगानिस्तान के बीच आज T20 का क्वार्टर फाइनल, जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत अफगानिस्तान के बीच होगा दूसरा क्वार्टर फाइनल, भारत ने सीधे क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। श्रेयस अय्यर के हाथों में टीम इंडिया की कमान, संभावित प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी। अफगानिस्तान की कमान दरविश रसूली संभालेंगे। अफगानिस्तान की टीम में नजीबुल्लाह करीम, मोहम्मद इशाक जैसे अनुभवी खिलाड़ी। दोनों टीमें नॉकआउट भिड़ंत के लिए तैयार, आज के मुकाबले की जीत पर टीम इंडिया की नजर। भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच को किया गया अपने नाम। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे। तिरुवनंतपुरम वनडे के जीत के हीरो रहे विराट कोहली और शुभमन गिल। विराट ने नाबाद 139 रन की पारी खेली। विराट के नाम लगी रिकॉर्ड की बौछार, वनडे में 55वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 86वां शतक लगाया। वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली 110 रनों की पारी। इसके साथ ही पूरा हुआ वनडे करियर का 10वां शतक। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने 41.4 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियन गेम्स में भारत का 56 साल का सूखा खत्म हुआ। सर्वेश कुशारे ने रचा इतिहास, मेंस हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल। भारत के हाथों से फिसला गोल्ड, विमेंस लॉन्ग जंप फाइनल मुकाबले में आखिरी पल में टूटा एनसी सोजुन का सपना, वहीं सिल्वर से करना पड़ा संतोष। भारत को एशिया खेल ने पहला सिल्वर मेडल दिलाने वाली सोनम मस्कर का कोल्हापुर के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, बड़ी संख्या में जुटे लोग। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में भारत को ब्रॉन्ज दिलाने वाली प्राची के घर भी जश्न का माहौल, परिवार ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी बनी एशिया बॉक्सिंग कमेटी की निर्विरोध वाइस चेयरमैन, 4 साल का होगा कार्यकाल। 52वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने रचा इतिहास, 400 करोड़ के क्लब में हुई शामिल, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 401 करोड़ 20 लाख पहुंचा। रविवार को हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का कारोबार किया। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 362 करोड़ 70 लाख के पार। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की द विवियन के बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 3 दिन में दुनिया भर में 43 करोड़ कमाए। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया, दुनिया भर में कमाई 138 करोड़ के पार पहुंची। मिर्जापुर द मूवी ने कल 1 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए, 23 दिन में भारत में ग्रॉस 268 करोड़ पहुंचा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 328 करोड़ के पार। रूस ने यूक्रेन में फिर से किए हवाई हमले तेज, राजधानी कीव और ओडिशा में बरसाए बम, दोनों हमलों में 2 लोगों की मौत हुई, 5 घायल। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यूरोपीय देशों पर निशाना, कहा यूरोपीय देश रूस के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुटे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची का बड़ा बयान, कहा तेहरान को प्रस्ताव पर ट्रंप की शुरुआती प्रतिक्रिया मिली, औपचारिक जवाब का इंतजार। ईरान की आईआरजीसी नेवी ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी, कहा अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो हिंद महासागर में होंगे हमले। ईरान नेवी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका का अंडर वाटर ड्रोन वाहन किया जब्त, ईरानी सेना का दावा ये वाहन जासूसी कर रहा था।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
12: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट।
14: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
18: तेरा प्यार प्यार प्यार रूटा बार सर, एक बार रोटी थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
19: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
18: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
17: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आयवन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
6: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
9: तो कौन सी बनानी है?
18: एकदम
1: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
12: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
7: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: किसी भी देश को जब भी आज़ादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
3: कौन भय में जी रहा है?
2: नागरिक जी रहे हैं।
3: हाँ, भारत में
2: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस के सामने आकर के स्थिति स्पष्ट की। एसआईआर के बारे में पहले से ही इस बात के डायरेक्शन दिए गए कि छूटे हुए जो भी मतदाता हैं उनको फॉर्म भरने की पूरी छूट है। फॉर्म 6 को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को उचित ठहराया, लेकिन उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना, भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करके दुनिया के अंदर भारत की बदनामी कराना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने की कुत्सित चेष्टा करना, यह कांग्रेस का यह कृत्य अत्यंत हैरान करने वाला है।
1: आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: एक दो श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
13: अब पर वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
14: मेरे पास एक आइडिया है।
12: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना है,
15: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
16: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
13: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
17: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
18: तो कौन सी बनानी है?
19: मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार है, मोदी जी में कितना तारतम्य है, कितना गहरा संबंध है। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो पीसी नहीं करते हैं, और इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट देती है, वो पीसी नहीं करती है, अपनी बातों को रखती है। तो ये मैंने कहा कि दोनों का क्या प्रभाव ये सामने नजर आता है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, जब 10 महीने में 14 डिसेंट नोट दोनों हमारे जो सहयोगी उनके मुख्य चुनाव आयोग के उन्होंने लिखा था, तो वो सच बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं? जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक सच एक झूठ को, मतलब एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रवृत्ति में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और यही एक कारण है कि इस प्रकार के वो हथकंडे अपना रही है और इस प्रकार की चीजें वो कर रही है।
6: स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है, वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने विषयों को प्रस्तुत करने में एक परिपक्वता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर है और इमैच्योरिटी में ये सब कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, उसके लिए किसी भी कद तक गिरना है, किसी भी लेवल तक गिरना है, मगर गिरने में भी जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी

0: भाषा अलग अलग है पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
3: छक्का,
2: सब कैशलेस हो गया
3: है।
2: हाँ ला ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर, एक दो तीन झुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
13: आप पे वो PMT बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
14: मेरे पास एक आइडिया है।
12: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
15: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
14: I have one. एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
15: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
13: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
14: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
15: तो कौन सी बनानी है?
16: मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार है, मोदी जी में कितना तारतम्य है, कितना गहरा संबंध है। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो PC नहीं करते हैं, और इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट देती है, वो PC नहीं करती है, अपनी बातों को रखती है। तो ये मैंने कहा कि दोनों का क्या प्रभाव ये सामने नजर आता है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, जब 10 महीने में 14 डिसेंट नोट दोनों हमारे जो सहयोगी उनके मुख्य चुनाव आयोग के उन्होंने लिखा था, तो वो सच बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं? जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक सच एक झूठ को मतलब एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रवृत्ति में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और यही एक कारण है कि इस प्रकार के वो हथकंडे अपना रही है और इस प्रकार की चीजें वो कर रही है।
17: स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है, वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने विषयों को प्रस्तुत करने में एक परिपक्वता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर है और इमैच्योरिटी में ये सब कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, उसके लिए किसी भी कद तक गिरना है, किसी भी लेवल तक गिरना है, मगर गिरने में भी जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रह रहा है वह अपरिपक्व है, एब्सोल्यूटली इमैच्योर है, क्योंकि इस प्रकार से देश के लोकतंत्र पर हमला नहीं होता है।
18: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सीसी पर मचे सियासी घमासान के बीच ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस पर आक्रामक हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी रेखा गुप्ता समेत सम्राट शुभेंदु ने खोला मोर्चा। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। वोट चोरी और अहंकार से जुड़ा प्रवेश ने वीडियो जारी कर दी सफाई, कहा कमीशन मांग रहा था इसलिए मारा। पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे ब्लॉक करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, रेप का आरोप और छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़का स्टूडेंट्स का गुस्सा। भयंकर तूफान और लगातार बारिश के बीच बिहार पर फिर से मंडराया भयंकर बाढ़ का खतरा, नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसिक पानी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर। त्रिवेंद्रम वनडे में शानदार भारत की जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट। भयंकर तूफान और लगातार बारिश के बीच बिहार पर फिर से मंडराया भयंकर बाढ़ का खतरा, नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसिक पानी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर। त्रिवेंद्रम वनडे में शानदार भारत की जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट। कोई नहीं है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और आखिर में दिखाएंगे मौसम ने ली है करवट, ठंड की बड़ी है आहट। बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। कल रात में भी कैंपस में बवाल हुआ था, आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद कैंपस में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस की टीमें कैंपस के अंदर बाहर पहरेदारी कर रही है। रविवार की शाम से फिर से बवाल शुरू हो गया था, छात्रों ने पुलिस पर पथराव तोड़फोड़ किया, जिसके बाद कैंपस एक बार फिर से मामला तनावपूर्ण कैंपस में बन गया था। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, कैंपस में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस इस भारी हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी मौजूद है, बाहर भी मौजूद है, मोर्चा पुलिस ने संभाल लिया है। छात्रों की मौत से एलपीयू कैंपस में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है।
1: आप देख सकते हैं किस तरह से अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिर्फ छात्र ही छात्र थे। और अब एक तरह से फिर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश पंजाब पुलिस द्वारा, आप देख सकते हैं किस तरह से अब अफसर एक बार फिर पहुंचे। ये एंट्री गेट है एलपीयू का, जहां पे ये पूरा मामला शुरू हुआ था। और ये जो सिचुएशन है अभी फिलहाल टेंस बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल कोशिश पंजाब पुलिस की यही है कि इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट को पर रोक लगाई जाए। जिस तरह से वायरल हो रहे हैं वीडियो, जिस तरह से अब आपको दिखा दें हम पंजाब पुलिस एंटर करते हुए, तो आपको कुछ कुछ आगजनी जो है वो नजर आएगी वहां पर। तो ये अब गाड़ियां अंदर जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियां अंदर गई और पंजाब पुलिस की एंट्री अब हो चुकी है कैंपस के अंदर, और एक तरह से सिचुएशन को नियंत्रण लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए अभी भी कुछ आसार हैं, और कहीं नजर आ रहा है कि कुछ कुछ ज्वलन पदार्थ है जो कि रखा गया है, और उसके बाद कैंपस में पंजाब पुलिस की एंट्री और कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। खास तौर पे जिस तरह से हिंसा हुई है जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, वहां पे अब एक कोशिश पंजाब पुलिस द्वारा के अंदर री एनफोर्समेंट बुला के सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए। पूरा मामला क्या है आपको बता दें कि आरोप ये लगाए गए थे कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है, जिसके बाद ये पूरा मामला भड़का है। और खास तौर पे कहें पुलिस ने और एलपीयू ने कहा कि यहाँ पे ये अफवाह है, लेकिन स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं मानना था। और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई, उसके ऊपर एसआईटी दर्ज की गई, लेकिन जब अप्रोच किया गया तो जस्टिस के स्लोगन जरूर लगाए गए, लेकिन वो माने नहीं। और जब पंजाब पुलिस एक बार उनको अप्रोच करती नजर आई, वहां पे हल्का लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद स्टोन पेल्टिंग, और उसके बाद जिस तरह से गाड़ियों को आग लगाई गई।
0: देखिए, प्रदर्शनकारी छात्रों ने जब हाईवे जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद बेकाबू छात्रों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी तक की गई है। छात्रों के हमले में पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है।
2: आधी रात को जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हालात बेकाबू हो गए। छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। धू धू कर जलती गाड़ियां, आग की लपटें और कैंपस में मची अफरा तफरी। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देर शाम LPU में हालात कितने बिगड़ गए थे। पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और पूरे कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालात संभालने के लिए पंजाब पुलिस ने LPU में फ्लैग मार्च किया। ADGP मोहम्मद फयाज फारूकी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस ने कैंपस का जायजा लिया। छात्रों को हॉस्टल लौटने की अपील की गई, लेकिन गुस्सा सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा। यूनिवर्सिटी परिसर की दुकान में तोड़फोड़ और चोरी की तस्वीरें भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने छात्र प्रतिनिधियों और LPU मैनेजमेंट के साथ बातचीत की। FIR की कॉपी और SIT की जानकारी छात्र प्रतिनिधियों को दी गई, लेकिन छात्र प्रतिनिधियों की बात मानने को तैयार नहीं हुए और मैनेजमेंट से सीधे आश्वासन की मांग करते रहे। छात्रों की नाराजगी का एक बड़ा मुद्दा हॉस्टल की सुरक्षा भी है। दरअसल पूरा विवाद एक छात्रा से जुड़े रेप के वायरल दावे के बाद शुरू हुआ था। पुलिस और यूनिवर्सिटी ने शुरुआती तौर पर इसे अफवाह बताया था, लेकिन अब मामले में पुलिस ने रेप की धाराएं जोड़कर FIR दर्ज की और जांच के लिए SIT गठित कर दी। शाम की हिंसा के बाद अब LPU कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस फ्लैग मार्च कर चुकी है। SIT मामले की जांच कर रही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस वक्त की एक बड़ी खबर, फगवाड़ा में पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से वॉकी टॉकी और हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है आगे और मामले की जांच भी हो रही है।
3: माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं हैगी। साड़ी फोर्स अंदर जाकर के पूरी तरीके दौरा करके आ गई है। फ्लैग मार्च होया है अंदर, कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। जिन्हें गर्ल्स हॉस्टल है उन्होंने सिक्योर कर लिया गया होया। जड़ी ये समस्या महसूस की जा रही थी कि शायद उथे कुड़िया के हॉस्टल च कोई शरारती अंसर दाखिल हो सकते ने, वो सारा बिल्कुल एकदम एलिमिनेट किया जा चुका है। कोई इस तरह की समस्या नहीं हैगी। बच्चियां जड़ियां सीगियां हॉस्टल के अंदर, उन्होंने भी गलबात हुई है, उन्होंने अश्योर किया गया आप फोर्स लगा रहे हैं ताकि कोई किसी तरह की कोई घटना जी ना हो, एक विश्वास की फजा कायम हो। कि शरारती अंसर ये शामिल से जिन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाई की होगी, डेफिनेटली उन्होंने बारे जरूर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर।
0: कमल जी संधू जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। कमल जी, जिन लोगों को पकड़ा गया है आखिर वो किस चीज की फिराक में थे, क्योंकि उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं, वॉकी टॉकी बरामद की गई है और LPU के बाहर अब कैसा माहौल है?
1: देखिए, आपको बता दें कि अब स्थिति है वो शांत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से शरारती तत्व घुस गए थे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, तो ये दावा अशोक मित्तल की तरफ से, जो कि राज्यसभा MP हैं और उनकी धर्म पत्नी हैं रश्मि मित्तल जो कि चांसलर हैं, ये लगातार कह रहे थे कि स्टूडेंट्स के बीच में कुछ शरारती तत्व भी हैं, आउटसाइडर फोर्स हैं। कौन है ये आउटसाइडर फोर्स? अब कई लोगों को कल रात को डिटेन किया गया, खासतौर पर जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई और कुछ गाड़ियों को जलाया गया। वहां पर एक चीज जरूर थी कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जरूर शामिल थे, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आए थे और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये संयोजित तरीके से कॉन्स्पिरेसी थी। आपको बता दें क्योंकि बहुत बड़ा अहम मुद्दा था कि कोई कथित रेप हुआ है और खासतौर पर जिस तरह से प्रशासन के साथ भिड़े स्टूडेंट्स, उनका मानना था कि उनकी जो मांगे हैं उनको अंदाज किया जा रहा है और इसी वजह से तकरीबन 20 घंटे विरोध प्रदर्शन रोड पे चला, वहां पे सड़कें जाम कर दी गई और उसी के बीच में जब पुलिस ने एक्शन किया वहां पे पथराव शुरू हो गया और जिस तरह से शार्प एज वेपन के साथ भी स्टूडेंट्स पीछे भागे हैं पुलिस वालों के, उसके बाद री एनफोर्समेंट बुलाई गई। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि इसमें जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि एक अफवाह होना और क्या स्टूडेंट्स इस तरह से बर्ताव कर सकते हैं कि पुलिसकर्मियों को पीटने की कोशिश, घायल करने की कोशिश और और उसके साथ में आगजनी की जाए, तो ये सारी जो है वो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है,
0: कुछ संदिग्धों को पकड़ भी लिया गया है। कमलजीत बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, भारी बवाल के बाद छात्र कैंपस छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल एलपीयू में 10 दिनों तक क्लासेस सस्पेंड कर दी गई है और अब छात्र कैंपस छोड़कर जा रहे हैं। आज सुबह से कई छात्रों ने कैंपस को छोड़ दिया है। तनावपूर्ण माहौल के बीच छात्रों के लिए वहां रहना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो वहां से निकल रहे हैं। अब क्लासेस को भी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है, लगभग 10 दिनों तक क्लासेस सस्पेंड रहेंगी एलपीयू में। इस बीच छात्र कैंपस छोड़कर जा रहे हैं, सुबह से ही तस्वीरें सामने आई जहां से छात्र अपने अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं।
4: मिनिस्ट्रेशन से जो हमारी बातें हुई, वो हम डीन वगैरह से जो हमारा कांटेक्ट हो पाया, उसमें हमको ये बातें क्लियर मिली हैं कि अभी हमारा जो कल रात में हंगामा हुआ, उसमें हमारी जो मेन कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ दिया गया, अंदर आग लगा दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। हम लोगों को 10 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं, पर पॉसिबल नहीं है कि 10 दिन में सारी चीज़ें सही हो जाएँ। हंगामा तो रुक गया है, अंदर अब शांति है, बवाल कोई नहीं है, पुलिस ने कवर कर रखा है। पर जिस तरह का हंगामा कल रात को हुआ, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ घुस गए थे और बहुत सारी तोड़ फोड़ हुई, रोबो पार्क में हमारा जो मिडिल ऑफ द यूनिवर्सिटी का पार्क है उधर मारपीट हुई, तो जिसकी वजह से इतना हंगामे के बाद हम लोग यहाँ सहमे हुए थे रात में, बहुत डर। पुलिस भी काफ़ी लेट पहुँची थी, लड़कियाँ रो रही थी यहाँ पर, वो अपने भाइयों दोस्तों को कॉल कर रही थी कि भाई हमें सेव करो किसी तरीके से, इसीलिए लड़के भी बाहर आ गए थे और फिर पुलिस ने कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया, जिसकी वजह से आज हम लोग सेफ हैं, फील कर रहे हैं।
5: अभी तो हम सबको लाइक नोटिस आया था हमारे उस पर कि 10 दिन कॉलेज बंद रहेगा, तो अगर चाहो तो घर जा सकते हो, तो इसीलिए सब निकल रहे हैं। अंदर अभी सब शांत है, अभी सब ठीक है, सब परफेक्ट है अभी अंदर। अब इतना कुछ होगा तो भैया एग्जाम चले थे बेसिकली, तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, ऊपर से वही लाइक एग्जाम पोस्टपोन हो गया, क्लास बंद कर 10 दिन के लिए।
6: क्लासेस जो चल रही थी वो बंद हो गई
5: है ऑलमोस्ट। अभी तो अंदर सब शांति है भैया, तो ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए अभी एक दो हफ्ते में, अगर सब ठीक रहता है तो। ऑफ कोर्स
7: तो हम घर ही जा रहे हैं, बिकॉज जैसे अभी लास्ट नाइट अभी जो अभी करंट सिचुएशन थी, इतना थ्रेटन कर दिया है कि लाइक बोलते हैं र्यूमर्स फैल रहे हैं बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा तो र्यूमर्स फैल रहे हैं, कुछ सच्चाई पता नहीं है। तो अब ये नहीं पता बात क्या है क्या नहीं है, बस इतना है कि हम सेफ होने चाहिए फिलहाल तो, और जो अंदर डिस्ट्रक्शन हो रखा है वो चीज अच्छी नहीं है, वो वैलिड।
0: अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का थप्पड़ कांड पर सियासत अब गर्मा चुकी है। कल दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया क्योंकि घटिया सड़क निर्माण को लेकर कुछ कहासुनी उनकी हो गई थी, और इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर FIR और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
2: दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नए विवाद में घिर गए हैं। दिल्ली के तिलक नगर में प्रवेश वर्मा ने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे, इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया।
8: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते।
2: प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड वीडियो आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जब मंत्री जी की फजीहत हुई तो सफाई देने लगे कि जिस शख्स को थप्पड़ मारा वो गालियां दे रहा था।
9: 15 साल तक ये रोड नहीं बनी, 15 साल के बाद में रोड बनाया जा रहा है। शायद इस बात से आम आदमी पार्टी पूरी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थी। मैंने खुद वहां के विधायक जर्नैल सिंह को 3 बार फोन किया।
10: जी जर्नैल जी।
11: जी परेश भाई, क्या हाल
10: चाल? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
11: मैं तिलक नगर में हूँ।
10: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
12: कहाँ रह गए सर?
9: मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
2: आम आदमी पार्टी इसको लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
0: तो वहीं दिल्ली थप्पड़ कांड को लेकर एक और बड़ी खबर, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पर साहिद सिंह नाम के जिस लड़के ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया उस पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साहिद सिंह पर एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा था और उसके खिलाफ दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इस पूरे मामले में साहिद सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी और वो अभी जमानत पर है। एफआईआर इसी साल 2 जून को दिल्ली के तिलक नगर थाने में साहिद सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मौके पर से एक सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया था जिसमें साहिब सिंह आरोपी के तौर पर एमसीडी कर्मी से मारपीट करते दिख रहा था। आपको ये बता दें कि साहिब सिंह एमएलए जर्नैल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट संभालता है। तो वही बड़ी खबर अब यूपी से आ रही है। यूपी में राजनीतिक पारा चढ़ रहा है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा, उन्हें कालनेमी कहा है। मुख्यमंत्री का रामद्रोहियों से सावधान रहना होगा, ये बयान सामने आया। वहीं उन्होंने कहा है कि बजरंगियों को इसके लिए तैयार भी रहना होगा।
13: आज क्या नहीं अयोध्या में है, रामद्रोही इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? याद करिए, ये रामद्रोही इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न कुछ युक्ति जरूर निकाल करके अयोध्या को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। राम मंदिर का विरोध करते थे, आज वे भी गाये बगाये अपने को राम भक्त ठहराने का प्रयास कर रहे हैं और यह विश्व हिंदू परिषद की वैचारिक विजय है। लेकिन याद रखना, आप सभी बजरंगियों को इस बात के लिए सावधान रहना होगा कि राम काज की नो बिनो, राम काज में काल नेमी भी घुसेंगे। काल नेमियों को पहचानने की आवश्यकता है। ये लोग घुसेंगे, आंदोलन को अपमानित करने का प्रयास करेंगे, बदनाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें इनकी साजिशों को, बजरंग बली के भक्तों को, बजरंगियों को, बाबरियों के भक्तों की जो कालनेमी के रूप में बाबरी भक्त घुस करके आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, इनकी साजिशों को सफल नहीं होने देना है।
0: बात कर लेते हैं बैंक हड़ताल की। आज से होने वाली बैंक हड़ताल टल गई है। आज से 3 दिनों की बैंक हड़ताल होनी थी लेकिन अब टाल दी गई। आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियंस के संगठन यूएफबीयू की बैठक के बाद इस पर सहमति बन गई। इस बैठक में कई बातों पर चर्चा भी हुई और कुछ फैसले भी लिए गए हैं जिसके बाद इस हड़ताल को टाल दिया गया है।
2: बैंक कर्मचारियों की 3 दिन की प्रस्तावित हड़ताल अब नहीं होगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया है। ये बैंक हड़ताल आज यानी सोमवार से शुरू होनी थी लेकिन अब टाल दी गई है। दरअसल बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में 5 दिन का बैंकिंग वर्किंग वीक लागू करना शामिल है। बैठक में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर आगे बातचीत का भरोसा दिया। यूएफबीयू के मुताबिक बचे हुए शनिवारों को छुट्टी घोषित करने के मुद्दे पर आईबीए और यूएफबीयू की एक हाई लेवल कमेटी तुरंत बनाई जाएगी। कमेटी सभी विकल्पों पर चर्चा करेगी और सभी हितधारकों खासकर ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए समाधान तलाशेगी। इसके अलावा स्केल 4 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में बदलाव को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। यूनियनों की आपत्तियों पर चर्चा के बाद सरकार के सामने संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इन आश्वासनों के बाद यूएफबीयू ने अब हड़ताल टाल दी है।
0: चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, क्या 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगने वाला चार्ज रुक सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। मामला यूपीआई के उन पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M ट्रांजेक्शन से जुड़ा है जिनकी रकम 2000 रुपए से ज्यादा है। केंद्र सरकार के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक 15 अक्टूबर से ऐसे चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि 75,000 रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा। अब इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। तो वहीं यूपी के साथ साथ बिहार में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं पर तेज बारिश हवाओं ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है तो कहीं पर मौसम का ऐसा अनोखा रूप देखने को मिल रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल समस्तीपुर में पानी की सतह से आसमान तक जल बवंडर की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं हाजीपुर में चक्रवाती हवाओं का असर दिखा। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी नुकसान की खबर नहीं है। बिहार में बदले मौसम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों पर मौसम ने अचानक से करवट ली है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी सा चमकने लगा। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख और साथ ही नीलांग घाटी में भी बर्फबारी हुई। खराब मौसम के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है, जबकि उच्च हिमालय में मौजूद ट्रैकर्स और जो पोर्टर्स हैं उनको भी सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू टीमें अलर्ट कर दी हैं।
2: पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ और सफेद चादर में लिपटे रास्ते और तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी की हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। काजा, चिचम, पिन घाटी और लांगजा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से बर्फबारी हो रही है। देखते ही देखते पहाड़ बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के साथ ही घाटी में ठंड बढ़ गई है। लाहौल घाटी में भी पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले पर्वतीय मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मौसम ने करवट ली है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों के साथ गोमुख, भोजवासा, चिड़वासा और नेलांग घाटी में बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। टिहरी में 36 घंटे से जारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। वहीं पकने को तैयार धान की फसल पर भी बारिश से नुकसान का खतरा मंडरा रहा है।
0: क्रिकेट के मैदान से अब एक शानदार खबर। तिरुवनंतपुरम वनडे मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार शतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज की ओर से रखे गए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 41.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज कर ली है। और इस जीत के साथ भारत ने 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। विराट का ये वनडे करियर का कुल 55वां और उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 86वां शतक है। इसके साथ ही कोहली ने अपने वनडे करियर में 315वें मैच की 303 पारियों में 15,000 रन पूरे किए। उन्होंने लगभग 60 की औसत के साथ ये आंकड़ा छुआ। कोहली वनडे प्रारूप में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन से पीछे हैं। इसी के साथ सुपर 8 में वक्त का एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
17: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट।
17: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
18: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
19: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB मेरा अपना बैंक।
20: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
21: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
20: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
22: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
23: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
22: असली शहद असली स्वाद।
24: मैडी, I need to open a savings account.
25: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
24: स्मॉल बैंक?
25: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account business, maxima business privilege, RDF, there's nothing small about them.
24: Okay.
25: Ujjivan, nothing small about us.
26: Tera pyar pyar pyar ulta baar, sir ek baar rutu thumka lagane bas.
25: Mere paas ek idea.
26: Kya?
25: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
26: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
25: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
27: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
26: कौन सी बनानी है?

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
3: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
4: कौन भय में जी रहा है?
3: नागरिक जी रहे हैं।
4: हाँ, भारत में
3: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: सीएसी पर मचे सियासी घमासान के बीच ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी, कांग्रेस पर आक्रामक हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी, रेखा गुप्ता समेत सम्राट शुभेंदु ने खोला मोर्चा। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी, वोट चोरी और अहंकार से जुड़ा प्रवेश ने वीडियो जारी कर दी सफाई, कहा कमीशन मांग रहा था इसलिए मारा। जल उठी पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी, जबरदस्त तनाव के बीच कैंपस छोड़कर जाने लगे छात्र, रेप के आरोप के बाद गुस्से की लपटों में कई गाड़ियां खाक, पुलिस वाले भी घायल, करना पड़ा लाठीचार्ज। भयंकर तूफान और लगातार बारिश के बीच बिहार पर फिर से मंडराया भयंकर बाढ़ का खतरा, नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसिक पानी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट। त्रिवेंद्रम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, कोहली का कमाल, 55वां शतक के साथ बने सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

पर बवाल, छात्र को पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, कई पुलिसकर्मी घायल। एलपीयू के बाहर हिंसक प्रदर्शन, छात्रों ने पुलिस वाहनों पर किया पथराव, दो गाड़ियों को आग के हवाले किया। रेप के दावे पर एफआईआर दर्ज, अज्ञात के खिलाफ केस, एसआईटी में पुलिस के साथ छात्र प्रतिनिधि भी शामिल। एलपीयू में 10 दिन के लिए रेगुलर क्लासेस सस्पेंड, हिंसक प्रदर्शन के बाद छात्र घर लौटे, हिंसक प्रदर्शन के बाद एलपीयू में क्लासेस बंद। एलपीयू हिंसा पर बीजेपी नेता राजकुमार गुप्ता का बयान, कहा प्रदर्शन का हक लेकिन पथराव और तोड़फोड़ गलत। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर दिल्ली में सियासत गरम, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री के खिलाफ एफआईआर की मांग। सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर आमने सामने बीजेपी मंत्री प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी विधायक जनरेल सिंह, बहस के बीच थप्पड़ का वीडियो वायरल। थप्पड़ कांड पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला, संजय सिंह बोले मंत्री को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थप्पड़ विवाद पर प्रवेश वर्मा की सफाई, बोले परिवार को गाली देने के बाद गुस्से में हुआ रिएक्शन, आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ वीडियो पर राहुल गांधी का हमला, बोले सत्ता का ऐसा चेहरा जो अब वोटर से नहीं डरता। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला तेज, जयराम रमेश बोले पैमाने पर वोटर्स को हटाना लोकतंत्र के लिए खतरा। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर प्रियंका गांधी का हमला, प्रियंका बोली राजनीतिक झुकाव वाले सीईसी निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे। एसआईआर पर बीजेपी का पलटवार, विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद, बीजेपी बोली गंदी वोटर लिस्ट से फायदा उठाने वाले अब क्यों परेशान है। एसआईआर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना, योगी बोले संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर भरोसा कमजोर कर रही है कांग्रेस। एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को जी किशन रेड्डी ने घेरा, बोले जहां पर कांग्रेस जीती वहां एसआईआर सही, जहां हारी वहां सवाल। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान, मुकुल वासनिक बोले ईसीआई को जवाबदेह बनाने के लिए सड़क पर उतरे। एसआईआर पर आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग पर सीधा हमला, संजय सिंह बोले बीजेपी ज्ञानेश कुमार के साथ क्यों खड़ी है। एसआईआर विवाद पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस का राहुल गांधी पर पलटवार, फडणवीस बोले वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी की सोच चोरी हो गई है। 2.8 करोड़ मृत वोटर्स के नाम हटाने के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस का सवाल, पवन खेड़ा बोले बाकी 10 करोड़ से ज्यादा नाम कहां गए। वहीं सीसी ज्ञानेश कुमार पर केरल में भी सियासी हमला तेज, वीडी सतीशन बोले ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को डेथ सेंटेंस दिया। राम मंदिर आंदोलन पर योगी का बड़ा बयान, योगी बोले बजरंगी सावधान रहे, राम आंदोलन को बदनाम करने वाले कलने में मौजूद। बाबरी भक्त वाले बयान पर योगी का विपक्ष पर हमला, योगी बोले जो राम मंदिर के विरोधी थे वही अब राम भक्त बनने का दावा दिखा रहे। एसआईआर को लेकर अखिलेश का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, अखिलेश बोले 2029 में वोट देने वालों के नाम 2022 में काटे गए। एसआईआर पर योगी के समर्थन को लेकर अखिलेश का पलटवार, अखिलेश बोले अगर इलेक्शन कमीशन घोटाले में शामिल है तो बीजेपी भी इसमें शामिल है। एसआईआर और वोट कटने के आरोपों पर अखिलेश का हमला जारी, बोले चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम ना करे, अपनी साख बचाए। शुभेंदु अधिकारी पर हुमायूं कबीर का विवादित बयान, कबीर बोले अल्लाह उनका टिकट बुक करे, दुनिया से जल्द चले जाए। शुभेंदु अधिकारी पर हुमायूं कबीर के विवादित बयान पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का पलटवार, कहा मुस्लिम भी उन्हें वोट नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद का लॉलीपॉप अब काम नहीं आएगा। 1000 से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपीआई पेमेंट पर 0.4% शुल्क लगाने के खिलाफ याचिका, केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। यूपीआई पर एमडीआर लागू करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में पारदर्शिता और नियमों पर उठे सवाल। पंजाब में सरकारी बंगालों पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया सरकारी आवासों के दुरुपयोग का आरोप। गायत्री बिश्नोई के बयान से बढ़ा बंगाल विवाद, खेरा बोले उनके जवाब से आम आदमी पार्टी नेताओं के सरकारी आवास में रहने का मामला खुला। बीजेपी नेता आरपी सिंह का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला, बोले दिल्ली को लूटने वाले अब पंजाब को लूटने पहुंचे। हरसिमरत कौर बादल ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा, बोली पंजाब के सरकारी बंगलों में बाहरी लोगों को क्यों दी जा रही है सुविधाएं। 3 दिन की बैंक हड़ताल टली, आईबीए यूएफबीयू की बैठक में बनी सहमति, बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित, बैठक के बाद लिया गया फैसला। इस बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई और कुछ फैसले भी किए गए, जिसके बाद बैंक हड़ताल को टाल दिया गया। जयपुर नगर निगम में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी पर भी बीजेपी का कब्जा, सरोज कंवर को मिले 89 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी सलमान को मिले 58 वोट। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान के पिछले हिस्से की टक्कर, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित, गुवाहाटी से बेंगलुरु पहुंचे। बिहार के बगहा में गंडक के उफान से लक्ष्मीपुर के गोदाम में हाहाकार मचा, 100 घरों में कमर तक पहुंचा पानी। पूर्वी चंपारण में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाई अलर्ट, गंडक के तटवर्ती इलाकों का डीएम ने लिया जायजा। गंडक के बढ़ते जलस्तर से बिहार के गोपालगंज में अलर्ट, निचले इलाकों को खाली करने में जुटा प्रशासन। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश से ऋषिकेश में खतरे के निशान के पार गंगा, श्रद्धालु को किया जा रहा है सचेत।
उत्तराखंड की टिहरी में मौसम ने बदली करवट, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड ने दी दस्तक। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, काजा पिन घाटी और शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई के इलाकों में बदला मौसम। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड, सड़क से बीआरओ ने हटाया मलबा। महाराजगंज में भारी बारिश से चार लोगों की मौत, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। ओडिशा के भद्रक में तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन की ओर से पानी निकासी की कोशिश जारी। रायगढ़ में महानदी में उफान, गंगरेल बांध के 14 गेट खुले, शिवरी नारायण का संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में लगातार बारिश, चिरवासा में सड़क पर आया भारी मलबा, मौसम खुलने का शुरू होगा काम। यूपी के हरदोई में बारिश बनी आफत, अब तक 8 मौत, 30 पशुओं की मौत, 330 घर क्षतिग्रस्त।

करीम, मोहम्मद इशाक जैसे अनुभवी खिलाड़ी। दोनों टीमें नॉकआउट भिड़ंत के लिए तैयार। आज के मुकाबले की जीत पर टीम इंडिया की नजर। भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच को किया गया अपने नाम। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे। तिरुवनंतपुरम वनडे की जीत के हीरो रहे विराट कोहली और शुभमन गिल। विराट ने नाबाद 139 रन की खेली पारी। विराट के नाम लगी रिकॉर्ड की बौछार। वनडे में 55वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 86वां शतक लगाया। वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले 110 को 8 विकेट से हराया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच को किया गया अपने नाम। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे। तिरुवनंतपुरम वनडे की जीत के हीरो रहे विराट कोहली और शुभमन गिल। विराट ने नाबाद 139 रन की खेली पारी। विराट के नाम लगी रिकॉर्ड की बौछार। वनडे

कर्क राशि, आसानी से धन पा सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, लेकिन काम टालने से आज बचना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

है स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। जीवन साथी को आपकी किस्मत से लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृश्चिक राशि, किसी

हानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार गोल्डी थमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
6: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?

0: मतभेद की खबरों के बीच चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। बैठक में मौजूद थे सीईसी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। विपक्ष के सवालों के बीच ये मतभेदों को दूर करने की कवायद थी, संदेश देने की कोशिश थी कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक है।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के बीच 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने पहली मीटिंग की। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि सीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूट देते हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने का निर्देश दिया है। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले भर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले लिए, उनमें एक फैसला ये भी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ये समय सीमा 30 नवंबर की होगी, जबकि महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे किए जा सकेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने विवादों के बीच अपनी पहली बैठक की और तमाम आरोपों को खारिज किया, बीजेपी ने विरोधियों पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के बयान के बाद सच्चाई शीशे की तरह साफ है, साथ ही पार्टी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है।
2: राहुल गांधी जी, पहला सवाल है आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ने चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस लगातार फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है।
3: तो प्रमुख शिकायत थी इन दोनों को, संधू जी को और जोशी जी को, तो यही न थी कि 1960 के रूल्स को अमेंड किए बगैर फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वो रूल्स बिना पार्लियामेंट में जाए नहीं बदल सकते।
0: इस मामले को लेकर विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष आगे के एक्शन प्लान पर मंथन करेगा। संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक है।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के बीच 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने पहली मीटिंग की। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि सीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूट देते हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने का निर्देश दिया है। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले भर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले लिए, उनमें एक फैसला ये भी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ये समय सीमा 30 नवंबर की होगी, जबकि महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे किए जा सकेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने विवादों के बीच अपनी पहली बैठक की और तमाम आरोपों को खारिज किया, बीजेपी ने विरोधियों पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के बयान के बाद सच्चाई शीशे की तरह साफ है, साथ ही पार्टी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है।
2: राहुल गांधी जी, पहला सवाल है, आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ने चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस लगातार फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है।
3: तो प्रमुख शिकायत थी इन दोनों को, संधू जी को और जोशी जी को, तो यही न थी कि 1960 के रूल्स को अमेंड किए बगैर फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वो रूल्स बिना पार्लियामेंट में जाए नहीं बदल सकते।
0: इस मामले को लेकर विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष आगे के एक्शन प्लान पर मंथन करेगा। संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सीसी पर मचे सियासी घमासान के बीच ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस पर आक्रामक हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी रेखा गुप्ता समेत सम्राट शुभेंदु ने खोला मोर्चा। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। प्रवेश ने दी सफाई, कहा मेरे परिवार को दी गाली इसलिए मारा, केजरीवाल के गुंडे दिल्ली में कर रहे उगाही। जल उठी पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी, जबरदस्त तनाव के बीच कैंपस छोड़कर जाने लगे छात्र। रेप के आरोप के बाद गुस्से की लपटों में कई गाड़ियां खाक, पुलिस वाले भी घायल, करना पड़ा लाठीचार्ज। भयंकर तूफान, लगातार बारिश के बीच बिहार पर फिर मंडराया भयंकर बाढ़ का खतरा। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी। कोसी गंडक में उफान, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। 55वें शतक के साथ कोहली बने सबसे तेज, 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।

0: घड़ी भी 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की सियासत में गूंज रहा है थप्पड़ कांड, आखिर प्रवेश वर्मा को क्यों आया गुस्सा, आपका आरोप और प्रवेश की सफाई, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। बजरंगियों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या अपील की वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर की, जहां से आई है जल बवंडर की तस्वीरें। मैदान से लेकर पहाड़ तक बदल रहा है मौसम, मौसम के इस बड़े बदलाव की खबर भी इस बुलेटिन में प्रमुखता से शामिल होगी। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के थप्पड़ कांड के साथ, जहां पर दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने थप्पड़ कांड पर विस्तार से अपनी सफाई पेश की है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि जिस युवक को उन्होंने चांटा मारा उसने उनको उनके परिवार को गाली दी थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जरनैल सिंह ठेकेदार से कमीशन की मांग कर रहे थे और कमीशन ना मिलने पर रात में बनी सड़क को सुबह उखाड़कर वीडियो बना रहे थे। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो खुद विकासपुरी में बनी सड़क का मुआयना करने जाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए।
1: एक थप्पड़ जिससे दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। अब थप्पड़ कांड की पहले का वीडियो देखिए। स्क्रीन पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, उनके साथ नीली शर्ट और सफेद पैंट में विधायक जरनैल सिंह है। जरनैल सिंह दिल्ली के मंत्री से विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास नई बनी सड़क की घटिया गुणवत्ता की शिकायत कर रहे हैं। मंत्री के सामने ही जरनैल सिंह सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत करते नजर आए। इस पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
2: गलत नहीं बोलना
3: सर, ऐसा बोल दिया,
2: बिल्कुल गलत।
3: बीजेपी के लोग कंप्लेन कर
2: सड़क नहीं बना पाए,
3: सब ने बनवाई आप बना दो ना, ऐसी मत बनाओ ना।
2: साल में
3: ये तो 15 घंटे नहीं चलेगी,
2: 15 साल में नहीं बनी,
3: ये तो 15 मिनट नहीं चली,
2: 15 साल में नहीं,
3: ये तो 15 मिनट नहीं चली।
1: बहसबाजी बढ़ रही थी और जरनैल सिंह सड़क उखाड़ते जा रहे थे। इन सबके बीच प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे। प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जरनैल सिंह भी वहां पहुंच गए। वहां प्रवेश और जरनैल के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। अब जरा इससे पहले का वीडियो देखिए जो प्रवेश वर्मा ने जारी किया है।
4: जी जरनैल जी।
5: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
4: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
5: मैं तिलकनगर में हूँ।
4: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
6: कहाँ रह गए सर?
1: प्रवेश वर्मा के मुताबिक उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जरनैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जरनैल अपने समर्थकों के साथ आए और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
7: जब वहां पे जरनैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
1: मंत्री जी सफाई का वीडियो जारी कर रहे थे और उधर थप्पड़ से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिलक नगर थाने पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।
8: हैरान की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
1: दिल्ली की सियासत में इस थप्पड़ की गूंज आज भी सुनाई देगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल उस सड़क का निरीक्षण करने वाले हैं जिसे लेकर बवाल मचा है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: और इस पूरे विवाद पर दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो जारी किया। उनका कहना है कि सड़क का निर्माण गुरुद्वारे की मांग पर गुरुपर्व को ध्यान में रखकर छटपट किया गया, ये निर्माण अस्थायी है, इसे फिर से बनाया जाएगा।
9: अगर कोई मंदिर या कोई रिलीजियस संस्था अगर हमारे पास आकर ये कहती है कि हमारी रोड को बना दीजिए, हमारा जलूस है, हमारा नगर कीर्तन है, तो क्या हमको रोड बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए?
10: जेडी ओछी राजनीति कर रहे ने ना, रोड नु पुटना ये अच्छी गल नहीं है।
11: जो ये काम हुआ ये इंसिडेंटली रात में अंडर प्रेशर केवल गुरुद्वारे को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था।
12: 5 तारीख को गुरुपुर्ब है, भाई ये काम तो कर लो, ये गाड़ी हमारे को डलवा दो कि हमारा ये प्रोग्राम फंक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद जो करना है। इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पहुँचाई, कैसी किया, इनकी मेहरबानी, रात को आके ये गाड़ी दो गाड़ी माल डलवाया कि फंक्शन गुजर जाए और उसके बाद में तुम्हारे लिए प्यारा सिंह बढ़िया सड़क बना दूंगा। ठीक है, कम ज्यादा माल इसके पास था, डलवाया, वो काम चलाया। अभी 5 तारीख के बाद उन्होंने मेरे साथ बोला है कि मैं तुम्हारा सही तरीके से बना के दूंगा।
9: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी टीम ने ये काम कर दिया। ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया। तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा। पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के ये रोड को पूरा लूज किया, फिर उसने अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके ये रोड ऐसे निकल रहा है और ऐसे वो दिखाया। उससे पहले ये वो पूरा इसको लूज कर चुका था। मैं यहाँ से केवल 2 कदम की दूरी पर जहाँ पे उसने रोड को उखाड़ा था, मगर ये जो टेम्परेरी रोड बना उसके बाद भी ये रोड बहुत अच्छा बनाया इंजीनियर्स ने ताकि ये अच्छा चल जाए। गुरुद्वारे का नाम लेकर यहाँ के विधायक ने कहा कि अभी इसको टेम्परेरी बना दो, अभी मेन काम इसका दोबारा से होगा। ये रोड पिछली बार कब बनी थी?
13: 15 साल पहले बनी थी।
9: आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई रोड नहीं बनी।
0: और इस बीच इस पूरे विवाद को लेकर प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो जारी किया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो पर कहा कि वो आज खुद उस सड़क का मुआयना करने जाएंगे, जिसे लेकर ये बवाल मचा है।
14: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि इतनी आसानी से चाहे कितनी भी खराब सड़क हो वो उखड़ती नहीं है, नाखून से, उंगलियों से, हाथ से, किसी से भी।
15: देखिए, सवाल ये है कि किस वक्त सड़क को उखाड़ने की कोशिश की गई। अब अगर कंप्लेन दी जाती है और इस पूरे मामले की अगर जांच की जाएगी तो देखिए, सबसे पहले तो ये वो पैच है जहां पर आप देखिए नेहा, जहां पर सड़क को उखाड़ा गया और यही वो हिस्सा है जो दिखाया गया ये उखाड़ के। अब लेकिन अगर आगे अगर कोई देखे तो ये हिस्सा अब पूरी तरीके से चिपका हुआ है। तो किस वक्त इसको उखाड़ने की कोशिश की गई, क्या क्वालिटी सही है या खराब है, क्या जो तय पैमाने हैं सड़क के बनाने के उसको माना गया या नहीं माना गया, ये तो एक्सपर्ट की जांच के बाद ही क्लियर होगा कि जो मटेरियल लगना था, जो सारी चीजें थी वो किस हद तक उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है सड़क का, मेन रोड का, आप देखिए यहाँ पर ये, और दूसरी तरफ जो पूरा सर्विस रोड का इलाका है, आप देखिए जो गुरुद्वारा है आपका और ये सामने ये सर्विस रोड है, तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन किया गया तो इसको लेकर के विवाद है। अब कुल 3 कंप्लेन नेहा इसमें की गई है। एक कंप्लेन तो साहिब सिंह की तरफ से की गई कि भाई ये देखिए, ये मुझे यहाँ पर मंत्री जी ने चाटा मार दिया, जिसके वीडियो भी वायरल है और अपने उसके साथ शिकायत के साथ उन्होंने तमाम जो वीडियो एविडेंस है वो भी दिया है। दूसरी कंप्लेन जो सड़क जिसकी तरफ से बनाई जा रही थी वो दी गई है, और तीसरी कंप्लेन जो है वो भी दी गई है पार्टी की तरफ से कि इस तरीके से वहां पर पहुंच करके और जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है, कोई भी FIR जो अब तक हमारी जानकारी है कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। अब हमें देखना ये होगा कि पुलिस जब FIR दर्ज करती है तो जो अलग अलग शिकायतें मिली हैं उनमें से कितनी FIR दर्ज होती है। जो एक जो शिकायत है साहिब सिंह की तरफ से उसमें थप्पड़ मारने की शिकायत है और साथ साथ एविडेंस भी है। अब इस पूरे मामले में ये जो पूरा हिस्सा आप देखिए इसको लेकर के जो सियासत शुरू हुई है। जी नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच दिल्ली थप्पड़कांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा पर साहिब सिंह नाम के जिस लड़के ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है उस पर पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है। साहिब सिंह पर MCD के एक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा था और उसके खिलाफ दिल्ली के तिलक नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज है। इस मामले में साहिब सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी और वो जमानत पर बाहर है। ये FIR इसी साल 2 जून को दिल्ली के तिलक नगर इलाके में साहिब सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से एक CCTV फुटेज बरामद किया जिसमें साहिब सिंह आरोपी के तौर पर MCD कर्मी से बदसलूकी करते हुए दिख रहा है। आपको बता दें साहिब सिंह MLA जरनैल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट संभालता है।
16: मेरे से बस इतनी गलती हुई, मैंने वो रोड उखाड़ के मंत्री जी से सवाल पूछ लिया। सर ने सवाल पूछ लिया कि ये आपने ये क्वालिटी क्या है और इसके आप विभाग के मंत्री हैं तो आप बताइए इसमें कहाँ दिक्कत है, कहाँ घोटाला हुआ है। तो मंत्री जी ने शायद से खुद ही घोटाला करा था, उनसे वो बात झेली नहीं गई। वो उल्टा मुझे उन्होंने मेरा फोन छीना और मेरा और उन्होंने मेरे कान पर चाटा जड़ दिया।
0: और इस पूरे थप्पड़ कांड को लेकर राहुल गांधी भी मुखर तौर पर सामने आए। उन्होंने BJP पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर यह भी लिख दिया कि उस सत्ता का चेहरा है BJP जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है। सड़क पर सवाल पूछो, थप्पड़ पेपर लीक पर सवाल पूछो, लाठी संसद में सवाल पूछो, माइक बंद, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अब ये डर ही नहीं है कि चुनाव इन्हें हटा सकता है। वो चोरी यही खरीदते हैं, सिर्फ नतीजा नहीं उसके बाद आने वाला अहंकार भी। जो सरकार जीत को पक्का मान लेती है उसे आपकी रजामंदी नहीं चाहिए।
17: देखिए सत्यनिकेतन में बिल्डिंग गिरे, आस्था कुंज और दिल्ली में लगातार बहन बेटी के साथ रेप और उनका मर्डर हो या किसी युवा को थप्पड़ मारना हो, बाबा गणेश कुमार जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे, तभी तो अमित शाह कहते हैं कि अगले 30 साल हमारी सरकार रहेगी। आज पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके गुंडों से परेशान हैं, परंतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आज आप ECI को करेक्ट कर दो, ये सब नेता हाथ जोड़ते दिखाई देंगे।
0: और इस बीच आपको बता दें कि पंजाब के जलंधर से खबर आ रही है जहां पर LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप के आरोपों पर बवाल बीती रात तक जारी रहा। रविवार शाम को बड़ी संख्या में उग्र छात्रों ने हाईवे जाम किया, यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ की, वहां आगजनी की, यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात की गई। कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह इस उपद्रव को काबू किया गया। पुलिस रेप के आरोपों की जांच की बात कह रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद कर दी गई है।

0: छात्रा से रेप के आरोपों पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गुस्से की ऐसी आग धक्की कि कैंपस को ही अपनी चपेट में ले लिया। बीती शाम छात्रों ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे जाम किया और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन तोड़फोड़ और आगजनी तक पहुंच गया। देर रात तक आई एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि उपद्रव किस कदर था, कैसे पूरी रात छात्रों का हंगामा जारी रहा। दरअसल पूरा बवाल शुरू हुआ एक छात्रा की खुदकुशी से। दावा हुआ कि छात्रा ने खुदकुशी की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। हालात बिगड़ता देख भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तैनाती की गई और किसी तरह हालात को काबू में किया गया।
1: एक तरह से सिचुएशन को नियंत्रण लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए, अभी भी कुछ आसार हैं और कहीं नजर आ रहा है कि कुछ कुछ ज्वलन पदार्थ है जो कि रखा गया है, और उसके बाद कैंपस में पंजाब पुलिस की एंट्री और कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। खास तौर पे जिस तरह से हिंसा हुई है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, वहां पे अब एक कोशिश पंजाब पुलिस द्वारा के अंदर री एनफोर्समेंट बुला के सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों को भी चोट आई है, साथ ही गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन हालात काबू होने का दावा कर रहा है।
2: इसको एसेस करने के बाद हमने कोशिश ये करी थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर इनोसेंट बच्चे हैं, कोई उसमें उनका कोई नुकसान ना होने पाए।
1: इनोसेंट बच्चे हैं, आपको दिखा दें कि गाड़ियां के शीशे टूटे हुए हैं।
2: तो जो भीड़ होती है उसमें शरारती अंसर भी होते हैं और इनोसेंट भी होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा कदम उठा लें जिससे किसी को नुकसान हो। लेकिन उस रिस्ट्रेन को करते हुए हमने स्थिति कंट्रोल कर ली है। आज यहाँ पे हॉस्टल के अंदर और उसके आसपास सारे कैंपस में हमारी फोर्स पहुंच गई और हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। सभी जहाँ बच्चियों के हॉस्टल्स हैं उसमें भी हमारी फोर्स चली गई, हमने सीधे बच्चियों से बातचीत करी और दे आर सिक्योर्ड, और हम रात में भी पूरी सिक्योरिटी रखेंगे ताकि उनको विश्वास रहे कि किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी।
0: उधर LPU में हुए बवाल के बीच बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि छात्रा से रेप का जो दावा स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसका सच क्या है।
3: ये जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं मैं कह सकूंगा, क्योंकि ये लोकल प्लेस जो SSP साहब कपूरथला, वो प्रॉपरली FIR रजिस्टर हो चुकी है और वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी तथ्य होंगे सामने आ जाएंगे।
0: उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार रेप के दावों को खारिज कर रहा है और इसे सिर्फ अफवाह बता रहा है। इस बीच LPU ने बयान जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर क्लासेस स्थगित कर दी है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी से छात्रों की जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
4: यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि केस फेक है, र्यूमर है, और मतलब बट बच्चे हैं कि जो कि उसको वो कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो अपोज जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप केस छुपाने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये सब चीजें चल रही हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। तो इट्स बेटर कि अगर हम घर पहुंच जाए, क्योंकि अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। आउटसाइडर जो हैं, लोकल जो हैं, वो ड्रंक होके आ रहे हैं, अंदर सब चीज खराब कर रहे हैं, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है।
5: सबको नोटिस आया था हमारे उस पर कि 10 दिन कॉलेज बंद रहेगा, तो अगर चाहो तो घर जा सकते हो, तो इसलिए सब निकल रहे हैं।
0: रेप के आरोपों के बाद LPU में ऐसा बवाल हुआ जिसने लगातार 2 दिनों तक यूनिवर्सिटी को सुलगा दिया। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और इस बीच छात्रों के गुस्से को भी शांत करने की कोशिश हो रही है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, LPU हंगामे को लेकर अब एक्शन में पंजाब के CM भगवंत मान दिखाई दे रहे हैं। भगवंत मान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने DGP गौरव यादव को घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है। DGP गौरव यादव आज सुबह लगभग 9:45 इस मामले में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। कमलजीत, मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमल जीत, ये जो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, हिंसा हो रही है कैंपस के भीतर, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अब प्रेस ब्रीफिंग करके क्या बताने वाली है? पहले तो इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए थी, अगर हुई है तो उस पर एक्शन क्या हुआ है, कौन है वो लोग जो जिम्मेदार है इसके लिए?
1: देखिए, पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ हुआ है एलपीयू में, और खास तौर पे पंजाब पुलिस के टॉप ऑफिसर से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि मामला जब हाथ से निकल गया तब एलपीयू ने पंजाब पुलिस को बुलाया, तो वो देर रात 2 बजे पहुंचे और उसके बाद तकरीबन रात के 12 बजे तक रहे, तो तकरीबन 24 घंटे पंजाब पुलिस ऑन ग्राउंड रही है। इस बीच में दावा पंजाब के छात्र हैं, वो कह रहे थे एलपीयू में कि किसी एक छात्रा के साथ रेप हुआ है, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया, वो चाह रहे थे कि एफआईआर हुआ, एफआईआर किया गया, उसके बाद एसआईटी की मांग की गई, उसके बाद वो मांग कहीं ना कहीं गोल पोस्ट चेंज होते हुए देख पंजाब पुलिस लगातार संपर्क कर रही थी। लेकिन कहां पे गड़बड़ी हुई, क्योंकि तकरीबन 25,000 स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, और खासतौर पर सुरक्षा को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, और वहां पर कहीं ना कहीं पिछले के कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको जोड़ के ये पूरा देखा जा रहा था कि मामले को दबाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगातार छात्र और छात्राएं लगा रही थी। उसी बीच पंजाब पुलिस जब वहां पर पहुंची तब तक मामला और भड़का हुआ था, उन्होंने हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया और तकरीबन 20 घंटे हाईवे ब्लॉक रहा। फिलहाल जब कोशिश की पंजाब पुलिस द्वारा कि कहीं ना कहीं हल्की लाठी चार्ज करके कंट्रोल कराया जाए सिचुएशन, तब छात्र भड़के और उन्होंने पथराव करना शुरू किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, फिर आगजनी हुई, पुलिस की कई गाड़ियों के ऊपर ज्वलन पदार्थ डाल के उसे जलाया गया, और वहां पे हमने देखा जवाबी कार्रवाई, री एनफोर्समेंट बुलाई गई, चाहे जलंधर से हो चाहे होशियारपुर से हो, और सिचुएशन देर रात को ही कंट्रोल कर पाए। लेकिन कई सवाल,
6: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच कोलकाता की बात करेंगे, जहां पर सत्यजीत रे की फिल्म इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच झड़प हो गई और पुलिस की मौजूदगी में दोनों ने मारपीट की, पूरी रिपोर्ट अनुपम मिश्र दे रहे।
7: मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता का नामी इंस्टीट्यूट, और इसके बाहर जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, पुलिस है और साथ में है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ये जो संगठन है, ये संगठन के साथ जो SRFTI के जो छात्र हैं उनका झमेला हुआ है। ये कई घंटे हो चुके हैं, अभी भी विवाद पूरी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो तनाव था वो थोड़ा कम हुआ है, पुलिस की संख्या भी बड़ी है। जो छात्र हैं वो गेट के भीतर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा गेट, जो SRFTI का जो मुख्य द्वार है वो फिलहाल बंद है, और गेट के भीतर थोड़ी पुलिस है और उसके बाद पीछे की ओर छात्र हैं, और बाहर जो भीड़ आप देख रहे हैं ये है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लोग, ये बाहर में भीड़ लगाकर रखे हुए हैं, बीच में पुलिस है। जो घटना हुई है दोपहर में, इस संगठन का, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन का एक कार्यक्रम इंस्टीट्यूट के भीतर एक हॉल में था, और इसी दौरान छात्रों के साथ इस संगठन के लोगों की कहासुनी पहले शुरू हुई, फिर वो झड़प में तब्दील हो गई, दोनों ही गुटों के कई लोग घायल हुए, और इसके बाद से ही तनाव बढ़ गया, छात्रों ने दरवाजा मुख्य बंद कर दिया, भीतर में कई लोग फंसे हुए थे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लोग, और उनको पुलिस ने जाके बाहर निकाला, और इस वक्त आप भीतर में दिखा रहा हूं, भीतर में छात्र अभी भी, अब वो देखिए साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर भीतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के लोग भी भीतर में हैं, पुलिस के जवान भीतर में हैं, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है।
6: और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा, उन्होंने कालनेमी कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि रामद्रोहियों से सावधान रहना चाहिए, बजरंगियों को इसके लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा।
8: लेकिन याद रखना, आप सभी बजरंगियों को इस बात के लिए सावधान रहना होगा कि राम काज की न विभिन्नो, राम काज में कालनेमी भी घुसेंगे, कालनेमियों को पहचानने की आवश्यकता है। ये लोग घुसेंगे, आंदोलन को अपमानित करने का प्रयास करेंगे, बदनाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें इनकी साजिशों को बजरंग बली के भक्तों को, बजरंगियों को, बाबरियों के भक्तों की जो काल नेमी के रूप में बाबरी भक्त घुस करके आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, इनकी साजिशों को सफल नहीं होने देना है।
6: और बात मौसम के बिगड़े मिजाज की, क्योंकि बिहार के समस्तीपुर में पानी की सतह से आसमान तक जल बवंडर की तस्वीरें आ रही हैं। हाजीपुर में चक्रवाती हवाओं का असर दिख रहा है, हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी के नुकसान की खबर नहीं है। बिहार में देखिए बदले मौसम की ये दो तस्वीरें। उधर बिहार में गंडक नदी उफान पर है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़कर करीब 5 लाख क्यूसेक पहुंच चुका है। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद डाउनस्ट्रीम में गंडक नदी के डेंजर लेवल को इसने पार कर लिया है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जहां जहां डेंजर है, खतरा है इस बढ़ती नदी के स्तर का, वहां प्रशासन का क्या इंतजाम है, किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया गया है?
9: देखिए बाढ़ की स्थिति बिगड़ी है नेहा, और पिछले 4-5 दिनों में जो बारिश हुई है नेपाल के अंदर, भारी बारिश, उसका असर सीधे गंडक के ग्रहण जल अधिग्रहण क्षेत्र में पड़ा है। और देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को भी, ये गंडक बराज है वाल्मीकि नगर का, और यहाँ इस वक्त जो पानी का उफान है, धार है, जो नारायणी नदी नेपाल से बहकर के बिहार में गंडक के रूप में पहुंचती है, वो आज सुबह 4 बजे 5,43,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ है, और अभी भी लगभग 5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज बना हुआ है। और ये पानी जो पश्चिम चंपारण के जिले में आ रहा है इस वक्त, वाल्मीकि नगर, बगहा और पूरा इलाका, गोपालगंज तक चले जाइए वहां तक ये गंडक का पानी पहुंचता है। तो हर जगह जो पानी की मार है वो देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। और अगर पश्चिम चंपारण की बात करूं तो कल अलग अलग जगहों पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा, जो वाल्मीकि नगर और बगहा को जोड़ने वाला SH-64 है, स्टेट हाईवे, उस पे कमर भर से ऊपर मतलब तकरीबन 4 से 5 फीट पानी है। और यही वजह है इस वक्त कि जो बाढ़ की स्थिति संभल गई थी बिहार में, एक बार फिर से गंडक मानसून के अंतिम पड़ाव में उफान पे है, और नेपाल में हुई भारी बारिश जो है वो उसकी वजह बना है। और एक बार फिर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए जिस तरह का उफान दिखता है गंडक में वो अपने आप में डराने वाला भी है, और यही वजह है
6: तस्वीरें डराने वाली है। इसके बाद अब बात करेंगे क्रिकेट की, जहां पर एक शानदार खबर सामने आ रही है। तिरुवनंतपुरम वनडे मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की है। विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार शतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से पटखनी दे दी है। वेस्ट इंडीज की ओर से रखे गए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 41.4 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाकर शानदार जीत भारत ने दर्ज कर ली। इस जीत के साथ भारत के 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हो गई है। विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली है। विराट का ये वनडे करियर का कुल 55वां और उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 86वां शतक है। इसके साथ ही कोहली ने अपने वनडे करियर में 315वें मैच की 303 पारियों में 15,000 रन पूरे कर लिए। उन्हें लगभग 60 के औसत के साथ यह आंकड़ा छू लिया है। कोहली वनडे प्रारूप में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन से पीछे हैं। और आज महान गायिका लता मंगेशकर का जन्मदिन है। चलते चलते लता जी के सुरीली श्रद्धांजलि देते हैं।

0: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राज्यों के मुख्यमंत्री योगी रेखा गुप्ता समेत सम्राट शुभेंदु ने खोला मोर्चा। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। प्रवेश ने दी सफाई, कहा मेरे परिवार को गाली दी इसलिए मारा, केजरीवाल के गुंडे दिल्ली में कर रहे हैं उगाही। जलोड़ी पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी, जबरदस्त तनाव के बीच कैंपस छोड़कर जाने लगे छात्र। रेप के आरोप के बाद गुस्से की लपटों में कई गाड़ियां खाक, पुलिस वाले भी घायल, करना पड़ा लाठीचार्ज। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर लगातार उठते सवालों के बाद बजरंगियों से योगी का आह्वान, राम काज में विघ्न डालने के लिए घुसेंगे काल ने भी, बजरंग बलियों के भक्तों को रहना होगा सावधान। लगातार बारिश के बाद प्रयाग से काशी तक गंगा में उफान, बिहार पर मंडराया फिर से बाढ़ का खतरा, नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी।

अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला। बेगूसराय में शराब रेड करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों का लाठी डंडों से हमला, दारोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश। हापुड़ में मामली बात पर हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट, वीडियो वायरल। जयपुर के शिव मंदिर में बुजुर्ग पुजारी से लात घूसों से पिटाई, पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में लिया। सूरत क्राइम ब्रांच और चर्च में हुई चोरी के दो मामलों का किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, पादरी की वेशभूषा में घुसकर करता था चोरी। अंबाला में इमारत गिरने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 6, निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरने से हुआ हादसा। फरीदाबाद में 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाली गई बोरवेल में गिरी बच्ची, अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। रायगढ़ में MIDC की केमिकल कंपनी में जोरदार धमाका होने से 3 लोग घायल, देर रात हुआ धमाका। रीवा में खराब बस की हालत पर कलेक्टर नाराज, जिस बस से किया सफर उतरते उसी

एशियन गेम्स में भारत अफगानिस्तान के बीच आज T20 का क्वार्टर फाइनल जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच। भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल, भारत ने सीधे क्वार्टर फाइनल में किया है प्रवेश। श्रेयस अय्यर के हाथ में टीम इंडिया की कमान, संभावित प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी।

0: खान की कमान, दरवेश रसूली संभालेंगे अफगानिस्तान की टीम में नजीबुल्ला करीम, मोहम्मद इशाक जैसे अनुभवी खिलाड़ी। भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में 3 मैचेस की सीरीज में अब वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। वनडे जीत के साथ हीरो बने विराट कोहली और शुभमन गिल। विराट नाबाद 139 रन की पारी खेली। विराट के नाम लगी रिकॉर्ड की बौछार, 55वां वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 86वां शतक लगाया। वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली 110 रन की पारी। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 42वें ओवर में ही 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। एशियन गेम्स भारत का 56 साल का सूखा खत्म। सर्वेश कुशारी ने रचा इतिहास, मेंस हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल। भारत के हाथों फिसला गोल्ड, विमेंस लॉन्ग जंप फाइनल मुकाबले में आखिरी पल में टूटा एनसी सोजन का सपना। भारत को एशिया खेल में पहला सिल्वर मेडल लाने वाली सोनम मस्कर को कोल्हापुर एयरपोर्ट में भव्य स्वागत। एशियन गेम्स 400 मीटर दौड़ में भारत को ब्रॉन्ज लाने वाली प्राची के घर में जश्न, परिवार ने खिलाई एक दूसरे को मिठाई। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी बनी एशिया बॉक्सिंग कमेटी की निर्विरोध वाइस चेयरमैन, 4 साल का होगा कार्यकाल। 52वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने रचा इतिहास, 400 करोड़ के क्लब में हुए शामिल। रविवार को हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का बिजनेस किया। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 362.70 करोड़। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की द विवान की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, दिन भर में कमाए 43 करोड़ रुपए। फिल्म द पैराडाइज ने 15.70 करोड़ का किया कारोबार, दुनिया भर में कमाए 138 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी के कल 1.55 करोड़ कमाए, 23 दिन में भारत में ग्रॉस कलेक्शन 268 करोड़। रूस ने यूक्रेन में फिर तेज किया हवाई हमले, राजधानी कीव और डेसा में बरसाए गए बम। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव का यूरोपीय देशों पर निशाना, कहा यूरोपीय देश रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का बड़ा बयान, कहा तेहरान को प्रस्ताव पर ट्रंप की शुरुआती प्रतिक्रिया मिली, औपचारिक जवाब का इंतजार। ईरान के आईजीसी नेवी ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी, कहा अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो हिंद महासागर में होंगे हमले। ईरान नेवी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका का अंडर वाटर ड्रोन वाहन जब्त किया। सितंबर के आखिरी दिनों में यूपी में बारिश आफत बनकर बरस रही। लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन बेहाल हो गया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई खेतों में खड़ी धान की फसल पर संकट है। वहीं बारिश से हुए हादसों में कई लोगों की जान चली गई। कहीं जल भराव से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया है। यूपी में देखिए बारिश की मार का हाल।
1: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, कहीं खेतों में पानी भर गया है, तो कहीं बाढ़ और जलभराव से लोग परेशान हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा से लगे गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में पानी घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों और राहत शिविरों में पहुंचा रहा है। तेज आंधी और बारिश से जिले में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से NDRF, SDRF और PAC की टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। हरदोई में भी लगातार बारिश आफत बन गई है। वर्षा जनित हादसों में 8 लोगों की मौत की सूचना है। करीब 330 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि करीब 30 पशुओं की भी मौत हुई है। औरैया के बेला में 3 दिन की बारिश के बाद बस्ती में पानी भर गया। जल निकासी के लिए प्रशासन ने JCB से लिंक रोड कटवाकर पानी पांडू नदी की तरफ निकालने की व्यवस्था की। उधर बिजनौर में रामगंगा बांध का जलस्तर बढ़ने से 7 जिलों को अलर्ट किया गया है। जलस्तर तय सीमा से ऊपर जाने पर बांध के गेट खोलकर पानी छोड़े जाने की संभावना है। उन्नाव में 48 घंटे की बारिश के बाद कई मोहल्लों में 2-2 फीट तक पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी का भरोसा दिया है। उन्नाव में ही गंगा

0: एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास जलभराव हुआ। पानी इतना जमा हुआ कि स्थानीय लोगों के मछली पकड़ने का वीडियो सामने आया है। शाहजहांपुर में तेज बारिश और हवाओं से पक्की धान की फसल जमीन पर गिर गई। किसानों को भारी नुकसान की आशंका है, यानी यूपी के कई हिस्सों में बारिश ने जहां जनजीवन प्रभावित किया है, वहीं बाढ़ जलभराव और फसल नुकसान ने लोगों और किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं प्रशासन राहत और बचाव के साथ जल निकासी की कोशिश में जुटा है। आज तक ब्यूरो
1: 9 बज गए। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक श्राम।

0: रहा हूँ।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
2: एक हिंट तो देते।
3: यार लोन भूल गया मैरी।
4: जस्ट अ गुड बैंक ना।
5: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
5: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: पापा
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
10: तो भरोसा है।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
17: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
18: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
19: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
13: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
14: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
16: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
14: कौन सी बनानी है?

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: किसी भी देश को जब भी आज़ादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
3: कौन भय में जी रहा है?
2: नागरिक जी रहे हैं।
3: हाँ, भारत में
2: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार है, मोदी जी में कितना तारतम्य है, कितना गहरा संबंध है। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो पीसी नहीं करते हैं, और इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट देती है, वो पीसी नहीं करती है, अपनी बातों को रखती है। तो ये मैंने कहा कि दोनों का क्या प्रभाव ये सामने नजर आता है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, जब 10 महीने में 14 डिसेंट नोट दोनों हमारे जो सहयोगी उनके हैं मुख्य चुनाव आयोग के, उन्होंने लिखा था, तो वो सच बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं? जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक सच एक झूठ को, मतलब एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रवृत्ति में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और यही एक कारण है कि इस प्रकार के वो हथकंडे अपना रही है और इस प्रकार की चीजें वो कर रही है।
1: स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने विषयों को प्रस्तुत करने में एक परिपक्वता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इमच्योर है और इमच्योरिटी में ये सब कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, उसके लिए किसी भी कद तक गिरना है, किसी भी लेवल तक गिरना है। मगर गिरने में भी जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रह रहा है वह अपरिपक्व है, एब्सोल्यूटली इमच्योर है, क्योंकि इस प्रकार से देश के लोकतंत्र पर हमला नहीं होता है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से यह भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
2: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है। चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? ईसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुँचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
5: In association with
6: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी बवाल। सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ी करने को लेकर एक्शन से उबाल। सड़क पर उतरा मुस्लिम समुदाय, पूरा इलाका सील, 2000 पुलिसकर्मी तैनात। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। प्रवेश ने दी सफाई, कहा मेरे परिवार को गाली दी इसलिए मारा। केजरीवाल के गुंडे दिल्ली में कर रहे हैं उगाही। जल उठी पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी, जबरदस्त तनाव के बीच कैंपस छोड़कर जाने लगे छात्र। रेप के आरोप के बाद गुस्से की लपटों में कई गाड़ियां खाक, पुलिस वाले भी घायल, करना पड़ा लाठी चार्ज। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर लगातार उठते सवालों के बाद बजरंगियों से योगी का आह्वान, रामकाज में विघ्न डालने के लिए घुसेंगे कालनेमी, बजरंग बली के भक्तों को रहना होगा सावधान। लगातार बारिश के बाद प्रयाग से काशी तक गंगा में उफान, बिहार पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक का खौफ देखे, एनडीआरएफ एसटीआरएफ अलर्ट पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंशुल इस्टवाल। आज सुबह में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है ये बड़ी खबर। उज्जैन में शाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देर रात से ही भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के बाहर डटे हुए हैं। इस बीच अब मौके पर तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारी पुलिस की तैनाती में यहां बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन हंगामा बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज शाही मस्जिद पर एक्शन का विरोध कर रहा है। दरअसल उज्जैन में सिंहस्त कुंभ की तैयारियों को लेकर सड़क को चौड़ी करने का काम चल रहा है, जिसके तहत शाही मस्जिद के कुछ हिस्सों को भी हटाया जाना है। और उसी का विरोध करने के लिए वहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जुट गए हैं और अब पुलिस वहां पर बंदोबस्त बढ़ा रही है। और आइए सुधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह का। रवीश, इस वक्त स्थिति कैसी है वहां पर और पुलिस ने किसी भी तरीके की दिक्कतों से निपटने के लिए क्या सावधानियां बरती हैं?
1: देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, ताज़ा जानकारी अंजलि, उसके मुताबिक पुलिस ने वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं भीड़ को हटाने के लिए। दरअसल ये पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि उज्जैन के कंठाल चौराहे से लेकर गोपाल मंदिर तक सड़क को चौड़ीकरण होना है वहां पे सिंहस्त 2028 के चलते। और ये जो शाही मस्जिद है, इसका भी करीब कुछ हिस्सा जो है वो इस चौड़ीकरण की जद में आ रहा है और इसे लेकर के लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। मामला हाईकोर्ट में भी है जहां पे आज सुनवाई होनी है इस मस्जिद को लेकर के। लेकिन इस बीच कल रात को जब मुस्लिम समाज के लोग वहां इकट्ठे हुए, प्रशासन वहां पहुंचा और शहर काजी के साथ बातचीत के बाद सहमति बन गई थी। बताया जा रहा है कि मुसलमानों के एक गुट ने बकायदा मस्जिद को हटाने का काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन अचानक से एक दूसरा गुट भी आया और उसने इसका विरोध शुरू किया, जिसके बाद दोनों के बीच में तनातनी बढ़ी और उसके बाद वहां पे हंगामा शुरू हो गया सुबह। और सुबह ये हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां पे अब भीड़ को तितर बितर करना पड़ा है, जो अभी तक की ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। दरअसल ये जो पूरी सड़क है, इसमें कई ऐसे धर्मस्थल आ रहे हैं जिन्हें हटना है और इन्हीं में से एक है मशहूर खड़े हनुमान का मंदिर, जो कि इस मस्जिद से करीब करीब 200 मीटर की दूरी पर ही बना हुआ है। और अब ये मामला इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है, वो चौड़ीकरण की जद में जब उनका मकान आ रहा था, पैतृक मकान, तो उन्होंने कल खुद जाकर के उसे तोड़ने की शुरुआत की। एक संदेश देने की कोशिश थी कि अगर शहर के विकास के लिए सिंहस्थ में आती हुई भीड़ को देखते हुए अगर आपके मकान को, संपत्ति को हटाना है, तो आप खुद उसे हटा सकते हैं। और इसे ही देखते हुए कल

0: रात को सहमति बनी और कुछ लोगों ने मस्जिद के हिस्से को हटाना भी शुरू किया था, लेकिन आज सुबह अचानक से दो गुट आमने सामने आए और उनमें विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल प्रशासन वहां मौजूद है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट में आज जब सुनवाई होती है तो क्या इस पे हाईकोर्ट का रुख रहता है, हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है, जिसके बाद प्रशासन आगे का जो फैसला है वो मस्जिद को हटाने को लेकर के ले सकता है।
1: जी, आप हमारे साथ बने रहे रवीश, एक बार सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं।
2: काम करता हूं जनता को, वो लोग गांधीयन वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इस तरीके से मस्जिदों को शहीद नहीं कर सकते हैं। जिस बात का मैंने इजहार किया था पार्लियामेंट में कि जो नया वफ अमेंडमेंट कानून है उसके ज़रिए से जो कलेक्टर्स को या सरकार को जो पावर्स दिए जा रहे हैं उसका मकसद एक ही है कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तान को, ईदगाह को मुसलमानों से छीन लिया जाए, वो उसद साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये हो रहा है। तो ये उस अमेंडमेंट का मकसद तो वही था, वफ को बचाना नहीं था, उसका मकसद यही था।
1: तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगी रवीश का। रवीश, ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, काम तो चल रहा है सड़क चौड़ी करने का, लेकिन उसकी जद में जैसे कि आपने बताया मस्जिद भी आ रहे हैं, और ये अकेली मस्जिद नहीं है जो इस पूरे काम में या इस पूरे प्रोजेक्ट में जिसका कुछ पोर्शन गिराया जाएगा, तो सरकार किस तरीके से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है?
0: देखिए, आपको बता दें कि दरअसल जिस सड़क का ये चौड़ीकरण होना है वो तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी है, और इसमें अकेली ये मस्जिद नहीं बल्कि कई दूसरे धर्मस्थल भी आ रहे हैं। कई धर्मस्थल हटाए जा चुके हैं, कंठाल चौराहे पे, उज्जैन के कंठाल चौराहे पे जो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर था उसे हटाया जा चुका है। इस बीच में एक गणेश मंदिर भी था उसे भी हटाया जा चुका है। इसके बाद एक दरगाह थी उसे हटाया जा चुका है। खड़े हनुमान का मंदिर अब बीच में आ रहा है जिसे लेकर के विवाद चल ही रहा है, और इसके ठीक बाद गोपाल मंदिर के ठीक पास के हिस्से में ये मस्जिद आती है, और इस मस्जिद को ही हटाने को लेकर के विवाद हो गया है। एक पक्ष जो है वो सहमत हो चुका है इस बात को लेकर के कि मस्जिद को वो खुद ही हटाएगा, और उन्होंने आज सुबह से उसे हटाने का काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन अचानक से एक दूसरा गुट सामने आया और उन्होंने इसका विरोध जताया, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ है। प्रशासन अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। प्रशासन कल रात से वहां पर मौजूद है, करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि रात को सहमति बन गई थी इसलिए रात को प्रशासन ने अपनी तरफ से वहां पर डिमोलिशन नहीं किया, जबकि जेसीबी, 3 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन के साथ नगर निगम की टीम कल रात को मस्जिद के पास पहुंच गई थी। लेकिन जब वहां पे सहमति बनी शहरकाजी के साथ और इस बात को लेकर के बात हुई कि वो खुद ही अपनी जो मस्जिद का हिस्सा है जो अतिक्रमण की जद में आ रहा उसे हटाएंगे, तो फिर प्रशासन वहां पे निश्चिंत हो गया था। लेकिन आज सुबह अचानक से यह हंगामा शुरू हुआ है, और जिसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर से वहां पे सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, और अब इंतजार हो रहा है आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसके बाद हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है, उसके बाद प्रशासन अब अगला कदम इसमें तय करेगा।
1: बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि अदालत में इस वक्त क्या हो रहा है। आपको बता दें, इस वक्त हम आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। ये जो टकराव हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि आज हुआ है पुलिस के बीच में और वहां पर मौजूद लोगों के बीच में, आंसू गैस के भी गोले छोड़ने पड़े उनको, तो ये उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये इलाका जो है वहाँ तंग गलियां हैं, कोशिश ये की जा रही है कि जो सड़क चौड़ी की जाए वो आने वाले सिंहस्थ कुंभ को मद्देनजर रखकर की जा रही है, लेकिन जब ये मामला शाही मस्जिद तक पहुंचा तो इसमें उबाल देखने को मिला है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, और यहाँ पुलिस की तरफ से, वहाँ पर जो प्रशासन है उसकी तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं लोगों को तितर बितर करने के। तो ये तस्वीर उस इलाके की जहां इस वक्त प्रशासन तैनात है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां इस वक्त जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। हालांकि इंतजार प्रशासन की तरफ से हो रहा है हाईकोर्ट के फैसले का, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में भी लंबित है। विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर महिलाएं भी पहुंची, उन्हें भी पुलिस ने वहां से हटाने का काम किया है, लेकिन ये जो सड़क चौड़ी की जा रही है वो अकेले इसकी गाज इसी मस्जिद पर नहीं गिरी है, कई दूसरे धर्म स्थल हैं जिन पर भी बुलडोजर चला है उन्हें हटाया गया है और लगातार प्रशासन एक डायलॉग के जरिए बातचीत के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा है कि हम इस सड़क को चौड़ा करना चाह रहे हैं। तो हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसमें आंसू गैस के गोले भी दिख रहे हैं और कुछ महिलाएं भी वहां पहुंची अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए। तो उस इलाके में आप कह रहे हैं दो गुटों के बीच खास तौर पर ये मुद्दा भड़का, क्या वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो समुदाय के बड़े लोग हैं, उन्होंने कोई मध्यस्थता करने की कोशिश की है?
0: बिल्कुल, और कल रात को यह मध्यस्थता हुई थी। जो शहर काजी हैं उज्जैन के, उनकी प्रशासन के साथ जो मस्जिद है उसे लेकर के कल रात को सहमति बन चुकी थी और इसीलिए प्रशासन ने कल अपनी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। प्रशासन की टीम जो है, नगर निगम की टीम, कल रात को ही वहां पहुंच गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3 जेसीबी मशीनें और 1 पोकलेन मशीन के साथ प्रशासन वहां मौजूद था। लेकिन वहां पे शहर काजी और प्रशासन के बीच में जब सहमति बनी तो फिर प्रशासन ने इंतजार किया कि जो सहमति बनी है उसके मुताबिक वो अब हिस्सा खुद ही हटाना शुरू करेंगे। लेकिन आज सुबह अचानक से एक गुट ने जब ये हिस्सा हटाना शुरू किया तो अचानक से दूसरे गुट ने इसका विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये मामला हंगामे में तब्दील हो गया, जिसके बाद प्रशासन को वहां सख्ती बरतनी पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि सहमति नहीं बनी थी प्रशासन के साथ, शहर काजी की सहमति कल रात को बन चुकी थी, लेकिन अचानक से आज सुबह ये दोबारा हंगामा शुरू हुआ है, इसलिए प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी है। और अब क्योंकि हाईकोर्ट पे भी ये मामला है और इस पे सियासत भी जमकर हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन फिलहाल अपने आप को यहाँ पे रोके हुए है कि जब तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आया, कम से कम तब तक वो अगला कोई कदम ना उठाए।
1: जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुलश्रेष्ठ की उज्जैन से।
3: में समाजजनों द्वारा जो शाही मस्जिद है उसके उस हिस्से को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है जो चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वो समाजजन मौजूद हैं जो इसके तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, भीड़ ने पथराव शुरू करा था, उसके बाद पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। मस्जिद को जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है या जो जद में आ रहा वो हिस्सा है उसको पुलिस ने, समाजजनों ने ही हटाने का काम शुरू, वो भी चल ही रहा है। संदीप कुलशेष, उज्जैन, आज तक।
1: तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश का। रवीश, एक बार जो ताजा स्थिति है इस वक्त वहां पर सुबह की, उसे थोड़ा बताएं, क्या अभी भी तनाव चल रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें हैं?
0: बिल्कुल, देखिए तनाव बरकरार है, लेकिन इस तनाव के बीच में जो तस्वीर अभी संदीप कुलश्रेष्ठ ने उज्जैन से दिखाई वो भी गौर करने लायक है कि समाज जनों ने ही अपने हाथ से प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद इस हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया, जो तस्वीरें दिखाई भी जा रही हैं। लेकिन एक दूसरा गुट है उसी समाज से जो नहीं चाहता कि इसको हटाया जाए, वो वहां पे हंगामा कर रहा था, वो नारेबाजी कर रहा था और उसी दौरान उनको वहां से खदेड़ा गया है। फिलहाल प्रशासन ने मस्जिद के आसपास से तकरीबन 250 मीटर पे बैरिकेड लगा दिए हैं, लोगों के वहां जाने पे पूरी तरीके से मनाही है। ये जो पूरा इलाका है काफी ज्यादा भीड़भाड़ वाला और काफी ज्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब सिंहस्थ कुंभ जब आ रहा हो और सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ हो, धर्मस्थल को हटाने पे विवाद हुआ हो। इससे पहले साल 2003 में भी ऐसा ही विवाद सामने आया था, जब साल 2004 के सिंहस्थ से पहले सड़क चौड़ीकरण का काम होना था उस वक्त भी एक धर्मस्थल हटाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और तब कुछ दिनों के लिए उज्जैन में कर्फ्यू भी लगा था। साल 2016 में भी सिंहस्थ का मेला था उज्जैन में, उससे पहले भी सड़क चौड़ीकरण के दौरान जब धर्मस्थल सामने आ रहे थे जिन्हें हटाना था तब भी विवाद हुआ था, और साल 2028 के सिंहस्थ से पहले भी ये विवाद सामने आया है। तो ये विवाद पहले भी आते रहे हैं, इस बार भी है, लेकिन प्रशासन सहमति के साथ, सर्वसहमति के साथ मिलकर के हमेशा काम करता रहा है और माना जा रहा है कि आज भी जब हाईकोर्ट का फैसला आएगा, और क्योंकि सहमति बन चुकी है प्रशासन की शहर काजी के साथ, और अगर आपने तस्वीरों में देखा तो लोगों ने खुद ही स्वतः हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। अब क्योंकि विवाद हो गया है, हंगामा हुआ है, तो प्रशासन को सख्ती भी दिखानी पड़ी है। देखना यह है कि हाईकोर्ट अब इस पर और क्या रुख लेता है, उसके बाद प्रशासन जो है फुल फोर्स के साथ यहाँ पे माना जा रहा है कि अगला कदम उठाएगा।
1: जी बिल्कुल, विवाद दोबारा शुरू हो गया, इसकी तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं उनके ऊपर पथराव भी किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इलाका जो है वहां पर जगह कम है, वहां पर सुरक्षा बल बहुत ज्यादा था, तो जब आगे की तरफ बढ़ा उन्होंने लोगों को पीछे खदेड़ने की कोशिश की है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पथराव उन पर किया गया है, लेकिन जो वहां पर पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं वो पूरे राइट गियर में थे, उन्होंने पूरे अपने इंतजाम साथ रखे हुए थे, उन्होंने अपने आप को बचाया है और पीछे की तरफ फिर उन्होंने अपने कदम बढ़ाए आदेश आने के बाद। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब गुस्सा फूटा है, पत्थरबाजी की गई है और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके गए
4: हैं। पुलिस के ऊपर देखिए सामने जिस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं पुलिस के ऊपर, ये साफ तौर पर।
1: तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं रवीश का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं। रवीश, एक चीज है कि प्रशासन की तैयारी पूरी है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने भी संयम बरता है, जब उनके ऊपर पत्थरबाजी भी हो रही थी वो अपने आप को काबू में उन्होंने रखा, आगे बढ़ करके फिर कुछ वक्त बाद पीछे का रुख भी किया। तो ऐसे में प्रशासन को ऑर्डर्स क्लियर हैं, साफ उनको बताया गया है कि किस इस तरीके से इस मामले से निपटना है।
0: इसकी एक बड़ी वजह भी है अंजलि, क्योंकि उज्जैन जो है वो सिर्फ एक शहर नहीं है, सिंहस्थ का मेला नहीं हो रहा है, बल्कि उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का शहर है। तो जाहिर सी बात है वहां पे अगर कोई ऐसा विवाद आता है तो स्वाभाविक सी तौर पे सवाल जो है वो मुख्यमंत्री पे भी उठेंगे, उंगलियां उन पे भी उठेंगी, और इसीलिए वहां पे प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि आपसी डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा जो विवाद है उसे निपटाया जाए। और अगर आप देखें तो उज्जैन में सिंहस्थ के विकास कार्यों की वजह से, सड़क चौड़ीकरण की वजह से दर्जनों से ज्यादा अब तक आपको बता दें कि धर्मस्थल हटाए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहला कोई धर्मस्थल है जिसे हटाने की बात हो रही हो, इससे पहले दर्जनों धर्मस्थल जो है वो हटाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ एक धर्मस्थल है जिसे लेकर के विवाद हो रहा है और उनमें से एक ही शाही मस्जिद है। हालांकि काफी हद तक सहमति बन चुकी है, मस्जिद के उस हिस्से को हटाने का काम समाजजनों ने शुरू भी कर दिया है, कुछ तत्व ऐसे आए थे जिन्होंने हंगामा शुरू किया जिन्हें अब खदेड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट है अपनी तरफ से कि, क्योंकि इससे पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि इसमें एक डिसीजन आ चुका था, हाईकोर्ट में स्टे लेने की कोशिश की गई थी जब खड़े हनुमान मंदिर का पूरा विवाद चल रहा था, तो उस दौरान भी हाईकोर्ट ने उस स्टे को खारिज कर दिया था। तो जाहिर सी बात है प्रशासन के पास कानून की ताकत भी है और जो हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश इससे पहले आए थे स्टे को लेकर के वो भी है। हालांकि आज एक और सुनवाई होनी है तो उसके बाद प्रशासन काफी हद तक साफ हो जाएगा कि उसे कैसे इस पूरी परिस्थितियों से निपटना है, लेकिन इतना साफ है क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है और ये पहले से स्पष्ट है कि ऐसी कोई विवाद ना हो, ऐसा कोई वहां पर हिंसात्मक कदम ना उठाए लोग, और ऐसी कोई हिंसा ना हो जिसकी वजह से सिंहस्थ से पहले उज्जैन जो है गलत वजह से सुर्खियों में आए। इसलिए प्रशासन ने कल रात भर वहां पे सहमति बनाने की कोशिश की, सहमति बन गई, अचानक से आज सुबह हंगामा शुरू हुआ है। तो अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद प्रशासन का अब क्या रुख रहने वाला है इस पे। फिलहाल मौके पे कलेक्टर एसपी मौजूद हैं, उज्जैन का फोर्स वहां पे मौजूद है, और क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद विकास के नाम पे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे अपने ही पैतृक निवास पे कल कुदाल चलाई है, तो एक संदेश देने की कोशिश भी वहां पे की गई है। देखते हैं किसका कितना व्यापक असर आज हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, नजर रहेगी हमारी इस पर लगातार। आपको बता दें कि तस्वीरें इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक उस मौके की जब पुलिस पर पथराव हुआ और उन्होंने आंसू गैस भीड़ की तरफ फेंकी, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जो मस्जिद है जिसके कुछ हिस्सों को गिराया जाना है, उस मस्जिद पर जब एक्शन होना था वहां पर बुलडोजर पहुंच चुका था, प्रशासन के लोग पहुंच चुके थे, तब वहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। आपको बता दें जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, हालांकि इस काम को यानी कि मस्जिद को हटाने के काम को पहले कुछ समुदाय के लोगों ने ही शुरू किया, लेकिन दूसरे समुदाय उसी समुदाय माफ कीजिएगा कि कुछ और लोग जो कि एक दूसरे गुट के थे वो वहां आ गए और उन्होंने आपत्ति जाहिर की, जिसकी वजह से मामला बिगड़ गया। ये जो पूरा चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है ये सिंहस्थ कुंभ के लिए किया जा रहा है जो 2028 में होना है, और उसके मद्देनजर उज्जैन नगरी की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। और आइए एक बार फिर से आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हम उज्जैन से, हमारे सहयोगी संदीप कुलश्रेष्ठ की।
3: अप्रैल 2028 में होने वाले सीएस के मद्देनजर जिला प्रशासन उस तैयारी में लगा हुआ है। सीएस में श्रद्धालुओं को और आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को और जो सीएस में स्नान करना चाहते हैं उनको सुविधा मिले, तो पूरे शहर में चौड़ीकरण के कार्य चल रहे हैं और जिसमें कई धर्म स्थलों को शिफ्ट किया जा रहा है। और कंठाल से लेकर जो गोपाल मंदिर का मुख्य मार्ग है जो सीएस में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसको 15 मीटर चौड़े करने के लिए लगातार यहाँ से जो धार्मिक स्थल है शिफ्ट किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो शाही मस्जिद है, इस शाही मस्जिद को बहुत दिनों से शिफ्ट करने का काम सोचा जा रहा था, समाजजनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। आखिर 2-3 दिन के लगातार विरोध के बाद सहमति बनी है और उस सहमति में समाजजन खुद उस जो शाही मस्जिद के कुछ हिस्से को हटा रहे हैं जो चौड़ीकरण की जद में आ रहा है, उसमें कुछ समाजजन इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि हमने आपसे सहमति से ये तोड़ने का काम शुरू करा है, हटाने का काम शुरू करा, और ये समाजजन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं लगातार यहाँ बड़ा। और आज एक खास बात और भी है कि इस शाही मस्जिद की कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में पेशी भी है, आज सुनवाई भी है, तो पर प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है।
1: तो एक तरफ सबकी नजर उस सुनवाई पर भी है, दूसरी तरफ आपके लिए तस्वीर हम लेकर आ रहे हैं उस वक्त की जब ये पूरा प्रदर्शन जो था वो हिंसक भी हुआ। जब सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने लोगों को रोका है, तब उस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पथराव भी किया गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने वापस आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये तस्वीर तब की है जब दोनों के बीच में वहां झड़प की स्थिति पैदा हो गई थी। ये जो मस्जिद है इसके कुछ हिस्से को ढहाने के लिए वहां पर समुदाय के लोग ही मौजूद थे, वही इस मस्जिद के कुछ हिस्सों को हटाने की कोशिश कर रहे थे जो इस सड़क को चौड़ी करने में बाधा बन रहा था। उस दौरान कुछ लोग वहां आए, उन्होंने आपत्ति जाहिर की, मामला बढ़ गया, मामला एक विवाद में तब्दील हुआ और विवाद के बाद वहां हल्की हिंसा भी नजर आई। ऐसे में पुलिसकर्मी वहां पर एक्शन में नजर आए और ये तस्वीरें आपको साफ दिखाती हैं जब पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं और पत्थर के जवाब में फिर आप ब्लास्ट देखते हैं छोटे छोटे, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिसकर्मियों द्वारा उसके बाद। तो ये तस्वीरें सीधी उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क को चौड़ी करने का काम चल रहा है, जिसकी जद में शाही मस्जिद आ गई है और शाही मस्जिद को बचाने के लिए वहां पर लोग पहुंचे, अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग और साथ ही आसपास के इलाकों से आए हुए लोग। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि वहां पर महिलाएं भी पहुंची, कोशिश ये रही प्रशासन की तरफ से कि समझा बुझा करके लोगों को वापस भेजा जाए। ये काम कोई आज से नहीं हो रहा है, ये काम लंबे वक्त से हो रहा है और हो इसलिए रहा है क्योंकि तैयारी की जा रही है सिंहस्थ कुंभ की 2028 में, जब कोशिश ये की जा रही है कि तंग गलियों को चौड़ा किया जाए ताकि वहां पर लोगों के आने जाने में दिक्कत ना हो। और इसी के चलते कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें या तो हटाया गया है या उनके कुछ हिस्से को गिराया जा रहा है।
3: शाही मस्जिद है उसके उस हिस्से को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है जो चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वो समाजजन मौजूद हैं जो इसके तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, भीड़ ने पथराव शुरू करा था, उसके बाद पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है, मस्जिद को जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है या जो जद में आ रहा वो हिस्सा है उसको पुलिस ने समाजजनों ने ही हटाने का काम शुरू, वो भी चल ही रहा है। संदीप कुलशेष, उज्जैन, आज तक।
1: तो एक बार फिर वो तस्वीर उस वक्त की जब ये मामला थोड़ा हिंसक हो गया। आप देख सकते हैं कि जो लोग वहां विरोध करने पहुंचे थे उन्होंने पत्थरबाजी की है, कुछ युवा वहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
3: शाही मस्जिद है उसके उस हिस्से को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है जो चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वो समाजजन मौजूद हैं जो इसके तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, भीड़ ने पथराव शुरू करा था, उसके बाद पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है, मस्जिद को जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है या जो जद में आ रहा वो हिस्सा है उसको पुलिस ने समाजजनों ने ही हटाने का काम शुरू, वो भी चल ही रहा है। संदीप कुलशेष, उज्जैन, आज तक। मैं समाजजनों
1: तो हमारे सहयोगी आपके लिए उसी जगह से ये रिपोर्ट लेकर आ रहे थे जहां ये सब हुआ है, यानी कि वो शाही मस्जिद जिसका कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं कि उस सड़क को चौड़ी करने की जद में आ रहा है। और ऐसे में ये तस्वीर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उस वक्त की है जो लोग वहां विरोध करने पहुंचे थे, जो लोग ये चाहते थे कि इस तरह का कोई काम ना हो, कि सड़क चौड़ी ना हो या उस हिस्से को ना गिराया जाए जो सरकार और प्रशासन की तरफ से तय किया गया था। इसको लेकर लंबी बातचीत भी चली है, समुदाय के लोगों को समझाया बुझाया गया था और कोशिश ये की गई थी कि इसको गिराने का काम या इसको हटाने का काम वही लोग खुद करें, और ऐसा हुआ भी। लेकिन एक गुट जो था उसने आपत्ति जाहिर की और मामला बढ़ गया, मामला बढ़कर इस स्थिति पर पहुंच गया जो आप देख रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। हाँ। ला, ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
8: अभी तो चार्ज हुआ यार।
9: ला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
14: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: In association with
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
20: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट।
20: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
21: Maddie, I need to open a savings account.
22: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
21: स्मॉल बैंक?
22: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RDF, there's nothing small about them.
21: Okay.
22: उज्जीवन, nothing small about us.
23: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
24: अब देखो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है।
22: मेरे पास एक आइडिया है।
23: क्या?
22: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
25: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
22: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
25: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
24: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
22: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
23: तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
22: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
24: आई लाइक दिस ओनली।
3: वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी बवाल। सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ी करने को लेकर एक्शन से उबाल। होने लगा पथराव, चले आंसू गैस के गोले, पूरा इलाका सील, 2000 पुलिसकर्मी तैनात। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। प्रवेश ने दी सफाई, कहा मेरे परिवार को गाली दी इसलिए मारा। केजरीवाल के गुंडे दिल्ली में कर रहे हैं उगाही। जल उठी पंजाब की लवली यूनिवर्सिटी, जबरदस्त तनाव के बीच कैंपस छोड़कर जाने लगे छात्र। रेप के आरोप के बाद गुस्से की लपटों में कई गाड़ियां खाक, पुलिस वाले भी घायल, करना पड़ा लाठी चार्ज। लगातार बारिश के बाद प्रयाग से काशी तक गंगा में उफान, बिहार पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक का खौफ देख एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर। एशियन गेम्स में बिना मैच खेले ही सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, बारिश के चलते रद्द हुआ अफगानिस्तान से मैच, अब 1 अक्टूबर को श्रीलंका या नेपाल से मुकाबला।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। उज्जैन में शाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देर रात से ही भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के बाहर डटे हुए हैं। इस बीच अब मौके पर तनातनी भी बढ़ चुकी है। भारी पुलिस की तैनाती में वहां बैरिकेडिंग की गई, लेकिन हंगामा बढ़ता ही चला गया। मुस्लिम समाज शाही मस्जिद पर एक्शन का विरोध कर रहा था। दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों को लेकर सड़क को चौड़ी करने का काम चल रहा था, जिसके तहत शाही मस्जिद के कुछ हिस्से भी आ रहे थे। ऐसे में वहां पर लोग डट गए और कुछ वक्त बाद देखा गया कि जब मामला बड़ा है, थोड़ी हिंसा देखी गई है वहां पर। भीड़ की तरफ से सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पत्थर चलाए गए। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने भी वहां पर आंसू गैस के गोले दागे, ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। तनातनी लगातार वहां पर है, लेकिन प्रशासन और पुलिस वहां पर डटे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि समुदाय के ही लोग वहां पर शाही मस्जिद के उन हिस्सों को हटाने का काम करें जो सड़क को चौड़ी करने में बाधा डाल रहे हैं। दरअसल बेहद पुरानी मस्जिद है ये। ऐसे में लोगों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा था जो वहां पहुंच चुके, लेकिन कोशिश प्रशासन की यही रही है कि लगातार उन्हीं लोगों के साथ मिलकर, जो समुदाय के लोग हैं उन्हीं के साथ मिलकर सहमति बनाकर उन हिस्सों को गिराया जाए जो इस वक्त बाधा बन रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप कुलश्रेष्ठ की ये रिपोर्ट देखिए, वहीं से जहां उज्जैन में ये पूरा बवाल हुआ है।
1: शाही मस्जिद है, उसके उस हिस्से को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है जो चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वो समाज जन मौजूद हैं जो इसके तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। भीड़ ने पथराव शुरू करा था, उसके बाद पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। मस्जिद को जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है या जो जद में आ रहा वो हिस्सा है, उसको पुलिस ने समाज जनों ने ही हटाने का काम शुरू, वो भी चल ही रहा है। संदीप कुलशेष, उज्जैन आज तक।
0: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश का। रवीश, सवाल ये बनता है कि क्यों नहीं सहमति बन पा रही है, क्योंकि आदेश जो आए हैं उसके मुताबिक ये अकेला मस्जिद नहीं है जिसके ऊपर ये हथौड़ा चला है या जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्यों नहीं सहमति बन पा रही है? तो हम कोशिश करेंगे रवीश से संपर्क बनाने की, लेकिन जिस तरह का बवाल वहां हुआ है उस जगह पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इस बीच हमारे सहयोगी संदीप कुलश्रेष्ठ उसी जगह गए जहां इस मस्जिद को हटाने का काम किया जा रहा है। आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: अप्रैल 2028 में होने वाले सीएस के मद्देनजर जिला प्रशासन उस तैयारी में लगा हुआ है। सीएस में श्रद्धालुओं को और आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को और जो सीएस में स्नान करना चाहते हैं उनको सुविधा मिले, तो पूरे शहर में चौड़ीकरण के कार्य चल रहे हैं और जिसमें कई धर्म स्थलों को शिफ्ट किया जा रहा है। और कंठाल से लेकर जो गोपाल मंदिर का मुख्य मार्ग है जो सीएस में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसको 15 मीटर चौड़े करने के लिए लगातार यहाँ से जो धार्मिक स्थल है शिफ्ट किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो शाही मस्जिद है, इस शाही मस्जिद को बहुत दिनों से शिफ्ट करने का काम सोचा जा रहा था, समाज जनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। आखिर 2-3 दिन के लगातार विरोध के बाद सहमति बनी है और उस सहमति में समाज जन खुद उस जो शाही मस्जिद के कुछ हिस्से को हटा रहे हैं जो चौड़ीकरण की जद में आ रहा है, उसमें कुछ समाज जन इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि हमने आपसे सहमति से ये तोड़ने का काम शुरू करा है, हटाने का काम शुरू करा, और ये समाज जन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं लगातार यहाँ बड़ा। और आज एक खास बात और भी है कि इस शाही मस्जिद की कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में पेशी भी है, आज सुनवाई भी है, तो पर प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है।
0: सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह का। रवीश, जब ये पूरा मामला था चौड़ीकरण का, जिसमें अकेली ये एक मस्जिद नहीं थी, कुछ और भी थी, साथ में कुछ और धार्मिक स्थल भी थे, सहमति लगभग कई जगहों पर बन गई, तो क्यों कुछ इलाके हैं या ये मस्जिद जो है यहां क्यों मामला अटका?
2: देखिए अंजलि, अगर आप देखा जाए तो किसी भी समाज में, अगर खासतौर से मुस्लिम समाज की बात करें, तो शहर काजी का बड़ा महत्व होता है और शहर काजी की बात को ही अंतिम माना जाता है, जहां तक जानकारी भी है। और कल रात को प्रशासन के साथ शहर काजी की सहमति बन चुकी थी, और अगर आप तस्वीरों में देखें तो जो समाज के कुछ लोग हैं उन्होंने बाकायदा शहर काजी से सहमति बनने के बाद प्रशासन की उस हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया था जो सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। लेकिन एक दूसरा गुट जो है वो सामने आता है, वो इसका विरोध करता है और वो इस बात पर अड़ जाता है कि इस मस्जिद को नहीं हटाया जाए। और इसके बाद जो गुट मस्जिद को हटाने का काम कर रहा था, प्रभावित हिस्से को हटाने का काम कर रहा था, उसके बीच में और जो गुट इसका विरोध कर रहा है उनके बीच में विरोध शुरू होता है और मामला देखते ही देखते पत्थरबाजी में तब्दील हो जाता है। अब क्योंकि प्रशासन तो वहां कल रात से मौजूद था, तो फिर प्रशासन को, क्योंकि जब बात पत्थरबाजी तक पहुंची तो प्रशासन को भी वहां पे हालात को काबू में करने के लिए सख्ती अपनानी पड़ी, और इसलिए प्रशासन ने वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, लोगों को तितर बितर किया। और इस बीच में खबर ये आ रही है कि जो समाज के दूसरे लोग हैं जिनकी सहमति कल बन चुकी थी प्रशासन के साथ, शहर काजी के साथ बातचीत हो चुकी थी, तो वो अभी भी अपने ही हाथों से उस प्रभावित हिस्से को हटाने का काम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। दूसरा गुट जो वहां पे हंगामा कर रहा था उन्हें जरूर वहां से फिलहाल पुलिस ने बल प्रयोग करके खदेड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौता धार्मिक ढांचा जो है वो।
0: जी रवीश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर हम लौटते रहेंगे, लेकिन अब बात करते हैं सितंबर में मानसून के यू टर्न की।

0: और अब बात करते हैं मौसम की, जिसने सितंबर में यू टर्न ले लिया है, जहां एक तरफ यूपी से बिहार तक भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न बन गए हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन नदियों की, जिनमें नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोसी और गंडक नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से वहां प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही है। बाढ़ जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं, नदियों में रौद्र रूप देखा जा रहा है, और वजह इसकी ये रही है कि नेपाल की तरफ से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शशि भूषण का, जो इस वक्त वाल्मीकि नगर में मौजूद है। शशि, किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां दिख रही है?
1: अंजलि, देखिए 5 लाख, लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज आज अहले सुबह तक हुआ है, 4 बजे सुबह जो डाटा रिकॉर्ड किया जल संसाधन विभाग ने। और जो गंडक नदी में पानी आया है, उसके बाद पश्चिम चंपारण या वाल्मीकि नगर बगहा के अंदर क्या स्थिति है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट करते करते हम इस वक्त देखिए, ये बोर्ड आप देखिए और दर्शक देखें और हम समझाते हैं। दरअसल ये वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट है जहां हम मौजूद हैं, लेकिन एयरपोर्ट जैसी कोई तस्वीर यहां दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे सहयोगी नदी में अगर दिखाएं तो हम आपको दिखाते हैं जो पूरा का पूरा रनवे है। हालांकि ये बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटे चॉपर यहाँ पे उतरते हैं, चार्टर प्लेन उतरते हैं, 22 सीटर, सरकार के और मुख्यमंत्री भी जब आते हैं बिहार के तो यहीं पर चॉपर लैंड होता है। लेकिन ये सब कुछ डूबा हुआ है इस वक्त, हर जगह लगभग 4 फीट तक पानी है। ये पानी और बढ़ने की उम्मीद भी है, और जहां तक नजर जाती है हमारी, हर तरफ जो पानी है वो दिखता है। और यही गंडक नदी का प्रभाव है, जो गंडक नदी में पानी आया नेपाल से, उसके बाद कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर जगह दिखती है अंजलि। और ये एयरपोर्ट का वर्किंग स्टेशन है यहां से, जहां से तमाम ऑपरेशंस होते हैं, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है पूरा का पूरा एयरपोर्ट। अगर एनडीआरएफ या फिर सरकार की तरफ से भी कोई चॉपर से मदद आनी होगी तो वो एयरपोर्ट पे चॉपर लैंड नहीं कर पाएगा, ये स्थिति है। क्योंकि जहां हम इस वक्त खड़े हैं यहीं पर चॉपर की लैंडिंग होती है, यही हेलीपैड है एयरपोर्ट का, और ये घुटने भर पानी में तो हम इस वक्त खड़े हैं। और जहां तक नजर जाती है दूर दूर तक इसी तरह की तस्वीरें दिखती हैं, तमाम बसावटों में, टोलों में, गांवों में।
0: शुक्रिया शशि इस पूरी जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की, जहां भारी बारिश की इंद्रावती नदी उफान पर है, और छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाके भी पानी पानी हो गए हैं।

0: ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है जहाँ इंद्रावती नदी उफान पर है। पिछले एक हफ्ते से पूरे बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। अकेले जगदलपुर में सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। इंद्रावती नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते खेत खलिहान रुक गए। रात भर राहत बचाव टीमें रिहायशी इलाकों में घूमती रही ताकि मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। अब जरा इस घर को देखिए जो पूरी तरह से इंद्रावती नदी में समा गया है। ग्राउंड फ्लोर डूब गया है, आसपास भी कुछ नहीं बचा है जहां इंद्रावती का जल ना पहुंचा हो। थोड़ा और आगे बढ़िए, रोड के आसपास भी पानी भरा है। इंद्रावती के घाटों पर जहां लोग टहलने घूमने आते थे वो सब पानी में डूबा है। इंद्रावती नदी में पानी इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ओडिशा के कातिगुड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। सितंबर की बरसात का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ है जहां 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जगदलपुर के नगरनार इलाके में नदी किनारे बसे गांवों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। लोगों को मजबूर होकर अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ी। जगदलपुर शहर में नदी किनारे बसे कालीपुर, प्रवीण वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, विजय वार्ड, माँ दंतेश्वरी वार्ड, आमागुड़ा, पतरगुड़ा, आसना, छपरागुड़ा, गोंडाघाट और धोबीगुड़ा सहित कई इलाकों में पानी घुस गया। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। खारून नदी पर बना महादेव घाट पानी में डूब गया है। घाट के आसपास प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं। सड़कों तक पानी भरा है।
1: और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि 60 घंटे में 56 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है। प्रयागराज से लखनऊ तक पानी ने परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं उन्नाव में बरसात का पानी गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट पर जमा हो गया है, जबकि बांदा में सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मानसून अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया है। इस बरसात के पीछे की वजह बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। यानी बारिश का यह दौर मानसून से अलग नहीं बल्कि मानसूनी सिस्टम का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। सितंबर की बारिश ने आधे से अधिक प्रदेश को फिर से तरबतर कर दिया है। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। 36 घंटे तक लगातार रिमझिम बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा एक्सप्रेसवे का उन्नाव एग्जिट पानी में डूब गया। मेरठ से प्रयागराज जाते वक्त उन्नाव एग्जिट के पास कई फीट तक पानी भर गया। एग्जिट पर बने टोल प्लाजा भी पूरी तरह से डूब गए। डीजी सेट भी जलमग्न हो गए। टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉला खराब हो गया क्योंकि उसके इंजन तक पानी भर गया।
2: आपको बता दें, मेरी मौजूदगी कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर गंगा एक्सप्रेसवे के एग्जिट टोल प्लाजा के पास है। देख सकते हैं सोनिक पर स्थित ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, जो मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। यहाँ पर एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में देखिए किस तरीके से दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर से ये टोल प्लाजा पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, जिस वजह से सर्विस रोड पर भी आने वाला पानी इस गंगा एक्सप्रेसवे के टोल पर आ रहा है। और टोल देखिए, इधर आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाएं आपको टोल, देखिए टोल में कम से कम 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। और देखिए बगल में जो जनरेटर लगा हुआ है, ये भी कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, जनरेटर जो यहाँ पर रखा हुआ है वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया हुआ है।
0: एक्सप्रेसवे पर पानी भरा तो प्रबंधन की टीमें भारी भरकम मशीनें लेकर पहुंची और जल निकासी की कोशिश करने लगी। एक्सप्रेसवे पर जल भराव की वजह से उन्नाव एग्जिट प्रभावित रहा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
2: आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका?
3: प्रशांत सिंह।
2: प्रशांत जी, आप कहाँ जा रहे थे?
3: प्रयागराज।
2: प्रयागराज जा रहे थे, तो क्यों रुक गए यहाँ पे?
3: पानी भरा हुआ है, आप भी देख लीजिए सामने
2: भरा। पानी भरा, क्या डर लग रहा है?
3: अब इतना जल भरा हुआ, इसमें जब डंपर फंसे हुए हैं तो हम लोग कहाँ से छोटी गाड़ी लेके।
1: पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट ले ली है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी सा चमकने लगा है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख और नेलांग घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। खराब मौसम के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है, जबकि उच्च हिमालय में मौजूद ट्रैकर्स और पोर्टर्स को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है।
4: पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ और सफेद चादर में लिपटे रास्ते और तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी की है, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। काजा, चिचम, पिन घाटी और लांगजा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से बर्फबारी हो रही है। देखते ही देखते पहाड़ बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के साथ ही घाटी में ठंड बढ़ गई है। लाहौल घाटी में भी पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले पर्वतीय मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मौसम ने करवट ली है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों के साथ गोमुख, भोजवासा, चिड़वासा और नेलांग घाटी में बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। टिहरी में 36 घंटे से जारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। वहीं पकने को तैयार धान की फसल पर भी बारिश से नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। बागेश्वर में बारिश के बीच रवाईखाल के पास पहाड़ी से भारी मलबा आने से NH 109 बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। BRO की टीमें JCB से मलबा हटाने में जुटी हैं। खराब मौसम के बीच प्रशासन ने उच्च हिमालय में मौजूद ट्रैकर्स और पोर्टर्स की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 136 पर्वतारोही ट्रैकर और सहयोगी स्टाफ मौजूद हैं। भोजवासा और चिड़वासा में रुके अधिकांश लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बदले मौसम ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
11: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
12: मेरे पास एक आइडिया है।
10: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
13: ये एड को झेलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: ओ नादान परिंदे, बैठ जा। मेरा ना सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बाहर से बना है।
14: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
3: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
4: कौन भय में जी रहा है?
3: नागरिक जी रहे हैं।
4: हाँ, भारत में
3: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।
5: आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। SIR को लेकर के जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है,
6: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। लेकिन 22 में जब परिणाम आया, मुझे याद है मैंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों ने मिलकर के जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। तो ये बेईमानी तो हो ही रही है, बस इतनी सी बात अब खुल गई है।

0: ये पिक्चर इज ए वेरी क्लियर पिक्चर ममता बनर्जी और सीपीएम पश्चिम बंगाल किस तरीके से झूठ कर रहा है, तो पिक्चर सीधा है। इन लोग मिलकर क्या, पश्चिम बंगाल में तो एक्सेप्शन केस है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का पावर सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया था, ईआरओ का पावर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेड ऑफिसर। वो तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में 60 लाख में जो 27 लाख रिजेक्ट किया, वो तो जुडिशियल ऑफिसर ने किया। ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीपी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, तिरुवनंतपुरम में भी, पुरम में भी जाकर, केरलम में जाकर आंदोलन कीजिए। वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: पूरे एसआईआर के दौरान एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी या को पूरा विपक्ष बिहार में नहीं खड़ा कर पाया कि ये व्यक्ति बिहार के मतदाता है और इनका मतदाता सूची में नाम नहीं। पूरा चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गया, लेकिन रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र, पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार का पार्टी है। आपने देखा कि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को नेता विरोधी दल के का हैसियत नहीं था, लोकसभा में तो नहीं बनाया। जैसे ही उसमें भी सत्ता का लाभ मिलने वाला था तो राहुल गांधी तुरंत नेता विरोधी दल बन गए। ये लाभ लेने वाले लोग हैं।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी बवाल। सिंघस के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाद। पथराव के बाद चले आंसू गैस के गोले।
1: प्रवेश वर्मा के थप्पड़ पर सियासी गूंज। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा मेरे परिवार को गाली दी इसलिए मारा। केजरीवाल के गुंडे दिल्ली में उगाही कर रहे हैं।
0: पर इस वक्त जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलें।
2: एक मनगढ़ंत खबर को लेकर देश भर में बवाल मचाया गया। अब जब चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इनके लगाए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया, तो अब ये नए सिरे से फिर से माहौल को खराब करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई। इन्हें न राष्ट्र की सुरक्षा से सरोकार है और न जनता की भलाई से और न ही देश के मान सम्मान से। इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हथियाना है, और वह भी जनसेवा के लिए नहीं बल्कि परिवारवाद को पोषण करने के लिए, मेवा खाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सुख भोगने के लिए वस्तु नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के अंत्योदय और सेवा का पावन माध्यम है। देश की प्रबुद्ध जनता विपक्ष के इस दोहरे चरित्र और नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह समझ चुकी है। जो ताकतें देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, उन्हें जनता ने पहले भी करारा सबक सिखाया है और आगे भी इनका हर भ्रम और षड्यंत्र जनता की अदालत में चूर चूर होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कि सत्ता हथियाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्ष द्वारा, सीसी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां हैं और पूरा विपक्ष इस वक्त बेबुनियाद आरोप लगाने में जुटा हुआ है। देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग बदनाम कर रहे हैं।
1: तो सीसी की बैठक, चुनाव आयुक्तों की बैठक, बैठक के बाद प्रेस नोट और उसके बाद से अब बीजेपी हमलावर है। कल मुख्यमंत्रियों की तरफ से, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से विपक्ष को घेरा गया, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को घेरा गया और अब जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस को घेरा। आज उन्होंने ऑपोजिशन पर निशाना साधा कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया, कुछ रिफॉर्म्स भी हुए और उसके बाद से विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि वो तरीके से यू टर्न ही अपनी बातों पर लेते हुए दिख रहे हैं, जो कुछ संस्था जो बदलाव वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब जेपी नड्डा आज हमलावर दिखाई दिए।
2: लेकर देश भर में बवाल मचाया गया। अब जब चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इनके लगाए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो अब ये नए सिरे से फिर से माहौल को खराब करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई। इन्हें न राष्ट्र की सुरक्षा से सरोकार है और न जनता की भलाई से और न ही देश के मान सम्मान से। इनका एकमात्र उद्देश्य

0: सस्ता हथियाना है और वह भी जनसेवा के लिए नहीं।
1: और अब आपको सीधा उज्जैन लिए चलते हैं और उज्जैन में शाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले जबरदस्त बवाल देखने को मिला और इस समय अनाउंसमेंट पुलिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर रात से यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी बाहर डटे हुए हैं और अब मौके पर तैनात नहीं दिख रहे हैं।
2: एडीजी ने संभाला है, डीआईजी ने संभाला, कलेक्टर ने खुद संभाला, पुलिस अधीक्षक ने संभाला है, लेकिन उसके बाद जो एक मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात नहीं मानी।
3: मस्जिद के पास भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है, वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर किसी ने भी यहां पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की या फिर उपद्रव मचाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग आपको चेहरा ढके हुए भी दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, जाहिर तौर पर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश, क्योंकि पहले हमने संभल में देखा था कि किस तरीके से सीसीटीवी द्वारा उपद्रवियों पर एक्शन लिया गया था उनकी पहचान करके। और ऐसे में जब उज्जैन शाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, वहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है।
1: हम दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्ष आपको दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले और दूसरी तरफ देखिए पत्थरबाजी जो हुई है उस समय की तस्वीरें हैं। हालांकि जो जवान है पूरी तरह से तैयार मुस्तैद दिखाई दिया। हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रविश, इस समय क्या सिचुएशन है, क्या हालात नियंत्रित है, क्या मुस्लिम समाज वहां से हटा या वहीं डटा हुआ है?
4: देखिए, अब हालात काफी हद तक प्रशासन के काबू में है और एक पक्ष जो है, जो कि कल रात को शहर काजी से प्रशासन की सहमति के बाद मस्जिद के उस हिस्से को हटाने में जुटा हुआ था, वो अभी भी बदस्तूर अपने काम में लगा हुआ है। यानी जो समाज का एक पक्ष है जो कि प्रशासन के साथ सहमति बना करके सुबह से ही मस्जिद के उस हिस्से को हटाने में लगा हुआ है जो सड़क चौड़ीकरण के बीच में आ रही है, दूसरा जो गुट था जिसने वहां पे आके हंगामा शुरू किया था, उन्हें वहां से फिलहाल पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके और बल का इस्तेमाल करके खदेड़ दिया है। शहर काजी जो हैं, जो कि प्रशासन के साथ कल रात से ही लगातार बातचीत कर रहे थे, उनकी सहमति के बाद ही समाज के लोगों ने मस्जिद के उस हिस्से को हटाना शुरू किया था, तो शहर काजी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें। प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद ये काम शुरू हुआ है, तो उनकी तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है समाज के लोगों से, उन लोगों से खासतौर से जो कि वहां पर पहुंच के उपद्रव कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने स्थिति को काफी हद तक अपने पक्ष में कर लिया है, काबू में है। जो हंगामा करने वाले लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, उन्हें हटा दिया गया है। इस बीच खबर यह आ रही है कि जो क्राइम ब्रांच की जो महिला आरटीआई हैं, वो मामूली रूप से फिलहाल घायल हुई हैं, क्योंकि जब महिलाएं वहां पे इकट्ठा हो गई थी उन्हें हटाने के दौरान जो हंगामा चल रहा था उस दौरान उन्हें चोटें आई हैं, तो उन्हें वहां से फिलहाल भेजा गया अस्पताल प्राथमिक इलाज के लिए। लेकिन इस बीच में खबर यह है कि फिलहाल अभी 11 बजे तक की स्थिति के मुताबिक प्रशासन ने काफी हद तक स्थिति को अपने काबू में कर लिया है।
3: इसके अलावा रवीश, जिस तरीके से हमने वहां पर तस्वीरें देखी हैं, बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान छुपाकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या पुलिस अब नियंत्रण वाली स्थिति में दिख रही है? आप कह रहे हैं कि अब माहौल जो है वहां तनावपूर्ण नहीं है, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया गया है, उसके बाद अब बुलडोजर कार्रवाई कब तक शुरू हो पाएगी?
4: देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक बुलडोजर की, क्योंकि जो समाज के लोग हैं उनके साथ सहमति बन चुकी है और उन लोगों ने स्वेच्छा से मस्जिद के हिस्से को हथौड़े के जरिए हटाने का काम भी शुरू कर दिया। अगर आप तस्वीरों में देखें तो मस्जिद का जो हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा है उसे हरे कपड़ों से ढक दिया गया है और उसके भीतर हथौड़ों की मदद से, मशीनों की मदद से उस प्रभावित हिस्से को हटाने का काम चल रहा है और इसीलिए फिलहाल यहाँ पे बुलडोजर की जरूरत अभी नहीं लग रही है। अगर लोग नहीं मानते तब जरूर प्रशासन इसमें बुलडोजर का इस्तेमाल करता, लेकिन कल रात को शहर काजी के साथ बातचीत के बाद सहमति बन गई थी और सहमति बनने के बाद लोगों ने स्वेच्छा से प्रभावित हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया था।
1: रविश, सवाल ये है कि रविश, एक बार हम आपके पास लौटने, एक बार सुनाते हैं कि मौके पर क्या हुआ है, क्या चल रहा है, क्या अनाउंसमेंट हो रही है।
5: सभी चार भाइयों को आपके ही लोगों के द्वारा संपर्क किया जा रहा है, जो लोग ये गलत फहमी फैला रहे हैं कि प्रशासनिक अपने द्वारा कोई कार्रवाई कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं।
2: एडीजी ने संभाला है, डीआईजी ने संभाला, कलेक्टर ने खुद संभाला, पुलिस अधीक्षक ने संभाला है, लेकिन उसके बाद जो एक मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात नहीं।
1: तो ये मौके पर जो अनाउंसमेंट हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल वहां पर हालात एक समय में अनियंत्रित होते दिखे जब पत्थरबाजी हुई। अब हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हालात नियंत्रित दिखाई दे रहे हैं।
6: पीछे रहिए आप लोग, पीछे रहिए।
1: या कोई हमारे संवाददाता रविश हमारे साथ जुड़े हैं। रविश, अब बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष में उस जो जद में आ रहा हिस्सा है उसको तोड़ते हुए भी दिखा दे रहे हैं। आप बता रहे हैं शहर काजी के साथ बातचीत हुई, सब सहमति भी बनी, फिर ये भीड़ को सड़क पर लेकर कौन आया जब सब सहमति है?
4: देखिए, इसी बात पे अब फिलहाल आगे पुलिस की जांच जारी रहेगी, क्योंकि देखिए शहर काजी से सहमति बनने के बाद ही प्रभावित हिस्से को हटाने का काम शुरू किया और प्रशासन नहीं किया, समाज के ही लोगों ने प्रशासन से सहमति बनने के बाद खुद ही आज सुबह 6 बजे से इस हिस्से को हटाने का काम शुरू किया। और सुबह 7:30 बजे तक स्थिति बेहद सामान्य थी। 7:30 से 8 बजे के बीच में अचानक से कुछ लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हुए। उन्होंने अपने साथ में आड़ के रूप में महिलाओं को आगे किया, कई लोगों ने अपने मुंह ढके हुए थे, उन्होंने वहां पे हंगामा पहले शुरू किया। जो लोग स्वेच्छा से उस प्रभावित हिस्से को हटा रहे थे, पहले लोगों ने उनसे
7: इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ, मतलब जब रात में
8: ये भीड़ है, पुलिस भी लगी हुई थी, पुलिस ने भी समझाइश दी। अब वो तो भीड़ में से तो होता है सब, अब क्या बोले। हम तो मैं राजा लाला नाम है, मैं यहाँ टंकी चौराहे पे रहता हूँ, मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ।
9: देखिए सिंहस्थ 2028 के जो कार्य हैं बहुत तेज गति से चल रहे हैं और जितना बड़ा आयोजन है, देश विदेश से जो है श्रद्धालु आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज ये देखने में आ रही है कि सभी लोग स्वयं इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हों, चाहे धर्म हों, समुदाय के लोग हों, और उसी के क्रम में बड़ी संख्या में जो है ये कार्य हुए हैं। आज इसी के क्रम में छत्री चौक पर जो धर्मस्थल है उसको हटाने का कार्य इनके समाजजन स्वयं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। इसमें इसके बारे में स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें और धर्मस्थल को हटाने का कार्य इनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
3: तो शहर काजी के सहमति के बावजूद आप देखिए कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो विरोध करना चाह रहे हैं इस ध्वस्तीकरण का। हालांकि अभी तक बुलडोजर नहीं चला, लेकिन हथौड़ों के जरिए वो हिस्सा मस्जिद का तोड़ा जा रहा है जो सड़क चौड़ीकरण के आड़े आ रहा था। अब बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, एक तय सीमा के आगे ये भीड़ नहीं बढ़ पाएगी, वरना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे अब से कुछ देर पहले। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए, काबू में करने के लिए इस तरह के बल का प्रयोग करना पड़ा।
1: अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल है कि सड़कों पर आए लोग, क्या उन तक कोई विशेष मैसेज सर्कुलेट किया गया? क्योंकि हम जो तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने खुद ही तोड़ा, प्रशासन की या बुलडोजर की या उनके हथौड़ों की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि सहमति बन गई थी। शहर काजी के साथ संवाद हो गया था, सब इस बात को लेकर सहमत थे कि हाँ चौड़ीकरण में जो हिस्सा आ रहा है वो हिस्सा तोड़ देंगे, और प्रशासन क्या पहुंचे, उन्होंने खुद ही उस हिस्से को तोड़ दिया। तो फिर जो मुस्लिम पक्ष सड़कों पर दिखाई दिया उस तक किसने और क्या मैसेज सर्कुलेट किया कि उन वो सड़क पर आ गए और उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए और वो पत्थर सीधा पुलिस बल की तरफ उन्होंने उसके बाद फेंका भी। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रित है, लेकिन ये कैसे, किसी की साजिश ने, किसी ने साजिश की, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये भीड़ एकत्रित किसने की जब सहमति बन गई थी?
3: व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए दरअसल कई बार भीड़ को मोबिलाइज किया जाता है, इस तरह से एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वहां पर कैसे स्थिति को नियंत्रण में रखना है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों वहां पर धारा 144 नहीं लगाई गई या फिर इंटरनेट सेवाएं नहीं बंद करी गई, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसी से सबक लेते हुए शायद इस तरह के एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए थे।
1: और जिस समय पथराव हुआ था उस समय हमारे संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ मौके पर मौजूद थे, उनके ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
10: शाही मस्जिद है उसके उस हिस्से को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है जो चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि वो समाज जन मौजूद हैं जो इसके तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है, भीड़ ने पथराव शुरू करा था, उसके बाद पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। मस्जिद को जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है या जो जद में आ रहा वो हिस्सा है उसको पुलिस ने समाज जनों ने ही हटाने का काम वो भी चल ही रहा है। संदीप कुलशेष, उज्जैन, आज तक।
1: एक ग्राउंड रिपोर्ट आपने हमारे संवाददाता की देखी
3: रवीश, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्या वहां पर अब धारा 144 लगा दी गई है, लगाने की जरूरत है और इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएंगी?
4: देखिए, फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद करने का या धारा 144 लगाने का प्रशासन का अभी कोई यहां पे तो ऐसा दिख नहीं रहा है। प्रशासन का भी साफ तौर पे कहना है कि हालात पूरी तरीके से काबू में है, अफवाहों पे लोग ध्यान ना दें। प्रशासन इसकी अपील कर रहा है, शहर काजी अपील कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं वो शांति बनाए रखें। प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद ही, शहर काजी की सहमति के बाद ही समाज के लोगों ने ही स्वेच्छा से उस प्रभावित हिस्से को हटाना शुरू किया है, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना फैलाए। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी तरीके की अफवाह फैलाई गई थी ताकि लोग वहां पे इकट्ठे हों और वहां पे हंगामा हो? फिलहाल ये बाद में जांच का विषय है। अभी प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि सहमति बनने के बाद जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं प्रभावित हिस्से को हटाने के लिए, कम से कम उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना आए और प्रभावित हिस्से को हटाने का काम जो है वो बिना रुके चलता रहे, क्योंकि अभी इस हिस्से को पूरी तरीके से हटाने में समय लगेगा और उसी पे फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान है कि बिना किसी विवाद के
1: आप पहले जो प्रभावित हिस्सा है उसे, और उसमें जो पुलिस के अधिकारी वो यही कह रहे हैं कि किसी भी अफवाह में ना पड़े, यानी कि अफवाह तो फैलाई गई है क्योंकि लोग अगर सड़कों पर आए तो उन तक कोई और मैसेज गया है और पुलिस और शाही खालसे के बीच में जो संवाद हुआ है वो असली संवाद तो ग्राउंड तक पहुंचने नहीं दिया गया, लोगों के बीच में नहीं पहुंचने दिया गया।
4: बिल्कुल, ये गंभीर बात है क्योंकि कल रात को भी अगर देखें तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे और उन्हें कल रात से ही लगातार प्रशासन के साथ बातचीत चल रही थी, डायलॉग चल रहा था और उसके बाद जब सहमति बन गई तब प्रशासन ने अपनी मशीनों के जरिए नहीं बल्कि समाज के लोगों से ही अपील के जरिए उस प्रभावित हिस्से को हटाने का काम शुरू करवाया था। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से सहमति बनने के बाद भीड़ जो है वो सुबह पहुंच जाती है और फिर से जो प्रभावित हिस्से को हटाने का काम चल रहा था उसका विरोध शुरू कर देती है और ये विरोध इतना बढ़ जाता है कि फिर बाद में प्रशासन को उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है।
1: लेकिन रविश, ये भी बताएं कि जिस समय ये भीड़ वहां पर पहुंची, क्या शहर काजी की तरफ से या मुस्लिम पक्ष के जो प्रबंधन का हिस्सा है उस मस्जिद के, उनकी तरफ से लोगों को समझाने का प्रयास हुआ या नहीं?
4: बिल्कुल, वहां पे प्रयास हुआ था, शहर काजी ने भी अपील की, जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्होंने भी वहां पे ये कहा कि प्रशासन से बातचीत के बाद ही वो खुद अपनी इच्छा से प्रभावित हिस्से को हटा रहे हैं। तो फिर आखिर विवाद किस बात को लेकर के? बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पहुंचे थे वो कतई भी नहीं चाहते थे कि उस हिस्से को हटाया जाए, वो मुंह पे कपड़े भी ढके हुए थे, वहां पे विवाद हो रहा था, महिलाएं वहां बड़ी संख्या में पहुंच गई थी और कोशिश की जा रही थी कि जो लोग स्वेच्छा से प्रभावित हिस्से को हटा रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, वहां पे भीड़ इकट्ठी की जा रही थी और कोशिश पूरी की पूरी यही थी कि जो लोग स्वेच्छा से प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद उस हिस्से को हटा रहे हो उन्हें किसी भी कीमत पर वहां से हटा दिया जाए, उन्हें तोड़ने ना दिया जाए प्रभावित हिस्से को, इस पर ही पूरा विवाद हो रहा था। और आपको ये बता दें कि दरअसल ये जो सहमति कल रात को बनी है शहर काजी के साथ वो क्यों बनी है, वो इसलिए बनी थी क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, सड़क चौड़ीकरण की जद में उनका पैतृक मकान जहां उनका बचपन बीता था वो हिस्सा भी आ रहा था, तो उन्होंने खुद कुदाल चला करके एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर विकास के नाम पे, सिंहस्थ के नाम पे जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधा के लिए अगर उनका पैतृक मकान भी जा रहा है तो उससे उन्हें गुरेज नहीं है और उन्होंने उसे खुद कुदाल लगा करके तोड़ा, तो इससे एक संदेश देने की कोशिश की गई और इसीलिए माना जा रहा है कि जब ये बातचीत कल वहां हुई शहर काजी के साथ तो उन्होंने सहमति जताई प्रभावित हिस्से को हटाने की और प्रशासन से कहा कि वो बुलडोजर का इस्तेमाल ना करें, समाज के लोग खुद अपने हाथों से प्रभावित हिस्से को हटाएंगे और उसके बाद ही उस हिस्से को हटाने का काम शुरू हुआ। लेकिन कुछ लोग पहुंचे हैं, अब प्रशासन उनकी शिनाख्त
1: करेगा। लेकिन रमेश, ये भी तो है ना कि वो मस्जिद का कोई बहुत बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है जो जद में आ रहा था, बहुत छोटा सा हिस्सा लग रहा है जो जद में आ रहा था।
4: करीब 11 फीट का हिस्सा है बताया जा रहा है जो चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। पूरी मस्जिद नहीं हटनी है, सड़क का पे जो हिस्सा आज मस्जिद का निकला हुआ है, आगे के जो ओटले हैं खासतौर से जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, उन्हें ही हटाने का काम होना है, पूरी मस्जिद नहीं हटनी है। और इसीलिए सहमति बन गई थी यहाँ पे कल रात को शहर काजी के साथ। देखना भी है कि सहमति बनने के बावजूद आखिर वो कौन लोग थे जो सुबह अचानक से भीड़ लेके पहुंच गए, और जो लोग स्वेच्छा से मस्जिद के उस हिस्से को हटा रहे थे, तोड़ रहे थे हथौड़ों से, उनको वहां पे डराने धमकाने की, उनको हटाने की कोशिश किसने शुरू की और ये हंगामा आखिर शुरू कैसे हुआ, अब उनकी भी पहचान आगे जाके पुलिस जरूर करेगी।
3: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच तस्वीरें देखिए, शाही मस्जिद के बाहर उज्जैन में हंगामा और पुलिस के साथ ये संघर्ष की तस्वीरें जिसमें आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, कई जगहों पर पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। ये पूरे सुरक्षा घेर में आप पुलिस वालों को देख पा रहे हैं। और एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि कुंभ की तैयारियों को लेकर उज्जैन में खुद वो अपने पैतृक आवास पर हथौड़ा चला चुके हैं। इस मकान के कुछ हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के बीच आ रहा था।
1: मुख्यमंत्री ने एक संदेश दिया था कि जब मैं अपने पैतृक आवास पर खुद हथौड़ा चला सकता हूं, तो जो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज या कुछ हिस्सा इसके जद में आ रहा है, तो वो स्वयं आगे आए और प्रशासन का सहयोग करें। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां लगातार अब सरकार कर रही है, और उसी कड़ी में ये चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो मस्जिद का भी हिस्सा आ रहा था। शहर काजी के साथ सारी बातचीत हो गई थी, सब सहमति बन गई थी, लेकिन सुबह जब उसको तोड़ा जाना था तो एकाएक सड़कों पर भीड़ दिखाई थी। ये भीड़ वहां पर कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, जब सारी सहमति हो गई थी, ये बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता रवीश लगातार हमारे साथ जुड़े। रवीश, अब क्या इस पहलू, इस एंगल से अब जांच हो रही है कि सब सहमति के बाद ये भीड़ को किसने उकसाया, इस भीड़ को सड़कों पर कौन लेकर आया, क्योंकि प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है किसने सर्कुलेट किए, सब पता लगाने में उनको बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं।
4: बिल्कुल, अभी फिलहाल लेकिन प्रशासन का ध्यान उस पर नहीं है, प्रशासन का पूरा ध्यान है कि वहां पे अब दोबारा भीड़ इकट्ठी ना हो। और शहर काजी से सहमति के बाद जो स्वेच्छा से ढांचे को हटाने का काम शुरू हुआ है वो रुके नहीं, प्रशासन का भी पूरा ध्यान उस पर है। और इसीलिए फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार ये पूरा हिस्सा विवाद के बिना हट जाए, जो प्रभावित हिस्सा है, उसके बाद पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश शुरू करेगी। फिलहाल क्राइम ब्रांच जो है वो अब ये पता लगाने में जुट गई है दूसरी तरफ कि आखिर कौन लोग थे, या फिर क्या अभी और भी आगे इस तरीके का कोई अफवाह फैल सकती है या फिर वहां पे भीड़ आ सकती है, तो लोकल इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच जो है फिलहाल वो इस तफ्तीश पे आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए जो पुलिस बल है वहां पे, वो इस बात पे यहां पे काम कर रहा है कि एक बार फिर से भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि मस्जिद के आसपास के जो 250-300 मीटर का हिस्सा है पुलिस ने वहां पे बैरिकेड लगा करके।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: यार लोन भूल गया। मैरी,
4: इट्स
3: जस्ट अ गुड बैंक ना।
5: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
5: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: There's nothing small about us.
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: GK Max.
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: GK Max. Best putty.
10: JK Wall Max.
8: Best paint.
10: JK Max.
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
16: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रोटी ठुमका लगाने। बस
17: मेरे पास एक आइडिया है।
16: क्या?
17: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
18: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
19: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
20: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
17: कौन सी बनानी है?

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम
5: AU सोच बदलो और बैंक भी
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो थमका लगाने बस
7: मेरे पास एक आइडिया है
6: क्या
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा TMT बार से जो बना है
8: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है
10: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है
11: कौन सी बनानी है

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: किसी भी देश को जब भी आज़ादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
3: कौन भय में जी रहा है?
2: नागरिक जी रहे हैं।
3: हाँ, भारत में
2: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: चाई मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन विभारी बवा सिंह हस के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाल। पथराव के बाद चले आंसू गैस के गोले, पूरा इलाका सील, भारी सुरक्षा।
1: जल उठी पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जबरदस्त तनाव के बीच छात्रों पर बरसी पुलिस की लाठियां। 24 घंटे बाद आए डीजीपी ने कहा समस्या की जड़ तक जाएंगे। रेप के आरोप के बाद आगजनी और हिंसा।
0: सीसी पर मचे घमासान के बाद जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। इंडिया गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष।
1: प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा मेरे परिवार को दी गाली इसीलिए मारा। केजरीवाल के गुंडे दिल्ली में कर रहे हैं उगाही।

0: पास लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर मात्रा।
0: चुनाव आयोग को लेकर हुए ताजा खुलासे के बाद विपक्ष के नेता बेहद हमलावर हैं। विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार की जा रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, आज भी पंचायत स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक विपक्ष की ओर से कोई साझा कार्यक्रम नहीं दिखा है।
2: ऐसे में सबकी नजर 30 सितंबर को होने वाली गठबंधन इंडिया की उस अलायंस की बैठक पर है, और सवाल है कि क्या इस बैठक में कोई साझा रणनीति तय हो पाएगी और विपक्ष चुनाव आयोग के सवाल पर एकजुट हो पाएगा।
3: ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
4: इलेक्शन कमीशन मस्ट बी अरेस्टेड, ही हैज नो मॉरल अथॉरिटी टू कंटिन्यू।
5: जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी, ज्ञानेश कुमार की, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं।
6: कंप्लीटली इलीगल एंड अनएथिकल।
7: एक खुलासा हुआ और विपक्षी दलों को वोट चोरी पर फिर से प्रहार करने का भरपूर मौका मिल गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक सबके सब चुनाव आयोग पर टूट पड़े हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग के सवाल पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या क्षेत्रीय हितों को अलग रखकर साझा मोर्चाबंदी हो पाएगी? क्या विपक्ष आपसी मतभेद को भुलाकर एक मंच पर आ पाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष की एकजुटता कई मोर्चों पर बिखरी और दर की नजर आ रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के सवाल पर खींचतान है। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है और वहां भी कांग्रेस आप में तीखी तनातनी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर किस कदर घमासान मचा है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अखिलेश ने अपनी रथ यात्रा रायबरेली से शुरू की, जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। रायबरेली में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नई टेंशन की वजह बन गई।
8: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है। अखिलेश जी रायबरेली अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी आज जिस तरीके की बात आम आदमी को उठा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने पहले दिन से जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया।
9: जहां जहां कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, सभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता उन सभी के साथ खड़े हैं बड़ी मजबूती के साथ।
10: क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जाने के पीछे वजह भी यही है कि जो विधायक राहुल लोधी के साथ हुआ उसको लेकर?
9: जहां जहां भी पीडीए का अपमान होगा वहां वहां समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।
7: इससे पहले गठबंधन के सवाल पर भी दोनों दलों के नेता खुलकर एक दूसरे से टकराते दिखे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की साझा बैठक में कोई बात बन पाएगी? ये बैठक इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद विपक्ष की साझा रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है, और अभी तक की खबरों के मुताबिक इस बैठक में जिन नेताओं के आने की पूरी संभावना है उनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एमए बेबी के आने की उम्मीद है। अखिलेश यादव नहीं आ रहे, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है।
11: नहीं, हमारा अलग कार्यक्रम है, कहीं वो अपने आप पता लग जाएगा कहाँ जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन की बैठक है।
7: विपक्ष के लिए अच्छी खबर ये है कि सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने ममता बनर्जी से बात की है। दोनों दल पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन नए हालात में नई पहल हुई है। एमए बेबी ने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है। अगर इतना सब होने के बाद भी 30 सितंबर की बैठक से बड़े नेता दूर रहते हैं तो विपक्षी एकता की कोशिश एक बार फिर धराशायी हो सकती है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष को देश से मतलब नहीं है, वो हमेशा परपंच करने में लगा रहता है।
2: तो चुनाव आयोग को लेकर जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला, संवैधानिक संस्थाओं को ये लगातार बदनाम कर रहे हैं। साजिश के तहत उन्होंने पॉलिटिशियंस का, अपोजिशन के लीडर्स का नाम भी लिया, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।
12: राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई है। विपक्ष के तमाम मनगढ़ंत आरोप तथ्यों के कसौटी पर बार बार ध्वस्त हुए हैं। चुनाव आयोग से लेकर देश की सर्वोच्च अदालतों तक इनके हर झूठ की हवा निकल चुकी है। जब इनके पास नीतियों और विजन का अभाव होता है तो ये अब देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के नए नए प्रपंच रच रहे हैं। हम सब ने देखा है कुछ दिन पहले किस तरह एक मनगढ़ंत खबर को लेकर देश भर में बवाल मचाया गया। अब जब चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इनके लगाए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो अब ये नए सिरे से फिर से माहौल को खराब करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं।
0: राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। राहुल, अब विपक्ष इस बात का खंडन कैसे करेगा कि ये खबर मनगढ़ंत नहीं है और ये झूठ नहीं है, कैसे अपना सच वो साबित करेंगे?
13: देखिए नेहा, आपको याद होगा कि राहुल गांधी तो खुद ही अपना डेटा लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो कम से कम विपक्ष को ऐसा लगता है कि जो सच है वो हमारे पास है और इसी को लेकर 30 तारीख को आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कुनबा जुटेगा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं होंगे और रामगोपाल यादव उनकी जगह पर शिरकत करेंगे। और मुख्यतः आप कह सकते हैं कि तीन उनकी मांगे होंगी। एक, आप जानते हैं कि इम्पीचमेंट मोशन लेकर आने की तैयारी की जा रही है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर। इसके अलावा यह भी मांग उठेगी कि उनके खिलाफ एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए कि किस प्रकार से क्या क्या घटा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि देश भर के अंदर कैसे एक आप कह सकते हैं कि आंदोलन को खड़ा किया जाए, जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाए, एक कोऑर्डिनेशन हो तमाम विपक्षी दलों के अंदर ताकि सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा जाए। आप कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एक तरफा घेराबंदी अब शुरू हो चुकी है सरकार की, विपक्ष के द्वारा, जो कि आपको संसद में भी देखने को मिलेगी और सड़क पर देखने
2: लेकिन राहुल इतनी बड़ी घेराबंदी और आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं, उनके जगह कोई और आएंगे, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से कौन आ रहा है, उनके भी प्रमुख आ रहे हैं या फिर वो भी किसी को भेज रहे हैं?
13: नहीं, मुख्य तौर पर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हीं को न्योता दिया जाता है और वही शिरकत करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक बनर्जी, इसके अलावा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमए बेबी, ये तमाम जो लोग हैं ये तमाम लोग शिरकत करेंगे। आप जिसका जिक्र किया आपने अखिलेश यादव का, जाहिर है उनका नहीं आना कई सवाल खड़े करेगा कि आखिर इतनी बड़ी बैठक जो कॉल की जा रही है और लगातार वो इस मुद्दे पर बोल भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका ना आना, जाहिर है इससे आप कह सकते हैं कि बीजेपी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये कहने की कि जो विपक्षी एकता है जिसकी बार बार इतनी दुहाई दी जाती है, इतनी बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, वो जमीन पर कहीं ना कहीं है नहीं और कहीं इसका जो लेना देना है या जो लिंक है वो उत्तर प्रदेश चुनावों से तो नहीं है। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बयानबाजी चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, तो कुल मिलाकर कोशिश होगी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सीधे आपको ले चलेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं।
14: भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन दो महानुभावों का आपको अभी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्रीमती जयदेवी जी, श्री अम्बरीश कुमार जी, प्रमुख सचिव पंचायत।
2: और दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली गठबंधन इंडिया की बैठक की फिर से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा के बीच में आसार हैं और सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बैठक में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अपना रुख मजबूती से रखने की तैयारी में है।
0: एसपी का मानना है कि सिर्फ कागजों या बयानबाजी के आधार पर सीटों की मांग करना गठबंधन के हित में नहीं है। एसपी की ओर से बैठक में यह बात मजबूती से रखी जाएगी, गठबंधन का मुख्य उद्देश्य हर हाल में चुनाव जीतना होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस जिस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेगी वहां उसके संभावित उम्मीदवार के जमीनी जनाधार पर चर्चा होनी चाहिए। सीट पर चर्चा के दौरान उम्मीदवार के क्षेत्रीय समीकरण और चुनाव जीतने की क्षमता को भी अहम आधार बनाने की बात कही जाएगी। समाजवादी पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि यूपी में किसी भी सीट पर चर्चा तभी आगे बढ़े जब कांग्रेस दावेदारी वाली सीटों के साथ अपने मजबूत और संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने रखे।
2: इस बीच में इमरान मसूद का अखिलेश यादव पर बड़ा बयान भी सामने आया। इमरान मसूद ने कहा कि अगर अखिलेश यादव नाराज हैं तो नुकसान उनका ही होगा, यूपी में नेतृत्व करना है तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। इमरान मसूद लगातार बयान दे रहे हैं और इस कड़ी में एक और बयान और एक तरीके से तंज ही वो कस रहे हैं कि अखिलेश यादव को ही नुकसान होगा, देर होगी।
15: अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उसमें नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कारण बताया है कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
16: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण अवश्य जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
15: सर, रायबरेली में जो उन्होंने रोड शो किया उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी कर रही, गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में?
16: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे, तो 2027 के अंदर कोई चमत्कार होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाएं उड़ जाती हैं।
0: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का, तो ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन तो खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। आप तो फिर सीट बंटवारे और कौन सा कैंडिडेट उतारा जाएगा ये बात ही बेमानी लग रही है।
17: अब बिल्कुल नया देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी जो अपोजिशन में है स्ट्रांग उत्तर प्रदेश में, वो साफ कह रही है कि कांग्रेस अपने उन कैंडिडेट के बारे में बताए जिनको वो उतारना चाहती है, तभी इंडिया अलायंस में कहीं भी अलायंस की बातें आगे बढ़ पाएंगी। अब ऐसे में कांग्रेस के पास वो कैंडिडेट मजबूत होने चाहिए जो उस चुनाव में उतारना चाहती है, और यहीं पर कहीं ना कहीं पेच आके फंसा है कि आखिर कितनी सीटों पर ये अलायंस होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी तैयार खड़ी है 403 सीटों पर। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो आगामी बैठक है उसमें भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर बड़े नेता उनके जाएंगे। लेकिन ये तो जरूर है कि जब कांग्रेस अपने कैंडिडेट की लिस्ट सौंपेगी तब कहीं ना कहीं इसमें एक कदम आगे बढ़ा जाएगा कि आखिर उन सीटों पर, क्योंकि पीडीए जो रथ शुरू हुआ वो भी रायबरेली से शुरू हुआ, रायबरेली यानी कांग्रेस का गढ़ वहां से शुरू हुआ। अब ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जरूर दिखाया है कि उनका हर जगह मजबूत स्तंभ है और इसी वजह से
0: मजबूत स्तंभ समाजवादी पार्टी भी दिखा रही है, कांग्रेस भी दिखा रही है, वैसे में गठबंधन पर सवालिया निशान है। बात अब दिल्ली के थप्पड़ कांड की, जहां पर लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि जिस युवक को उन्होंने चाटा मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
2: अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह के आरोपों पर सफाई भी दी है और उन्होंने आरोप लगाया कि जर्नैल सिंह ठेकेदार से कमीशन मांग रहे थे और कमीशन ना मिलने पर रात में बनी सड़क को सुबह उखाड़कर वीडियो बना रहे थे।
18: एक थप्पड़ जिससे दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। अब थप्पड़ कांड की पहले का वीडियो देखिए। स्क्रीन पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, उनके साथ नीली शर्ट और सफेद पैंट में विधायक जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह दिल्ली के मंत्री से विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास नई बनी सड़क की घटिया गुणवत्ता की शिकायत कर रहे हैं। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत करते नजर आए। इस पर प्रवेश वर्मा ने कहा कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए। बहसबाजी बढ़ रही थी और जर्नैल सिंह सड़क उखाड़ते जा रहे थे। इन सबके बीच प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे। प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहां पहुंच गए। वहां प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। अब जरा इससे पहले का वीडियो देखिए जो प्रवेश वर्मा ने जारी किया है।
19: जी जर्नैल जी।
20: जी प्रवेश भाई, क्या हाल?
19: बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
20: मैं तिलकनगर में हूँ।
19: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
21: कहाँ रह गए सर?
18: प्रवेश वर्मा के मुताबिक उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आए और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
19: जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
18: मंत्री जी सफाई का वीडियो जारी कर रहे थे और उधर थप्पड़ से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिलक नगर थाने पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।
22: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनके ऊपर FIR नहीं की जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
18: दिल्ली की सियासत में इस थप्पड़ की गूंज आज भी सुनाई देगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल उस सड़क का निरीक्षण करने वाले हैं जिसे लेकर बवाल मचा है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: और इस पूरे विवाद पर दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो जारी कर ये कहा कि सड़क का निर्माण गुरुद्वारे की मांग पर गुरु पर्व को ध्यान में रखकर झटपट किया गया और ये निर्माण अस्थायी था, इसे फिर से बनाया जाएगा।
1: अगर कोई मंदिर या कोई रिलीजियस संस्था अगर हमारे पास आकर ये कहती है कि हमारी रोड को बना दीजिए, हमारा जलूस है, हमारा नगर कीर्तन है, तो क्या हमको रोड बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए?
3: जेडी ओछी राजनीति कर रहे ने ना, रोड नु पुटना ये अच्छी गल नहीं है।
4: जो ये काम हुआ ये इंसिडेंटली रात में अंडर प्रेशर केवल गुरुद्वारे को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था।
23: 5 तारीख को गुरपुर में भाई काम तो कर लो, ये गाड़ी हमारे को डलवा दो कि हमारा ये प्रोग्राम फंक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद जो करना है। इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पहुँचाई, कैसी किया, इनकी मेहरबानी रात को आके ये गाड़ी दो गाड़ी माल डलवाया कि फंक्शन गुजर जाए और उसके बाद में तुम्हारे लिए प्यारा सिंह बढ़िया सड़क बना दूंगा। ठीक है, कम ज्यादा माल इसके पास था, डलवाया, वो काम चलाया। अभी 5 तारीख के बाद उन्होंने मेरे साथ बोला है कि मैं तुम्हारा सही तरीके से बना के दूंगा।
1: यहाँ के विधायक के कहने से हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी टीम ने ये काम कर दिया। ये रोड में पूरा काम नहीं हुआ और ये हमारे टेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्योंकि गुरु पूर्व था इसलिए काम को किया गया। तो जर्नैल सिंह ने आके यहाँ पर वीडियो बनाया और ये रोड को उसने उखाड़ा। पहले उसने यहाँ पर अपना वीडियो बनाने से पहले कुछ अंदर डाल के
2: तमाम दलीलें और सफाई एक तरफ, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
25: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
26: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। EU
27: सोच बदलो और बैंक भी।
28: तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस के सामने आकर के स्थिति स्पष्ट की। SIR के बारे में पहले से ही इस बात के डायरेक्शन दिए गए कि छूटे हुए जो भी मतदाता हैं उनको फॉर्म भरने की पूरी छूट है। फॉर्म 6 को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को उचित ठहराया, लेकिन उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना, भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करके दुनिया के अंदर भारत की बदनामी कराना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने की कुत्सित चेष्टा करना, ये कांग्रेस का ये कृत्य अत्यंत हैरान करने वाला है।
29: आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे।

0: चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमूडा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
2: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है। कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है। चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? ईसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुंचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी बवाल। सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाल। पथराव और आंसू गैस के बाद फिलहाल शांति, पूरा इलाका सील।

पुलिस की लाठियों के बाद मरहम लगाने पहुंचे डीजीपी, कहा अफवाहों पर ना दें ध्यान। रेप के आरोप के बाद उठी आक्रोश की लपटें, हॉस्टल छोड़ने के लगे आरोप। सीसी पर मचे सियासी घमासान के बाद जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। गठबंधन इंडिया की बैठक में आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। प्रवेश वर्मा के थप्पड़ की सियासी गूंज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के युद्ध में कूदे राहुल गांधी। प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, कहा मेरे परिवार को दी गाली इसलिए मारा, केजरीवाल के गुंडे दिल्ली में कर रहे हैं उगाही। लगातार बारिश के बाद प्रयाग से काशी तक गंगा में उफान, बिहार पर भी मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक नदी का खौफनाक रूप दिखा।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। सिंहस के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, इस दौरान बुलडोजर एक्शन से पहले ही उबाल देखने को मिला। पथराव और आंसू गैस के बाद फिलहाल इलाके में शांति है, पूरा इलाका भी सील किया गया है। तो मस्जिद के पास भीड़ एकाएक पहुंच गई और उसने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, और वो भी तब जब पहले ही शहर काजी के साथ सहमति बन गई थी और मुस्लिम पक्ष ने खुद ही उस जद में आ रहे हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन भीड़ पहुंचकर पुलिस के साथ भिड़ जाती है और पुलिस पर पथराव कर देती है। बुलडोजर एक्शन से पहले ही बवाल हो गया और देर रात से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के बाहर डटे दिखाई दिए। इस बीच मौके पर तनाव बढ़ती दिखी और भारी पुलिस की तैनाती के बाद वहां बैरिकेडिंग की गई और लगातार लाउडस्पीकर के साथ लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया। मुस्लिम समाज शाही मस्जिद पर एक्शन का विरोध कर रहा था। दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां चल रही, सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके तहत शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा भी हटाया जाना है।
1: उज्जैन के चौड़ीकरण के कार्य में चल रहे सुबह जो विवाद हुआ था, आज तक ग्राउंड जीरो पर है। और आप पीछे पहले देख सकते हैं जहां सुबह जहां पथा हो रहे थे और भारी मुस्लिम समाज जो इकट्ठा था और आंसू गैस के गोले फोड़े गए थे, समाज द्वारा पथराव किया गया था, और अब स्थिति शांत है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर समाजजनों से बात की कि जो शाही मस्जिद का हिस्सा वो समाजजनों द्वारा ही हटाया जा रहा है। जहां सुबह पूरा तनाव का माहौल था, शहर में तनाव का माहौल था, आज स्थिति शांत है और ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से पुलिस का जुड़ाव है। पुलिस तरह से यहाँ पुलिस लगी हुई है, पुलिस और प्रशासन के लोग भी यहाँ लगातार लगे हुए, और समाजजनों को पूरी स्थिति साफ कर दी गई, बैरिकेटिंग की गई है। और जो सुबह स्थिति थी कि लगातार आंसू गैस के गोले फोड़े जा रहे थे, वो पथा हो रहा था, वो महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा था, अब आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर स्थिति पूरी तरह से शांत है।
0: आज तक संवाददाता संदीप कुलश्रेष्ठ ने पूरे विवाद पर वहां के डीएम रोशन कुमार से बातचीत की है।
1: हमारे साथ उज्जैन कलेक्टर मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि अभी क्या स्थिति है।
2: जी बिल्कुल, जैसा आपको विदित है, सिंहस्थ 2028 में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब आएंगे यहाँ पे, तो उनकी व्यवस्थाओं को करना बहुत आवश्यक है। इसी के क्रम में अनेक विकास कार्य चल रहे हैं। जो सबसे अच्छी चीज जो देखने में आई है, यहाँ के लोग स्वयं अपने हाथों से विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो या धर्म हो या समुदाय के लोग हों, समाजजन हो, सभी लोग अपने हाथों से चौड़ीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इसमें कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए। आज इसी क्रम में यह जो है विषय है छतरी चौक पर जो धर्मस्थल

0: है उसको भी मास्टर प्लानिंग के हिसाब से जो चौड़ीकरण करने का जो कार्य है ये समाजजनों के द्वारा, धर्मजनों के द्वारा, उनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा स्वतः इस चीज को किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगा, किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें, क्योंकि यह कार्य इनके धर्मजनों के द्वारा स्वयं किया जा रहा है।
1: उज्जैन के शहर खाजी खलीलुर रहमान ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कल रात में प्रशासन के साथ बातचीत में मस्जिद का मामला तो हल हो गया था, ऐसे में अब अफवाह पर आप ध्यान न दें।
2: नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाजारों में न खड़े हों, बाजारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम आ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाहें उन पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
1: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट दिल्ली से। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर अब विस्तार से उन्होंने सफाई दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि युवक को उन्होंने चांटा मारा, दरअसल उस युवक ने परिवार को गाली दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह के आरोपों पर भी सफाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जनरल सिंह तो ठेकेदार से कमीशन की मांग कर रहे थे और कमीशन न मिलने पर रात में बनी सड़क को सुबह उखाड़ कर वीडियो बना रहे थे।
3: दिल्ली के थप्पड़कांड के बाद अब प्रवेश वर्मा की सफाई सामने आई है, जिसमें प्रवेश वर्मा का साफ साफ ये कहना है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रवेश वर्मा के परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ साथ प्रवेश वर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि वहां पर जो सड़क बन रही थी तिलक नगर में, वहां पर जो कमीशन खोरी है वो आम आदमी पार्टी के विधायक और बाकी लोग कर रहे थे। अब इस पूरे कांड के बाद कहीं ना कहीं सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने ये मांग की है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इसको लेकर कल एक धरना प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। हालांकि प्रवेश वर्मा के घर के बाहर सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि जहां पर यह पूरा वाकया हुआ वहां पर वो पहुंचकर वहां के लोगों से आज बातचीत करेंगे। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में राजनीति किस तरह से आगे तूल पकड़ती है। मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: इस पूरे विवाद पर प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं।
4: जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पंजाब से। पंजाब के जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप के आरोपों पर बवाल जारी है। बीती रात यहां पर जमकर हंगामा हुआ है। रविवार शाम बड़ी संख्या में उग्र छात्रों ने हाईवे जाम कर दिया, यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ कर दिया, आगजनी की गई, यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब रेप के आरोपों की जांच की बात कर रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई है।
5: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीती रात की हिंसा के बाद अब छात्र कैंपस छोड़ते हुए 10 दिन के लिए क्लासेस सस्पेंड कर दी गई है, लेकिन सवालिया निशान अभी भी बना हुआ है कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ। क्या ये वाकई एक अफवाह थी, जैसे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनका कहना है कि एक मामला जरूर हुआ था लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। वहीं एलपीओ की तरफ से इसे फेक न्यूज बताया गया। पुलिस प्रशासन भी यही कहते रहे कि ये मामला पूरा अफवाह का है। हालांकि दबाव में आके पंजाब पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज किया और उसके बाद एक एसआईटी भी गठित कर दी और उसी बीच में हिंसा तब भड़की जब लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद जो सड़क पे उतरे पुलिसकर्मी थे उन्हें भगाया गया, आगजनी हुई, कई पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके उन्हें जलाया गया और उसके बाद अब बात करें कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। लेकिन बात यही आती है कि क्या कोई भारी फोर्स थी जो कि यहाँ पे छात्रों के बीच में शामिल होकर हिंसा कर पड़े, या फिर जिम्मेदारी एलपीयू की है जहां पे उनका संवाद टूटता नजर आया, या पंजाब पुलिस की जिसकी कार्रवाई से खुश ना तो एलपीयू था ना ही छात्र थे।
1: वहीं डीजीपी गौरव यादव इस मामले पर क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
6: कुछ एलिमेंट्स जिहड़े जिन्हां ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, सो पुलिस की गड्डियां ते पथराव होया, जिहड़े उस नूं अगेन यूजिंग अ लॉट ऑफ रेस्ट्रेंट, ते पुलिस की हमेशा तो कोशिश रही है कि जिहड़े स्टूडेंट्स दे आर लाइक आर चिल्ड्रन, बच्चे हैगे, तो इन्हां दी जिहड़े ग्रीवियंसिस हैगे उन्होंने सॉल्व किया जाए, मोस्टली जे दे रिलेट टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस दे नाल इन्हां दी मीटिंग्स कराई गई हैं। तो दूजा मैं यह भी मैसेज देना चाहवाँगा कि कोई भी एलीमेंट्स जिन्होंने भनतोड़ की सी, असी साइंटिफिकली टैक्निकली एनालाइज कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जिहड़ा भी लॉ नूं अपने हाथ में लूगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाऊगा। जिहड़ी साडी FIR दर्ज हुई है, साडी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सो हू एवर इज़ इनवॉल्व इन द इंसीडेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स उन्होंने खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाऊगा। कोई व्डे तो व्डा बंदा भी हैगा, वह भावें यूनिवर्सिटी प्रशासन तो है, भावें कोई बंदा हैगा, सो लॉ विल टेक इट्स।
1: लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल के बीच में पंजाब की सियासत भड़क गई है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, तीनों ही विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी की भगवान मान सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और अकाली दल ने छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे आप नेता गायत्री बिश्नोई को लेकर उठे विवाद को दबाने की एक साजिश बता दिया है।
7: पंजाब में आम आदमी पार्टी लीडर गायत्री बिश्नोई को लेकर सियासी जंग जो है वो तेज हो गई है। जी हाँ, रवनीत सिंह बिट्टू जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि LPU में जो बवाल हुआ है वो गायत्री बिश्नोई को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है पंजाब में उसको डाइवर्ट करने के लिए हुआ है। याद होगा कि कांग्रेस लीडर सुखपाल सिंह खैरा ने आरोप लगाया था कि गायत्री बिश्नोई जो हैं वो एक मिनिस्टेरियल हाउस, कैबिनेट मिनिस्टर के हाउस में रह रही हैं, उनके घर के अंदर रह रही हैं, और इसके बाद गायत्री बिश्नोई ने भी एक वीडियो जारी करके बोला था वो हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह के घर में रह रही हैं क्योंकि उनके पिता का इलाज चल रहा है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद लगातार जो है पंजाब में बंगलो पॉलिटिक्स है, सरकारी घरों को लेकर पॉलिटिक्स जो है शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने एक सूची भी जारी की, आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर कि बाहरी लोग जो हैं वो सरकारी घरों में चंडीगढ़ में आकर रह रहे हैं, ये उनका आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप था। हालांकि गायत्री बिश्नोई ने जब ये क्लेम किया कि वो डॉक्टर बलबीर सिंह के घर में रह रही हैं, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर ने भी उसके बाद आकर कल पटियाला में बयान दिया था कि वो पार्टी की उनकी नेता हैं, वहाँ की ऑब्जर्वर हैं, पंजाब की ऑब्जर्वर हैं, तो अगर वो रह रही हैं तो इसमें क्या गलत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सरकारी बंगलों को लेकर और गायत्री बिश्नोई को लेकर कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी जो है लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर पंजाब में हमला बोल रही है।
1: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। गठबंधन से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है और ताजा अपडेट बता रहे हैं संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह।
8: 30 सितंबर को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले राजनीति तेज हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि वो इंडिया ब्लॉक की बैठक में किसी जरूरी काम की वजह से नहीं आ सकते, उनकी जगह पर किसी दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता को इंडिया ब्लॉक की बैठक में भेजा जाएगा, इस बात को लेकर के इमरान मसूद ने सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर इस मीटिंग में नहीं आते हैं और नाराज हैं तो नुकसान उन्हीं का होगा। इन तमाम चीजों पर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के बीच बीच में दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा अलग अलग तरीके के बयान दिए जाते रहे हैं, ऐसे में इमरान मसूद का अब एक ताजा बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतना मुमकिन नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई भिखारी नहीं है जो कि सीटों की मांग कर रही है, वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि समंदर में जब कोई बड़ा तूफान आता है तो बड़ी नाव ही उसको झेल पाती है, छोटी छोटी नावें जो हैं पलट जाती हैं।
9: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है, और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थबेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाएं उड़ जाती हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने काल नैमी कहा है। मुख्यमंत्री ने रामद्रोहियों से सावधान रहना होगा कहा, बजरंगियों को इसके लिए तैयार रहना होगा। योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
10: उत्तर प्रदेश में बजरंगियों और बजरंग भट्टों को सनातनियों को काल लेनी रूपी राक्षस से बचना होगा और इसको कहा है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। वो भी कल लखनऊ में जब वो पूर्व बीएचपी अध्यक्ष अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी उद्घाटन करने गए थे, वहां पर उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से जो राम भक्ति का चोला ओढ़ लेते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी वो ऐसे कालनेमी रूपी लोग हैं जो अपना समय और चुनाव आने पर भेष बदल लेते हैं। अब ऐसे में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि सनातन, बजरंग और बजरंग दल ये सभी लोग ऐसे जो मानने वाले हैं उनको इन सभी कालनेमी रूपी राक्षस से सावधान रहना होगा।
11: लेकिन याद रखना, याद रखना, आप सभी बजरंगियों को इस बात के लिए सावधान रहना होगा कि राम काज कीनो बिनो, राम काज में काल नेमी भी घुसेंगे। काल नेमियों को पहचानने की आवश्यकता है। ये लोग घुसेंगे, आंदोलन को अपमानित करने का प्रयास करेंगे, बदनाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें इनकी साजिशों को, बजरंग बली के भक्तों को, बजरंगियों को, बाबरियों के भक्तों की जो काल नेमी के रूप में बाबरी भक्त घुस करके आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, इनकी साजिशों को सफल नहीं होने देना है।
1: 12:12 रिपोर्टों में हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चुनाव आयुक्त से छिड़े विवाद पर विपक्ष पर तीखा वार किया। जेपी नड्डा ने कहा जहां 140 करोड़ भारतीय विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वहीं विपक्ष गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि किसी झूठ को 100 बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। उन्होंने कहा राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का एकमात्र एजेंडा देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम और कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि इस टूलकिट मानसिकता का मकसद देश के विकास को रोकने की साजिशें रचना है।
12: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई।
1: इस बीच चुनाव आयोग के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता 2 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं और पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता राहुल गौतम।
13: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर मोदी सरकार की चौतरफा घेराबंदी अब शुरू हो चुकी है। दरअसल मुंबई के अंदर कांग्रेस जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन इस मुद्दे पर धरना देने का आह्वान किया है। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के अंदर एक सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएगा ताकि दिल्ली के अंदर भी 2 अक्टूबर से ही इसी मुद्दे पर धरना दिया जा सके। बताया जा रहा है कि इस डेलीगेशन के अंदर नेहा बोरा से लेकर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और निखिल डे सहित कई ऐसे लोग शामिल हैं जो लगातार कई आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि दिल्ली पुलिस सरकार के दबाव में आकर उन लोगों को परमिशन नहीं दे रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर मुंबई के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लोग जुटते हैं इस मांग को लेकर कि ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जाए, जाहिर है इससे सरकार की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये तमाम लोग जब पिछली बार जुटे थे और साथ ही जब राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे थे उस समय धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, तो जाहिर है आप कह सकते हैं कि सरकार की मुश्किलें इस मामले पर अब बढ़ सकती हैं।
1: अब अगली रिपोर्ट गुजरात से, जहां पर दिल्ली में जेन जी आंदोलन के बाद युवाओं से संवाद का दौर शुरू हो गया। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने सूरत में जेन जी के साथ संवाद किया है।
14: गुजरात में जेन जी को लेकर युवा उनको साथ लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया द्वारा युवा संवाद किया गया है और हालांकि जब उनसे बात की गई तो उन्होंने दावा किया कि ये अभी के अभी शुरुआत नहीं की है, उन्होंने वो साल 2015 से इस तरह से संवाद करते हैं और ये पूरा नॉन पॉलिटिकल संवाद होता है। इसमें हमेशा सामाजिक मुद्दों पे बात होती है, युवा अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार में माता पिता का महत्व समझे और साथ ही जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में युवा मोबाइल से दूर रहे क्योंकि मोबाइल अब जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जो मोबाइल से दूर नहीं रह सकते तो किस तरह से मोबाइल से थोड़े दिन थोड़ा वक्त निकाल के अपने परिवार को वक्त दिया जा सके और साथ ही युवा जो है वो अपने आसपास के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, मंदिर की बात हो या फिर मतलब धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज को जो है पहचाने और उसके साथ जुड़े रहें, उस पहल से जो है ये संवाद की शुरुआत हुई थी। 2015 से ये शुरुआत उन्होंने की थी और अभी भी लगातार ये संवाद चल रहा है जिसमें कोई भी राजकीय बातें नहीं की जाती, सिर्फ जो है धार्मिक और सामाजिक पहलुओं पर बात होती है और परिवार का महत्व समझा जाता है। आने वाले जो युवा थे, युवा भी काफी खुश लग रहे थे और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये पहल जो हम पहले से कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।
1: बात अब बिहार की करेंगे जहां पर राजधानी पटना से। पटना पुलिस ने जन सुराज के नेता अनिल यादव पर हुई फायरिंग की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस केस में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना पुलिस ने ऐसा दावा किया है। इस वारदात का कनेक्शन 2017 के पार्षद चुनावों से है।
15: 23 सितंबर को पटना में जन सुराज के नेता और पूर्व वार्ड पार्षद अनिल यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उस मामले में पुलिस ने अब चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि अनिल यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया था, दरअसल उसके पीछे शंकर यादव का हाथ है जिसके साथ अनिल यादव की 2017 से ही चुनावी रंजिश चल रही थी और उसी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल चार आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले का मुख्य मास्टरमाइंड शंकर यादव और प्राइम शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इन सब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
1: अगली रिपोर्ट बिहार के वाल्मीकि नगर से है जहां नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद गंडक नदी में उफान आ गया और पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं संवाददाता शशि भूषण।
16: नेपाल में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद गंडक नदी एक बार फिर से उफान पे है और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज है जहां पर लगातार पानी का जो डिस्चार्ज है वो रिकॉर्ड स्तर पे चल रहा है और आज सुबह जो जल संसाधन विभाग है उसकी तरफ से जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे गंडक बराज से जो डिस्चार्ज रहा वो 5,43,000 क्यूसेक रहा। जो
1: अब रिपोर्ट एशियाड में मेंस क्रिकेट की भारत की टीम बगैर एक गेंद भी खेले सेमीफाइनल में पहुंच गए और आज अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का क्वार्टर फाइनल में बारिश की वजह से मैच धुल गया।
17: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम को आज से अपने सफर की शुरुआत करनी थी। अफगानिस्तान के सामने भारतीय क्रिकेट टीम को अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलना था लेकिन भारी बारिश की वजह से यह मुकाबला रद्द कर दिया गया। शुरुआत में टॉस डिले हुआ, उसके बाद एम्पायर्स ने आके मैदान का जायजा लिया, मुआयना किया लेकिन एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी और नतीजा ये हुआ कि मैच अब रद्द हो चुका है और इसी के साथ भारत अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत इस वजह से सेमीफाइनल पहुंचा क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है वो अफगानिस्तान से बेहतर है आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक और इसी के साथ अफगानिस्तान का एशियन गेम्स में सफर समाप्त। लेकिन भारतीय टीम अब सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी जहां उसका सामना या तो नेपाल या फिर श्रीलंका से हो सकता है। भारतीय टीम पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार भी टीम की पूरी कोशिश होगी कि सेमीफाइनल मुकाबले में अपने अपोनेंट को हराकर फाइनल में जगह पक्की की जाए और एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया जाए।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: बारह मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
12: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
13: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
14: तो कौन सी बनानी है?
15: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
16: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
12: I like this only.
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
19: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। In association with
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठ। मेरा नाम सिंपल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
7: रुंगटा टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
6: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
8: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।
9: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
10: कौन भय में जी रहा है?
9: नागरिक जी रहे हैं।
10: हाँ, भारत में
9: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनावों के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल तैयार। राज्यसभा की 8-9 सीटों और शिक्षक स्नातक एमएलसी की 11 सीटों को लेकर बैठक में मंथन, लगभग 60 वोटर्स की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख को देने की तैयारी, लगातार संपर्क और संवाद पर जोर। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, पन्ना प्रमुख वोटर से संपर्क के साथ मतदान के दिन उन्हें पोलिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव, अखिलेश बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बात हो गई है, मेरी जगह सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में जाएंगे। अखिलेश के गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस की सफाई, सीटों की वजह से बैठक से दूरी की खबरें तो भ्रामक। पीडीए को लेकर चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोला उनका पीडीए बदलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। चंद्रशेखर आजाद का तंज, उनका कौन सा पीडीए है ये तो वही तय करेंगे, हमारा पीडीए नहीं बदल नहीं रहा। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का दावा है कि यूपी की जनता विकास चाहती, 2027 में 2017 से भी बड़े बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, इमरान मसूद बोले कि अखिलेश यादव नाराज हैं तो नुकसान तो उन्हीं का होगा। ओवैसी की यूपी में ताबड़तोड़ दौरों पर बीजेपी का हमला, मनीष शुक्ला बोले राहुल, अखिलेश और ओवैसी की राजनीति में कट्टरता है। एआईएमआईएम के समाजवादी पार्टी पर हमला, ओवैसी 18 अक्टूबर को रामपुर और 25 अक्टूबर को कैराना में करेंगे जनसभा। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान बोले कि रामपुर में पहली बार ओवैसी का कार्यक्रम, आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बनाया बल्ली का बकरा। सपा कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी का हमला, अखिलेश को कांग्रेस और राहुल गांधी की क्षमता पर भरोसा ही नहीं, यूपी में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से बनेंगे सरकार। राम मंदिर आंदोलन पर योगी का बयान, बोले कि बजरंगी सावधान रहे, राम आंदोलन को बदनाम करने वाले काल नए भी मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर अखिलेश का सरकार पर गंभीर आरोप, अखिलेश बोले कि अगर इलेक्शन कमीशन घोटाले में शामिल है तो बीजेपी भी इसमें शामिल। यूपी के उन्नाव में 48 घंटों की भारी बारिश के बाद जल भराव, घरों में घुसा पानी, लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। यूपी के महाराजगंज में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट पर रखा है। बांदा में बाढ़ का कहर, डीएमएसपी ने लिया जायजा, प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी गई। पीलीभीत में भारी बारिश ने खेत किए जलमग्न, धान की खड़ी फसल बर्बाद, गन्ने पर भी इम्पैक्ट। बिजनौर में रामगंगा बांध का जलस्तर बढ़ा है, 7 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। नागरा में अचानक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा, 14 लोग इसमें घायल। अयोध्या में पेपर मिल में केमिकल इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस। लखनऊ में सड़क पर बाइक में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझाई। यूपी के फरुखाबाद में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाने गए 5 बच्चों में से 2 की जान गई। झांसी के गरौटा थाने में किसान नेता की अचानक तबियत बिगड़ गई, इंस्पेक्टर ने सीपीआर देकर बचाया जा।

0: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो खबरें सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली तो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन इंडिया की तस्वीर साफ होने को लेकर है और दूसरी चर्चा जो है राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य की सीट पर चुनाव को लेकर है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की औपचारिक चर्चा शुरू नहीं हो पा रही है। खबर है कि 30 सितंबर को कांग्रेस ने बैठक बुलाई थी और उसमें अखिलेश यादव जाने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव की जगह समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा नेता दिल्ली जाएगा।
1: यूपी के चुनाव में सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, हर हफ्ते नौकरियां बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी रायबरेली से रथ निकालकर रणभेरी फूंक डाली है, लेकिन कांग्रेस का पता नहीं है क्योंकि अखिलेश ने कांग्रेस को प्रचार की हरी झंडी नहीं दी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि अखिलेश यादव खुद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में नहीं जाकर अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे।
2: तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक है या अभी भी पेच फंसा हुआ है, सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव 30 तारीख की अहम इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने नहीं पहुंच रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल को भेज रहे हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए अखिलेश ये भी कह देते हैं कि मैं इस बारे में जानकारी कांग्रेस के अध्यक्ष को दे चुका हूं।
1: दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली की बैठक तो चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी सियासी लीड लेने के लिए बुलाई है। अखिलेश उस लीड को कबूल नहीं करते दिख रहे,
3: लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है और अखिलेश जी एक एक काम को बहुत सोच समझ के करते हैं और यही कारण रहा है कि 2024 में हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोका, कोई और प्रदेश की पार्टी नहीं रोक पाई।
4: देखिये, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता।
1: यूपी कांग्रेस के नेता गठबंधन की तस्वीर साफ करने और सीटें क्लियर करने का दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं तो अब समाजवादी पार्टी की शर्तें सामने आने लगी हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी पहले कांग्रेस की ओर से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगेगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछेगी। उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखेगी।
5: सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अलायंस तभी होगा जब कांग्रेस अपनी सभी सीटों की लिस्ट समाजवादी पार्टी को सौंपेगी। यही नहीं, लिस्ट के साथ साथ कैंडिडेट का बैकग्राउंड बताना होगा कि वो जिताऊ कैंडिडेट है या फिर ऐसे ही खड़ा किया गया है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय राय भी मायने रखती है, यानी कि कई टर्म एंड कंडीशंस हैं जो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने रखा है।
1: खबर है कि कांग्रेस की ओर से ये तमाम आंकड़े मुहैया करा दिए जाएंगे तब समाजवादी पार्टी गठबंधन के पत्ते खोलेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में शामिल हुए अखिलेश ने कांग्रेस को साफ कर दिया था कि यूपी में सीट बंटवारे के पीछे जमीन पर मौजूदगी और जनाधार ही होगा।
2: क्या महज ये इत्तेफाक है या फिर असल में एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक टेबल पर कुछ साफ नहीं हुआ है। ऐसे में 30 तारीख को अखिलेश का इस बड़े कार्यक्रम में ना जाना कहीं कांग्रेस पार्टी को इशारा तो नहीं, उस वक्त में जब इमरान मसूद से लेकर अजय राय तमाम तरीकों के बयान दे रहे हैं और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार कर रहे हैं।
1: उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले वरना फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
4: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
3: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए, इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है, समाजवादी पार्टी की वो कुर्सी भी जानती है जो जिस कुर्सी में बैठने वो आए थे।
1: दरअसल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है तो अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले को। चुनावी सफलता में यही दावेदारी अब महत्वाकांक्षा में तब्दील हो चुकी है और सीट बंटवारे में बाधा भी बन सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं।
4: इस समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थबेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाएं उड़ जाती हैं। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है, और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे।
6: जिस तरीके से आप लोग सीटें मांग रहे हैं, सपा को तो नहीं लग रहा कि इस सिचुएशन में आएगा?
4: नहीं, हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी हैं। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे भाई, हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम।
1: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ रही है। प्रदेश स्तर के नेता प्रवक्ता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश ने कांग्रेसी गढ़ रायबरेली में रथ उतार दिया और अब राहुल ने जो बैठक बुलाई है उसमें वो खुद नहीं जा रहे। ओपी राजभर कह रहे हैं कि जो हालात दिख रहे हैं उसमें ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है। राजभर अखिलेश को अमेठी की तरफ भी रथ घुमाने की सलाह दे रहे हैं। राजभर अखिलेश की चुटकी तो ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से संजय निषाद ने मोर्चा खोल रखा है, एनडीए में भी गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यूपी में गठबंधन की दिशा में सबसे बड़ी रुकावट कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले दो जिलों की कुछ सीटें हैं, और उनमें से एक जिला रायबरेली से रथ यात्रा शुरू करके एक तरीके से अखिलेश यादव ने पहले अपना रुमाल रख दिया है। रायबरेली जिले की 6 सीटों के अलावा अमेठी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर खींचता नहीं है, बात अब आगे बढ़कर उन सीटों पर पहुंच चुके हैं जहां पर संगठन और उम्मीदवार की जमीन पर ताकत का सवाल है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 105 से 115 सीटों की मांग कर रही चाहत रखती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 85 से 90 सीटें देने के मूड में है, और इस बीच में रायबरेली और अमेठी की सीटों को लेकर भी दोनों दलों के बीच में खींचतान के संकेत है, जिसमें रायबरेली अमेठी इलाके की लगभग 3 से 4 सीटें हैं। खासकर समाजवादी पार्टी ऊंचाहार, हरचंदपुर और अमेठी जैसे सीटों पर समझौता नहीं चाहते। दूसरी ओर कांग्रेस भी इन दोनों ही जिलों की सीटों पर ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग रख रही है।
7: व्यक्तिगत विषय है, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कई प्रतिनिधि मीटिंगों में जा चुके हैं, बैठ चुके हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई नई बात यह नहीं है।
8: तो आप ही के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव नाराज है तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं।
7: देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है, और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
8: आज की स्थिति के अनुसार आप कितना लगता है आपको सीट्स को लेकर कुछ आकलन?
7: अब ये तो सारा निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है, हमारा काम है मजबूत करना।
9: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जारी है। अखिलेश यादव अब जिस तरीके से उम्मीदवारों का नाम पूछ रहे हैं कांग्रेस से, उससे स्पष्ट है कि उनको कांग्रेस और राहुल गांधी की क्षमता पर भरोसा नहीं है। बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संख्या से ज़्यादा जीत की क्षमता को चेक करना जरूरी है, और जब गठबंधन में एक सहयोगी दूसरे सहयोगी की क्षमता पर विश्वास न हो तो उस गठबंधन का हाल क्या होता है सबको पता है।
0: आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को मायावती ने बीजेपी का एजेंट करार दे दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। मायावती का आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करवाकर चंद्रशेखर को चुनाव जितवाया था।
10: धीरे धीरे अब उनका वोट देने पर से ही विश्वास उठता जा रहा है, जिसका खास उदाहरण आजाद समाजवादी पार्टी का सांसद है, जिसका नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर कुछ भी जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे षड्यंत्र के तहत खासकर बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ईवीएम में धांधली करा के उसे जितवा दिया है, ऐसा वहां के लोगों का ये मानना है, जो अब इस पार्टी के इशारों पर चलकर देश में जहां जहां खासकर दलितों पर अन्याय अत्याचार आदि होता है तो वहाँ ये पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर इसको अधिकारियों से बात करने की बजाय, उनको न्याय दिलाने की बजाय ये करता क्या है।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की खबरों पर अब आगे बढ़े तो चुनाव आयोग को लेकर कुछ खुलासों के बाद से कांग्रेस का हौसला हाई है और कांग्रेस वैसे तो विपक्ष का चेहरा है लेकिन वोट चोरी वाले मुद्दे को यूपी में भी कांग्रेस अपना मुद्दा बनाकर पेश करना चाहती है। बीजेपी को शक है कि जिस तरह 2024 के चुनाव में संविधान बदलने की अफवाह और खटाखट पैसे के झांसे में बीजेपी को बहुमत से दूर पटक दिया था, वही अफवाह वाला जो खतरा है कहीं फिर से चुनाव आयोग वाले खुलासे में न दोहरा दिया जाए और इसे कहीं नुकसान ना हो जाए। लिहाजा बीजेपी ने राहुल गांधी की कोशिशों को अफवाह फैलाने का नया हथकंडा करार दे दिया है।
11: राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई है।
0: यूपी में अगले 10 राज्यसभा सीटों के अलावा 11 एमएलसी की सीटों पर भी चुनाव होना है। इनमें राज्यसभा की सभी सीटों पर 23 अक्टूबर जबकि एमएलसी में 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पर 23 अक्टूबर को मतदान है। इस चुनाव को लेकर बीजेपी ने जीत की तैयारियों में पार्टी का मंथन शुरू हो चुका है। लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें राज्यसभा और शिक्षक स्नातक विधान परिषद सदस्यों के चुनावों में संभावित उम्मीदवारों के पैनल फाइनल किया जाना है। अब खबर है कि बीजेपी ने यूपी में स्नातक एमएलसी चुनावों के लिए माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल बनाया है। इसमें 60 वोटर्स की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख को दी गई है। वोटर से लगातार संपर्क रखने के लिए कहा गया है, वोटर्स से संवाद बढ़ाने की भी सलाह दी गई है और सबसे जरूरी कि वोटिंग वाले दिन हर वोटर को पोलिंग सेंटर तक ले जाना पहुंचाना भी है।
5: बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपनी बड़ी तैयारी की है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पन्ना प्रमुख को 60 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ उनको वोटिंग सेंटर तक लेकर आना भी ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ उनसे योजनाओं के तहत हर व्यक्ति से बात करते रहना, यानी कि एक माइक्रो मैनेजमेंट MMM ये किया है बीजेपी ने, जिसका साफ मकसद है कि किसी भी हालात में एमएलसी चुनाव को या आने वाले राज्यसभा चुनाव हो, किसी पर भी पीछे नहीं हटना है। यही वजह है कि ये MMM यानी MMM जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा खास हो जाता है। ऐसे में बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक बीजेपी ने बड़ी तैयारी की हुई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
0: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी मंथन बैठक लखनऊ में है। राज्यसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें 2 सीटों के अलावा 3री सीट को लेकर भी विशेष चर्चा होनी है।
8: समाजवादी पार्टी में बैठक है आज, राज्यसभा को लेकर तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ खाका है, क्योंकि 37 विधायक ही तय करेंगे कि सीट कितनी हो पाएंगी। उस तरीके से देखा जाएगा तो 2 आती हैं आसानी से, अगर आपको तीसरा चाहिए तो भाई 8, 9, 7 कुछ लॉजिक बनता है। बैठक का एजेंडा क्या है, क्या कुछ रहने वाला है?
3: देखिए, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है राज्यसभा चुनाव की, तो जैसे आप बता ही रहे हैं कि 2 हमारे पास अधिकृत तरीके से है और समाजवादी पार्टी 1 से बढ़कर 2 राज्यसभा मेंबर भेजेगी। तीसरी के लिए हमको लगभग 12 और विधायकों की ज़रूरत पड़ रही है, जो हम लोगों को जितनी गणित समझ में आती है। क्या वो 12 पे हम लोग तैयार हैं या उस पर हम लोग खेल खेलेंगे? समाजवादी पार्टी में बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो सारे विधायकों को बुलाया गया है, सबसे बात की जाएगी कि क्या हम इस गेम को खेलें या ना खेलें। चुनाव का समय है, 2-3 महीने बाद चुनाव होना है, हमें सेफ गेम खेलना, ये कई रणनीतियां होती हैं जब पार्टी के चुनाव आती हैं।
0: यूपी के चुनाव में एक फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी भी है जिनकी चर्चा गाहे बगाहे हो रही है। ओवैसी एक तो किसी तरह गठबंधन इंडिया में घुसने की कोशिशें कर रहे हैं और नाकाम रहने पर 2 अक्टूबर से अपनी नई रणनीति का ऐलान करने वाले हैं। ओवैसी को लेकर किसकी सियासत असहज हो रही है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
12: उत्तर प्रदेश में यूं तो ओवैसी जोर शोर से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को हमदम नहीं मिल रहा। जून में बहराइच की पहली रैली से लेकर सितंबर के तीसरे हफ्ते में कानपुर की रैली तक हर चुनावी रैली में मंच और बंच के पीछे से ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने गठबंधन की पेशकश की। इंडिया गठबंधन में अपनी दाल गलती नहीं देख ओवैसी ने आखिरी पेशकश में 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। 2 अक्टूबर के बाद ओवैसी यूपी के चुनाव में अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी ने अपने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक ओवैसी अब श्रावस्ती से शुरू करके आजमगढ़ और फिर पश्चिमी यूपी के रामपुर, कैराना और मेरठ तक अपने प्रचार का अभियान चलाएंगे, जिसमें 4 अक्टूबर को श्रावस्ती के भिनगा में, 11 अक्टूबर को आजमगढ़ में, 18 अक्टूबर को रामपुर में, 25 अक्टूबर को कैराना में और 14 नवम्बर को मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी रैली होगी।
13: ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, चाहे रामपुर का हो, मेरठ का हो या फिर कैराना का हो। मेरठ में हम लोगों को 1,28,000 वोट नगर निगम के चुनाव में, मेयर चुनाव में आया था, जो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इस बार रहेगा।
3: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, क्या कर रही है आईएम? क्या भूल गए हैं क्या? तो कभी अपने घर में भी जाके देखे कि वहां भी सरकार बनानी है आपको, लेकिन सारा जोर वहीं लगाना है जहां पे उनको जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, और जब भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है तो वो इंडिया अलायंस को सूट नहीं करती है।
12: अभी तक की रैलियों में ओवैसी के निशाने पर जितना बीजेपी की सरकारें रही हैं, उतना ही हमला ओवैसी मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले विपक्षी दलों पर भी करते हैं। खासकर यूपी में मुसलमान नेताओं और मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की खामोशी का आरोप भी ओवैसी लगाते हैं। खासकर रामपुर जैसे इलाके में पांव जमाने के लिए ओवैसी आजम खान को अखिलेश की साजिश का शिकार तक बताने से नहीं चूक रहे।
13: आजम खान साहब को बलि का बकरा बनाया समाजवादी पार्टी ने, और एक मुस्लिम लीडरशिप को कुचलने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शामिल रही। क्या सिर्फ आजम खान साहब मंत्री थे सरकार में? क्या अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी और परिवार के लोग नहीं थे? किसी की जांच नहीं हुई, सिर्फ आजम खान साहब की हुई, जो प्रमाणित करता है कि एक तरीके से बलि का बकरा बनाया गया।
9: राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, तीनों लोगों को उत्तर प्रदेश में कट्टरता ही बढ़ा दी है। मुस्लिम तुष्टिकरण करना है, धार्मिक आधार पर प्रदेश में विभाजन करके राजनीतिक गोटियां सेकनी है।
0: और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये आश्चर्यजनक है। कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। एसआईआर को लेकर के जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है,
1: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। लेकिन 22 में जब परिणाम आया, मुझे याद है मैंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों ने मिलकर के जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की वोटर लिस्ट की, बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। तो ये बेईमानी तो हो ही रही है, बस इतनी सी बात अब खुल गई है।

0: ये पिक्चर इज ए वेरी क्लियर पिक्चर ममता बनर्जी और सीपीएम पश्चिम बंगाल किस तरीके से झूठ कर रहा है, तो पिक्चर सीधा है। तीन लोग मिलकर क्या, पश्चिम बंगाल में तो एक्सेप्शन केस है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का पावर सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया था, ईआरओ का पावर, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेट ऑफिसर। वो तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में 60 लाख में जो 27 लाख रिजेक्ट किया, वो तो जुडिशियल ऑफिसर ने किया। ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, तिरुवनंतपुरम में भी जाकर, केरलम में जाकर आंदोलन कीजिए। वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: पूरे एसआईआर के दौरान एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी या को पूरा विपक्ष बिहार में नहीं खड़ा कर पाया कि ये व्यक्ति बिहार के मतदाता है और इनका मतदाता सूची में नाम नहीं। पूरा चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गया, लेकिन रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र, पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार का पार्टी है। आपने देखा कि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को नेता विरोधी दल के का हैसियत नहीं था, लोकसभा में तो नहीं बनाया। जैसे ही उसमें भी सत्ता का लाभ मिलने वाला था तो राहुल गांधी तुरंत नेता विरोधी दल बन गए। ये लाभ लेने वाले लोग हैं।

पर उज्जैन में भारी बवास, सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाल। पथराव और आंसू गैस के बाद फिलहाल शांति, पूरा इलाका सील। रात के अंधेरे में लवली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पंजाब पुलिस की लाठियां बरसने के बाद पहुंचे डीजीपी, कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान। रेप के आरोप के बाद उठी आक्रोश की लपटें, हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हुए छात्र। सीसी पर मचे सियासी घमासान के बाद जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। इंडिया गठबंधन की बैठक से आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। यूपी में तेज हुई दलित वोटों की जंग, पहली बार चंद्रशेखर आजाद पर बरसी मायावती, कहा उन्हें बीजेपी ने ही ईवीएम में धांधली कर जितवाया। नगीना सांसद के बहकावे में ना आए दलित वोटर।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं रेहा बात। हम शुरुआत कर रहे हैं उज्जैन की खबर के साथ, जहां पर शाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर अभी भी बवाल जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जब पुलिस और ये हिंसक हुए लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और इस पूरे माहौल में एक बार फिर से गहमा गहमी देखी गई। सुबह माहौल और हालात तनावपूर्ण बताए गए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि अब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। एक बार फिर से वहां पर संघर्ष की स्थिति पुलिस और इन उपद्रवियों के बीच देखी जा सकती है। कुछ लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए वहां पर मुंह ढक कर पहुंचे हैं। ऐसे में एक तय सीमा के बाद आगे ये उपद्रवी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पथराव के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। और अब रुक करेंगे नॉनस्टॉप 100 का।

उज्जैन में शाही मस्जिद को लेकर विवाद बरकरार, मस्जिद का हिस्सा हटाने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। शाही मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे, विरोध के बीच मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। जेसीबी और पोकलैंड मशीन के साथ पहुंचा भारी पुलिस बल, रात भर मस्जिद के बाहर चलता रहा विरोध प्रदर्शन। शाही मस्जिद को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, कंठा चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का काम जारी। शाही मस्जिद को लेकर पथराव कर रही भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में, शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल तैयार। राज्यसभा की 8 से 9 सीटों और शिक्षक स्नातक एमएलसी की 11 सीटों को लेकर बैठक में मंथन, करीब 60 वोटर्स की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख को देने की तैयारी, लगातार संपर्क और संवाद पर जोर। सीएम योगी ने कहा 9.5 लाख युवाओं को बिना लेन देन पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, कहा गिरगिटों से सावधान रहने की जरूरत है। इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव, अखिलेश बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बात हो गई है, मेरी जगह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में जाएंगे। अखिलेश के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल ना होने पर कांग्रेस की सफाई, सीटों की वजह से बैठक से दूरी। पीडीए को लेकर चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले उनका पीडीए बदलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, हमारा पीडीए नहीं बदल रहा है। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का दावा, यूपी की जनता विकास चाहती है, 2027 में 2017 से भी बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, इमरान मसूद बोले अखिलेश यादव नाराज हैं तो नुकसान उनका ही होगा। ओवैसी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरों पर बीजेपी का हमला, मनीष शुक्ला बोले राहुल अखिलेश और ओवैसी की राजनीति में कट्टरता है। एआईएमआईएम का समाजवादी पार्टी पर हमला, ओवैसी 18 अक्टूबर को रामपुर और 25 अक्टूबर को कैराना में जनसभा करेंगे। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान बोले रामपुर में पहली बार ओवैसी का कार्यक्रम, आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बनाया बलि का बकरा। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का लगीना सांसद चंद्रशेखर को बीजेपी ने जितवाया, उनकी पार्टी का जनाधार नहीं है। मायावती का चंद्रशेखर पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के इशारे पर चलते हैं नगीना सांसद। मायावती ने आगे कहा बीजेपी ने ईवीएम में धांधली कराकर जितवाया, धरना प्रदर्शन कराकर युवाओं पर केस करवाते हैं नगीना सांसद। एलपीयू में रेप के आरोप पर बवाल, छात्रों का पथराव, पुलिस का लाठी चार्ज, कई पुलिसकर्मी घायल। एलपीयू के बाहर हिंसक प्रदर्शन, छात्र ने पुलिस वाहनों पर किया पथराव, दो गाड़ियों में आग लगाने का आरोप।

रेप के दावे पर एफआईआर दर्ज, अज्ञात के खिलाफ केस, एसआईटी पुलिस के साथ छात्र पर भी शामिल। एलपीयू में 10 दिन के लिए रेगुलर क्लासेस सस्पेंड, मिड टर्म परीक्षाएं स्थगित, छात्र घर लौटे। एलपीयू हिंसा पर बीजेपी नेता राजकुमार गुप्ता का बयान, कहा प्रदर्शन का हक लेकिन पथराव और तोड़फोड़ गलत। परवेश वर्मा के थप्पड़कांड पर दिल्ली में सियासत गरम, आपका प्रदर्शन, मंत्री के खिलाफ एफआईआर की मांग। सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर आमने सामने बीजेपी मंत्री परवेश वर्मा और आप विधायक जर्नैल सिंह। थप्पड़कांड पर आपका जोरदार हमला, संजय सिंह बोले मंत्री को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थप्पड़ विवाद पर परवेश वर्मा की सफाई, बोले परिवार को गाली देने के बाद गुस्से में हुआ रिएक्शन, आप पर लगाए गंभीर आरोप। परवेश वर्मा के थप्पड़ वीडियो पर राहुल गांधी का हमला, बोले सत्ता का ऐसा चेहरा जो अब वोटर्स से नहीं डरता। सीसी पर मचे घमासान के बाद जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश, इंडिया गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। नगर में कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, भारी पुलिस बल तैनात। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, प्रियंका गांधी का हमला, प्रियंका बोली राजनीतिक झुकाव वाले सीसी निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे। पटना में वामपंथी दलों का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को जी किशन रेड्डी ने घेरा, बोले जहां कांग्रेस जीती वहां एसआईआर सही है, जहां हारी वहां सवाल उठ रहे। सीसी ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, रिकॉर्ड की एसआईटी जांच की मांग। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान, मुकुल वासनिक बोले ईसीआई को जवाबदेह बनाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। एसआईआर पर आपका, चुनाव आयोग पर सीधा हमला, संजय सिंह बोले बीजेपी ज्ञानेश कुमार के साथ क्यों खड़ी है। एसआईआर विवाद पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस का राहुल गांधी पर पलटवार, फडणवीस बोले वोट चोरी नहीं हुई है, राहुल गांधी की सोच चोरी हो गई है। 2.8 करोड़ मृत वोटर्स के नाम हटाने के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस का सवाल, पवन खेड़ा बोले 10.2 बाकी के नाम कहां गए। यूपीआई एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े सवाल, चार्ज से कमाई कौन कर रहा है, इसकी कानूनी बुनियाद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा यूपीआई एमडीआर चार्ज फीस है या टैक्स है, सरकार को इससे कोई कमाई होती है या फिर नहीं। यूपीआई एमडीआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, आरबीआई एनपीसीआई को 4 हफ्ते में कानूनी आधार स्पष्ट करने का निर्देश। सुरक्षा हटाए जाने पर अभिषेक बैनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, चुनाव के बाद जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने का दावा। अभिषेक के वकील बोले कई बार हमले हो चुके हैं, अभी सिर्फ कुछ हाउस गार्ड्स हैं, 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पंजाब में सरकारी बंगलों पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने आप पर लगाया सरकारी आवासों के दुरुपयोग का आरोप। गायत्री बिश्नोई के बयान से बड़ा बंगला विवाद, खेरा बोले उनके जवाब से आप नेताओं के सरकारी आवास में रहने का मामला खुला। बीजेपी नेता आरपी सिंह का आप पर जोरदार हमला, बोले दिल्ली को लूटने वाले अब पंजाब को लूटने पहुंचे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने भी आपको घेरा, बोली पंजाब के सरकारी बंगलों में बाहरी लोगों को क्यों दी जा रही हैं सुविधाएं। आदेश बना रहा है शहीद भगत सिंह की जयंती, पीएम मोदी ने वीडियो जारी करते हुए किया नमन। आज से होने वाली 3 दिवसीय बैंक हड़ताल टली, आईबीए यूएफबीयू की बैठक में बनी सहमति। भारतीय सेना आज मना रही 200वां गनर्स दिवस, वीर शहीदों के साथ शौर्य के दिन को किया जा रहा है याद। गनर्स दिवस पर सेना ने एक बेहद शानदार और जोश भरा वीडियो जारी किया, पारंपरिक से लेकर आधुनिक तोपों की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन। मेरठ में छात्र नेता शान मोहम्मद जिला बदर, 3 महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश। यूपी के उन्नाव में 48 घंटे की बारिश से भारी जलभराव, घरों में घुसा पानी, लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। यूपी के महाराजगंज में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत, प्रशासन लोगों को किया अलर्ट। बांदा में बाढ़ का कहर, डीएमएसपी ने लिया जायजा, प्रभावित लोगों से सुनी समस्याएं। पीलीभीत में भारी बारिश से खेत जलमग्न, धान की खड़ी फसल बर्बाद, गन्ने पर भी पड़ा असर। बिजनौर में रामगंगा बांध का बड़ा जलस्तर, 7 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग में बर्फ की सफेद चादर में सजा बाबा केदार का धाम, सफेद चादर में लिपटी हिमालयी चोटियां।
उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से बिगड़े हालात। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा होल्डिंग पॉइंट पर रोकी गई। केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम लगाया ब्रेक। बोल्डर की चपेट में आने से एक 5 साल के बच्चे की मौत। यात्रा के दौरान चिरबासा में पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर। पैदल यात्रा मार्ग के भक्तों का रेस्क्यू करने का लगातार वीडियो आ रहा है सामने। बाराबंकी में बारिश से गिरा पेड़ के नीचे बुजुर्ग महिला 18 घंटे तक दबी रही, गई जान। उत्तरकाशी में भारी बारिश बर्फबारी के बीच गौमुख के उच्च हिमालय में 136 ट्रैकर्स फंसे। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। गोपालगंज में बाढ़ का अलर्ट। बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बड़ी चिंता। प्रशासन हाई अलर्ट पर। गंडक के बढ़ते जलस्तर से बिहार के गोपालगंज में अलर्ट। निचले इलाकों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। भोजपुर में 20 साल के युवक के सिर में मारी गई गोली। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह खफा। परिवार ने जिंदा बेटी की निकाली शव यात्रा। बेटी बोली हमें परेशान ना करें। खेड़ा में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। टला बड़ा हादसा। बेगूसराय में शराब की रेड करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों का लाठी डंडों से हमला। दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश। अवैध शराब की जब्त। आगरा में अचानक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा। 14 लोग घायल। अयोध्या में पेपर मिल में केमिकल इंजीनियर की संदिग्ध हालत में मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सड़क पर बाइक में लगी अचानक आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। अंबाला में इमारत गिरने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हुआ। निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरने से हुआ हादसा। फरीदाबाद में 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाली गई बोरवेल में गिरी बच्ची। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। रायगढ़ में MIDC की केमिकल कंपनी में जोरदार धमाका होने से 3 लोग घायल। देर रात हुआ धमाका। रीवा में खराब बस की हालत पर कलेक्टर नाराज। जिस बस से किया सफर उतरते उसी बस को कराया सीज। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर डंपर की जोरदार टक्कर। 1 की मौत 1 घायल। 52वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अनुमान अंश ने रचा इतिहास। 400 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। रविवार को अनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का कारोबार किया। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 362 करोड़ 70 लाख। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की फिल्म दबावान का बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई। 3 दिन में कमाए 43 करोड़ रुपए दुनिया भर में। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15 करोड़ 70 लाख का किया कारोबार। दुनिया भर में कमाई 138 करोड़ के पार। मिर्जापुर द मूवी ने कल 1 करोड़ 55 लाख कमाए। 23 दिन भारत में 268 करोड़ की कमाई। भारी बारिश से बैंकॉक समेत कई इलाकों में बाढ़। कई जगहों 1 मीटर से ज्यादा पानी भरने से हजारों लोग फंसे। बैंकॉक में बाढ़ के कारण सड़कों पर भरा पानी। प्रशासनों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए थाईलैंड में 10,000 से ज्यादा सैनिक किए तैनात। कंबोडिया सीमा से लगे साकेओ प्रांत में आया बाढ़ की चपेट में। लोगों को ट्रकों से किया जा रहा रेस्क्यू। थाईलैंड मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। स्थानीय प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर। ब्रिटेन में अमेरिका सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एयरबेस के पास 5 संदिग्ध गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा अमेरिका से लड़ने को तैयार है, बातचीत के लिए भी राजी है। अब फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को करना है। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर ने कहा आने वाले चुनाव के बाद अगर वो देश के रक्षा मंत्री बनते हैं तो पूरे गाजा में यहूदी बस्तियां बसाई जाएंगी। इसराइल गाजा सिटी में एक बार फिर हवाई हमला किया। 1 शख्स की मौत, कई घायल। सीजफायर के बाद इसराइल अब तक 1400 फिलिस्तीनियों को मार चुका है। सऊदी अरब में यमन में हूती विरोधियों के ठिकानों पर हवाई हमले के 7 की मौत 40 घायल। हिजबुल्लाह के दिवंगत नेता हसन नसरअल्लाह की हत्या की दूसरी बरसी पर मार्च। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने इसराइल से बदला लेने की खाई कसम। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने दिया इस्तीफा। छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और जनता की बढ़ती नाराजगी के बाद छोड़ा पद। स्पेन में घरों के बढ़ते किराए को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। मैड्रिड में जुटे प्रदर्शनकारियों ने सरकार से हाउसिंग संकट से राहत दिए जाने की मांग की। चीन अमेरिका की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत 2 जायंट पांडा अटलांटा पहुंचे। वहां चिड़ियाघर अब उन 3 ज़ू में से एक होगा जहां पांडा रखे जाएंगे। मॉस्को में बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल। खास तरह की पोशाक में लोगों ने तालाब में विशाल कद्दू की नाव बनाकर लगाई रेस।

0: बात उज्जैन की, जहां शाही मस्जिद के पास एक बार फिर से पथराव हुआ है। भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज भी करना पड़ा। सड़क चौड़ीकरण के चलते मस्जिद का एक हिस्सा इसकी जद में आ रहा था, जिसको लेकर मुस्लिम समाज का एक गुट इसका विरोध कर रहा है। दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की तैयारी को लेकर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके तहत शाही मस्जिद के कुछ हिस्सों को हटाया जाना है। ये लाठी चार्ज की आप तस्वीरें देख रहे हैं उससे कुछ ही देर पहले की, जब उग्र प्रदर्शन वहां पर लोग करने लगे, उन्हें काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सुबह से ही वहां पर भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा है, जबकि शाही इमाम ने कहा है कि मस्जिद का एक ही हिस्सा ढाया जा रहा है, उनकी मंजूरी थी। उसके बाद प्रशासन ने वहां पर हथौड़ों से तोड़फोड़ का काम शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं माने। वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पुलिस पर पथराव करने लगे। रवीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, अभी क्या ताजा स्थिति है?
1: देखिए, अभी फिर से कुछ देर के लिए यहाँ पे हालात तनावपूर्ण हुए थे नेहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि टंकी चौक की तरफ कुछ लोग अचानक से एक बार फिर इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ पे उपद्रव करने की कोशिश की, पथराव किया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया है। अब आपको बता दें कि पुलिस की तैनाती का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ गया है। जो गोपाल मंदिर की बात करें हम, तो वहां नहीं, लेकिन अब पुलिस जो है वो कंठाल चौराहे तक आ चुकी है। देखिए, ये जो हिस्सा है ना, जहां पे इस वक्त पुलिस कर्मियों को आप खड़े हुए देख रहे हैं, यहीं से इस सड़क का चौड़ीकरण होना है। और अगर आप सामने की तरफ देखें तो वहां पे भी तमाम जो घर है उन्हें हटाया गया था, उन्हें तोड़ा गया था, जो दुकान थे उन्हें तोड़ा गया था, ये सड़क चौड़ीकरण के लिए होना था। और पीछे तक का हिस्सा देखें तो यहां से लेकर के यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वो शाही मस्जिद है जिस पर विवाद हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इस सड़क के दोनों तरफ के इन मकानों को जो आप टूटा हुआ देख रहे हैं, दरअसल यही वो हिस्सा है जो कि इस सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे थे, और इन सबको तोड़ा गया है। तो धार्मिक स्ट्रक्चर थे उन्हें भी तोड़ा गया। थोड़ी दूरी पे यहां खड़े हनुमान का मंदिर भी है, उन्हें तोड़ा गया। यहां जो आप मेरे दाई तरफ अगर देख रहे हैं, ये जो हनुमान मंदिर है, पहले ये मंदिर भी सड़क चौड़ीकरण की जद में था, जिसे तोड़ करके अब पीछे की तरफ खिसकाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई धार्मिक ढांचा था जिसे हटाने की बात हो रही हो। ये हनुमान मंदिर भी पहले जिस जगह पे ये फायर ब्रिगेड खड़ी है, पहले यहाँ पे ये मंदिर होता था, उसे सड़क चौड़ीकरण की बाद में सहमति बनी और उसे हटा करके सामने स्थापित किया गया है। ये भी तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। तो ये पूरी सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि ये सड़क सीधे गोपाल मंदिर जाती है, फिर उसके बाद आगे घाट का हिस्सा है जहाँ पे शाही स्नान होते हैं, प्रमुख संत अखाड़े जो है आगे जाके स्नान करते हैं, सभी VIP वहां पहुंचते हैं, तो उसके लिए सड़क को चौड़ा होना था। लेकिन जब अभी मस्जिद को हटाने की बारी आई, कल रात को सहमति बनी, शहर काजी के साथ सहमति बनने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने हाथों से मस्जिद को हटाने का काम शुरू किया। लेकिन अचानक से आज सुबह एक गुट वहां पहुंचता है, वो जो लोग अपने हाथों से उस ढांचे को हटाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें धमकाया जाता है, वहां पे हंगामा किया जाता है, और उसके बाद स्थितियां जो हैं वो तनावपूर्ण बन जाती है। हालांकि बाद में स्थिति काबू में आ गई थी, लेकिन अभी तकरीबन आधे घंटे पहले बताया जा रहा है कि अचानक से जो पत्थरबाजी है वो शुरू होती है। फिलहाल पुलिस वहां पे भी तैनात है और लोगों को हटाने की कोशिश वहां पे उन्होंने की, और एक बार फिर से इस पूरे इलाके में जो है संवेदनशील स्थिति बन गई है इस ताजा पथराव के बाद। लेकिन कलेक्टर हो, SP हो, शहर काजी हो, वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो
0: ठीक है लोगों के, मैं आपको क्योंकि यही अपील शहर काजी की अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या वो लोगों से कह रहे हैं।
2: ब्रादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाजारों में न खड़े हों, बाजारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम वहाँ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
0: अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। पटना में वामपंथी दलों और संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पानी के फव्वारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैन के जरिए इन्हें खदेड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान के पास JP गोलंबर पर रोकने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, अब ये प्रदर्शन जारी है या फिर एक पॉइंट के बाद इसे रोक दिया गया है?
3: Thank you.
0: तो ये पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। AISF ने प्रदर्शन बुलाया है, आज इसका आह्वान किया गया था और बड़ी संख्या में इसमें लोग जुटे, लेकिन पुलिस और ये प्रदर्शनकारी आमने सामने।
3: बितर करने की लगातार कोशिश चल रही है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल हालात बने हुए हैं। पानी का फव्वारा चलाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों पर और लगातार बहुत सारे मुद्दों पर, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, शिक्षा, रोजगार और किसानी के मुद्दे पर ये लोग तमाम लोग जो हैं उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन निकाला था। और अब देखिए वाटर कैनन चलाने के साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस ऐसा लगता है शायद बल प्रयोग करने की ही यहाँ पर कोशिश करेगी ताकि इनको हटाया जा सके, लेकिन फिलहाल आप देखिए लगातार यहाँ पर वाटर कैनन से ही जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है और प्रदर्शनकारी हैं जो हटने को तैयार नहीं है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं यहाँ पर, और सब ये जो है दरअसल लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शन जुड़े प्रदर्शनकारी और लेफ्ट संगठनों से जो जुड़े हुए प्रदर्शनकारी हैं वो लोग आगे जाना चाह रहे थे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का उनका जो है वो इरादा था, लेकिन डाक बंगला चौराहे के पास ही आप देखिए किस तरीके से पहले तो बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोक दिया गया। काफ़ी देर तक जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, पुलिस ने इनको रोक कर रखा, उसके बाद भी जब ये मानने को तैयार नहीं थे, हटने को तैयार नहीं, उसके बाद पुलिस को यहाँ पर देखिए वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को हटाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है। यहाँ अनियंत्रित है और पुलिस दोबारा से बैरिकेटिंग को जो है यहाँ पर जो नीचे गिरा दिया गया था उसको उठाकर दोबारा से यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। तो पटना में आज एक बार फिर से प्रदर्शन
0: रखिए, लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का उजला है, दिखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: यार लोन भूल गया मैरी।
7: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
8: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
8: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
9: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
10: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
11: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट।
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
15: मेरे पास एक आइडिया है।
14: क्या?
15: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
16: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
17: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
18: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: कौन सी बनानी है?

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी हंगामा। सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाल। पथराव, वांसू गैस, लाठी चार्ज, भारी फौज तैनात, पूरा इलाका सील। रात के अंधेरे में लवली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पंजाब पुलिस की लाठियां बरसने के बाद पहुंचे डीजीपी का अफवाहों पर ना दे ध्यान। रेप के आरोप के बाद उठे आक्रोश की लपटे, हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हुए छात्र। सीसी पर मचे सियासी घमासान के बाद जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। इंडिया गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। यूपी में तेज हुई दलित वोटों की जंग, पहली बार चंद्रशेखर आजाद पर बरसी मायावती, कहा उन्हें बीजेपी ने ही ईवीएम में धांधली कर जितवाया। लगातार बारिश के बाद प्रयाग से काशी तक गंगा में उफान, बिहार पर बन रहा है बाढ़ का खतरा। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक का खौफ देख एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर।

आपके साथ हूं मैं नेहा बाजम। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे मॉनसून के यू टर्न की। जी हां, नेपाल में एक बार फिर खतरे की घंटी बज चुकी है। त्रिशूली नारायण नदी उफान पर है और इसका असर भारत पर भी दिख रहा है। नेपाल का ये पानी यूपी और बिहार पहुंच रहा है और मुसीबतें बढ़ा रहा है। बिहार और यूपी में बाढ़ की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ ही नेपाल की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन एक महीने पहले की बात है जब त्रिशूली ने तबाही मचाई और अब एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई। इसके साथ ही नेपाल एक बार फिर से संकट में है। आधे से अधिक नेपाल हाई अलर्ट पर है क्योंकि पिछले कुछ दिन से नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से वहां नदियां एक बार फिर डरा रही हैं। चितवन हो, रसुआ हो, वहां पर हालात खराब हैं और इस तबाही में अब तक 21 की जान जा चुकी है।

0: 26 अगस्त की आपदा से नेपाल अभी उबर भी नहीं पाया था कि सितंबर सितम बरसाने लगा। नेपाल अभी अगस्त वाली तबाही के मलबे साफ कर रहा था कि सितंबर के सैलाब ने मुसीबतों की एक और खेप भेज दी। 26 सितंबर से नेपाल के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। 27 सितंबर आते आते बरसात ने रफ्तार पकड़ी और नेपाल फिर से त्राही त्राही करने लगा। ये वही त्रिशूली नदी है जिसने अगस्त में तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर से त्रिशूली नदी ने विकराल रूप लिया है। नेपाल के चितवन में नदी किनारे बने मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी बह रहा है। नदी के किनारे बनी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। त्रिशूली नदी ने तथागत प्रतिमा को अपनी आगोश में ले लिया है। घाटों पर बनी झुग्गी झोपड़ियां तो पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। नीचे त्रिशूली नदी की खौफनाक लहरें हैं और ऊपर बने झूला पुल से लोग नदी पार करते देखे गए। अब जरा रसुआ की तस्वीरें भी देखिए। अगस्त की आपदा में रसुआ भी तबाह हुआ था। बाजार बस्तियां सब मलबे में सिमट गए थे और अब सितंबर में एक बार फिर वैसा ही खौफनाक मंजर दिख रहा है। नेपाल के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद त्रिशूली नदी उफान पर है। नदी की लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। रसुआ में नदी के कटान में कई मकान बह गए तो वहीं कुछ जगहों पर पहाड़ दरकने की भी घटनाएं हुई। नेपाल में एक बार फिर से आसमान से आफत बरस रही है और नदियां डरा रही हैं। चितवन में कुछ जगहों से नदी का पानी तो कम हो गया है लेकिन लोगों के घरों में अभी भी मलबा भरा है। आंधी तूफान की वजह से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। आधे से अधिक नेपाल में बारिश बाढ़ का अलर्ट है। सितंबर की आफत में 21 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। नेपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। नेपाल में आसमान से बरस रही आफत नदियों के रास्ते यूपी और बिहार में भी दस्तक देगी। जब ये पानी यूपी और बिहार में पहुंचेगा तो वहां भी मुसीबत बढ़ाएगा। गणेश शंकर, चितवन, नेपाल, आज तक।
1: तो नेपाल में बाढ़ का मतलब यह है कि खतरा बिहार से बहुत दूर नहीं है क्योंकि नेपाल की नदियों का पानी बिहार की तरफ बहता है। वाल्मीकि बैराज से लाखों क्यूसेक पानी गंडक में छोड़ा जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि वाल्मीकि नगर समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं।

0: ये बिहार का वाल्मीकि नगर है। कैमरे की नजर जहां तक जा सकती है, दूर दूर तक सिर्फ पानी है और पानी में डूबे हुए आशियाने। नेपाल की बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे बिहार में प्रवेश करने लगा है। गंडक नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को डुबाते हुए गंडक का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है।
1: नेपाल के अंदर गंडक के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई लगातार बारिश ने एक बार फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। और इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दरअसल NH-727 है और बगहा से वाल्मीकि नगर को जोड़ने वाली इस सड़क पर जब आप आते हैं तो जगह जगह इसी तरह की स्थिति नजर आती है, जहां पूरा एनएच पानी में डूब चुका है। जो आवागमन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लोग इसी तरह की स्थितियों का सामना करके सफर करने को मजबूर हैं।
0: वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर ये हुआ कि गंडक नदी अब बिहार को डुबाने लगी है। लोगों के घरों में पानी भर गया। जान बचाने के लिए लोग स्टेट हाईवे की तरफ भागे, लेकिन स्टेट हाईवे भी पानी में डूब चुका है।
1: गंडक नदी में लगातार बढ़ रहे पानी के डिस्चार्ज की वजह से वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण में बाढ़ की स्थिति कैसे घंटे दर घंटे भयावह होती जा रही है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त वाल्मीकि नगर के भेड़ियारी इलाके में हैं और ये मुख्य सड़क है SH-64 जिस पर हम खड़े हैं। और देखिए यहाँ पे जो गंडक नदी का पानी है वो दूसरी तरफ निकलते हुए सीधे पूरे गांव में प्रवेश कर रहा है और लोगों का जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। घरों में पानी घुस चुका है और लोग सड़क पर ही आसियाना बनाने को मजबूर हैं। जो अपनी चारपाई है, अपना सामान है, उसको लेकर के लोग सड़क पे आ गए हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं उनके पास। कब से पानी बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पर? मतलब
2: 48 घंटा।
1: तो मतलब कभी ऐसा होता था कि इतना पानी?
2: कभी नहीं।
0: बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक का पानी डरा रहा है। खाने पीने की दिक्कत है। लोग अपने मवेशी और घर का सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जाएं तो कहां जाएं, हर जगह तो पानी है।
1: अरे हम देख रहे हैं यहाँ, मतलब चारपाई और पाई सब सड़क पे, आप तो घर में पानी घुस गया सब?
3: जी जी, देख नहीं रहे, पूरा घर पानी है।
1: आपके परिवार के लोग हैं? अच्छा, तो मतलब जरूरत का सामान, रसोई वसोई सब बंद हो गया आप लोगों का?
4: जी, कल के नहीं खींचा खोले, कल सुबेरे के खोले में रात भर दिन भर रह गए, में जब खोले नहीं खींचा तो क्या कर जाओ, यहाँ बानी जा घर घर तन जब जाल जाए सब जब पानी आ गए तो घर में जाए।
1: सामने वाला आपका घर है क्या? ये देखिए सामने इनका घर है और जैसा पानी अंदर गया है तो यहाँ अब सड़क पे ही मतलब रहना है, कोई उपाय नहीं।
4: हाँ तो उपाय कौन बा?
1: जब क्या बोल रही है, क्या बोल रही है?
5: हमने कहा कोनो उपाय हो नहीं, कहाँ जाए लाई, हमने कहा घर है। हाँ, कोनो व्यवस्था नहीं खनिया हो देनी, यान कोई किया हो देनी, लेके आ गया कहल बनी।
1: ये आम लोग हैं जो भेड़ियारी गांव है और तमाम गांव के घरों में पानी घुस चुका है और चारपाई देखिए सड़क पे है किस तरह से। ये आपदा की स्थिति है और जो लोग हैं वो परेशान हैं।
0: वाल्मीकि नगर के लोगों को इस समय आवश्यकता भोजन, पानी और जरूरी दवाओं की है, साथ ही मवेशियों के लिए चारा भी चाहिए। लोगों की सहायता के लिए NDRF, SDRF और सशस्त्र सीमा बल के जवान भी तैनात हैं।
1: NDRF और SDRF दोनों जो टीमें हैं वो यहां पे कैंप कर रही हैं और अब जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें जाने की तैयारी है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये NDRF 9 बटालियन के लोग हैं जो इस वक्त पहुंच चुके हैं और वाल्मीकि नगर इलाके में ये कैंप कर रहे हैं और यहां से अब इन लोगों का मूवमेंट होगा। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां जाएंगे, SDRF के भी लोग जाएंगे और कोशिश यही है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके।
0: नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार पर साफ दिख रहा है। जैसे जैसे ये पानी बिहार में प्रवेश करेगा मुसीबत और बढ़ाएगा। संकट की इस घड़ी में सतर्क रहने की जरूरत है। शशि भूषण सिंह, वाल्मीकि नगर, आज तक।
6: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाल्मीकि नगर से। वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे थे, तस्वीरों के जरिए हमने जाना और समझा, लेकिन इसके मद्देनजर क्या इंतजाम हैं, क्योंकि ये खतरा तो अब लगातार बढ़ ही रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने नेहा, खतरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जो पानी नेपाल से आ चुका है बिहार में वो वाल्मीकि नगर तो एक पहली तस्वीर है जहां इस वक्त हम खड़े हैं वाल्मीकि नगर बराज पे, लेकिन जब वो दूसरे जिलों की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में, तो वहां बहुत बड़ा संकट और बहुत बहुत बड़ी आपदा की तस्वीर वहां से निकल के आने वाली है अगले कुछ दिनों में, ये भी बात समझना होगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा मौसम खुला है इस वक्त वाल्मीकि नगर में, धूप अच्छी खासी निकली है, लेकिन जो नेपाल के अंदर है वहां बारिश अभी भी रुक रुक करके हो रही है। और सामने देखिए वो नेपाल है, जब हम गंडक नदी बराज पे खड़े होते हैं तो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वो त्रिवेणी का इलाका है, और नेपाल में कई हिस्सों में आज भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि आज सुबह जो 5.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का डिस्चार्ज रहा गंडक नदी बराज से वाल्मीकि नगर से, वो अभी घट के लगभग 4 लाख से थोड़ा ऊपर है, मतलब एक राहत की बात हम कह सकते हैं। लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि जो बराज के गेट हैं उनकी संख्या जो है यहाँ पे उसमें से किसी को बंद किया जाए, बराज के सभी फाटक खुले हुए हैं क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और जो पानी की धारा अपस्ट्रीम में इस वक्त हम खड़े हैं, जो नारायणी नदी है वो अब बिहार में यहां से जब प्रवेश करती है तो वो गंडक बनती है, और अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ बहुत तेज रफ्तार से पानी
6: ठीक अभी है, नजर बनाए रखिए। इस बीच नेपाल का पानी यूपी में भी मुसीबत बन गया है, गंडक नदी में अचानक उफान आने से यूपी का महाराजगंज बाढ़ की चपेट में है, गंडक किनारे बसे कई गांव पानी में डूब चुके हैं, वहीं यूपी के महोबा में भी बाढ़ की स्थिति है।
7: नेपाल और बिहार से सटे यूपी के महाराजगंज में भी बाढ़ का पानी लोगों को डरा रहा है। गंडक नदी में अचानक छोड़े गए पानी की वजह से महाराजगंज के निचले इलाके डूबने लगे हैं। नेपाल से आया पानी लोगों के घरों में घुस गया है। महाराजगंज जिले में 6 गांव गंडक की बाढ़ की चपेट में है।
8: नेपाल की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश से भारत नेपाल बॉर्डर के जो गाँव है वहाँ बाढ़ आ गया है। यहाँ जो है लोगों के घर डूबे हुए हैं, लोग अपने घरों से ऊंचे स्थानों की तरफ जा रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने घरों से ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, चूंकि ये जो जगह है यहाँ मगरमच्छ हैं और मगरमच्छ जो है पानी में घूम रहे हैं, जिससे लोगों के जान माल का खतरा भी बना हुआ है। इस वक्त हम महाराजगंज के गेढ़वा गाँव में मौजूद हैं और यहाँ तमाम घर जो है डूबे हुए हैं, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और नेपाल द्वारा 5 लाख के करीब क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद लगातार पानी बढ़ रहा है।
7: जिन गांवों में बाढ़ आई है उनमें सोहगी बरवा, शिकारपुर, भोथा, टेलफाल, गेढ़वा शामिल है। नेपाल ने नारायणी नदी में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ दिया है और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर 7 लाख क्यूसेक के करीब पहुंचेगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है।
9: 3 लाख के आसपास जब पानी आया था तो सोगी बरवा समेत हमारी जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, शिकारपुर, भुतहा और 8 हमारे राजस्व ग्राम हैं, वहाँ पे पानी लग गया है। और लगभग सोगी बरवा में लगभग 2000 और हम कहें शिकारपुर और भुतहा में लगभग 75-75 घर, तो लगभग 4.5 हजार के आसपास हमारी आबादी से प्रभावित है। उन सबको बाढ़ शरणालय में भेजा जा चुका है।
7: ये यूपी का जिला महोबा है जहां पिछले कुछ दिनों में इतनी बरसात हुई कि छोटे छोटे नाले भी उफान पर आ गए। कुलपहाड़ का बेला सागर तालाब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। महोबा में बहुत कम ऐसा होता है जब बेलासगर में उफान आए, लेकिन सितंबर की मूसलाधार बरसात ने महोबा को जलमग्न कर दिया। बेलासागर के तट पर बना मंदिर भी पानी में डूब गया। खौफनाक लहरें निचले इलाकों को डरा रही है, बावजूद इसके लोग बेलासागर के तट पर पहुंच रहे हैं, वहां से फूटे झरनों को निहार रहे। हालांकि पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। महोबा की दुनई नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दुनई नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है। महोबा के शहरी इलाके में भारी बारिश की वजह से कई सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। राजकीय स्कूल भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया।
10: कम से कम 20 मीटर अंदर तक पानी पहुंच गया है विद्यालय के मेन गेट से अंदर। बाउंड्री आपकी लगभग दो
11: तीन बाउंड्री तो हमारी लगभग कम से कम 3-3.5 फुट डूब गई है। बाउंड्री बीआरसी के बगल में तो पूरे ही जलमग्न हो गया है, पूरा भर गया है।
7: महोबा में दुनई नदी के आसपास के इलाकों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग डर के साय में हैं, क्योंकि दुनई नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। महोबा में भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई तो कई इलाकों में मकान भी ढह गए। अब जरा उन्नाव की तस्वीरें भी देखिए। 36,000 करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे की हालत ये है कि लोग वहाँ मछली पकड़ने पहुँच गए। उन्नाव के सोनिक व शीरतगंज एग्जिट पर जलभराव हो गया है, जिसके बाद आसपास के लोग वहाँ जाल डालकर वहाँ मछली पकड़ने पहुँच गए। एक्सप्रेसवे पर मछली पकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्नाव में पिछले कुछ दिनों में तेज बरसात हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे एग्जिट पर भी पानी भर गया। कार्यदायी संस्था के लोग पानी निकालने की कोशिश में हैं, कई पंप लगाए हैं, लेकिन बारिश कम नहीं हो रही, इसलिए स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब जरा यूपी की राजधानी लखनऊ की भी तस्वीर देखिए। इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास सड़क धस गई है।
12: सड़क धसी हुई है, ये मैं इलाका है इकाना स्टेडियम, जो लखनऊ की पहचान है। इकाना स्टेडियम के ये पीछे का ये कनेक्टिंग रोड है, और इस कनेक्टिंग रोड ये इकाना स्टेडियम के पीछे से प्लासिया मॉल और सुल्तान गोल्ड सिटी की तरफ ये कनेक्टिंग रोड बनाई जा रही थी, और ये सड़क धस गई है। आप देख सकते हैं ये विजुअल में कि ये पूरी सड़क धसी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 48 घंटे की बारिश में सड़क इतनी पूरी नीचे बैठ गई है। सड़क में दरारें आना अलग बात है, लेकिन पूरी सड़क ही बैठ जाना, यानी कि मिट्टी अंदर से सिर्फ डाली गई और उसके बाद सड़क बना दी गई, उसकी पटाई के जो व्यवस्थाएं होती है वो नहीं की गई।
7: ये सड़क लगभग 100 मीटर लंबी है, इकाना स्टेडियम के पीछे वाले हिस्से को जोड़ती है, लेकिन बारिश में पूरी रोड धंस गई। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
6: वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है। पहाड़ पर जब तेज बारिश होती है तो अक्सर चट्टानें दरकने लगती हैं। पौड़ी समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए। वहीं बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की रिखड़ी खाल जाते समय वो रास्ते में फंस गए। अधिकारियों ने बलूनी से कहा कि वापस लौट जाइए, रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन अनिल बलूनी को अमर बलिदानी जसवंत सिंह रावत के गांव जाना था, जहां लोग उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो जोखिम भरे रास्ते को पार करते हुए आगे बढ़ गए और तय समय पर कार्यक्रम में पहुंच भी गए। बलूनी ने यह वीडियो खुद सोशल मीडिया पर साझा किया और सेवा संकल्प को दोहराया। और अब बात बैंकॉक की, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है। बारिश के पानी में ये शहर डूबने लगा है, और बारिश के बाद कई प्रमुख इलाकों में भी पानी भर गया। सड़कों पर नाव चलने की नौबत आ गई है।

0: बैंकॉक की ये तस्वीरें शहर में बाढ़ की गंभीर स्थिति की गवाही दे रही हैं। सड़क पर पानी, पानी के बीच चलती बसें और आधे से ज्यादा डूबी गाड़ियां। करीब 48 घंटे की मूसलाधार बरसात ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को पानी पानी कर दिया है। स्थिति यह है कि बैंकॉक के कई वीवीआईपी इलाके बाजार जलमग्न हो गए। सड़कों पर लोग छोटी छोटी नाव लेकर निकल रहे हैं, कई फीट तक पानी भरा है। ऐसे में बस या कार से जाना है तब भी पानी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ ने सिर्फ आवाजाही नहीं रोकी, बैंकॉक में जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। जल भराव की वजह से कई इलाकों में बिजली कट गई है, दुकानों में पानी घुस गया है, खाने पीने की चीजें भी पानी में बह गई हैं। ये तस्वीरें 7-11 स्टोर की हैं, जहां कर्मचारी पानी के बीच काम करते नजर आए। बाहर सड़क पर भी पानी और अंदर भी बाढ़ का असर। यहां भी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। पानी में डूबने की वजह से कई जगह पर गाड़ियां बंद पड़ गईं। लोग अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी गई गाड़ियों को धक्का देकर निकालते हुए देखे गए। बारिश की वजह से बैंकॉक शहर में आई बाढ़ ने उन लोगों को ज्यादा प्रभावित किया है जो रोज कमाते खाते हैं। डिलीवरी राइडर का काम बंद पड़ा है। बैंकॉक के अलावा कंबोडिया की सीमा से लगे साकेओ प्रांत में भी हालात गंभीर हैं। कई सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हैं। लोगों को ट्रकों के जरिए निकाला जा रहा है। थाईलैंड सरकार ने राहत और बचाव के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। बैंकॉक प्रशासन ने 233 अस्थायी राहत केंद्र तैयार किए हैं और करीब 4200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फिलहाल कई इलाकों में बारिश रुक गई है, पानी भी कम होने लगा है, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। आज तक ब्यूरो।
1: लंच ब्रेक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: एयू सोच बदलो और बैंक भी।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो थमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाती, पर स्टेज नहीं हिलता
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
13: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
14: कौन भय में जी रहा है?
13: नागरिक जी रहे हैं।
14: हाँ, भारत में
13: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस के सामने आकर के स्थिति स्पष्ट की। SIR के बारे में पहले से ही इस बात के डायरेक्शन दिए गए कि छूटे हुए जो भी मतदाता हैं उनको फॉर्म भरने की पूरी छूट है। फॉर्म 6 को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को उचित ठहराया, लेकिन उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करके दुनिया के अंदर भारत की बदनामी कराना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने की कुत्सित चेष्टा करना, ये कांग्रेस का ये कृत्य अत्यंत हैरान करने वाला है।
3: आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग और मोदी जी की सरकार है, मोदी जी में कितना तारतम्य है, कितना गहरा संबंध है। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो पीसी नहीं करते हैं, और इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट देती है, वो पीसी नहीं करती है, अपनी बातों को रखती है। तो ये मैंने कहा कि दोनों का क्या प्रभाव ये सामने नजर आता है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, जब 10 महीने में 14 डिसेंट नोट दोनों हमारे जो सहयोगी उनके मुख्य चुनाव आयोग के उन्होंने लिखा था, तो वो सच बोल रहे थे या आज बोल रहे हैं? जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक सच एक झूठ को मतलब एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रवृत्ति में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और यही एक कारण है कि इस प्रकार के वो हथकंडे अपना रही है और इस प्रकार की चीजें वो कर रही है।
4: स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने विषयों को प्रस्तुत करने में एक परिपक्वता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर है और इमैच्योरिटी में ये सब कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करना है, उसके लिए किसी भी कद तक गिरना है, किसी भी लेवल तक गिरना है। मगर गिरने में भी जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रह रहा है वह अपरिपक्व है, एब्सोल्यूटली इमैच्योर है, क्योंकि इस प्रकार से देश के लोकतंत्र पर हमला नहीं होता है।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी बवाल। सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाल। पथराव, आंसू गैस और लाठी चार्ज, भारी फोर्स की तैनाती, पूरा इलाका सील। रात के अंधेरे में लवली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पंजाब पुलिस की लाठी बरसाने के बाद पहुंचे डीजीपी, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें। रेप के आरोपों के बाद उठी आक्रोश की लपटे, हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हुए छात्र। सीसी के खिलाफ पटना से पुणे तक सड़कों पर प्रदर्शन। जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। 30 तारीख को इंडिया गठबंधन तय करेगा रणनीति। उत्तर प्रदेश में तेज हुई दलित वोटों की जंग, पहली बार चंद्रशेखर आजाद पर बरसी मायावती, कहा उन्हें बीजेपी नहीं ईवीएम में धांधली कर जितवाया। नगीना सांसद के बहकावे में ना आए दलित वोटर। लगातार बारिश के बाद प्रयागराज से काशी तक गंगा उफान पर, बिहार पर भी फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी।

0: रूम लाइव में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले ज्यादा फोकस होगा उज्जैन से आ रही बड़ी खबरों को लेकर, जहां पर बुलडोजर एक्शन के बाद बवाल मच गया। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर बुलडोजर एक्शन के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं, और सुरक्षा को लेकर पुलिस की बुनियादी या फिर उनकी जो तैनाती है उसकी तस्वीरें, उसकी पूरी खबर भी हम आपको बताएंगे। हालांकि देखिए अभी समय वहां पे हालात कैसे हैं इसके बारे में अपने संवाददाता से भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी बीच कहा जा रहा है कि इसी बीच वहां पर एक बार फिर से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि एक बार फिर मस्जिद के आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा पथराव हुआ है। वहां पर मुस्लिम समुदाय के एक गुट ने वहां पर इकट्ठा हो गया, लगातार इस बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहा था, और उसी बीच वहां पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल ने हल्के लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। रविश, देखिए कल भी ये खबरें मिली थी, आज फिर से वो उसी तरीके की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, क्या पुलिस बल की तैनाती अब भी कम है या अभी वहां के ताजा हालात कैसे हैं?
1: बिल्कुल, हम आपको ग्राउंड जीरो से ताजा हालात दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस तो बड़ी संख्या में तैनात है, सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बवाल हुआ, पथराव हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में इन पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। 2000 से ज्यादा ऐसे पुलिस कर्मियों को इस इलाके में तैनात किया गया है। लेकिन सुमित, जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये कि कैसे आखिरकार बड़े बड़े पत्थर जो है वो इस सड़कों पे आए हैं। आप ये देखिए, आप इससे अंदाजा लगाइए, आकार देखिए, ये इस आकार के पत्थर हैं जो यहाँ पे पुलिस पे फेंके गए और लोगों पे फेंके गए। ना केवल ईंटें बल्कि ये जो सीमेंट के बड़े बड़े स्लैब है, क्योंकि यहाँ पे काफी तोड़फोड़ हुई है, इमारतों को तोड़ा गया है चौड़ीकरण के लिए, तो ये सब यहाँ पे आकर के गिरे हैं। और बिल्कुल सामने आप देखिए कितने हम इस वक्त पास में है उस जगह के जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ, वो शाही मस्जिद जिसे हटाने का काम शुरू किया गया था सुबह शहर काजी की सहमति के बाद, लेकिन अचानक से उपद्रव शुरू होता है, पथराव शुरू होता है और पुलिस को फिर बल प्रयोग करना पड़ता है। हालात कैसे थे इसका अंदाजा आप इन बिखरे जूते चप्पलों को देख के लगा सकते हैं सुमित। जब यहां पे भीड़ इकट्ठा थी, हजारों लोगों की भीड़ थी, हाथों में पत्थर थे उनके, पथराव हो रहा था, ना केवल पुलिसकर्मी और प्रशासन उन्हें, बल्कि अगर देखें आप सामने तो ये आप देखिए, ये कांच के टुकड़े, ये गाड़ियां जब यहां से गुजर रही थी इन पे पथराव किया गया है, और ये आप देख सकते हैं कि क्या हालात थे यहां पे उस वक्त। बचाऊंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि उन कांच के टुकड़ों को भी दिखाए जो इस वक्त नीचे यहां पे, जो गाड़ी उस वक्त चला रहा था, पता नहीं उसे चोट लगी है या फिर उसे यहां से सुरक्षित निकाला गया है। ऐसी यहां जितनी गाड़ियां खड़ी हैं इन सब के कांच टूटे हुए हैं, और ये हालात है उस जगह के जहां पे रोड चौड़ीकरण के लिए इमारतों को तोड़ा गया है, दुकानों को तोड़ा गया। आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं ना सारा ये हिस्सा, ये सब टूटा हुआ है। ये टूटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है, ये पूरी रोड जो है।
0: रविश, मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं, आप एक बार जरा उस इलाके को समझाइए कि आखिरकार कहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, कहाँ पर बवाल हुआ, और अभी पुलिस बल की तैनाती कैसी है, क्योंकि कल भी कहा जा रहा था इसी तरीके की खबरें मिल रही थी और आज फिर से उसी तरीके का माहौल हम वहां पर देख रहे हैं। ये तमाम चीजें अगर आप दिखा सके और बता सके हमें तो।
1: बिल्कुल सुमित, देखिए आज तक क्योंकि ग्राउंड जीरो पे है, और मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है जहां पे साल 2028 में सिंहस्थ होना, और ये जो रोड है जिस सड़क पे इस वक्त आज तक मौजूद है, यहां से सीधी ये सड़क जाती है शिप्रा नदी की ओर। ये जो आप सामने सड़क देख रहे हैं, ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, ये चौड़ा किया गया है सड़क को, और इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके के हालात प्रयागराज कुंभ में बने थे, प्रशासन को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले 2 साल बाद करोड़ों लोग जब उज्जैन पहुंचेंगे तो वो इसी सड़क का इस्तेमाल करेंगे नदी की ओर जाने के लिए, क्योंकि जो प्रमुख पर्व पे जितने स्नान होते हैं, जो अखाड़े होते हैं, जो पेशवाइयां होती है, वो इसी सड़क से गुजरती है। तो जाहिर सी बात है सड़क पे चौड़ीकरण होना था, और सड़क को चौड़ी करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जो दुकानें हैं, इमारतें हैं, उन्हें तोड़ा गया यहां पे। कई धार्मिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों को भी यहाँ हटाया गया है, उन्हें विस्थापित किया गया है दूसरी जगह। सिर्फ यही नहीं, जिस खड़े हनुमान मंदिर को लेकर कितना विवाद चल रहा था, उस खड़े हनुमान मंदिर को भी हटा करके कहाँ शिफ्ट करना है, वो तस्वीर भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। वो आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर सीमेंट का बना हुआ, वहां पे खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा आनी है,

0: वहां से हटानी है उस सड़क को चौड़ीकरण के नाम पे, उसको भी हटा के यहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो आप इलाका इतना खुला खुला देख रहे हैं ये बिल्कुल कंजेस्टेड था, यानी यहाँ से करोड़ों लोगों की भीड़ नहीं गुजर सकती थी, हालात भयावह हो सकते थे, इसलिए चौड़ीकरण जरूरी था। लेकिन चौड़ीकरण के नाम पे जब धार्मिक स्ट्रक्चर हटाने की बारी आई तो विवाद शुरू हुआ। हालांकि सर्वसम्मति कल रात को बन गई थी, शहरकाजी ने सहमति दे दी थी, समाज के ही लोग खुद अपने हाथों से मस्जिद को हटाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन का बुलडोजर नहीं चला है, प्रशासन की टीम अभी नहीं पहुंची है वहां पे, क्योंकि सहमति बन जाने के बाद समाज लोगों ने कहा था कि वो खुद अपने हाथों से।
1: बिल्कुल, और रवीश देखिए सबसे बड़ी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सामान्य तरीके से ये कार्रवाई की जा रही थी, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद का एक हिस्सा और तमाम इमारतों को नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की जा रही थी। और खुद कल ही जो मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद अपने जो पैतृक घर था उसके ऊपर भी हथौड़ा चलाकर वहां पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तब भी इस तरीके का बवाल रहा है, वो भी आपको दिखाते अपने दर्शकों को। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम खुद मोहन यादव वहां पर अपने पैतृक घर पर खुद पहुंचे, हथौड़ा चलाया और वहां पर कार्रवाई का शुभारंभ या फिर आप उसको आगे बढ़ाया। और देखिए पूरे उज्जैन के अंदर इस तरीके की कार्रवाई चल रही, जैसे हमारे सहयोगी भी रवीश पाल सिंह हमें बता रहे थे कि देखिए सभी इमारतों, चाहे वो मंदिर हो चाहे वहां पर मस्जिद हो, इन तमाम जो जो सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रहा था उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। और पहले से इन तमाम इमारत धारकों को या फिर इमारत वालों को बता दिया गया था, इन लोगों को बता दिया गया था, लेकिन फिर भी इस तरीके का बवाल हुआ। कल भी ये बवाल हुआ और आज फिर से हमने इसी तरीके का बवाल वहां पर देखा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और वहां पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। और देखिए तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वहां के डीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
2: हमारे साथ उज्जैन कलेक्टर मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं अभी क्या स्थिति है।
3: जी बिल्कुल, जैसा आपको विदित है सिंहस्थ 2028 में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब आएंगे यहाँ पे तो उनकी व्यवस्थाओं को करना बहुत आवश्यक है। इसी के क्रम में अनेक विकास कार्य चल रहे हैं, जो सबसे अच्छी चीज जो देखने में आई है यहाँ के लोग स्वयं अपने हाथों से विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो या धर्म हो या समुदाय के लोग हों, समाजजन हो, सभी लोग अपने हाथों से चौड़ीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इसमें कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए, आज इसी क्रम में यह जो है विषय है छतरी चौक पर जो धर्मस्थल है उसको भी मास्टर प्लानिंग के हिसाब से जो चौड़ीकरण करने का जो कार्य है ये समाजजनों के द्वारा, धर्मजनों के द्वारा, उनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा स्वतः इस चीज को किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगा किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें, क्योंकि यह कार्य इनके धर्मजनों के द्वारा स्वयं किया जा रहा है।
1: रवीश आप खुद बता रहे थे कि देखिए वहां पर एक समन्वय बन गया था, लगातार वहां से ये कहा गया था कि मस्जिद कमेटी या मस्जिद के लोगों ने कहा जाता था कि ठीक है कार्रवाई को किया जाए, लेकिन फिर आखिरकार वहां पर भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई जब पुलिस बल की तैनाती कल से ही वहां पर की गई हुई है।
0: बिल्कुल सुमित, देखिए पुलिस बल तैनात था, सहमति बन चुकी थी, मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का काम भी समाज के लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस ने 10 ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया, जिस अफवाह को देख करके सोशल मीडिया पे लोग यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए। ये आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं यहीं पे ये तमाम लोग मौजूद थे और यहाँ पे इस वक्त जो भीड़ थी उसे भले हटा दिया गया हो लेकिन कुल जो 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनमें से 5 ऐसे हैं जो उज्जैन शहर के नहीं है, वो उज्जैन के बाहर के हैं लेकिन उज्जैन शहर में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उनसे पूछ रही है कि मंसूबा क्या था, फिलहाल आप उज्जैन क्या करने आए थे, और उनमें से कुछ लोग राजनीतिक भी हो सकते हैं ये भी पुलिस को शक है। 5 ऐसे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे वो, और पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया और उनसे ये पूछने की कोशिश हो रही है, तफ्तीश की जा रही है कि जब शहर काजी ने सहमति दे दी थी, समाज के लोग खुद ही मस्जिद को हटा रहे थे उस प्रभावित हिस्से को, तो फिर आपने अफवाह फैलाने का काम क्यों किया। तो पुलिस ने तय कर दिया कि एक्शन तो होगा लेकिन इन सबके बीच में इस सड़क पे जो कि विकास के लिए फिलहाल चौड़ी की जा रही है, करोड़ों लोगों की भीड़ की सहूलियत के लिए जिस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है उस पे आज की तारीख में जो पत्थर हैं भगदड़ के बाद जो जूते चप्पल बच गए थे वो निशान साफ तौर पर बता रहे हैं कि कुछ उपद्रवी थे जिन्हें शायद शहर की शांति रास नहीं आ रही थी और इसीलिए उन्होंने इस दिन को चुना और शहर काजी की सहमति के बावजूद जो है वो लोग इकट्ठा हुए और पुलिस पे उन्होंने पथराव किया जिसके बाद पुलिस ने भी बल का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ा है।
1: बिल्कुल, और देखिए रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार हम तक वो तस्वीरें वो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, खबरों में किस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको लेकर जो प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं। इसी बीच कुछ प्रदर्शन अब दिल्ली में भी हुए हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, इसको लेकर लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार पोस्टर बैनर लिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के यूथ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है। दरअसल जो कांग्रेस की युवा इकाई है यूथ कांग्रेस, उसकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और दिल्ली में भी इस तरीके की तस्वीरें हम आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस की तरफ से जो सीईसी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ उनके इस्तीफे को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन किया गया। और देखिए सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां लगातार सीईसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें पटना से भी आई हैं। पटना में भी जो वामपंथी दल है उन्होंने भी सीईसी को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर प्रदर्शन किया है। और ये प्रदर्शन जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान के पास रोकने की कोशिश की तब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद वहां पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, इन्हें खदेड़ना पड़ा और वहां पर इनको रोकने के लिए आप देख सकते हैं पुलिस बल की तैनाती पहले से की गई थी, लेकिन जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तब पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें पटना की है।
4: राजधानी पटना में आज वामपंथी दलों और संगठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना के साथ साथ दरअसल ये विरोध प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए सैकड़ों की संख्या में थोड़ी देर पहले डाक बंगला चौराहे पर जो लेफ्ट के कार्यकर्ता है और साथ ही साथ जो संगठन है वो लोग यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेकर, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, शिक्षा, किसान के मुद्दे पर, विश्वविद्यालय में जो है उसको लेकर और बहुत सारे मुद्दे को, रोजगार को लेकर इन लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन निकाला है। और अभी फिलहाल आप देखिए डाक बंगला चौराहे पर जब ये लोग पहुँचे हुए हैं तो ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ना चाह रहे थे और इसी दौरान पुलिस जो है इनको रोक कर रखी हुई थी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है।
1: और दिल्ली और पटना की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे सीईसी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश भर में कई जगहों पर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर या फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में इस तरीके के प्रदर्शन कर रही हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पटना, दिल्ली और तमाम कई ऐसी जगहों पर, कई ऐसे शहरों पर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और देखिए रांची में भी इसी तरीके का एक प्रदर्शन हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और रांची में भी किस तरीके का प्रदर्शन किया गया है इसको लेकर हमारे सहयोगी सत्यजीत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: झारखंड कांग्रेस निर्वाचन आयोग के विरोध में सड़कों पे है और यहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है। हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं और नारे लिखे तख्तियां जो है उनके हाथों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के नेताओं का पुतला भी दहन किया गया है। यहाँ पे जमकर नारेबाजी की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआईआर के प्रक्रिया के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस सड़कों पे है। निर्वाचन आयोग पे कई तरह के सवाल और प्रश्न चिन्ह जो है वो उठाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा और विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जमकर नारेबाजी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हाथों में झंडे हैं, तख्तियां हैं और कई सवाल जो है निर्वाचन आयोग की भूमिका और कार्य प्रणाली पे उठाया जा रहा है।
1: और देखिए हमारे सहयोगी सत्यजीत की रिपोर्ट हमने आपको रांची से दिखाई। अब आपको एक बार फिर से दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी अनमोल बाली हमारे साथ मौजूद है। अनमोल, वहां पे इस समय किस तरीके से यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या तस्वीरें अगर आप दिखा सके और बता सके तो।
6: हिमांशु, अभी कुछ देर पहले देखा गया कि इंडियन यूथ कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था यहाँ पर चल रहा था, उन्होंने बड़ा एक घेराव का मार्च का कॉल दिया था। यहाँ से वो कोशिश कर रहे थे कि वो इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय तक जाएं, पर उनको वहां से रोक दिया जाता है। देखा जाता है कि भारी पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो कर दी जाती है, पर जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुख्यालय के बाहर, और वो फिर कोशिश करेंगे कि वो यहां से जो है आगे बैरिकेड तक पहुंच सके, जो इनके मुख्यालय के बाहर पूरा बैरिकेड कर दिया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस मुख्यालय है, जहां आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं यहां पर, और यहां से वो कोशिश करेंगे कि वो बाहर की तरफ जाएं, अपने मुख्यालय की बाहर की तरफ जाएं और कोशिश करें कि जो है उनका इलेक्शन कमीशन की तरफ जो मार्च है वो अपना चालू कर सके। पर वही तस्वीरें मैं आपको हिमांशु बाहर की मुख्यालय की भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो दिखाना चाहूंगा जो आईवाईसी के कार्यकर्ता है यहां पर फिर इकट्ठा होना शुरू कर चुके हैं, और फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बाहर है बैरिकेटिंग है बढ़ानी दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरू कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इनका जो मेन ऑफिस है इसका गेट जो था पूरा बैरिकेड कर दिया गया था, अभी थोड़ी देर के लिए खोल रखा है, पर वहीं आईवाईसी के जो कार्यकर्ता फिर यहां पर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे भारी संख्या में अभी भी दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है यहां पर की गई है, दोनों तरफ से यहां पर की गई है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ, रायसीना रोड है, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो अभी भी रोड है उस तरफ से बैरिकेड कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो हल्ला बोल प्रदर्शन है पूरे देश में जारी है, उसी भी तस्वीरें हिमांशु आपने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की देखी, जहां आईवाईसी का विरोध प्रदर्शन जो है वो
1: हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम जयपुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि पटना, रांची, दिल्ली, यहां तक कि श्रीनगर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस समय जयपुर की क्या तस्वीरें, वहां पर प्रदर्शन कैसा है, ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी शरद की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, और आपको बताएंगे कि इस समय जयपुर में भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगातार उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
7: चुनाव आयोग के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन चल रहा है, देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहां पर रैली निकाली है, और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और यहां पर पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच धक्का मुक्की हो रही है, जहां पर लगातार पुलिस उन्हें पीछे धकेल रही है और ये आगे आ रहे हैं। कहां जाना चाह रहे हैं?
8: हम आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। जिस तरीके से इन्होंने वोटों का दुरुपयोग किया, जिस तरह से चुनाव आयोग ने हेराफेरी की, वोट चोरी की, आज पूरी कांग्रेस के नेतृत्व में हम आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम विधानसभा का घेराव करेंगे।
7: देख रहे हैं दौसा के विधायक थे, इस तरह से यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से बैरिकेडिंग की तरफ जाने की कोशिश, और बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं बहुत सारे कार्यकर्ता, जहां पर आप इस तरह से माहौल बना हुआ है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और पानी के बौछारों के बीच यहां स्थिति है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर डटे हुए हैं, और ये स्थिति है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें हो रही है। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए वोट चोरी की है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: देखिए हमारे सहयोगी शरद की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जयपुर में जहां पर सीईसी के खिलाफ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि श्रीनगर में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, यहां तक कि पुणे में क्या प्रदर्शन हुआ, क्योंकि तमाम देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो श्रीनगर की है, नागपुर की है और पुणे की, ये तीनों तस्वीरें आप देखिए कि कैसे कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से अलग अलग राज्यों में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि कैसे, ये पुणे की तस्वीर है जहां पर पुणे, नागपुर और श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि जो हाथों में भ्रष्टाचार और खासतौर पे जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन देश भर में आज किए गए। हैदराबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके पुतला भी फूंका गया, और लगातार ये मांग की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को का इस्तीफा लिया जाए, उन्हें तुरंत उनके पद से हटाया जाए। और देखिए विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे के ऊपर आक्रामक होता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने भी सामने आए, उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार इस मामले पर खून पकड़ रहा है और लगातार इस मामले को बड़ा बना रहा है।
9: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई है।
1: चलिए न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कि आखिरकार पंजाब की जो लवली यूनिवर्सिटी है उसमें बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
9: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
8: स्मॉल बैंक?
9: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, RDF, there's nothing small about them.
8: Okay.
9: Ujjivan, nothing small about us.
10: Shaadi ka kitchen mehke jahan, Goldie kitchen king masale ho wahan.
11: Goldie laaye hai fresh lock technology, jo rakhe masalon ko har samay fresh.
12: Mera rutba hai mera signature, mera jazba hai mera signature, bebaak hai mera signature. Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
13: Oof! ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
15: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
16: मेरे पास एक आइडिया।
15: क्या?
16: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
17: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
18: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
19: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
17: कौन सी बनानी है?

0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है, या इससे बहुत ज्यादा होता है?
6: कौन भय में जी रहा है?
5: नागरिक जी रहे हैं।
6: हाँ, भारत में
5: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।
7: चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे MLA का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, चुनाव के दिन तक वोट बढ़ाए जाते हैं और घटाए जाते हैं। ये जिम्मेदारी चुनाव लड़ने वालों की भी होती है कि हमारा वोट न कटे और दूसरे का फर्जी वोट न बढ़े। तो इस पर आप आरोप न लगा सकें, इतना दिमाग न लगा सके, भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक SIR का बहाना था, उसके मूल में था विपक्ष के वोटों को कम करना।
8: ACI में कहीं कोई दुविधा नहीं है, केवल विपक्ष पवंडर मचा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ECI में कोई मतभेद है, कोई दुविधा है। सब लोग मिलकर विचार विमर्श करके ही निर्णय करते हैं। निर्णय करने से पहले अनेक प्रकार के मत हो सकते हैं, तीन लोग हैं तो तीनों के अलग मत हो सकते हैं, पर निर्णय की प्रक्रिया में पहुंचते तक सर्वसम्मति से निर्णय होता है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं एक बड़ी खबर, क्योंकि अब एलपीयू को लेकर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर केजरीवाल के इशारों पर लाठीचार्ज की गई, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं।
2: उसके जेन्युइन इश्यूज को रिजोल्व करने के बजाय विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वहां पे ये आगजनी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट प्रोटेस्ट के अंदर करते हैं और युवा के मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। चौथा, इससे देश के युवा को समझना चाहिए कि जहां विपक्ष की सरकार है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार है, वहां पे युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, वहां युवाओं को लाठी मिल रही है। पांचवा, हर मुद्दे पे ट्वीट करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जो हर 2 सेकंड में एक वीडियो बनाने के हैबिट हो गई है, आज उनने पंजाब और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब की सरकार को अगर कोई चला रहा है वो अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। पांचवा और सबसे अहम मुद्दा, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये एक लार्जर टूल किट का हिस्सा है, जिस टूल किट के तहत देश भर में देश के युवा के कंधे पे ये अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये षड्यंत्र के बहाने या तो सत्ता में देश में आ जाएं, या जहां इनकी सरकार है या लेजिटिमेट इशू है वहां अपने गुंडों को भेजकर युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि विपक्ष के कण कण में इस देश के युवा के प्रति नफरत है, विपक्ष के कण कण में देश जब या युवा जब आवाज उठाता है, भले वो पंजाब हो, भले वो कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, उसको सिर्फ और सिर्फ लाठी मिलती है। और आखिरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भगवंत मान की है। द लॉ एंड ऑर्डर इज द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भगवंत मान। सो वी आस्क मिस्टर भगवंत मान एंड मिस्टर अरविंद केजरीवाल दैट व्हेन विल यू कम आउट ऑफ योर डीप स्लीप। जब यहां पूरी की पूरी ब्रूटैलिटी हम देख रहे हैं, तो क्या आपने जो लाठी चार्ज यहां पे किया है, क्या इससे पंजाब के होम मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के सुपर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जो शांत है, क्या ये सब की डायरेक्ट कल्पेबिलिटी और क्रिमिनलिटी से नहीं बनती? देश का युवा देख रहा है, जब उसने पंजाब के अंदर आवाज उठाई उसको लाठी मिली, जब उसने पंजाब के अंदर आवाज उठाई उसको षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के गुंडों द्वारा आगजनी मिली, जब उसने पंजाब के अंदर आवाज उठाई तो उसको सिर्फ और सिर्फ पंजाब की पुलिस द्वारा फीमेल छात्राओं द्वारा कॉलर पकड़ा गया। इन सब से यही स्पष्ट है कि देश का विपक्ष इस देश के लोकतंत्र को स्ट्रीट से चलाने का प्रयास कर रहा है और स्ट्रीट में आगजनी करने का प्रयास कर रहा है, और इस देश का युवा इस षड्यंत्र से अच्छी तरीके से वाकिफ है। उसने झूठ की गूंज को भी हराया है और अब वो पंजाब में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा अपने गुंडों को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर भेजकर आगजनी करना, पंजाब के युवा को लाठी चार्ज करना, इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि पूरे देश भर में अगर कोई सबसे बड़ा युवा विरोधी चेहरा है वो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान है। और जहां जहां युवा ने आवाज पंजाब हो या हिमाचल उठाई है, उसको विपक्ष शासित राज्य में सिर्फ लाठी मिली है। What has happened in LPU is has not happened by mere coincidence. It's a design. It's a conspiracy. And the buck stops with the Chief Minister Bhagwant Mann, the Super Chief Minister Arvind Kejriwal, under whom the law and order of Punjab direct accountability and responsibility is. At the same time, criminality of Rahul Gandhi because he is silent and he is not questioned Arvind Kejriwal till now. Desh ka yuva dekh le, kis tarike se, jab wo vipaksh shasit rajya ke andar awaz uthata hai, mahilaen, yuva chhatra, jab awaz uthati hai, unko laathi, dande aur aagjani milti hai. Bahut bahut dhanyawad.
1: बीजेपी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल को लेकर आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान सरकार को, अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की गई। प्रदीप भंडारी लगातार जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे कि ये सारी चीजें पंजाब के अंदर लाठी चार्ज जो किए गए हैं वो आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान सरकार के इशारे पे किए गए हैं। तो आपने ये बीजेपी की तरफ से आरोप सुने, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया। आखिरकार पिछले दो दिनों से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में हुए इस बवाल के बाद क्या कुछ चिंताएं हैं, किस तरीके का माहौल है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: एक ओर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ है और दूसरी ओर पुलिस वाले। छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस लाठी डंडों से उन्हें पीछे धकेलना शुरू करती है। सामने काफी संख्या में छात्राएं भी हैं जो पुलिस के इस रवैये से काफी डरी सहमी हैं। चीख पुकार कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले रुकते नहीं और कुछ ही देर में लाठियां बरसनी शुरू हो जाती है। न छात्रों को बख्शा जाता है न ही छात्राओं को, यहाँ तक कि पुरुष पुलिसकर्मी भी छात्राओं को पीछे धकेलते दिखते हैं। पुलिस प्रशासन भले ही अब जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हालात काबू में होने का दावा कर रही है,
1: कुछ एलिमेंट्स जिहड़े जिन्हां ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, सो पुलिस की गड्डियां ते पथराव होया, जिहड़े उस नूं अगेन यूजिंग अ लॉट ऑफ रेस्ट्रेंट, ते पुलिस की हमेशा तो कोशिश रही है कि जिहड़े स्टूडेंट्स दे आर लाइक आर चिल्ड्रन, बच्चे हैगे, तो इन्हां दी जिहड़े ग्रीवियंसिस हैगे उन्हां नूं सॉल्व किया जाए, मोस्टली जे दे रिलेट टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस दे नाल इन्हां दी मीटिंग्स कराई गई हैं। तो दूजा मैं यह भी मैसेज देना चाहवागा कि कोई भी एलीमेंट्स जिन्हां ने भनतोड़ की सी, असी उहदा साइंटिफिकली टैक्निकली एनालाइज कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, जिहड़ा भी लॉ नूं अपने हाथ में लौगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए।
0: लेकिन बीते दो दिनों में यहाँ जो कुछ हुआ उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब एक दिन पहले ही छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी बवाल किया, छात्रा से रेप के आरोप पर भारी हंगामा हुआ, तो पुलिस ने एहतियाती तैयारी क्यों नहीं की? कैसे पूरी रात एलपीयू विरोध प्रदर्शन के बीच धधकती रही? स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और इस हंगामे ने अब पंजाब की सियासत को गर्मा दिया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल के बीच पंजाब की सियासत भड़क गई है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, तीनों ही विपक्षी पार्टियां भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस और अकाली दल ने छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे आप नेता गायत्री बिश्नोई को लेकर उठे विवाद को दबाने की साजिश बता दी।
2: पंजाब की जनता के लिए काम कर रही हूं, तेरे को शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में बकवास कर रहा है?
0: छात्रा से रेप के आरोप पर मचे बवाल और फिर छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर मान सरकार घिरी हुई है, विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और विवाद बढ़ता जा रहा है। कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और हमारे साथ हमारी सहयोगी कमलजीत संधु भी हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, देखिए ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है, ना तो पुलिस इसको कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आखिरकार जब वो आत्महत्या की गई उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किस तरीके की प्रक्रिया उसमें फॉलो की जा रही है।
4: देखिए राजनीतिक तूल जरूर पकड़ता जा रहा है ये मामला, लेकिन आपको बता दें पिछले कुछ समय पहले एलपीयू ने यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ क्लासेस कर दिया था, यानी जो छात्र हैं अब घरों की तरफ चल चुके हैं और उससे बवाल थमता हुआ नजर आ रहा है और उसके बीच में बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन की। एक जहां पे आरोप छात्र लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बलात्कार हुआ और उसके बाद उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहीं एलपीयू और पुलिस एक साथ बोल रही है कि अफवाह है, ऐसा कोई घटना घटी नहीं है और इनको उकसाया जा रहा है और इसमें भारी छात्र है उनका हिस्सा है और इसी वजह से पूरा मामला भड़का। पर जो एक रिएक्शन था कि पुलिस का कहना था कि उन्होंने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया और हल्का ही लाठी चार्ज किया, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने पुलिस को भगाया और उसके बाद आगजनी हुई और कई इसमें जो पुलिस वालों की कार है उनको टारगेट किया गया, उनकी शीशे तोड़े गए, आगजनी हुई। तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल्प्रिट्स हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, लेकिन जब छात्रों को घर भेज दिया जाता है तो एक तरह से मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहां पे विरोधी पार्टीज हैं, वो लगातार निशाना बना रही है आम आदमी पार्टी को, कह रहे हैं कि फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे दो पहलू है। एक पहलू है कि किस तरह छात्र बैठे थे और वो जो मांग कर रहे थे उस पर एसआईटी होना, एफआईआर होना, लेकिन उनका उग्र होना और उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई होना, तो यहाँ पे कई चीजें गलत जरूर हुई है, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई पंजाब पुलिस ने की है उनका कहना है कि उन्होंने पहले से ही काफी रिस्ट्रेंट दिखाया था और उसके बाद जो उग्र हुए हैं तो उनपे कार्रवाई तो बनती ही है।
3: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाए हैं, किस तरीके से हमला किया, आइए आपको दिखाते हैं।
5: दुनिया भर को राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो लेक्चर देते हैं, आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। हमने इसके पूर्व में देखा कि कैसे जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना के अंदर थी, वहां भी युवाओं पे कांग्रेस पार्टी ने लाठी चार्ज किया। कर्नाटका के अंदर भी हमने देखा जो न्याय मांग रहे थे उस पर लाठी चार्ज किया। तो आज जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ है, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इसके पीछे अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की साजिश है और उनने इंस्पिरेशन राहुल गांधी से ली है। हमारे कुछ सवाल हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से। पहला कि वहां पे स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने के बजाय लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली भगवंत मान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भगवंत मान एंड अरविंद केजरीवाल जो सुपर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। पहला, क्या स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एक युवाओं के प्रति नफरत नहीं दिखाता है? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब बाहर से आम आदमी पार्टी के गुंडों को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भेजा गया, क्या ये एक लार्जर षड्यंत्र का पार्ट नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अपने गुंडों को भेजकर एक युवाओं के अंदर रोष पैदा करना चाह रही थी? जहां उसकी अकाउंटेबिलिटी थी माहौल को शांत करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी थी विक्टिम्स के साथ खड़े होना, वो अपने गुंडों को भेजकर आगजनी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पंजाब पुलिस का ये ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं, पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखिए।
3: और देखिए, हमने आपको दिखाया कि कैसे लगातार बीजेपी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मान सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन हरसिमरत बादल ने भी लगातार आम आदमी पार्टी को, आम आदमी सरकार को कैसे घेरा है, आइए आपको सुनाते हैं। और हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख भी करते हैं। मैम देखिए, ये जिस तरीके से पूरी चीजें घट रही हैं, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई हुई है, इसको लेकर बहुत ज्यादा छात्रों में आक्रोश है। और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये भी नहीं पता लग पाया कि आखिरकार वो अफवाह फैलाने वाले कौन थे, किस तरीके से आत्महत्या की गई, इन तमाम चीजों के सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप ही से पूछा मैम।
6: तो आप देखिए कि इस घटना को घटे एक दिन पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, कौन जिम्मेवार था, किसके ऊपर पर्चा हुआ है, कोई उससे क्लैरिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जबान बंद करके क्यों बैठा है, इनके बीजेपी डिटेल्स क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हैं? जो चीज पता लग रही है, कल रात तक धरना, स्टूडेंट्स को सड़क पे बैठना, हाईवे जैम करना पड़ा, और उसके बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में घुस गए, जिनको स्टूडेंट्स ने पकड़ा, जिनके पास तेज हथियार थे, उनके पास पेट्रोल के बॉम्ब थे। ये सब क्या हो क्या रहा है पंजाब में? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई, इंडस्ट्री हमारी बाहर भाग रही है, घर घर पे होम डिलीवरी नशों का हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स से सरकारी आधारों पे अटैक किए जा रहे हैं, रोज पुलिस स्टेशन पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पताल में ग्रेनेड अटैक के धमकियां दी जा रही है। AK-47 तो आम ही हर एक के हाथ में आ गए। ये मिलिट्री के पास वेपन होते हैं, ये आम लोगों के हाथों में आ कैसे गए?
3: बिल्कुल,
6: ये आम आदमी और भगवंत मान के अंडर जो होम मिनिस्टर है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। ये तो एक परमानेंट डीजीपी भी नहीं लगा सके, टेम्पररी डीजीपी लगा हुआ है पंजाब में, तो पुलिस को पूछने वाला कौन है? एज होम मिनिस्टर इसने पिछली मीटिंग कब करी थी SSP की? 5 सालों में कितनी बारी करी है? प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली पंजाब में एक शराबी मुख्यमंत्री बन गया है, जो सुबह 8 बजे शराब पीना शुरू कर देता है। और उसके बाद उसको पता ही नहीं पंजाब में क्या हो रहा है। जो दिल्ली के लुटेरों दिल्ली ने दिल्ली से भगाया था वो लुटेरों पंजाब में आके कब्जा किए हुए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, कोई भी हमारा महकमा हो, हमारे सरकारी घर हो, मंत्रियों के घर हो, सारी चीजों में ये दिल्ली वाले शामदान धनबेड़ वाला मनुष्य को दिया। सतेंद्र जैन, केजरीवाल, पंजाब की पुलिस भी उनको देख रही है और पंजाब के खजाना भी उनके हाथ में है और पंजाब का मुख्यमंत्री भी उनके हाथ में, तो लोग कहाँ जाए।
3: बिल्कुल,
6: यही हाल पंजाब में हो रहा है। और आप देखिए किस ब्रुटैलिटी के साथ जो पुलिस ने स्टूडेंट को वहां पे मारा, नहीं कोई मतलब है कि कोई मेल पुलिसमैन कोई हाथ उठाए फीमेल स्टूडेंट के ऊपर?
3: बिल्कुल मैम, लेकिन
6: दुनिया भर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या इमेज जा रही है पंजाब की?
3: बिल्कुल इमेज क्या जा रही है। लेकिन एक और भी बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था, आप भी उसका जिक्र कर रही थी कि आखिरकार जब क्योंकि डीजीपी की तरफ से रूमर्स की बात की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि रूमर्स पे को मत फॉलो कीजिए, लगा मत सुनिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस प्रशासन पिछले 48 घंटे से इन रूमर्स को रोकने के लिए लगातार वहां पर छात्रों पर इस तरीके के उग्र ना हो, इसको लेकर क्या प्रयास कर रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही?
6: कुछ भी नहीं, प्रशासन के मुंह में तो बिल्कुल पट्टी पड़ी हुई है। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि यही एलपीयू के जो है ओनर, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले, इनकी पार्टी पहले तो इन्होंने सारे राज्यसभा की सीटें पंजाब की नीलाम करके बाहर वालों को बेच दी, कई करोड़ रुपए लेके उनको दी। अब वो चार महीने पहले जब वो चले गए हैं पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो अब उनके यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या ये सरकार की तरफ से एंटी सोशल एलिमेंट भेज के ये सब कराया जा रहा है? ये एक तरफ एक जांच का विषय है। दूसरी तरफ जो लड़की ने जो आरोप लगाए हैं, जो स्टूडेंट ने जो आरोप लगाए हैं कि जिस लड़की के साथ ये बलात्कार हुआ, जो प्लम्बर एक ठीक करने आया था और वार्डन ने उसको बोला तुम घर जाओ, वो लड़की गायब है, क्या है वो, क्यों क्लैरिटी से सारा कुछ सामने क्यों नहीं आ रहा है? और इतने हजार 40,000 बच्चों के माँ बाप घबराए हुए हैं वहां के हालात देखते हुए कि कैसे पुलिस व्हीकल को टॉर्च किया जा रहा है, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, पुलिसमैन वुंडेड हो रहे हैं। तो ये छात्र तो अपने कॉलेज को आग लगाएंगे नहीं, और जो छात्र पकड़ के दे रहे हैं ये पेट्रोल बम के साथ और हथियार के साथ, तो पुलिस क्या वहां पे सोई पड़ी है?
3: बिल्कुल मैम, आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया जो ओनर हैं वो लगातार बीजेपी में आ गए हैं और इसी वजह से जानबूझकर लगातार वहां पर ऐसी अव्यवस्था फैलाई जा रही है ताकि नाम खराब हो, क्या इसको लेकर भी कुछ सच्चाई है, कुछ चीजें हैं सामने?
6: देखिए आप पिछले हफ्ते 10 दिन के पंजाब के आपको घटना में 72 घंटों से पहले हफ्ता भर की मैं आपको सबसे पहले आरोप लगा भगवंत मान की घरवाली के ऊपर, जो हाईकोर्ट में से निकल के आया कि एक 7 लड़कियों के बलात्कारी को, जो लड़कियों ने जाके इंसाफ मांगा था, जो उनकी अश्लील वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था, जिसको 2 लड़कियों की कंप्लेंट में जेल में फेंका हुआ था, उसको गुरप्रीत कौर भगवान
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। लगातार हरसिमरत कौर हमसे बातचीत कर रही थी, बता रही थी देखिए किस तरीके से इन तमाम चीजों के बीच जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है और ना जो सबसे बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही है। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में लवली यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से पथराव हुआ, किस तरीके से आगजनी हुई, इसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
7: छात्रा से रेप के आरोपों पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में गुस्से की ऐसी आग भड़की कि कैंपस को ही अपनी चपेट में ले लिया। बीती शाम छात्रों ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी के बाहर हाईवे जाम किया और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन तोड़फोड़ और आगजनी तक पहुंच गया। देर रात तक आई एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि उपद्रव किस कदर था, कैसे पूरी रात छात्रों का हंगामा जारी रहा। दरअसल पूरा बवाल शुरू हुआ एक छात्रा की खुदकुशी से। दावा हुआ कि छात्रा ने खुदकुशी की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया जो लगातार
8: दूसरे दिन भी जारी रहा। हालात बिगड़ता देख भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तैनाती की गई और किसी तरह हालात को काबू में किया गया।
4: एक तरह से सिचुएशन को नियंत्रण लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए, अभी भी कुछ आसार हैं और कहीं नजर आ रहा है कि कुछ कुछ ज्वलन पदार्थ है जो कि रखा गया है, और उसके बाद कैंपस में पंजाब पुलिस की एंट्री और कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। खास तौर पे जिस तरह से हिंसा हुई है जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, वहां पे अब एक कोशिश पंजाब पुलिस द्वारा के अंदर री एनफोर्समेंट बुला के सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए।
8: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों को भी चोट आई है, साथ ही गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन हालात काबू होने का दावा कर रहा है।
3: चलिए न्यूज रूम लाइव में वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। एसआईआर को लेकर के जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है,
1: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। लेकिन 22 में जब परिणाम आया, मुझे याद है मैंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों ने मिलकर के जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। तो ये बेईमानी तो हो ही रही है, बस इतनी सी बात अब खुल गई है।

लवली यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पंजाब पुलिस की लाठियां बरसने के बाद निशाने पर आई मान सरकार। बीजेपी ने कहा केजरीवाल के गुंडों ने छात्रों को पीटा, आज तक से बोली हरसिमरत कौर, आपने पंजाब को चौपट किया। शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी बवाल से हस्त के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाल, पथराव, आंसू गैस, लाठी चार्ज, भारी फोर्स तैनात, पूरा इलाका सील। सीसी के खिलाफ देश के कई शहरों में सड़कों पर प्रदर्शन, जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार का, देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। 30 तारीख को गठबंधन इंडिया तय करेगा आगे की रणनीति। यूपी में तेज हुई दलित वोटों की जंग, पहली बार चंद्रशेखर आजाद पर बरसी मायावती, कहा उन्हें बीजेपी ने ही ईवीएम में धांधली करके जितवाया, नगीना सांसद के बहकावे में दलित वोटर्स ना आए। लगातार बारिश के बाद प्रयाग से काशी तक गंगा में उफान, बिहार में भी मंडरा है बाढ़ का खतरा, नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसिक पानी, कोसी नदी, गंडक नदी का खौफ दे के एनडीआरएफ एसडीआरएफ अब अलर्ट पर।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अब वक्त हो गया है आपके शहर की खबर सुपर फास्ट अंदाज में आपको बताने का। 100 शहर 100 खबर
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: उज्जैन में शाही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले भवा, लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। मस्जिद का हिस्सा हटाने के विरोध में मुस्लिम समाज एकत्रित हुआ। शाही मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग, विरोध के बीच में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरा इलाका सील। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के साथ पहुंचा था पुलिस बल, रात भर मस्जिद के बाहर विरोध चलता रहा। शाही मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई और कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का चल रहा काम। शाही मस्जिद को लेकर पथराव कर रही भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, मौके पर पुलिस बल अब तैनात। जयपुर में कांग्रेस का चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प। श्रीनगर में कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, भारी पुलिस बल तैनात। पटना में वामपंथी दलों का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी। नागपुर में कांग्रेस

माहौल बिगाड़ने की हो रही साजिश। सीसी ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, रिकॉर्ड की एसआईटी जांच की मांग। उद्धव राज ठाकरे कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का करेंगे ऐलान। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रेप के आरोप पर बवाल छात्रों का पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज, कई पुलिसकर्मी भी घायल। एलपीयू के बाहर हिंसक प्रदर्शन, छात्रों ने पुलिस वाहनों पर पथराव किया, दो गाड़ियों में आग लगाने का भी आरोप। एलपीयू यूनिवर्सिटी में 10 दिनों के लिए अब रेगुलर क्लासेस सस्पेंड, मिड टर्म परीक्षाएं स्थगित, छात्र अपने घर लौटे। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने मान सरकार को घेरा, कहा कि एलपीयू प्रोटेस्ट में बाहरी लोग कैसे आए। एलपीयू हिंसा पर बीजेपी नेता राजकुमार गुप्ता का बयान, कहा कि हिंसक प्रदर्शन कहा कि लेकिन पथराव और तोड़फोड़ करना यह गलत है। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनावों के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल तैयार। राज्यसभा की 8 से 9 सीटों और शिक्षक स्नातक एमएलसी की 11 सीटों को लेकर बैठक में मंथन, 60 वोटर्स की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख को देने की तैयारी, लगातार संपर्क और संवाद पर जोर। सीएम योगी ने कहा कि 9.5 लाख युवाओं को बिना लेन देन पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, कहा कि गिरगिटों से सावधान रहने की जरूरत है। गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव, अखिलेश बोले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है और मेरी जगह सपा के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। अखिलेश के गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस के सफाई की सीटों की वजह से बैठक से दूरी की खबरें तो भ्रामक है। पीडीएफ को लेकर चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले कि उनका पीडीएफ बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का दावा, यूपी की जनता विकास चाहती है, 2027 में 17 जैसे बड़े बहुमत से जीतेगी बीजेपी सरकार। गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, इमरान मसूद बोले अखिलेश यादव ना की सीटों की वजह से बैठक से दूरी की खबरें तो भ्रामक है। पीडीएफ को लेकर चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले कि उनका पीडीएफ बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का दावा, यूपी की जनता विकास चाहती है, 2027 में 17 जैसे बड़े बहुमत से जीतेगी बीजेपी सरकार। गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान, इमरान मसूद बोले अखिलेश यादव नाराज हैं तो। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि यूपीआई एमडीआर चार्ज फीस है या टैक्स है, सरकार को इससे कोई कमाई होती है या नहीं। यूपीआई एमडीआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल इनकार और आरबीआई एनपीसीआई को 4 हफ्तों में कानूनी आधार पर स्पष्ट करने के निर्देश। सुरक्षा हटाए जाने पर अभिषेक बैनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, चुनावों के बाद जेड प्लस सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। अभिषेक बैनर्जी के वकील बोले कि कई बार हमले हो चुके हैं और अभी सिर्फ कुछ हाउस गार्ड हैं। 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई। आज देश मना रहा है शहीद भगत सिंह की जयंती, पीएम मोदी ने वीडियो जारी करते हुए उन्हें नमन किया। आज से होने वाले 3 दिनों की बैंक हड़ताल टल गई, आईबीए यूएफबीयू की बैठक में सहमति बनी। भारतीय सेना आज मना रही 200वां गनर्स दिवस, वीर शहीदों के साथ शौर्य के दिनों को याद किया जा रहा है। गनर्स दिवस पर सेना ने एक बेहद शानदार और जोश से भरा हुआ वीडियो किया जा रहा है, पारंपरिक और आधुनिक तोपों की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन। मेरठ में छात्र नेता शान मोहम्मद जिला बदर, 3 महीनों तक जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश। यूपी के उन्नाव में 48 घंटों से भारी बारिश के बाद जल भराव, घरों में घुसा पानी, लोग सड़क पर उतरकर करते दिखे हंगामा। यूपी के महाराजगंज में भारी बारिश के बाद 4 लोगों की मौत, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट भी किया। बांदा में बाढ़ का कहर, डीएम एसपी ने लिया जायजा, प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी। पीलीभीत में भारी बारिश से खेत जलमग्न, धान की खड़ी फसल बर्बाद, गन्ने पर भी असर। बिजनौर में रामगंगा बांध का बढ़ा जलस्तर, 7 जिलों को बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग में बर्फ की सफेद चादर से सजा बाबा केदार का धाम, सफेद चादर में लिपटी दिखी हिमालयी चोटियां। उत्तरकाशी में लगातार बारिश, बर्फबारी से बिगड़े हालात, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा होल्डिंग पॉइंट पर रोकी गई। केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने लगाया ब्रेक और बुलडोर की चपेट में आने से 1-5 साल के बच्चे की मौत। यात्रा के दौरान चिरबासा में पहाड़ी से लगातार गिर रहे बुलडोर और पैदल यात्रा मार्ग में जो है भक्तों का रेस्क्यू करने का लगातार वीडियो सामने आ रहा। बाराबंकी में बारिश के चलते पेड़ गिरा और बुजुर्ग महिला 18 घंटों तक उसमें दबी रही, बाद में जान गई। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच गौमुख के उच्च हिमालय में 106

36 ट्रैकर्स फंस गए, कई लोगों का रिस्क। सीएम धामी ने फंसे हुए ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। गोपालगंज में बाढ़ का अलर्ट, बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बढ़ी चिंता, प्रशासन हाई अलर्ट पर। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बिहार के गोपालगंज में अलर्ट, निचले इलाकों को खाली कराने में जुटाया प्रशासन। भोजपुर में 20 साल के युवक के सिर में मारी गई गोली, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह से खबर, परिवार ने जिंदा बेटी को की शव यात्रा निकाल दी, बेटी बोली कि हमें परेशान न करें। केड़ा में अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला। बेगूसराय में शराब पर रेड करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने चलाई लाठी डंडे और दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश भी की। आगरा में अचानक मकान की छत गिरी, इसमें बड़ा हादसा, 14 लोग घायल। अयोध्या में पेपर मिल में केमिकल इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस। लखनऊ में सड़क पर बाइक में लगी अचानक भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाई। अंबाला में इमारत गिरने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हुआ, निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ था। फरीदाबाद में 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाले गए बोरवेल से बच्चे, अस्पताल में डॉक्टर से मृत किया घोषित। रायगढ़ में एमआईडीसी के केमिकल कंपनी में जोरदार धमाका होने से 3 लोग घायल, देर रात धमाका। रीवा में खराब बस की हालत पर कलेक्टर नाराज, जिला बस से किया गया सफर किया और उतरते ही उसी बस को सीज कराया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर डंपर की जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। थाईलैंड में भारी बारिश से बैंकॉक समेत कई इलाकों में बाढ़ और कई जगहों पर 1 मीटर से ज्यादा पानी भरने से लोग परेशान। बैंकॉक में बाढ़ के चलते सड़कों पर भरा पानी, प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए थाईलैंड ने 10,000 से ज्यादा सैनिक किए तैनात, राहत और बचाव का काम जारी। कंबोडिया सीमा से लगे हुए सेके प्रांत में बाढ़ का बड़ा असर है और ट्रकों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। थाईलैंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की, स्थानीय प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं। ब्रिटेन में अमेरिकी सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एयरबेस के पास में 5 संदिग्ध गिरफ्तार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि हम अमेरिका से लड़ने को भी तैयार हैं और बातचीत के लिए भी राजी हैं, अब फैसला ट्रंप को करना है कि वो चाहते क्या। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इथमार बिन गवीर ने कहा कि आने वाले चुनावों के बाद अगर वो देश के रक्षा मंत्री बनते हैं तो गजा में यहूदी बस्तियां बसाई जाएंगी। इसराइल ने गजा सिटी में एक बार एक कार पर हवाई हमला किया और एक शख्स की मौत, कई लोग इसमें घायल। सऊदी अरब ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए, कम से कम 7 लोगों की मौत, 40 घायल। 23 प्रांत में माविया जंक्शन के पास में हमला। हिजबुल्ला के दिवंगत नेता हसन नसरुल्ला की हत्या की दूसरी बरसी पर मार्च, सड़कों पर उतरकर बड़ी संख्या में लोगों ने इसराइल से बदला लेने की खाई कसम। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिक ने दिया इस्तीफा, छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों और जनता की बढ़ती नाराजगी के बाद पद छोड़ दिया। स्पेन में घरों के बढ़ते किराए को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन का दौर, मैड्रिड में जुटे प्रदर्शनकारियों ने सरकार से हाउसिंग संकट से राहत दिलाए जाने की मांग की। चीन और अमेरिका की सरकारों के बीच में हुए समझौते के तहत 2 ज्वाइंट पांडा अटलांटा पहुंचे और अटलांटा चिड़ियाघर अब उन 3 जू में से 1 होगा जहां पर पांडा रखे जाएंगे। मॉस्को में बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल, खास तरह के पोशाक में लोगों ने तालाब में विशाल कद्दूओं की नाव बनाकर रेस लगाए। 52वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने रचा इतिहास, 400 करोड़ के क्लब में हुए शामिल, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 401 करोड़ के पार। रविवार को हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का कारोबार किया और भारत में भी ग्रॉस कलेक्शन 362 करोड़ 70 लाख के पार। सिद्धार्थ मल्होत्रा, थमन भाटिया की विमान का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त जलवा, 3 दिनों में 43 करोड़ की कमाई। पिंदी पैराडाइज ने 15 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया, दुनिया भर में कमाई 138 करोड़ के पार। मिर्जापुर दी मूवी में निकल 1 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए और 30 दिन में भारत में अब तक ग्रॉस 268 करोड़ कलेक्शन पहुंचा, वर्ल्ड वाइड 328 करोड़।

आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज का भारतीय खिलाड़ियों का जलवा दिखा, कई मेडल की उनसे उम्मीद भी है। एशियन गेम्स में भारत को अब तक 39 पदक मिले, फिलहाल भारत अंक तालिका में 12वें नंबर पर। कुराश में भी भारतीय टीम का जलवा, पदक मिला। विमेंस 78 किलोग्राम वर्ग में पिंकी बलिहार को कांस्य पदक मिला। विमेंस 25 मीटर पिस्टल में भारत के नाम पर एक पदक, ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता।

0: एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। शाही ईदगाह जो है मस्जिद मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया था और उज्जैन शाही मस्जिद मामले में जो अपील की गई थी कमेटी की ओर से, मस्जिद कमेटी की ओर से, उसे खारिज कर दिया गया। तो सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां चल रही है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच में क्योंकि मस्जिद का कुछ हिस्सा भी उस चौड़ीकरण के दायरे में आ रहा है और मस्जिद का हिस्सा तोड़ने के आदेश पर रोक से कोर्ट का इनकार, तो कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है मस्जिद कमेटी को। आपको ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ। पूरे सुबह से बवाल देखने को मिला था, उसके बाद वो तस्वीर भी आई जब मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही हथौड़े से उसे तोड़ते हुए दिखाई दिए, उस हिस्से को जो कि चौड़ीकरण के दायरे में आ रहा है, जो तोड़ा जाना है। लेकिन इस बीच में कोर्ट की तरफ भी उनका रुख था, कोर्ट से भी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन डबल बेंच ने भी अपील खारिज कर दी है। इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी मुस्लिम पक्ष के पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया है, तो उनकी तरफ से ये अपील की गई थी कि मस्जिद का वो हिस्सा तोड़ा ना जाए, यह अपील उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आया है और उनको कोई राहत नहीं मिली। हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रविश, डिटेल बताएं कि मस्जिद कमेटी की क्या मांग थी और कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणियां हुई हैं और क्या कहा गया है।
1: देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दरअसल हाईकोर्ट में से पहले याचिका लगाई गई थी, लेकिन उस वक्त वो याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद अपनी डबल बेंच में अपील की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि प्रशासन जो है वो चौड़ीकरण के नाम से मस्जिद को हटाने की जो कार्रवाई है उसे रोके। लेकिन डबल बेंच ने आज सुनवाई करते हुए इस अपील को भी खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि प्रशासन की यह जो एक्शन चल रहा है, प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है सड़क चौड़ीकरण के लिए, इस पर किसी भी तरीके का कोई रोक जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से नहीं रहेगी। तो यानी एक तरीके से यह दोहरा झटका है, इससे पहले भी याचिका खारिज हुई थी और एक सेकेंड बेंच की अपील जो थी वो भी आज हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की खारिज हो गई है। और एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि मस्जिद को हटाने का काम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने हाथों से खुद ही कर रहे हैं, तो वैसे भी अब जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से भी फैसला आ गया है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अपर हैंड जैसे कि हम बार बार बात कर रहे थे।
0: लेकिन रमेश, यहाँ पर ये मतलब एक तो जो शहर काजी है वो प्रशासन के साथ बातचीत करते हैं और सहमति जताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी समय कोर्ट में भी वो जाते हैं और विरोध करते हैं इस एक्शन का।
1: देखिए, बहुत सारे अलग अलग, इसे हम आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के अलग अलग संगठन होते हैं, जो मस्जिद कमेटी से होते हैं, कुछ समाज से जुड़े हुए तमाम दूसरे लोग भी होते हैं, अलग अलग याचिकाएं लगती है और कोशिश उनकी यही थी कि प्रशासन की ये जो कार्रवाई चल रही है इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन इससे पहले भी जो याचिका लगाई थी वो खारिज हुई और डबल बेंच की अपील जो है वो भी आज हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। मतलब रास्ता पहले ही साफ हो चुका था मस्जिद को हटाने का, उपद्रव जो हुआ इस वजह से ये बात सुर्खियों में जरूर आई, लेकिन प्रशासन का साफ कहना है कि समाज के लोगों के साथ और शहर काजी के साथ पहले ही सहमति बन चुकी है, लिहाजा मस्जिद को हटाने का काम जो है वो समाज के लोग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन के सामने सिवाय लॉ एंड ऑर्डर अभी उस स्ट्रक्चर को हटाने का कोई काम नहीं है।
0: ठीक है रविश, यानी कि कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है और हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह की ही अब ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
2: आज तक पहुंच गया है उज्जैन में उस ग्राउंड जीरो पर जहां पे आज सुबह अचानक से पथराव और हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस वक्त भीड़ को तो पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ दिया है, लेकिन भीड़ के चले जाने के बाद जो निशान हैं उस हिंसा के, उस पथराव के, वो इस सड़क पर साफ तौर पर देखने को मिलते हैं जिसे सिंहस्थ के वजह से चौड़ा किया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस पे और तमाम जो लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद थे उन पे पथराव हुआ है, गलियों से हुआ है, इन्हीं छतों से हुआ है। आप देखिए, केवल पत्थर ही नहीं, ये इस तरीके के लकड़ी के जो तीखे नुकीले हिस्से हैं उन्हें भी यहाँ फेंका गया है। अब ये जो तमाम हिस्से निकल के आए हैं इसके बाद ही यहाँ पे स्थितियां बनी है। ये सड़क का हिस्सा देखिए, जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, तमाम लोग जो यहाँ उस वक्त इकट्ठे हो गए थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अब देखिए, आप आकार देखिए, जिन पत्थरों को फेंका गया है, ऊपर से फेंका गया है या फिर गलियों से इन पत्थरों को फेंका गया, इसको ये कम से कम 3 से 4 किलो वजनीय पत्थर है। इस वक्त पूरा सीमेंट का ये स्लैब है जो यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त हालात हैं और बिल्कुल एपिसेंटर पे इस वक्त आज तक मौजूद है। क्यों? क्योंकि ठीक पीछे वो शाही मस्जिद है जिसके हिस्से को हटाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। सामने अगर आप देखें तो शाही मस्जिद है और सिंहस्थ चौड़ीकरण के लिए जो रोड का होना है उसके लिए इस मस्जिद का भी कुछ हिस्सा आ रहा था। रात को सहमति बन गई थी, जो लोग हैं समुदाय से जुड़े हुए वो तमाम लोग यहाँ पे पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कल रात को एक बार फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ मस्जिद के सामने इकट्ठा हुई थी, लेकिन शहर काजी और प्रशासन के बीच जब सहमति बन गई थी, खुद शहर काजी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मसला हल हो गया था मस्जिद का, लेकिन अचानक से सुबह जो है जब समाज के लोगों ने खुद अपने हाथों से मस्जिद को हटाने का काम शुरू किया, प्रभावित हिस्से को हटाने का काम शुरू किया, तो भीड़ अचानक से एक दूसरे गुट की पहुंचती है और उग्र हो जाती है, पथराव कर देती है, जिसके बाद पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ता है और पुलिस बल जो है वो यहाँ पे पहले आंसू गैस के गोले छोड़ता है, लाठीचार्ज करता है और भीड़ को तितर बितर करता है। लेकिन अब एक बार फिर से तकरीबन 3 घंटे की शांति के बाद बताया जा रहा है कि इन्हीं गलियों से अचानक से फिर से पथराव शुरू हुआ और एक बार फिर से पुलिस जो है वो यहाँ पे उनको खदेड़ती है। आप देख सकते हैं कि अब ये निशान जो है साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात बन गए थे। यहाँ पे फिलहाल पुलिस ने वज्रवाहन यहाँ खड़ा रखा है और पुलिस का तमाम दंगा निरोधक वाहन जो है उसे बुला लिया गया है और पूरी तरीके से अब फिलहाल पुलिस और प्रशासन का दावा है कि हालात काबू में है, लेकिन रुक रुक कर जो भीड़ है वो गलियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिन्हें पुलिस बल एक बार फिर से वापस उनकी गलियों में दोबारा भेज रहा है।
0: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की खुदकुशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल उठ रहा है कि सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स और कंटेंट की दुनिया में नाम बनाने वाली निधि ने अचानक जान क्यों दे दी और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कई सवालों के जवाब सामने लाने की पुलिस कोशिश कर रही है।

0: एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके फॉलोअर लाखों में थे, जिसके हर वीडियो को लाखों व्यूज मिलते थे, सोशल मीडिया पर जिसकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त थी, जो सोशल मीडिया का बेहद जाना माना चेहरा थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, डिजिटल कंटेंट बनाकर नाम कमाने वाली निधि तिवारी ने सुसाइड कर लिया। कभी कैमरे की रोशनी में मुस्कुराती हुई तस्वीरें, कभी सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का प्यार, कभी मंच पर ताज पहनकर जीत का जश्न, और कभी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के सपने। सिंगरौली की 30 साल की निधि तिवारी की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन शनिवार की शाम ये चमकती हुई कहानी अचानक एक दर्दनाक मोड़ पर आकर थम गई। घर की छत पर बने कमरे में निधि ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये वीडियो ठीक खुदकुशी से पहले का बताया जा रहा है। निधि की मौत के बाद उनका एक सोशल मीडिया स्टेटस भी चर्चा में है, जिसमें उसने खुद से प्यार करने और अपने भीतर खुद को तलाशने की बात लिखी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निधि के मन में आखिर क्या चल रहा था, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि निधि ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। निधि की मौत के बाद कई उलझे हुए सवाल हैं। पुलिस जिसकी तफ्तीश में लगी है, हर पहलू से एक नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत की जांच चल रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची।

0: प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
10: अब पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
11: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
12: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
14: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
15: तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
16: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
10: आई लाइक दिस ओनली।
17: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
18: In association with
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
21: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
22: सोच बदलो और बैंक भी।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
10: अब पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
11: मेरे पास एक आइडिया।
9: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
12: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
14: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
15: तो कौन सी बनानी है?
9: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
16: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
10: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: किसी भी देश को जब भी आज़ादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए हैं, तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
3: कौन भय में जी रहा है?
2: नागरिक जी रहे हैं।
3: हाँ, भारत में
2: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली केजरीवाल के गुंडों ने पीटा। हरसिमरत का तंज, आपने पंजाब को चौपट किया। शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर उज्जैन में भारी बवाल, सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन से उबाल, पथराव, आंसू गैस और लाठीचार्ज, भारी फोर्स तैनात, पूरा इलाका सील। सीसी के खिलाफ देश के कई शहरों में सड़कों पर प्रदर्शन, जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश, 30 तारीख को इंडिया गठबंधन तय करेगा रणनीति। यूपी में तेज हुई दलित वोटों की जंग, पहली बार चंद्रशेखर पर बरसी मायावती, कहा उन्हें बीजेपी ने ही ईवीएम में धांधली कर जितवाया, नगीना सांसद के बहकावे में न आए दलित वोटर। लगातार बरसात के बाद प्रयाग से काशी तक गंगा में उफान, बिहार पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा है लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक का खौफ देख एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद भारत।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बात मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जारी सियासी घमासान की। आज देश भर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में जहां यूथ कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका इस्तीफा मांगा, वहीं पटना में वामपंथी पार्टियों और संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर, रांची, नागपुर, पुणे, हैदराबाद में भी प्रदर्शन हुए। कहीं कांग्रेस तो कहीं लेफ्ट पार्टियां सड़कों पर उतरी। निशाने पर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इस मामले में पूरा विपक्ष आक्रामक है। 30 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार के खिलाफ विपक्षी रणनीति को धार दी जाएगी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चला। यूथ कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, उनका इस्तीफा मांगा। प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।
1: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस समय मैं दिल्ली के रायसेना रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हैं, यहां से घराव मार्च करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां से इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर्स है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। पर वहीं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे भारी संख्या में यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहां पर तैनात किए गए हैं। और मेरे पीछे दो लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो कर रखी है। और वहीं दूसरी तरफ आईवाईसी का मुख्यालय है, जहां से उनका मार्च शुरू होता है। उन्होंने ये मार्च की जो कॉल दी थी इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स तक।

0: के लिए दी थी, वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और जो साथी पैरामिलिट्री के जवान हैं वो आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को यहां से आगे बढ़ने को लेकर रोक रहे हैं। पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय जद्दोजहद चल रही है, जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं पर फोर्सेस उनको रोक रही है। वहीं हाथ में आप देख सकते हैं पोस्टर्स और झंडे लेकर आईवाईसी के जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाना चाहूंगा जहां साफ तौर पर वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मोदीज गुड बॉय ज्ञानेश, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कैसे जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं यहां पर निशाना साध रहे हैं। 14 ऑब्जेक्शंस, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दिस फाइल्स आर आउट। तो सीधा आईवाईसी का विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी है, ना केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, पूरे देश में जो आईवाईसी के कार्यकर्ता है विरोध प्रदर्शन करें।
1: पटना में वामपंथी दलों और संगठनों का प्रदर्शन आज देखा गया। सीसी के खिलाफ हो रहा यह विरोध बहुत भीषण प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर रोकने की कोशिश की। यहीं पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े। वाटर कैनन के इस्तेमाल से उन्हें पीछे धकेला गया।
2: राजधानी पटना में आज वामपंथी दलों और संगठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना के साथ साथ दरअसल ये विरोध प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए सैकड़ों की संख्या में थोड़ी देर पहले डाक बंगला चौराहे पर जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जो संगठन हैं वो लोग यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेकर, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, शिक्षा, किसान के मुद्दे पर, विश्वविद्यालय में जो है उसको लेकर और बहुत सारे मुद्दे को, रोजगार को लेकर इन लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन निकाला है। और अभी फिलहाल आप देखिए डाक बंगला चौराहे पर जब ये लोग पहुँचे हुए हैं तो ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ना चाह रहे थे और इसी दौरान पुलिस जो है इनको रोक कर रखी हुई थी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है।
1: इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के बाद से ही कांग्रेस बहुत आक्रामक है। तमाम राज्यों में हुए एसआईआर को रद्द करने की मांग भी कांग्रेस कर रही है। जयपुर में भी ऐसी ही मांग को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
3: चुनाव आयोग के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन चल रहा है, देख सकते हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहां पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और यहां पर पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच धक्का मुक्की हो रही है। यहां पर लगातार पुलिस उन्हें पीछे धकेल रही है और ये आगे आ रहे हैं। कहां जाना चाह रहे हैं?
4: हम आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। जिस तरीके से इन्होंने वोटों का दुरुपयोग किया, जिस तरह से चुनाव आयोग ने हेराफेरी की, वोट चोरी की, आज पूरी कांग्रेस के नेतृत्व में हम आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम विधानसभा का घेराव करेंगे।
3: देख रहे हैं दौसा के विधायक थे, इस तरह से यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से बैरिकेडिंग की तरफ जाने की कोशिश, और बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं बहुत सारे कार्यकर्ता। जहां पर आप इस तरह से माहौल बना हुआ है, हालांकि कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और पानी के बौछारों के बीच यहां स्थिति है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर डटे हुए हैं। और ये स्थिति है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें हो रही है। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए वोट चोरी की है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: उधर जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया।
5: कांग्रेस वर्कर जो ज्ञानेश कुमार का एक पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वो होने नहीं दिया और इस जो कोशिश थी इसको नाकाम कर दिया। तो प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रहे हैं पूरे देश में, हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं और आज घाटी के भी अलग अलग इलाकों में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। ये श्रीनगर का कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स है और इसे आप देख सकते हैं, पुलिस जो है अमित शाह और जो पोस्टर्स इन्होंने जलाने की कोशिश की है।
1: सीधे आपको अब लिए चलते हैं पटना, जहां से खबर ये आ रही है कि वहां पर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है और जानकारी हम अपने संवाददाता से वहां पर लेंगे, लेकिन डॉक्टरों का जो प्रदर्शन हो रहा है ये उसकी तस्वीरें

0: उधर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष को देश से मतलब नहीं, विपक्ष हमेशा प्रपंच करता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है।
1: देश राहुल गांधी जी कान खोलकर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई है। विपक्ष के तमाम मनगढ़ंत आरोप तथ्यों के कसौटी पर बार बार ध्वस्त हुए हैं। चुनाव आयोग से लेकर देश की सर्वोच्च अदालतों तक इनके हर झूठ की हवा निकल चुकी है। जब इनके पास नीतियों और विजन का अभाव होता है तो ये अब देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के नए नए प्रपंच रच रहे हैं। हम सब ने देखा है कुछ दिन पहले किस तरह एक मनगढ़ंत खबर को लेकर देश भर में बवाल मचाया गया। अब जब चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इनके लगाए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो अब ये नए सिरे से फिर से माहौल को खराब करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं।
2: जिस प्रकार से पूरी तरह से विपक्ष बेचैन है अपने हाल और हताशा से, और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो अपने हाल को पचा नहीं पा रहे हैं। जब वो तमिलनाडु और केरल में चुनाव जीतते हैं उस समय उनको इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय मिलती है तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
0: पंजाब के जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा बेहद गर्म हो गया। इसकी गूंज

अब दिल्ली तक सुनी जा रही है। बीजेपी और अकाली दल सीधे सीधे भगवंत मान की सरकार पर छात्रों को पीटने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कार्रवाई के खिलाफ रविवार शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने हाईवे जाम किया, यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ हुई, पुलिस की गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई, कई आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, किसी तरीके से इसे काबू में किया गया।

0: एक ओर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ है और दूसरी ओर पुलिस वाले। छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस लाठी डंडों से उन्हें पीछे धकेलना शुरू करती है। सामने काफी संख्या में छात्राएं भी हैं जो पुलिस के इस रवैये से काफी डरी सहमी हैं। चीख पुकार कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले रुकते नहीं और कुछ ही देर में लाठियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। न छात्रों को बख्शा जाता है न ही छात्राओं को, यहाँ तक कि पुरुष पुलिसकर्मी भी छात्राओं को पीछे धकेलते दिखते हैं। पुलिस प्रशासन भले ही अब जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हालात काबू में होने का दावा कर रही है,
1: कुछ एलिमेंट्स जिहड़े जिन्हां ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, सो पुलिस की गड्डियां ते पथराव होया, जिहड़े उस नूं अगेन यूजिंग अ लॉट ऑफ रेस्ट्रेंट, ते पुलिस की हमेशा तो कोशिश रही है कि जिहड़े स्टूडेंट्स दे आर लाइक आर चिल्ड्रन, बच्चे हैगे, तो इन्हां दी जिहड़े ग्रीवियंसिस हैगे उन्हां नूं सॉल्व किया जाए, मोस्टली जे दे रिलेट टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस दे नाल इन्हां दी मीटिंग्स कराई गई हैं। तो दूजा मैं यह भी मैसेज देना चाहवाँगा कि कोई भी एलीमेंट्स जिन्हां ने भनतोड़ की सी, असीं उहदा साइंटिफिकली टेक्निकली एनालाइज कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, जिहड़ा भी लॉ नूं अपने हाथ में लौगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया।
0: लेकिन बीते दो दिनों में यहाँ जो कुछ हुआ उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब एक दिन पहले ही छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी बवाल किया, छात्रा से रेप के आरोप पर भारी हंगामा हुआ, तो पुलिस ने एहतियाती तैयारी क्यों नहीं की? कैसे पूरी रात एलपीयू विरोध प्रदर्शन के बीच धधकती रही? स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और इस हंगामे ने अब पंजाब की सियासत को गर्मा दिया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल के बीच पंजाब की सियासत भड़क गई है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, तीनों ही विपक्षी पार्टियां भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस और अकाली दल ने छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे आप नेता गायत्री बिश्नोई को लेकर उठे विवाद को दबाने की साजिश बता दी।
2: पंजाब की जनता के लिए काम कर रही हूँ, तेरे को शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में बकवास कर रहे?
0: छात्रा से रेप के आरोप पर मचे बवाल और फिर छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर मान सरकार घिरी हुई है, विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और विवाद बढ़ता जा रहा है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब के फगवाड़ा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल और लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के इशारे पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस कार्रवाई के दौरान कॉलर तक पकड़ा गया। पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत पुलिस ने यूनिवर्सिटी की कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया है।
4: अगर आप ये तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप देखें कि कैसे पंजाब पुलिस का एक ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल के कहने पे फीमेल छात्राओं को वहां पर पकड़ता है कॉलर से। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आगजनी करने का प्रयास भी होता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे हमने आपको कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटी सी टूलकिट हमने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे पंजाब के छात्राएं, पंजाब के युवाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ उससे देखी। दुनिया भर को राहुल गांधी और अरविंद

0: केजरीवाल जो लेक्चर देते हैं, आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। हमने इसके पूर्व में देखा कि कैसे जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना के अंदर थी, वहां पर भी युवाओं पे कांग्रेस पार्टी ने लाठी चार्ज किया। कर्नाटका के अंदर भी हमने देखा जो न्याय मांग रहे थे उस पर लाठी चार्ज किया। तो आज जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ है, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इसके पीछे अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की साजिश है और उनने इंस्पिरेशन राहुल गांधी से ली है।
1: एलपीयू में छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर जारी सियासत के बीच अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने सीएम भगवंत मान पर हमला बोला है।
2: तो आप देखिए कि इस घटना को घटे एक दिन पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, कौन जिम्मेवार था, किसके ऊपर पर्चा हुआ है, कोई उससे क्लैरिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जबान बंद करके क्यों बैठा है, इनके डीजीपी डिटेल्स क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हैं। जो चीज पता लग रही है, कल रात तक धरना, स्टूडेंट्स को सड़क पे बैठना, हाईवे जैम करना पड़ा, और उसके बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में घुस गए, जिनको स्टूडेंट्स ने पकड़ा, जिनके पास तेज हथियार थे, उनके पास पेट्रोल के बॉम्ब थे। ये सब क्या हो क्या रहा है पंजाब में
3: जी?
2: पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई, इंडस्ट्री हमारी बाहर भाग रही है, घर घर पे होम डिलीवरी नशों का हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर से सरकारी आधारों पे अटैक किए जा रहे हैं, रोज पुलिस स्टेशन पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पताल में ग्रेनेड अटैक के धमकियां दी जा रही है। AK-47 तो आम ही हरेक के हाथ में आ गए, ये मिलिट्री के पास वेपन होते हैं, ये आम लोगों के हाथों में आ कैसे गए?
3: बिल्कुल,
2: ये आम आदमी और भगवंत मान के अंडर जो होम मिनिस्टर है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। ये तो एक परमानेंट डीजीपी भी नहीं लगा सके, टेम्पररी डीजीपी लगा हुआ है पंजाब में, तो पुलिस को पूछने वाला कौन है? एज होम मिनिस्टर इसने पिछली मीटिंग कब करी थी SSP की, 5 सालों में कितनी बारी करी है? प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली पंजाब में एक शराबी मुख्यमंत्री बन गया है, जो सुबह 8 बजे शराब पीना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसको पता ही नहीं पंजाब में क्या हो रहा है। जो दिल्ली के लुटेरों, दिल्ली ने दिल्ली से भगाया था, वो लुटेरों पंजाब में आके कब्जा किए हुए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, कोई भी हमारा महकमा हो, हमारे सरकारी घर हो, मंत्रियों के घर हो, सारी चीजों में ये दिल्ली वाले सामदान धनबेड़ वाला मनुष्य को दिया, सतेंद्र जैन, केजरीवाल, पंजाब की पुलिस भी उनको देख रही है, और पंजाब के खजाना भी उनके हाथ में है, और पंजाब का मुख्यमंत्री भी उनके हाथ में, तो लोग कहाँ जाए?
3: बिल्कुल,
2: यही हाल पंजाब में हो रहा है। और आप देखिए किस ब्रुटैलिटी के साथ जो पुलिस ने स्टूडेंट को वहां पे मारा, नहीं कोई मतलब है कि कोई मेल पुलिसमैन कोई हाथ उठाए फीमेल स्टूडेंट के ऊपर?
3: बिल्कुल मैम, लेकिन
2: दुनिया भर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या इमेज जा रही है पंजाब की?
3: बिल्कुल इमेज क्या जा रही है, लेकिन एक और भी बात मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था, आप भी उसका जिक्र कर रही थी कि आखिरकार जब क्योंकि डीजीपी की तरफ से रूमर्स की बात की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि रूमर्स पे को मत फॉलो कीजिए, लगा मत सुनिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस प्रशासन पिछले 48 घंटे से इन रूमर्स को रोकने के लिए लगातार वहां पर छात्रों पर इस तरीके के उग्र ना हो, इसको लेकर क्या प्रयास कर रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही?
2: कुछ भी नहीं, प्रशासन के मुंह में तो बिल्कुल पट्टी पड़ी हुई है। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि यही LPU के जो है ओनर, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले, इनकी पार्टी पहले तो इन्होंने सारे राज्यसभा की सीटें पंजाब की नीलाम करके बाहर वालों को बेच दी, 2 करोड़ रुपए लेके उनको दी। अब वो 4 महीने पहले जब वो चले गए हैं पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो अब तो उनके यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या ये सरकार की तरफ से एंटी सोशल एलिमेंट भेज के ये सब कराया जा रहा है? ये एक तरफ एक जांच का विषय है।
1: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।

0: उबा केसरी हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनका एकमात्र एजेंडा देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन्हें कमजोर करना रह गया है। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है। आरोप लगाओ, देश का माहौल बिगाड़ो और भाग जाओ, यही विपक्ष की कार्यशैली बन गई है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तीनों चुनाव आयुक्तों ने प्रेस के सामने आकर के स्थिति स्पष्ट की। एसआईआर के बारे में पहले से ही इस बात के डायरेक्शन दिए गए कि छूटे हुए जो भी मतदाता हैं उनको फॉर्म भरने की पूरी छूट है। फॉर्म 6 को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को उचित ठहराया, लेकिन उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना, भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करके दुनिया के अंदर भारत की बदनामी कराना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने की कुत्सित चेष्टा करना, ये कांग्रेस का ये कृत्य अत्यंत हैरान करने वाला है।
1: आज वो लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पे काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लाठीचार्ज मामले में विपक्ष के निशाने पर भगवंत मान सरकार, बीजेपी बोली अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने पीटा, हरसिमरत कौर बादल का तंज, आपने पंजाब को चौपट कर दिया। उज्जैन में मस्जिद के हिस्से पर बुलडोजर एक्शन पर बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष, देश भर में बड़े प्रदर्शन, जेपी नड्डा का पलटवार, माहौल बिगाड़ने की साजिश, 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों पर आर पार, चंद्रशेखर पर पहली बार सीधे बरसी मायावती, बोली बीजेपी ने ईवीएम में धांधली कर नगीना सीट जितवाई, बहकावे में नाए दलित युवा। उत्तर प्रदेश से बिहार तक गंगा में उफान, नेपाल से छूटा लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक के रौद्र रूप से मंडराया, बाढ़ का बड़ा खतरा, अलर्ट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
3: उज्जैन में शाही मस्जिद पर संग्राम, अतिक्रमण पर एक्शन का उपद्रवी रिएक्शन, शाही मस्जिद पर आज से सुलगा शहर, एक तरफ चले हथौड़े, दूसरी तरफ लाठियां। मोहन यादव की पुलिस बनाम पत्थरबाज, महिलाओं को आगे कर किया फसाद, न शहर काजी की सुनी न कोर्ट की। उज्जैन में उग्र फसादियों की जमात,
4: पत्थर फेंकने
3: 10 मंदिर हटे, कोई हंगामा नहीं बचा। सीएम ने पुश्तैनी घर पर खुद गैती चलाई, मगर मस्जिद के अतिक्रमण पर बवाल मच गया। सिंहस्थ 2028 का मास्टर प्लान, उज्जैन में घमासान।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। महाकाल की नगरी उज्जैन में शाही मस्जिद के अतिक्रमण को हटाने को लेकर इस समय बवाल है। दरअसल उज्जैन में 2028 में 27 मार्च से 27 मई तक सिंहस्थ महाकुंभ होने वाला है। करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां जुटेंगे, ये उम्मीद है। अगर लाखों श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी के तट पर जाना है तो रास्ते को लगभग 15 मीटर चौड़ा करना जरूरी है। इसके लिए नगर निगम ने उज्जैन मास्टर प्लान के तहत 10 मंदिरों को पहले ही हटा दिया है, क्योंकि सड़क

0: मंदिर हटाए गए। अच्छा, दाऊदी बोहरा समुदाय की एक मस्जिद को भी हटाया गया, दोनों पर कोई विरोध नहीं हुआ। 10 मंदिर हटाए गए, कोई बवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। दाऊदी बोहरा की एक मस्जिद हटाई गई, कोई विरोध नहीं। यहां जब शाही मस्जिद का एक अतिक्रमण, एक हिस्सा अतिक्रमण के अंदर आया, तो उसे हटाने के लिए प्रशासन ने शहर काजी से बाकायदा बात की, शहर काजी से सहमति ली, मस्जिद के उस अवैध हिस्से को गिराने के लिए कार्रवाई आज शुरू होनी थी। वो हिस्सा प्रशासन नहीं, खुद मुस्लिम समुदाय हटा रहा है। लेकिन इस बीच मुसलमानों का एक और गुट कहीं से आया, अफवाह फैलाई कि यहां पर मस्जिद हटाई जा रही है, और फिर हिंसा करने में जुट गए। अगर प्रशासन की माने तो इस गुट में उपद्रवियों की एक बड़ी जमात है। बाजान बूझकर एक अफवाह फैलाई गई कि पूरी की पूरी मस्जिद हटाई जा रही है, जबकि केवल एक हिस्सा जो अतिक्रमण का हिस्सा था, जो सड़क चौड़ीकरण में आ रहा था, वही हटाया जा रहा था। उपद्रवियों की इसी जमात ने आज सवेरे से पत्थरबाजी शुरू की। अच्छा, एक इन्होंने बढ़िया तैयारी करके पहले महिलाओं को आगे रखा, महिलाओं को आगे रखा और फिर पीछे से पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन अब पुलिस भी ये टेम्पलेट समझ गई है, क्योंकि यही पहले भी कर चुके हैं। 2020 की भी अगर बात करें तो शाहीन बाग में भी दादियों को आगे कर दिया और पीछे से सब बवाल करते रहे। यही बात उत्तर पूर्व दिल्ली में भी करते रहे, महिलाओं को आगे कर दिया और फिर पीछे से पत्थरबाजी करने लगे, हुड़दंग मचाने लगे। ये अब एक बिल्कुल टेम्पलेट सा हो गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि बुर्का पहना के महिलाओं को आगे कर दो और पीछे से पत्थरबाजी करो। लेकिन 2020 से 2026 तक पुलिस काफी कुछ सीख भी चुकी है। जवाब में पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, तो फिर वो महिलाएं जब आंसू गैस के गोले दागने से हटी, उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया, क्योंकि उपद्रवियों की भीड़ ने फिर पथराव पुलिस पे शुरू किया। पुलिस ने फिर जोरदार एक्शन किया और पत्थरबाजों को फिर पीछे धकेला। कल इसी जगह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। दरअसल इसी इलाके में उनका पुश्तैनी मकान भी है। ये मकान 1974 में, यानी लगभग 50-52 वर्ष पूर्व, उनके दादाजी ने इस घर को बनवाया था। इसका भी करीब 10 फीट हिस्सा रास्ते को चौड़ा करने के बीच में आ रहा था, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद पहले पूजा की और फिर वो हिस्सा जो सड़क चौड़ाकरण में आ रहा था, चौड़ीकरण में, उसको उन्होंने तोड़ने की शुरुआत खुद की। रात को नगर निगम के बुलडोजर और ट्रक पहुंचे, लेकिन जब ये मस्जिद का वैध हिस्सा हटाने के लिए पहुंचे तो मुसलमानों का एक गुट वहां धरने पर आकर बैठ गया। पुलिस के मुताबिक इसमें कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे, कहीं और से आकर इसमें शामिल हो गए थे, और फिर वही लोग जो वहां के लोकल लोग थे उनको बहका रहे थे, और फिर उपद्रवियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उज्जैन पुलिस ने करीब 10 लोगों को अब हिरासत में ले लिया है। इनमें से 5 वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे थे। ये भी अब एक टेम्पलेट सी बन गई है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अफवाहें फैलाओ, लोगों को इकट्ठा करो और फिर बवाल करो। 5 लोग वो हैं जो बाहर से आए थे, हिंसा फैलाना उनका मकसद था, ऐसा उज्जैन पुलिस का दावा है। उज्जैन में कुछ और लोग जो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, आज उन्हें भी प्रिवेंटिव कस्टडी में, हिरासत में ले लिया गया है। आज तक लगातार ग्राउंड जीरो पर है, ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आपको दे रहा था, और इस वक्त मेरे सहयोगी रवीशपाल सिंह भी उज्जैन में मौजूद है। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें वो खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय शाही मस्जिद के उस हिस्से को खुद तोड़ रहा था जो उनको बताया गया था, जो अतिक्रमण के अंतर्गत आ रहा था। खुद शहर काजी को जब बताया गया तो वो उसको हटा रहे थे, लेकिन फिर ये बाहर से लोग आए, इनका मकसद क्या था, इसकी पड़ताल होगी। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट।
1: उज्जैन में जिस शाही मस्जिद को हटाने के नाम पर आज उपद्रव हुआ है, दरअसल उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे समाज के लोग खुद ही अपने हाथों से उस मस्जिद के हिस्से को हथौड़े से हटा रहे हैं। आप तस्वीरों में अगर आप सामने देखें तो यही वो तमाम लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, और इनको ही यहाँ भेजा गया है इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि जो सहमति बनी थी शहर काजी के साथ कल रात को, उस सहमति के बाद इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने हाथों से

0: ही आकर के यहाँ पे उस हटाए उसे, लेकिन उसके बाद अचानक से सुबह जो है एक गुट यहाँ पे इकट्ठा होता है और उस वक्त यहाँ पे उपद्रव शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, लाठीचार्ज करना पड़ता है और उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ता है। तो ये हालात जो है फिलहाल इस वक्त उज्जैन में है, लेकिन इन सब के बीच में ये वो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे समाज के जो लोग हैं वो खुद अपने हाथों से उस मस्जिद को हटाने का काम अब शुरू कर चुके हैं। तो जहां एक तरफ लगातार उपद्रव के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई है, लोगों को खदेड़ा है, तो उन सब के बीच में फिलहाल इस शाही मस्जिद का जो हिस्सा है जो चौड़ीकरण की जद में आ रहा है उसे हटाने का काम भी शुरू हो गया है। चौड़ीकरण क्यों करना है हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वो गोपाल मंदिर है और इस वक्त हम छत्री चौक पे खड़े हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा इलाका है, सिंहस्थ के समय में एक तरीके से भीड़ का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि यही प्रमुख बाजार हैं, सारी दुकानें हैं यहाँ पे, और जो भी लोग स्नान करते हैं या उज्जैन आते हैं कुंभ के टाइम, सिंहस्थ के टाइम, वो इस इलाके में जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि यहां से ही बाकी जो सिंहस्थ क्षेत्र होता है, अंकपात मार्ग हो, मंगलनाथ हो, काल भैरव की तरफ जाना हो, तो वो भीड़ भी होती है। दूसरी तरफ केडी गेट की तरफ जाने वाला इलाका हो या फिर रामघाट दत्त अखाड़ा की तरफ जाने वाला इलाका हो, कार्तिक मेला जहाँ पे पूरा आगे सिंहस्थ क्षेत्र लग जाता है, अखाड़े जहाँ पे आते हैं वहां पर जाने का इलाका हो, तो ये केंद्र बिंदु होता है भीड़ का। और इसीलिए इसका कुछ हिस्सा जो है, इस सड़क को चौड़ीकरण जब होना है तो इस मस्जिद का, शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा था जिसे हटाने को लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ था, लेकिन शहर काजी के साथ सहमति बनने के बाद समाज के लोगों ने खुद अपने हाथों से इसे हटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि एक दूसरा गुट जब यहां पे इकट्ठा हुआ तो उसने इसका विरोध किया, न केवल विरोध किया बल्कि यहां पे पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग कर फिलहाल हालात को अपने काबू में करना पड़ा। रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
1: आपने तस्वीरों में देखा जब प्रशासन शहर काजी के पास गया, नक्शा दिखाया, समझाया, अतिक्रमण के बारे में बताया और यह कहा कि केवल जिस इलाके में अतिक्रमण है केवल उतना ही हिस्सा वो खुद हटा लें। अच्छा, खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के उस हिस्से को, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, उसको हटाया जहां अतिक्रमण हुआ था। शहर काजी ने मुसलमानों को बता दिया था कि प्रशासन से वो बात करके ही वो हिस्सा हटाया जा रहा है। यह भी कहा था कि मुसलमान अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने घरों में ही रहें, और इसके बावजूद कुछ लोग इकट्ठा हुए, उपद्रव मचाने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे। ये इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप खुद सुनिए कि शहर काजी ने इस बाबत क्या कहा, सुनिए।
2: बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाजारों में न खड़े हों, बाजारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम वहां जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपना काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाह उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
1: तो आपने शहर काजी को सुना कि वो खुद कह चुके हैं बवाल ना करें, घरों से ना निकले, ना इकट्ठा हो, सब सुचारू रूप से चल रहा है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर शहर काजी के कहने के बाद, प्रशासन के समझाने के बाद, कौन थे ये लोग, कहां से आए और खासतौर पर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है कौन है वो लोग?
0: बिल्कुल गौरव, लेकिन उससे पहले हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल से बकायदा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं इस पूरे घटना के बाद, क्योंकि उपेंद्र जैन जो हैं वो बकायदा 2004 के सिंहस्थ में बतौर उज्जैन एसपी भी उनकी सेवाएं रही थी, तो उनके पास उज्जैन का जितना इस वक्त अनुभव होगा उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा। और साथ ही में ये जो पूरा इलाका है, जो प्रभावित इलाका है, उसके आसपास जो पथराव हुआ था उसी जगह पर लगातार दौरा किया है उपेंद्र जैन और तमाम बड़े अफसर जो हैं मध्यप्रदेश पुलिस के, स्थानीय प्रशासन के, और इसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये वो कौन लोग थे जिन्होंने अफवाह फैलाई। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को जो गिरफ्तार किया है गौरव, उनमें से 5 तो वही लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आरोप ये है कि उन्होंने AI जनरेटेड वीडियोज बनाए और इस तरीके की भ्रामक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की या ऐसे बयान और भाषण वायरल किए जिससे एक अफवाह फैली और तेजी से लोग जो है वो छतरी चौक इलाके में जाकर के इकट्ठा हो गए और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके साथ ही 5 ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं जो उज्जैन के रहने वाले नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं। आखिर उज्जैन में उनका क्या काम था, वो क्या करने आ रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही कि उनमें से कुछ एक लोग जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। लेकिन 5 लोग ऐसे जिनका उज्जैन से कोई सरोकार नहीं है, वो आज उज्जैन आ रहे थे। उनको उज्जैन आने से पहले बॉर्डर पे गिरफ्तार किया गया है। 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब लगातार जो है दौरे कर रही है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये समझने की कोशिश कर रही है कि और कहाँ पे बंदोबस्त बैठाया जा सकता है, कहाँ पे बैरिकेड्स और लगाए जा सकते हैं, कितना फोर्स और जरूरी होगा।
1: अच्छा, ये बताइए क्या स्थिति
0: एक तरीके से सिंहस्थ का सामने,
1: क्या अब स्थिति शांत हो गई है या अभी भी तनाव दोबारा बढ़ सकता है, इस बात की भी आशंका है?
0: देखिए, स्थिति अभी फिलहाल काबू में है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक दो बार पथराव हुए थे, क्योंकि पहले भी यही माना जा रहा था कि स्थिति काबू में है, लेकिन अचानक से दोपहर को फिर पथराव हुआ। हालांकि उसके बाद फोर्स को और बढ़ाया गया, वरिष्ठ अफसर भी भोपाल से पहुंचे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है बैरिकेडिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सड़क पे जो पत्थर थे उन्हें भी हटाने की कोशिश अब यहाँ पे पुलिस ने शुरू कर दी है। अगर आप देखें तो वज्र वाहन को भी इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्यों आखिरकार उज्जैन के इस हिस्से में विवाद हुआ, रोड क्यों चौड़ी करना जरूरी है। देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप ये पूरी सड़क अगर इससे पहले देखें तो आप महज 30 मीटर के आसपास चौड़ी थी, जिसे आज की तारीख में 90 मीटर चौड़ा किया गया। और अगर आप इन घरों को देखें गौरव, तो ये जो घर हैं, आप जो टूटे हुए मकान देख रहे हैं, ये दरअसल सड़क चौड़ी करने के लिए ही तोड़े गए थे। ऐसे ही उज्जैन में हजारों मकान, दुकान, धार्मिक स्थान जो है उन्हें हटाया गया है, अलग विस्थापित किया गया है, ताकि करोड़ों लोग जब उज्जैन आएंगे, घाटों की ओर जाएंगे, तो इन्हीं रास्तों से वो भीड़ जानी है। तो हालात भयावह ना हो, भीड़ को बड़ी जगह मिले निकलने के लिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो बड़े हों, चौड़े हों, इसीलिए जो है रोड को चौड़ा किया जा रहा है। लेकिन इसी में कई ऐसे मंदिर हैं, उन्हें भी हटाया गया। इससे पहले 2 मस्जिदें, एक बोहरा समुदाय से जुड़ी हुई थी, उन्हें भी हटाया गया, लेकिन तब विवाद नहीं हुआ। लेकिन और आज जो विवाद हुआ है वो भी सोचिए सहमति बन चुकी थी, और जो समाज के लोग हैं वो खुद अपने हाथों से मस्जिद को हटा रहे
1: हैं। यही बड़ा प्रश्न है कि कौन है ये लोग जो बाहर से आए और उपद्रव मचाने की साजिश रच रहे थे। ये बड़ी बात है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि सिंहस्थ से पहले क्या इंदौर को सुलगाने की इन लोगों की साजिश, उज्जैन को सुलगाने की इनकी साजिश है, एक बड़ा प्रश्न है। आपने शहर काजी की बात सुनी, अब हम आपको उज्जैन के उस ऐतिहासिक मस्जिद के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल ये महाकालेश्वर मंदिर के लगभग सामने और शिप्रा नदी के निकट है। प्रशासन के दावों के मुताबिक करीब 600 वर्ष पुरानी यह वक्फ की संपत्ति है। उज्जैन नगर निगम सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों के तहत कंठाल चौराहे पर वहां से लेकर गोपाल मंदिर तक की जो सड़क है उसको 15 मीटर यह चौड़ा करना उनका मकसद है। 730 मीटर लंबे मार्ग के अलाइनमेंट में, क्योंकि आपको बिल्कुल सीधी सड़क, जितनी चौड़ी सड़क मिल सके यह प्रयास है। जब करोड़ों लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की उज्जैन में होगी, तो जब सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था तो शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा उसमें आ रहा था। 120 फीट ऊंची मीनार का हिस्सा, प्रार्थना हॉल जिसे जमात खाना कहते हैं या कुछ हिस्सा, और मजहर चौक शामिल है। कल जब नगर निगम की टीमें पहुंची कार्रवाई करने के लिए, तो स्थानीय मुस्लिम समुदाय है, सैकड़ों लोग मस्जिद के भीतर इकट्ठा हुए, बाहर भी इकट्ठा थे। उन्होंने पूरी रात शांतिपूर्ण धरना दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नगर निगम के नोटिस को सही ठहराया, जिसके खिलाफ मस्जिद समिति जो थी वो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में उसने अपील की। लेकिन डिवीजन बेंच से भी, यानी 2 जजों की पीठ से भी, खंडपीठ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के मार्ग में आने वाली, इससे पहले यह बात भी आप जानते, 10 मंदिरों को हटाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 मंदिर हटा दिए गए थे, कोई बवाल नहीं हुआ। इसी महीने की शुरुआत में बोहरा समुदाय की जो हुसामी मस्जिद है उसके भी कुछ हिस्सों को हटाया गया, वो भी आपसी सहमति से ही हटाया गया, कोई बवाल नहीं हुआ। नगर निगम के मुताबिक पूरे उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के लिए लगभग 80 धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण या सड़क बाधित करने वाले हिस्सों को कानूनी रूप से हटाया जा रहा है। बकायदा इसके लिए मास्टर प्लान पास हुआ है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो पुश्तैनी जमीन या पुश्तैनी उनका घर है, वो भी जब इसकी जद में आया तो उसका भी जो हिस्सा इसकी जद में आ रहा था, उज्जैन नगर निगम ने मोहन यादव की बहन कलावती यादव से कहा कि आप अपने घर को अपने खर्च पर तुड़वा दें। अच्छा, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
0: कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार गलियों से बाहर निकल रहे हैं और स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त देखिए, हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया टुडे पे एक्सक्लूसिव की किस तरीके से अभी फिर से पथरा हुआ है। ये अगर आप देखें जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और कितने बड़े बड़े साइज के पत्थर जो है वो यहाँ पे फेंक रहे हैं, आप देखिए इसका साइज देखिए आप, ये इतना बड़ा पत्थर है ये, और इस तरीके के कई सारे पत्थर और ईंटें जो है वो यहाँ पे लगातार फेंके जा रहे हैं पुलिस के ऊपर, और इसीलिए यहाँ पे हालात इस तरीके से बन रहे हैं। सामने की छतों से जो है लगातार पथराव हो रहा है। ये देखिए आप सड़क देखिए इस वक्त कितनी पूरी तरीके से स्टोन पेल्टिंग के बाद क्या स्थिति बन गई, और ये देखिए ये सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर जो है वो यहाँ पे इस तरीके से फेंके जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। और क्योंकि ये एकदम एपिसेंटर है इस पूरे वायलेंस का, ये सामने आप देखिए, हम आपको बैरिकेड से दूसरी तरफ दिखाते हैं, ये वो शाही मॉस्क है जिसके हिस्से को हटाने को लेकर के ये पूरा बवाल शुरू हुआ। सामने ही वो आप देख रहे हैं, और उसके ठीक पास की ये जगह है जहाँ पे इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी तरीके से पुलिस ने इस इलाके को अपने घेरे में ले लिया है, और इसी मॉस्क का हिस्सा जो है वो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के तहत हटना है। और इस तरफ अगर आप देखें तो लगातार आपको ये तमाम पुलिस वाले दिख जाएंगे। पुलिस ने बैरिकेड लगा के अब लोगों को यहाँ से पूरी तरीके से खदेड़ दिया। यहाँ पे किसी के भी आने के फिलहाल मनाही है, लेकिन आप देखें अगर ये आसपास की जितनी बिल्डिंग्स को भी आप देख रहे हैं ये भी आपको टूटी हुई दिखेंगी, और टूटी हुई इसलिए है ये सभी बिल्डिंग्स, ये सभी घर थे, इनमें दुकानें थी, कई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे, और इसलिए हटाया गया क्योंकि इस पूरी रोड को वाइड होना है। क्योंकि ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं जो बिल्कुल सीधे जा रही है, ये आगे जाकर के उज्जैन का जो प्रमुख घाट है, राम घाट हो गया या फिर आगे कार्तिक मेला ग्राउंड पड़ता है, तो सिंहस्थ के दौरान सबसे ज्यादा जो दबाव रहने वाला है भीड़ का वो इसी रोड पर रहने वाला है। क्योंकि ना केवल उज्जैन से बल्कि आसपास के अन्य राज्यों से आने वाले लोग भी जो हैं वो इन्हीं सड़क का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर उन्हें भले पुराने शहर में रहना हो या अंकपात या मंगलनाथ की तरफ जाना हो या फिर रामघाट दत्त अखाड़ा इस तरफ जाना हो स्नान के लिए, वो इसी सड़क का इस्तेमाल करके निकलेंगे। तो यहाँ पे इस रोड को वाइड होना है, रिलीजियस स्ट्रक्चर भी काफी है जिनको हटना है, हटाए भी काफी जा चुके हैं, तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा मंदिरों को हटाया जा चुका है।
1: अच्छा, उज्जैन प्रशासन को वैसे इस बात की आशंका थी कि जब शाही मस्जिद में कार्रवाई होगी या कार्रवाई को लेकर माहौल बिगड़ भी सकता है, और इसी वजह से प्रशासन ने पहले ही शहर काजी से भी बात की, मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों से भी पहले बात कर ली थी कि आप समझाइए बुझाइए कि अगर बाहर से कोई लोग आए बवाल मचाने की कोशिश करें तो लोग अपने घरों में रहें। आज जब पुलिस शाही मस्जिद की ओर बढ़ने लगी तो लाउडस्पीकर पर बकायदा मुस्लिम समुदाय को बताया जा रहा था कि धार्मिक नेता उनके समुदाय के धार्मिक नेताओं की सहमति के बाद ही कार्रवाई होगी। अच्छा, आप खुद सुनिए पुलिस किस तरह ये चाहती थी कि स्थिति ना बिगड़े, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए लोगों को बरगला रहे थे, और उसके बाद जो हालात पैदा हुए उस पर उज्जैन के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा वो भी सुनिए।
3: कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जो कानून के विरुद्ध हो, आपकी मंशा के अनुरूप ही आपके बड़े लोगों का चर्चा के अनुसार ही आपके बड़े लोगों कार्रवाई की जा रही है। कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जो कानून के विरुद्ध हो, आपकी मंशा के अनुरूप ही आपके बड़े लोगों का चर्चा के अनुसार ही आपके बड़े लोगों कार्रवाई की जा रही है।
4: जैसा आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद कमेटी द्वारा खुद ही अपने मस्जिद में जो हिस्सा उनका चौड़ीकरण में आ रहा है उसको अपने सर्व सहमति और सहयोग के साथ सिंहस 2028 को दृष्टिगत रखते हुए तोड़ा जा रहा है, परंतु एक पक्ष के द्वारा इस दौरान फायदा उठाने का प्रयास किया गया और जो बल तैनात था उसके द्वारा तत्काल रिटेलिएट किया गया और उन पे टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया। हम सभी जगह से पेरीमीटर सिक्योर करके रखे हैं, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, 5 ऐसे लोग जो जिले के बाहर के हैं और उज्जैन में आकर फिजा खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया बॉर्डर पर ही। और ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी हमने FIR किए जो अफवाहें और भड़काऊ कंटेंट अपने लगातार हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं।
5: जैसा आपको विदित है, सिंहस्थ 2028 में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब आएंगे यहाँ पे तो उनकी व्यवस्थाओं को करना बहुत आवश्यक है। इसी के क्रम में अनेक विकास कार्य चल रहे हैं। जो सबसे अच्छी चीज जो देखने में आई है, यहाँ के लोग स्वयं अपने हाथों से विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो या धर्म हो या समुदाय के लोग हो, समाजजन हो, सभी लोग अपने हाथों से चौड़ीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इसमें कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए। आज इसी क्रम में यह जो है विषय है छतरी चौक पर जो धर्मस्थल है उसको भी मास्टर प्लानिंग के हिसाब से जो चौड़ीकरण करने का जो कार्य है ये समाजजनों के द्वारा, धर्मजनों के द्वारा, उनके द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा स्वतः।
1: अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK में भारत के साथ होने की आवाजें अब उठ रही हैं। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के मढ़ोल में 25,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। यह कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, सीधे तौर पर पाकिस्तान के कब्जे को, अवैध कब्जे को खत्म करने की पुरजोर ललकार है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK के मढ़ोल गांव में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने वहां के लोगों से 3 मांगों पर हामी भरवा ली। पहली, सीज फायर लाइन खत्म होनी चाहिए। दूसरी, सीज फायर लाइन पर धरना होना चाहिए। और तीसरी, पुंछ मेंढर का रास्ता खुलना चाहिए। आपको बता दें, मैदान में मौजूद हर एक शख्स ने तीनों सवालों का एक ही जवाब में हां उत्तर दिया। समिति के नेताओं ने साफ कर दिया कि वो आजाद कश्मीर के नाम पर चलाए जा रहे इस गैर कानूनी कब्जे यानी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से नफरत करते हैं, उसे नकारते हैं और इसे पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका मानते हैं। आने वाले दिनों में LOC की बाढ़ पर एक बड़े धरने की भी तैयारी है। सुनिए,
6: एक एक गांव के अंदर प्रोग्राम करेंगे और हम इस सीज फायर लाइन को कश्मीरी नहीं मानते, हम इस सीज फायर लाइन को खत्म करना चाहते हैं। मान दो खबर, सीज फायर लाइन का खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान दो जोर से, सीज फायर लाइन का खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रास्ता खोलने के लिए क्या धरना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आप तैयार है इस बात के लिए? आप तैयार है इस बात के लिए? सीज फायर लाइन के खात्मे के लिए तैयार है? इंशाल्लाह तआला इनसे बात कहना चाहते हैं, हम बिल्कुल इनसे बात कहना चाहते हैं।
1: वैसे 1971 के बाद अब वो सीज फायर लाइन नहीं, LOC है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
9: अब पर वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
10: मेरे पास एक आइडिया।
8: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
11: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
12: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा TMT से बना है।
13: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बाहर से बना है।
14: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
15: तो कौन सी बनानी है?
16: एकदम सॉरी,
17: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
18: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
19: आई लाइक दिस ओनली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार धोती ठुमका लगाने बस।
11: मेरे पास एक आइडिया है।
10: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
12: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता पर स्टेज नहीं हिलता,
13: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
14: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?

0: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
2: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
3: कौन भय में जी रहा है?
2: नागरिक जी रहे हैं।
3: हाँ, भारत में
2: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: पीस प्लान खारिज होने से बढ़ गई टेंशन। ब्रिटिश एयरबेस पर पकड़े गए लोगों का ईरान कनेक्शन। फिर आ रही है मिसाइल हमलों की बारी। विनाश से बचने के लिए ईरान की खुफिया तैयारी। हुर्मुज में फिर मचेगा कोहराम। ईरान की सेना ने क्यों दिया ट्रंप को भड़काने वाला बयान। शर्तों पर अड़ा हुआ है ईरान, कतर कैसे निकालेगा समाधान। हर दिन नया बयान, हर दिन घमासान। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलों का शोर बेशक थमा हुआ हो, लेकिन बातों के बम हर दिन बरस रहे हैं। खुद की पीठ थपथपाते हुए, दुश्मन को चढ़ाते हुए।
1: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। संयुक्त राष्ट्र की महासभाएं कूटनीति के मोर्चे पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, वो यहां जुटते हैं। हमने न्यूयॉर्क में ये पिछले हफ्ते देखा। कई दुश्मन देश एक दूसरे के सामने भी होते हैं, आमने सामने बातचीत भी होती है, एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन वहां बम से नहीं बल्कि अपनी बातों से गुस्सा निकालना होता है। एक दूसरे पर एक तरह से कहा जाए तो शब्द बाण फेंके जाते हैं, शब्द लेकिन नपे तुले होनी चाहिए, और वहीं सब अपनी बात रखते हैं। ईरान ने भी यही किया, इसराइल ने भी, यूक्रेन ने भी यही किया, रूस ने भी। ईरान ने तो 7 दिन में हॉर्मूज खोलने का प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव अमेरिका के सामने भी यही रखा, और एक बार तो ऐसा लगा कि संभवतः स्थायी सीजफायर होने वाला है, लेकिन 24 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस पीस प्लान की धज्जियां उड़ा के रख दी और दो टूक कह दिया कि हॉर्मूज पर तो अमेरिका का नियंत्रण है, ईरान वैसे ही युद्ध हार रहा है। और कैसा प्रस्ताव और कैसी शर्तें ईरान से। खैर, इस तरह की बातें आपने सुनी। ईरान ने भी कह दिया कि हॉर्मूज हमारे कब्जे में है और पूरी तरह से हम इस युद्ध को आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका की स्थिति अब मजबूत नहीं है जैसे मार्च के महीने में थी, और ईरान वैसा कमजोर नहीं है जैसा 28 फरवरी को था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन में समय हड़कंप मचा है क्योंकि ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले एयरबेस में से एक पर 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, और यह वही एयरबेस है जिसका इस्तेमाल अमेरिका कई वर्षों से मध्य पूर्व में अलग अलग युद्धों के लिए अपने बमवर्षक विमानों को उड़ाने के लिए करता रहा है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसी ब्रिटिश एयरबेस से जुड़ी एक बड़ी खबर विस्तार से बताते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ब्रिटेन में एक एयरबेस है जहां पर अमेरिका के सैन्य विमान आकर वहां रहते हैं। इस एयरबेस पर 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा है। दरअसल ये दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में ग्लॉस्टर में RAF फेफर्ड यानी रॉयल एयरफोर्स का फेफर्ड एयरबेस है। ब्रिटिश काउंटर टेररिज्म पुलिस के मुताबिक 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं विस्फोटक एक्ट के तहत उनको हिरासत में लिया गया है। उन पर एक बड़ी आतंकी कार्रवाई की तैयारी में भाग लेने का शक है और इसीलिए अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, 5 लोग पुलिस की कस्टडी में है। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पकड़े गए जो लोग हैं ये उस एयरबेस पर भारी नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। आइए इस खबर को आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दरअसल कहा क्या।
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
3: Were they migrants?
2: It may have been Scotland Yard. I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
1: आपने सुना अमेरिका के राष्ट्रपति को, उन्होंने कहा एक लंबे समय से इन लोगों पर नजर थी, लेकिन जैसे ही ये अपनी बड़ी गाड़ी में वहां पहुंच रहे थे उसी समय इनको हिरासत में ले लिया। अच्छा, क्या ब्रिटेन में अमेरिकी एयरबेस पर बड़े आतंकी हमले का प्लान था, ये साजिश थी, इसी का अंदेशा है? ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस फेफर्ड में बहुत जबरदस्त समय हड़कंप है। अच्छा यहां पर अमेरिका के B-1B लैंसर्स या अमेरिका के बड़े बड़े बॉमर विमान आकर न केवल यहां रहते हैं रखे जाते हैं बल्कि उनमें हथियार यहीं पर लादे जाते हैं जो रॉयल एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स दोनों यहां पर स्थायी रूप से तैनात रहते हैं। एक किसान ने 999 पर फोन कर नकाबपोश लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी दी। किसान के मुताबिक 3 सफेद वैन ने सड़क को घेरा हुआ था। सफेद वैन जो हर तरफ से ढकी हुई थी। 10 मिनट के अंदर पुलिस ने गांव को घेरा और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। अच्छा, रोबोट के जरिए जब वाहनों की तलाशी ली गई ताकि अगर कोई विस्फोटक है तो रोबोट को नुकसान हो, इंसानों का ना हो, ये तलाश अब भी जारी है। गांव का गांव खाली कराया गया ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी एयरबेस पर अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए अपने विमान यहीं से उड़ाए थे। ये उनका सबसे सिक्योर एयरबेस समझा जाता है। पुलिस पूछताछ कर रही है, ईरान के इस कनेक्शन को खंगाल रही है। औपचारिक तौर पर तो ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो वहां ब्रिटेन में विशेषज्ञ हैं उनका आकलन यही है कि ये आतंकवादी इसी एयरबेस पर अमेरिका के विमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मार्च में 3 USB-1B लैंसर्स, ये बॉमर्स हैं, यानी अमेरिका के भारी बमवर्षक विमान हैं, इसी फेफर्ड बेस पे ये उतरे हुए थे। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि ईरान का आरोप है कि इसी एयरबेस से उस पर एयर स्ट्राइक की गई थी। अब ईरान ये कह चुका है, आप जानते ही हैं, कि कहीं से भी अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पलटवार करेगा और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाने को वो तैयार है। ईरान ने हमला करने में अमेरिका की मदद करने वाले एयरबेस को चेतावनी दे दी थी, चाहे वो मध्य पूर्व में हो या दुनिया के किसी भी भाग में हो। ईरान ने हमला करने में अमेरिका की मदद करने वाले एयरबेसिस को वो टारगेट करेंगे, ऐसा औपचारिक तौर पर कह दिया था। अच्छा, इसी बीच आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ब्रिटेन के इस बेहद संवेदनशील, बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस को ईरान पर अमेरिकी हमले का के लिए क्यों इजाजत दी गई थी। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जब शुरू में अपील भी की थी तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उन्हें ठुकरा दिया था। आरएफ फेफर्ड और हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया का ब्रिटेन का बेस है, ये हम आपको दोनों फिर विस्तार से बताते हैं। ये दोनों ही अमेरिका के लिए इस समय बेहद महत्वपूर्ण बेसेस हैं। अब आप दुनिया का ये मानचित्र देखिए, दुनिया के इस मानचित्र में, इस नक्शे में आप ईरान की स्थिति देखिए, ईरान की भौगोलिक स्थिति, और अमेरिका अटलांटिक महासागर के भी उस पार है। तो हमला करने के लिए अमेरिका को पास आने की आवश्यकता है अगर वो लगातार स्थायी हमले करने हो तो। इसके लिए ग्लोस्टरशायर में एयरबेस है, या अमेरिकी एयरफोर्स ने 2003 में इराक पर जो हमला किया था तब भी इस एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। 9/11 के बाद अफगानिस्तान के लिए B-1B जो रिफ्यूलर्स थे उनको, ये देखिए, ये हिंद महासागर, यहां भारत को देख रहे हैं। भारत से अगर आप बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाए तो यहां पर डिएगो गार्सिया का बेस है। यह हिंद महासागर में अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा बेस है, अमेरिका और ब्रिटेन का, नेटो का, यह एक तरह से कहा जाए नेटो फोर्सेस यहां तैनात हैं। ईरान ने मार्च में 2 मिसाइलें डिएगो गार्सिया पर दागी थी, लेकिन आप सोचिए 4000 किलोमीटर दूर उन्होंने मिसाइलें दागी, वो मिसाइलें पहुंच नहीं पाई, लेकिन एक संदेश उस समय ईरान दे रहा था कि हम डिएगो गार्सिया को भी टारगेट कर सकते हैं। और अमेरिका बार बार इस बात की चेतावनी दे रहा है, ईरान चेतावनी दे रहा है, और अमेरिका ये कह चुका है कि ईरान अब तैयारी कर रहा है, वो यूरोप पर हमला करेगा। और इसीलिए ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं होनी चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार इसी बात को कह रहे हैं। अच्छा, इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा इस समय बढ़ गई है। क्यों? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है, बल्कि जिस बयान के साथ खारिज किया है वो मध्य पूर्व में युद्ध के डर को और बढ़ाने वाला है। यह सिर्फ एक बयान था या फिर घमासान और तेज करने का संकेत था, इशारा था। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: शांति का प्लान गिरा धड़ाम, अब तेज होगा घमासान। आईआरजीसी का ऐलान, अमेरिका ने किया हमला तो मचा देंगे कोहराम। ईरान को अभी भी उम्मीद, डिप्लोमेसी से ही निकलेगा समाधान। एक तरफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वार पलटवार के बीच ईरान 7 दिन में शांति वाला प्रस्ताव लेकर आया, तो कुछ ही घंटों में ट्रंप ने पूरे के पूरे पीस प्लान की हवा निकाल दी।
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night, we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal, too. But...
0: ट्रंप के इस बयान के बाद इस बात का डर बढ़ गया है कि जल्दी ही अमेरिका फिर से ईरान पर हमलों की बौछार कर सकता है। लेकिन क्या ट्रंप मिड टर्म चुनाव की वजह से नवंबर तक रुकेंगे या फिर उससे पहले ही बमबारी शुरू हो जाएगी? ईरान एक तरफ जहां इस सवाल का जवाब खोजने में लगा है, वहीं किसी भी तरह के संभावित हमले की तैयारियों में भी जुट गया है। आईआरजीसी का दावा तो ये है कि वो अब पहले से मजबूत है और हर तरह के हमले का जवाब देने के काबिल भी।
2: अमेरिका इस क्षेत्र में अच्छी स्थिति में नहीं है, यह एक तथ्य है। अगर अमेरिका वास्तव में मजबूत स्थिति में होता तो वह हालात बदलने के लिए इतनी कोशिशें नहीं करता। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए न तो फायदेमंद है और न ही उसकी इच्छा के मुताबिक है। इसलिए अमेरिका किसी तरह की सैन्य कार्रवाई, आक्रामक कदम या हमला कर सकता है, पर आज हम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार है। 28 फरवरी को युद्ध और हमले की शुरुआत के समय की तुलना में अब हम वास्तव में बेहतर तरीके से तैयार हैं। मनोबल, हौसले, मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास के साथ साथ हथियारों और सैन्य उपकरणों के मामले में भी हमारी तैयारी बेहतर है। हमने अपने सैन्य उपकरणों को अपग्रेड करने, अपनी सेना में नई प्रणालियों को शामिल करने और उनके साथ प्रशिक्षण लेने पर काफी काम किया है।
0: ईरान दरअसल दोनों मोर्चों पर अपने पत्ते खुले रखना चाहता है, सैन्य मोर्चे पर भी और कूटनीति के मोर्चे पर भी। यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची राष्ट्रपति पेदिशकियान के लौटने के बावजूद अमेरिका में डटे रहे और अलग अलग मीटिंग करते रहे। अब जब ट्रंप ने उनका पीस प्लान वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया है तो भी उन्हें उम्मीद है कि इस युद्ध का समाधान डिप्लोमेसी से निकल सकता है।
3: میانجی ها چیز ما منتقل نشده، البته رئیس جمهور آمریکا هم خب حرف های ضد و نقیض متاسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
0: ایران که خود پر بڑھ رہے بھروسے کی دو وجہ مانی جا رہی ہیں، एक तो सीज फायर के दौरान उसने अपने मिसाइल लॉन्चर और एंटी मिसाइल सिस्टम दुरुस्त किए हैं, साथ ही बर्बाद हुए मिसाइल स्टोरेज साइट को भी तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ इस युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियारों में तेजी से कमी आ रही है, जिसकी वजह से उसे कई बार ऑपरेशन धीमा करना पड़ा है। अब दोनों के बीच सबसे बड़ा पेच होर्मुज का ही फंसा हुआ है। ईरान को हर रोज अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से लाखों बैरल तेल का निर्यात न होने से भारी नुकसान हो रहा है। उधर हूतियों के हमले से परेशान सऊदी अरब के लाल सागर वाली तेल सप्लाई लाइन पर भी बुरा असर हुआ है और जहाजों की आवाजाही का दबाव वापस लौटकर होर्मुज पर ही आ गया है। जो हालात फिलहाल है उनमें मिसाइलें कभी भी फिर से गरज सकती हैं, क्योंकि ना तो अमेरिका तलखी छोड़ने को तैयार है न ही ईरान अब पीछे हटने को तैयार है। आज तक ब्यूरो।
4: इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने होर्मुज में एक और अमेरिकी अंडरवाटर ड्रोन पर कब्जा करने का बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक ये अमेरिकी रीमस 600 ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल नाम से अंडरवाटर ड्रोन था जो होर्मुज में जासूसी के मकसद से काम कर रहा था। ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने ड्रोन से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। आईआरजीसी ने कहा है कि इस ऑपरेशन में खुफिया निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। ईरान की नौसेना के मुताबिक ड्रोन अब ईरान के विशेषज्ञों के कब्जे में है और उसका जो डेटा है उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। आईआरजीसी ने हॉर्मूज को प्रतिबंधित इलाका बताते हुए कहा कि यहां पर खतरनाक गतिविधियां बिना अनुमति के हो रही आवाजाही के खिलाफ अब वो कार्रवाई बड़े तरीके से करेगा। दरअसल ईरान ने इसी महीने दूसरी बार अमेरिका के अंडरवाटर ड्रोन को अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। इससे पहले 8 सितंबर को, और वो तस्वीर भी जरा गौर से देखिए, 8 सितंबर को ईरान ने एक और अंडरवाटर ड्रोन, यानी उसको तो समुद्र की सतह के नीचे चलने वाली मानव रहित पनडुब्बी कहा जा रहा था, उस अंडरवाटर ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान के सरकारी मीडिया ने उस ड्रोन की पहचान डाइव एलडी के तौर पर की थी। दरअसल ये एक ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल कैलिफोर्निया की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्यूरल इंडस्ट्रीज ने इसको बनाया था और इसका मकसद सिर्फ टोह लेना नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर इसको हथियारों से, टॉर्पेडो से भी लैस किया जा सकता है जो समुद्र की सतह के नीचे से दुश्मन पर वार करने में सक्षम है। और इस बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। हूथियों के लगातार हमले से परेशान सऊदी अरब इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए वॉशिंगटन डीसी में मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी के अनुसार सऊदी विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल आधिकारिक दौरे पर गए हैं और खाड़ी के ताजा हालात पर वो चर्चा करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से। लगातार अमेरिका की मदद मांग रहा है सऊदी अरब क्योंकि हूथियों ने उसके तेल के निर्यात पर पूरी तरह से एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि ना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जा सकता है उसका तेल और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या बाबल मंदब से। अब आपको लिए चलते हैं दूसरी रणभूमि, बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि रूस ने बीती रात से लेकर आज सवेरे तक यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए और खार्किव में तो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जबरदस्त हमला हुआ, उसकी दूसरी और चौथी मंजिलें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई। कीव, यूक्रेन की राजधानी में भी ड्रोन हमले से जबरदस्त नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतों को, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और गैस स्टेशनों को यहां नुकसान हुआ है। कीव का एक बड़ा कैफे तबाह हो गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 महीने का वक्त दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो अपना निर्णय अगले 3 महीने में दे दे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्णय करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। 4 हफ्तों में सभी पक्ष अपनी दलीलें पूरा करें और उसके बाद निर्णय होगा। ईसी ने फैसले के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने नहीं 3 महीने का वक्त दिया है और इस 3 महीने में यह निर्णय करना पड़ेगा कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन सी है और किसको चुनाव चिन्ह मिलेगा। और इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: या आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। एसआईआर को लेकर के जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है,
1: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। लेकिन 22 में जब परिणाम आया, मुझे याद है मैंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों ने मिलकर के जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा। और याद होगा आपको, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की वोटर लिस्ट की, बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। तो ये बेईमानी तो हो ही रही है, बस इतनी सी बात अब खुल गई है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ।

0: ये पिक्चर इज ए वेरी क्लियर पिक्चर, ममता बनर्जी और सीपीएम पश्चिम बंगाल किस तरीके से झूठ कर रहा है, तो पिक्चर सीधा है। इन लोग मिलकर क्या, पश्चिम बंगाल में तो एक्सेप्शन केस है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का पावर सुप्रीम कोर्ट ने सीज किया था, ईआरओ का पावर, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेट ऑफिसर। वो तो लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में 60 लाख में जो 27 लाख रिजेक्ट किया, वो तो जुडिशियल ऑफिसर ने किया। ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, तिरुवनंतपुरम में भी, पुरम में भी जाकर, केरलम में जाकर आंदोलन कीजिए। वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
1: पूरे एसआईआर के दौरान एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी या को पूरा विपक्ष बिहार में नहीं खड़ा कर पाया कि ये व्यक्ति बिहार के मतदाता है और इनका मतदाता सूची में नाम नहीं। पूरा चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गया, लेकिन रोज प्रश्न उठ रहे, वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र, पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार का पार्टी है। आपने देखा कि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को नेता विरोधी दल के का हैसियत नहीं था, लोकसभा में तो नहीं बनाया। जैसे ही उसमें भी सत्ता का लाभ मिलने वाला था तो राहुल गांधी तुरंत नेता विरोधी दल बन गए। ये लाभ लेने वाले लोग हैं।

0: केजरीवाल के गुंडों ने पीटा हरसिमरत का तंज, आपने पंजाब को चौपट किया। उज्जैन में मस्जिद के हिस्से पर बुलडोजर एक्शन पर बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। सीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष, देश भर में भारी प्रदर्शन, नड्डा का पलटवार, माहौल बिगाड़ने की साजिश, 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 4 महीने के अंदर चुनाव आयोग को फैसला करने के निर्देश, सभी पक्षों को 4 हफ्ते में दलील पूरी करने को कहा। यूपी में बिहार तक, बंगाल में उफान, नेपाल से छूटा लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक के रौद्र रूप से मंडराया बाढ़ का बड़ा खतरा, अलर्ट पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी की चुनावी राजनीति पर है, जहां इंडिया गठबंधन के दो दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी थम ही नहीं रही। अब खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जुड़े खुलासे के बाद 30 सितंबर को दिल्ली में जो बैठक बुलाई है, उस बैठक में अखिलेश नहीं जा रहे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिनिधि इस बैठक में भेजा जाएगा। लेकिन यूपी के कांग्रेस नेता इस बात को लेकर कुछ और नजरिए से देख रहे हैं। उनको ये अखिलेश यादव का रुख पसंद नहीं आ रहा, खासकर इमरान मसूद जैसे नेता जो अब तक लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। उनका यह कहना है कि राहुल बड़े नेता है और उनके बिना यूपी की चुनावी जंग अखिलेश नहीं जीत पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यूपी चुनाव के लीडर तो अखिलेश यादव ही है। खबर यह आ रही है कि गठबंधन और सीटों के बंटवारे से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कुछ शर्तें पूरी करने का प्लान बनाया हुआ है। इसमें हर सीट पर कांग्रेस से आंकड़े मांगे जाएंगे, पार्टी का जनाधार, उम्मीदवार का नाम, जीतने की संभावना, जाति के आंकड़े, सब देखकर ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को वो सीट छोड़ पाएगी या कोई सीट देगी। जबकि कांग्रेस ने आज फिर कहा है कि वो कोई भी सीटों की भीख नहीं मांग रही है। खबर यह है कि कांग्रेस ने यूपी में 100 से ज्यादा सीटों का प्लान बना के रखा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी बमुश्किल 85 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन में शुरुआती दौर की बातचीत भी शुरू नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार नौकरियां ही नौकरियां बांट रहे हैं। अगले 6 महीने में 1,00,000 नौकरियां दी जाने वाली है। इसके मुकाबले में अखिलेश ने आज बड़े चुनावी ऐलान कर दिए हैं। 10,00,000 नौकरियों से लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम तक अखिलेश ने कई चुनावी वादे किए हैं, जिसमें कांग्रेस पीछे छूटती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर यूपी में राहुल के लिए वोट चोरी और चुनाव आयोग का मुद्दा है, तो अखिलेश के लिए नौकरी, शिक्षा जैसे जेंजी के मुद्दे। बड़ा सवाल यह है कि जब मुद्दों में एक राय नहीं है तो क्या चुनाव में मजबूत गठबंधन बन पाएगा? सवाल और भी कई है, सभी पक्षों से, मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: यूपी के चुनाव में सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, हर हफ्ते नौकरियां बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी रायबरेली से रथ निकालकर रणभेरी फूंक डाली है। अब 10 लाख सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षा व्यवस्था में तमाम बदलाव और ओल्ड पेंशन स्कीम तक की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पता नहीं, क्योंकि अखिलेश ने कांग्रेस को प्रचार की हरी झंडी ही नहीं दी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि अखिलेश यादव खुद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में नहीं जाकर अपना प्रतिनिधि दल भेजेंगे।
1: देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
0: दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली की बैठक तो चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी सियासी लीड लेने के लिए बुलाई है। अखिलेश यादव उस लीड को कबूल करते नहीं दिख रहे।
2: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
3: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता।
0: यूपी कांग्रेस के नेता गठबंधन की तस्वीर साफ करने और सीटें क्लियर करने का दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी की शर्तें सामने आने लगी हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगेगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछेगी, उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये देखेगी, जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखेगी। उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
3: 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
2: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए, इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
0: दरअसल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, तो अखिलेश अपने पीडीएफ फॉर्मूले को। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं।
3: कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थबेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाएं उड़ जाती हैं। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है, और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे।
4: जिस तरीके से आप लोग सीटें मांग रहे हैं, सपा को

0: इंडिया गठबंधन के अंदर इस तरह की रस्साकशी चल रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव अभियान में बीजेपी के मुकाबले ऐलान पर ऐलान करते जा रहे हैं। योगी कहते हैं कि 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो अखिलेश सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 25,000 टीचर भर्ती कर रही है, तो अखिलेश ठेका आउटसोर्स खत्म करके सबको पक्की नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। योगी सरकार ने सभी भर्ती बोर्ड्स को 6 महीने में भर्ती पूरी करने का नियम बनाया है, तो अखिलेश सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रहे हैं। योगी सरकार पेपर लीक भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही, तो अखिलेश शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति से जुड़े धारा 12 18 21 को लागू करने के दावे कर रही
1: कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है, जनता के लिए और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी। उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
0: स्कूल पढ़ाई नौकरी रोजगार के मुद्दे यूपी चुनाव में इतने असरदार नजर आ रहे हैं कि सीएम योगी आए दिन सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते नजर आते हैं। 28 सितंबर को पंचायती राज में 1375, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग में 3567, 19 सितंबर को एमएसएमई विभाग में 818, अगस्त में करीब 4100, जुलाई में करीब 920, जून में करीब 1100। यानी हर हफ्ते सीएम योगी यूपी में कहीं न कहीं सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वजह की तलाश आंकड़ों में करें तो पता चलता है कि 2022 में जिस बीजेपी प्लस को यूपी में 18 से 25 साल के लगभग 43% और एसपी प्लस को 36%, बीएसपी को 14% और कांग्रेस समेत अन्य को 7% 18 से 25 साल के युवाओं ने वोट किया था। 2024 के चुनाव में यूपी में 45% वोट बीजेपी प्लस को तो इंडिया गठबंधन को करीब 43% युवाओं ने वोट दिया था। इसी बारीक फर्क को देखते हुए बीजेपी सतर्क है, खासकर जंतर मंतर के आंदोलन के बाद शिक्षा और रोजगार टॉप प्राथमिकताओं के मुद्दे बन चुके हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में भी यूपी के अंदर करीब 17,63,000 तो पहली बार के वोटर हैं, 18 से 25 साल के कुल करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं, जो कुल मतदाताओं के लगभग 23% है। जाहिर है इसी बड़े वोटर वर्ग के रुझान को सुनिश्चित करने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ओर से पुरजोर कोशिश जारी है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: तो आंकड़ों की बात तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, लेकिन एक जगह पर सीटों के बंटवारे की बात चल रही है तो दूसरी जगह पर 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियों की बात चल रही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि अब समाजवादी पार्टी भी कहने की कोशिश कर रही है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो एजेंडे पर तो जेंजी है, लेकिन क्या बात बन पाएगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा में आ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे, अमित जमई समाजवादी पार्टी से हैं और निशा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रही है। 3 सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यूपी में चुनावी मुद्दों पर मतभेद है? दूसरा सवाल, क्या रायबरेली रथ यात्रा करके 30 सितंबर की बैठक से दूर रहकर अखिलेश दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या यूपी में अलग लड़कर कांग्रेस एसपी यूपी चुनाव क्या जीत पाएंगी, क्योंकि अब तक के आंकड़े बड़े दिलचस्प है। एक बार साथ में चुनाव लड़ा, एक बार अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों वक्त हारी सामने आई है। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अब खबर तृणमूल कांग्रेस के तरफ से है, क्योंकि टीएमसी के चुनाव चिन्ह वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 महीने का वक्त दिया है। दरअसल 3 महीने की डेडलाइन सेट की है और कहा है कि 3 महीने के भीतर टीएमसी के दो गुटों के बीच जो तृणमूल का जोड़ा फूल वाले चिन्ह को लेकर विवाद चल रहा है, नाम को लेकर विवाद चल रहा है, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों को 4 हफ्ते के भीतर यानी 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करनी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को 3 महीने के भीतर पैरा 15 के तहत अंतिम फैसला देना है, यानी पहली बार

0: ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से चुनाव आयोग को कहा गया है कि 3 महीने में इन दोनों धड़ों के बीच में फैसला वो जल्द से जल्द करे, यानी पहली बार एक डेडलाइन सेट कर दी गई है चुनाव आयोग को। इससे पहले हमने देखा हुआ है कि चुनाव आयोग को किसी भी तरीके से डेडलाइन सेट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं होता था, लेकिन पहली बार चुनाव आयोग को कहा है कि आप टाइम बाउंड तरीके से इसकी पूरी सुनवाई करें और उसके साथ साथ टाइम बाउंड तरीके से इस मामले में अपना फैसला भी सुनाएं। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ में। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा आपको आज इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लड़ाई कहीं और चल रही है, अमित जमई और अखिलेश जी की पार्टी के बीच में चल रही है। तो सबसे पहला सवाल ही मैं आप दोनों के सामने रखता हूं, पहले अखिलेश जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अमित जी आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ही मेरा यह है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में यूपी में चुनावी मुद्दों पर मतभेद चल रहा है? पहले अखिलेश जी, उसके बाद अमित जी।
1: देखिये, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं चल रही, लड़ाई एनडीए में चल रही है, नेशनल डिजास्टर अलायंस में चल रही है। आपने बहुत कुछ बताया, जो नहीं बताया वो मैं बता दे रहा हूँ। अभी आपको 20 दिन पहले ही बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर है संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे आंदोलन कर रहे थे सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ। लड़ाई बीजेपी में है, जो इनके घटक दल है ओम प्रकाश राजभर की भी बातें सुनिए, देखिए किस तरह से वो अपने आप को आक्रोशित दिखाते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, कैसे उन्होंने अपने विभाग के सेक्रेटरी के लिए आवाज उठाई, अंत में उस सेक्रेटरी को इन्हें खुश करने के लिए बदलना पड़ा। पटेल जी की पार्टी है और लोकदल की पार्टी है, तो लड़ाई इधर है। इनके जो प्रभारी हैं तावड़े जी, वो घूम घूम के सबको समझाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद अभी कुछ आज ही कल में बोला है कि सब चीजें ठीक नहीं है, वो सांसदों विधायकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक योगी को घेरने के लिए बीजेपी सारे दांव चल रही है, उन्हीं के जिले से गवर्नर बना रही है, उन्हीं के जिले से प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, दो दो महासचिव बना रही है अगल बगल से, प्रदेश कमेटी में पदाधिकारी रख रही है और उन्हें हर तरह से घेरने की लड़ाई चल रही है। लड़ाई इनफैक्ट बीजेपी के अंदर, बीजेपी के अलायंस में, बीजेपी के अंदर चल रही है का अक्सर प्रदेश अध्यक्ष।
0: तो आपके बीच में जो बयानबाजी चल रही है वो ऐसे ही हमारे पास आके इमरान मसूद बात कर रहे हैं, इमरान मसूद हमारे पास आके ऐसे ही बात कर रहे हैं कि भाई हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं। इमरान मसूद ऐसे ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास हाथ फैला के हम नहीं जाएंगे। इमरान मसूद ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई आखिरकार राहुल गांधी के नाम पर यहां पर जीत मिल सकती है, अखिलेश यादव के नाम पर जीत नहीं मिल पाएगी। और वहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी की बनेगी, कांग्रेस का नाम ही नहीं ले रहे वो, और जा भी नहीं रहे 30 तारीख की मीटिंग के लिए, ऐसे ही चल रहा है।
1: सुनिए, आप जिसका नाम ले रहे हैं कांग्रेस के नेताओं का, वो अपने इंडिविजुअल हैसियत में बात कर रहे हैं। जिनके पास अभी आप कल ही परसों का हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यूपी उनका बयान सुनाइए ना, क्या कहा उन्होंने, वो नहीं सुनाएंगे आप, क्योंकि इस गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है और उस डर के लिए आप लोगों को प्रयोग किया जा रहा है कि इस गठबंधन को बताओ कि अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तमाम मतभिन्नताएं हैं। ये दिखा रहा है कि गठबंधन मजबूत है, डरे हुए हैं बीजेपी और बीजेपी को चाहने वाले लोग। आप देखिए, इसी उत्तर प्रदेश के तमाम चैनलों के आप लोगों के जो कॉन्क्लेव होते हैं उसमें आकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार कहा है कि हाँ योगी जी हमारे चेहरे नहीं होंगे, चुनाव बाद फैसला होगा। ये सब आप लोग नहीं दिखाएंगे, बीजेपी के मंत्रियों का बयान, बीजेपी के नेताओं का बयान, जो आपस में सिर्फ टुगल हो रहा है, जो उनके प्रभारियों का बयान, प्रदेश अध्यक्षों का बयान, उस पे आप लोगों की नजर नहीं जाती भी होगी तो उसे दिखाएंगे नहीं।
0: तो वो बिना बिना बिना बयान दिखाए आपको कैसे पता चल गया? आप खुद ही बोल रहे हैं कि मीडिया के कॉन्फ्रेंसेस में आके बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, तो बिना दिखाए आपको ऐसे ही पता चल गया? आपको ऐसे ही पता चल गया, मीडिया ने दिखाया बिना पता चल गया
1: आपने?
0: आज चर्चा आप दोनों के बीच में हो रही है। इमरान मसूद को हमने जाके बोला था कि ये बोलने के लिए, इमरान मसूद को हमने कहा, उनको इतना नागवार क्यों गुजर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी नहीं जाना चाहते आपके आपके बुलाए हुए मीटिंग में?
1: नहीं, गुस्सा मत होइए, आपने आज अभी नहीं दिखाया, ना पैकेज में दिखाया, ना अभी अपने इंटरव्यू में बताया। अगर आप बात कर रहे हैं यूपी चुनाव की, गठबंधनों की, तो आप एक पक्ष के गठबंधन को बता रहे हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा है, तो हमने कहा जो आपने नहीं बताया।
0: अखिलेश तो, अखिलेश प्रताप सिंह की बात सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत कुछ ठीक ठाक है, इमरान मसूद की बात सुनेंगे तो लग रहा है कि अखिलेश जी क्यों नाराज हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं अमित जी।
1: ऑफिशियली हमें बता,
0: ये क्या है मतलब, एक्चुअली क्या सिचुएशन है अमित?
2: साहिल देखिए, जब ब्रजभूषण राजपूत भाजपा का एमएलए स्वतंत्र देव को बंधक बना लेते हैं तो इस पर चर्चा नहीं होती है। सवाल यह कि इमरान मसूद जी 43 एमपी में एक एमपी हैं, उनकी अपनी राय है, वो दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो फैसला है वो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल जी के बीच में होना है। किसे नहीं पता है कि रायबरेली में जो कुछ हुआ राहुल लोधी के साथ, श्याम सुंदर दास भारती जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को चैलेंज किया था, उन्होंने चैलेंज किया था पीडीए की ताकत को, इसलिए उनको जवाब देना जरूरी था। जिन जिलों में ऐसा होगा आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी आपको वहां पे दिखेंगे। लेकिन गठबंधन समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि आदरणीय राहुल जी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में। उत्तर प्रदेश अगर माननीय अखिलेश यादव जी निकाल लेते हैं, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, इंडिया अलायंस जीत जाएगा। ये जो दिल्ली के अहंकारी लोग हैं,
0: ये
2: तभी इनका खात्मा तय है।
0: आप जो बात कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा, लेकिन गठबंधन के फैसले आप ही लोग करेंगे ना, बेसिकली समाजवादी पार्टी करेंगे ना, कि टिकट कांग्रेस किसको दें, टिकट देने वाला जो बंदा जिसको टिकट दे रहे हैं वो सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके बिना आप उनको सीट नहीं छोड़ेंगे ना, यही बात है ना?
2: नहीं देखिए,
0: आप रायबरेली से यात्रा शुरू कर रहे थे तब भी अजय राजी का जो बयान आया था वो भी हमने देखा था।
2: मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ,
0: पूरा जांचेंगे ना, उनकी लिस्ट भी आप जांचेंगे ना, उसके बाद ही सीट छोड़ेंगे ना उनके लिए।
2: अच्छा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ साफ कहा है, पूरे देश में अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं कि गठबंधन में उनसे बड़ा दिल तो किसी का है ही नहीं। 2024 में अखिलेश जी तो हम सबके बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी, वो जानते हैं। सवाल जीत का है, जहां पे फैसला दोनों नेता जिस दिन भी आधे घंटे के लिए बैठेंगे, एक एक सीट का फैसला हो जाएगा। साहिल भाई, मीडिया के किसी सेक्शन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल मुख्य सिर्फ इतना है कि 27 लाख उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जब से माननीय अखिलेश जी ने कल से ऐलान किया, जबकि ये 2019 से उनका सबसे बड़ा एजेंडा है कि हम अपने जो अधिकारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, हम 27 लाख कैसे ओपीएस पेंशन जो हमारी है, ओल्ड पेंशन स्कीम, कैसे हम उत्तर प्रदेश के लोगों को दे पाए। कल से जब ये बात दोबारा आई है, पूरे उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयज में एक ऐसी खुशी की लहर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एजेंडा है ओपीएस, फिर एजेंडा है कि कैसे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के बाद सही
0: रोजगार और नौकरी पर ही बहस होनी चाहिए, और रोजगार और नौकरी पर ही हम इस बहस को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ रोज नया ऐलान कर रहे हैं उस पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात बता दीजिएगा, आप पहले बताइएगा, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपने कहा कि मीडिया को इस पे कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपस में देख लेंगे कि कैसे सीट शेयरिंग करना है। क्या हो रहा है कि मीडिया से ज्यादा टेंशन इमरान मसूद जी को हो रहा है, उनको लग रहा है कि 100 से नीचे सीटें कहीं समाजवादी पार्टी ना दे दे, इसके लिए वो टेंशन में नजर आ रहे हैं। हमें क्या है, आप दोनों का अलायंस है, आपको जैसे सीट बांटना है आप बांटिए, जिसको देना है उसको दे दीजिएगा। लेकिन सवाल मेरा एक है, जल्दी से आप और उसके बाद अखिलेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। समाजवादी पार्टी के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है उत्तर प्रदेश के भीतर, और कौन सा मुद्दा होना चाहिए, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह जी और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा।
2: देखिए, बहुत साफ,
0: सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से,
2: सबसे बड़ा मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश में आज है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और माननीय अखिलेश यादव जी, आप जानते हैं, इसके लिए इन्होंने अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की तैयारी करी है।
0: कौन सा बड़ा मुद्दा है
2: कि शहरी युवा
0: रोजगार आज की स्थिति में
2: गारंटेड नौकरी दी जाए, पक्की नौकरी, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी नहीं।
1: सुनिए, बेरोजगारी
0: ठीक है,
1: शिक्षा, परीक्षा, कानून व्यवस्था, महंगाई और बीजेपी का आतंक और भ्रष्टाचार, 40% कमीशन तब बीजेपी की यहाँ मिलता है परमिशन, इनके विधायक ऑन कैमरे आपने देखे हैं कि किस तरह से।
0: आपके लिए भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है,
1: मैंने कई गिनाए,
0: आपके लिए भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है।
1: बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि आप नौकरियां नहीं दे रहे, पद रिक्त है, उसको भर नहीं रहे, और शिक्षा और परीक्षा मैंने सब गिनाए, एक ही मुद्दे नहीं है, उत्तर प्रदेश तो एकदम बीमारू प्रदेश बना दिया है।
0: आंदोलन वोट चोरी पे, मुद्दा बेरोजगारी पर, आंदोलन वोट चोरी पे और मुद्दा बेरोजगारी,
1: वो तो है ना? आपने प्रदेश का मुद्दा पूछा, मैं राष्ट्रीय मुद्दा बता रहा हूँ, वो तो आई है।
0: अच्छा,
1: आपने प्रदेश का मुद्दा पूछा,
0: राष्ट्रीय मुद्दा वोट चोरी का। चलिए प्रेम शुक्ला जी,
1: राष्ट्रीय
0: कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जेंजी का भी दबाव आ रहा है। समाजवादी पार्टी बोल रही है 10 लाख नौकरियां देंगे, आप वादा कर रहे हैं 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियां, और उसके साथ साथ अब ओल्ड पेंशन स्कीम भी कहीं ना कहीं बीजेपी मानने को तैयार हो गई है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी लगा देंगे। इससे पहले बीजेपी तैयार नहीं थी ओपीएस लगाने के लिए।
3: देखिए साहिल भाई, 9.3 लाख नौकरियां सरकारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दे चुके हैं, 1 लाख नौकरियां दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। हर दिन योगी आदित्यनाथ जी नौकरियां दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, श्रीमान अखिलेश यादव के शासनकाल में, नौकरियां 4 जिलों की विशिष्ट जातियों के लोगों को ही मिलती थी। ये हर कोई जानता है कि नौकरियों में किस तरह की हेराफेरी थी, किस तरह से खर्ची पर्ची पर नौकरियां देने की कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है, और कैसे पारदर्शी नौकरियां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार देती है, ये उत्तर प्रदेश इसका साक्षी है। जहां तक बात है ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम अप्रैल 2005 में जब लागू हुई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पिताश्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। 2005 में आपने न्यू पेंशन स्कीम स्वीकार ही क्यों की, ये प्रश्न अगर कोई समाजवादी पार्टी से पूछे तो अखिलेश यादव के पास क्या उत्तर है उसके बाद।
2: अच्छा,
3: 2012 से लेकर 2017 तक श्रीमान अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू कर दी? अब देखिए बीच में ये आ रहे हैं,
0: ठीक नहीं है, मैं इनको सुन रहा था ना, गंभीरता से वो सवाल तो उनको पूछा जाएगा ना, आप मुझे बताइए, आप मुझे बोलूंगा, आप अनुमति देंगे ना, मैं तो बीच में आपको तो सवाल पूछ सकता हूँ ना, बिल्कुल ना। अरे उनको नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो सुन तो लीजिए पहले। आपने दो वादे किए, आपको दो, आपने दो वादे, आपने दो दावे किए हैं। एक तो आपने कहा कि 9.5 लाख नौकरियां, जो आपकी सरकार की तरफ से भी दावा किया गया है 2017 से लेकर 2026 तक, जब इसके आंकड़े मांगे गए तब उसमें कहा गया है कि अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में 4.81 लाख नौकरियां उसमें दी गई है, लेकिन उसका कोई बाइफरकेशन नहीं है। 2.25 लाख पुलिस भर्ती के हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े हम लोग यहां पर देख रहे हैं, सुनिए तो, उसमें एक आंकड़े ये भी देख रहे हैं कि पिछले 13 साल से सिर्फ 55% वैकेंसी खाली है उत्तर प्रदेश के भीतर स्कूल्स में, ये भी वहां पर नजर आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि हर महीने योगी आदित्यनाथ आज नौकरी बांट रहे हैं, तो 13 साल का गैप क्यों है, या 10 साल का गैप क्यों आ रहा है, या 10 साल का गैप क्यों आ रहा है? और उसके साथ साथ ओपीएस पर भी बता दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में तो ओपीएस का विरोध कर रही थी। बीजेपी सरकार का यह कहना था कि ओपीएस लाने से पूरे जो तिजोरी है किसी भी राज्य की, उस पर उसका नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश में उसका विरोध हुआ था, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या अलग है कि आप ओपीएस यहां पर लागू करने के लिए तैयार है? ये दोनों चीज का जवाब दीजिए, उसके बाद अमित जमई के पास जाएंगे, उसके बाद निशा जी भी इंतजार कर रही है।
3: नहीं, मेरा पहला जवाब, मेरा पहला सवाल समाजवादी पार्टी से है, जो मैंने पहले किया कि ओपीएस तो को बदलकर एनपीएस लागू ही मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुआ, अखिलेश यादव के पिताश्री ने किया, उसके बाद 2012 से 17 श्रीमान अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी एनपीएस को परिवर्तित करने की बात नहीं की। 2022 के इनके घोषणा पत्र में यह शामिल था, लेकिन उससे क्या परिणाम हुआ यह भी लोगों ने देखा। जहां तक बात ओपीएस और एनपीएस की है, तो हम ओपीएस अगर लागू करने से कर्मचारियों का हित होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका अध्ययन करके निश्चित तौर पर लागू करेगी। जहां तक नौकरियां देने का सवाल है, 2004 से 2012 से 2017 और 2003 से लेकर 2007 कितनी नौकरियां दी थी और किसको नौकरियां दी थी, नौकरियों में कैसे घोटाला हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था, अनिल यादव की नियुक्ति कैसे हुई थी, अनिल यादव ने कैसे भ्रष्टाचार किए, ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूली है क्या? शिवपाल यादव किस तरह से नौकरियां बांट रहे थे और किस तरह से एक जाति विशेष के लोग ही पीसीएस की परीक्षाओं में जो है उत्तीर्ण हो रहे थे, किस तरह से एक जाति विशेष के लोग ही थानों में बैठाए जा रहे थे, क्या ये लोग जानते नहीं है? लोग भली भांति जानते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि समाजवादी की पार्टी
0: हिमाचल में अलग और यूपी में अलग क्यों है?
3: मठों मंदिरों के कागज तैयार रखो,
0: हिमाचल में अलग और यूपी में अलग क्यों है?
3: तो मठों मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की,
0: बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी,
3: मठों और
0: शुक्ला जी,
3: अरे हिमाचल प्रदेश की आपने सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन तो जाने दीजिए, हिमाचल प्रदेश में तो सैलरी
0: यूपी में कैसे लागू होगा फिर?
3: हिमाचल प्रदेश में सरकारी
0: यूपी में कैसे लागू होगा? यूपी में चलेगा ओपीएस?
3: उत्तर प्रदेश में अध्ययन करेंगे हमने कहा क्या रहा? हमने कहा अध्ययन करेंगे
0: चलिए अमित जमाई जी जवाब दीजिएगा,
3: करेंगे हमने हिमाचल प्रदेश में तो जो है,
0: चलिए
3: हिमाचल प्रदेश में तो बाकायदा आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात तो की लेकिन सैलरी ही नहीं दे रहे, पेंशन तो बहुत दूर की बात है, कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं क्या?
0: ठीक है,
3: समय पर दे रहे हैं क्या? और टॉयलेट तक पे तो टैक्स लगा,
0: समाजवादी पार्टी
3: ये दशा।
0: अमित जमाई जवाब दीजिए।
2: मैं दो बात कहना चाहता हूं। देखिए प्रेम शुक्ला जी आज तक के मंच पे कह रहे हैं कि अध्ययन करके न्यू पेंशन को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम जारी की जाएगी, तो 27 लाख उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों एक नया झूठ प्रेम शुक्ला का भाजपा का सुन लीजिए आप। मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूं। देखिए सीरियस सी बात है, उत्तर प्रदेश की जो एम्प्लॉइज है 27 लाख
3: इसके कार्यकाल में लागू,
2: वो परेशान है,
0: अभी आप
2: वो आंदोलन रद्द
3: कार्यकाल में लागू हुई
2: बताइए, और एक बहुत ही विजनरी नेता इस देश के सबसे मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट लीडर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने एक बहुत जबरदस्त अकाउंटिंग बजट करके ये नया रास्ता निकाला है कि 2027 में पहला जो प्रमुख एजेंडा होगा वो ओल्ड पेंशन स्कीम जारी होगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 5.5 लाख नौकरी दे दी। अरे भाई ठेके पे नौकरी,
0: इस बात को साफ कर दीजिए ना, एक मिनट अमित जी इस बात को साफ कर दीजिए ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर ओपीएससी लागू कराना था तो पहले मुलायम सिंह जी की सरकार में और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में आपने नई पेंशन स्कीम क्यों लागू कराया रखी, तभी ओपीएस लेके आते भाई, बात तो नहीं है ना उसमें। सुनिए ठीक है प्रेम शुक्ला, मैं पूछ रहा हूँ सवाल उनसे।
2: साहिल ओपीएस केंद्र का विषय था, केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी थी उसने देश के हमारे इम्प्लाइज के पेट पे लात मारा था, और उस जमाने में भी नेताजी ने विरोध किया था, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी को ये समझ में आया कि हम केंद्र के किसी विषय को राज्य में हम कैसे मदद दे सकते हैं, तो अब एक नया रास्ता अकाउंटिंग बजटिंग देखकर कि भले अगर नरेंद्र मोदी ना करे लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 में ओल्ड पेंशन स्कीम का रास्ता निकाल रही है, तो भाजपा को दिक्कत क्या है? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5.5 लाख नौकरी दे दी, अच्छा ये बताइए बाइफर्केशन करिए कि कितने ठेके की नौकरी दी? अरे एक बैटरी रिक्शा अगर कोई लोन पे ले रहा है वो आपने रोजगार दे दिया उसको? मुख्यमंत्री जी रोजगार सुनिए, मुख्यमंत्री जी जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं किसी महकमे में संविदा की 10 नौकरी आई, कॉन्ट्रेक्चुअल 10 नौकरी आई, उसको बुला के सर्टिफिकेट पकड़ा रहे, और इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी क्या बोल रहे हैं? साहिल भाई वो वीडियो चलवाइए ब्रजेश पाठक जी का,
0: ठीक है
2: ये कह रहे हैं 6 लाख 12 हजार जाके रिक्शा चलाओ।
0: ठीक है हाँ, वो तो मंत्री बोल रहे हैं कि भाई रिक्शा चलाओ जाके, क्योंकि रिक्शा चलाना
2: डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, साहिल भाई मंत्री नहीं बोल रहे हैं,
0: सब बोला जा रहा है उसमें
2: डिप्टी चीफ मिनिस्टर।
0: लेकिन निशा चौधरी इंतजार कर रही है,
3: चलाना अपराध है
0: निशा जी इंतजार कर रही है,
3: चोरी करना ठीक है,
0: निशा जी
2: लड़की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाएगा
0: तो नहीं है, लेकिन नौकरियां या रिक्शा चलाना इस पर कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ेगा।
3: ठीक है,
0: एक मिनट मैं इस चर्चा में निशा जी को भी लाना चाहता हूँ। निशा जी दो सवाल है आपके लिए। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या चर्चा हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, उसकी बात हो रही थी। उनका यह कहना है कि दरअसल ये दिक्कत तो एनडीए के भीतर हो रही है, पता नहीं कि आपकी और बीजेपी की बातचीत शुरू हुई है कि नहीं हुई है, नंबर एक। नंबर दो, क्या इस बार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वादा कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरियां, अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं 10 लाख नौकरियां और 6,12,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को परमानेंट करने की भी मांग वो यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा चलेगा? और पहला वाला सवाल
4: साहिल जी सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। साहिल जी, जहां तक बात है एनडीए गठबंधन में हमारी सीट शेयरिंग को लेकर, उस पर मैं क्लियर कर दूं, राष्ट्रीय लोकदल का ना तो एनडीए गठबंधन में कोई शोर शराबा है, ना कोई हमें दिक्कत है, हम बिल्कुल शांति से अपनी जो सीटें हैं बिल्कुल आराम से निपटाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का, हम 2023-27 के चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं हम पूरी 403 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल हर सीट पर अपनी मेहनत कर रहे हैं और हर गठबंधन का जो हमारा दल है सभी कर रहे हैं, चाहे वो निषाद पार्टी है चाहे दूसरे दल है। अब रही बात, आपने कहा साहिल जी के बेरोजगारी और रोजगार देंगे या नहीं देंगे, 2000 ये PLFS के आंकड़े मैं बता रही हूं, मेरे ख्याल से वो आंकड़े ज्यादा तथ्यात्मक होते हैं। 2017-18 तक जो बेरोजगारी दर थी वो लगभग 6% थी और 2023-24 में यही 2.4% रह गई ग्रामीण में और शहरी में रह गई लगभग 5%। अब बात आती है सरकारी और प्राइवेट की, और जो इन्होंने कहा कि पेंशन योजना लागू कर देंगे, किसी की भी कथनी और करनी का जो पहले किया है इतिहास में उसके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर है। 2005 में किसने करी थी पेंशन बंद और नई पेंशन योजना किसने लागू करी थी? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने करी थी जो उस समय मुख्यमंत्री थे। रही बात आज योगी सरकार के किए हुए कामों को, आप देखें, एक मिनट जोशी जी,
5: ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके,
4: एक मिनट साहिल जी एक बार मुझे बोला
5: कीजिए, साहिल जी काम किया था एम्प्लॉय के पैसे का,
4: साहिल जी एक बात बताइए, आज
5: आप तो ये भी भूल गई
4: मेरे को, भाई जी अमित भाई
5: कैसे बने थे,
0: आपको भी मौका मिलेगा बीच में,
4: और अमित भाई जी पहले आप अपने आप को देखिए, आपकी सीटें 111 तक कैसे पहुंची थी, राष्ट्रीय लोकदल का हाथ था जिसकी वजह से आप इतने ऊपर पहुंच गए। और ये बात माननीय अखिलेश जी ने उस समय स्टेज से बोली थी कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आने से हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में बोलबाला बढ़ गया, हमारी सीटें बढ़ेंगी, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, और वो हुआ भी। चलिए इस बात पर तो हम बाद में आएंगे। आपने कहा साहिल जी आज का समय अगर हम देखें तो आज उत्तर प्रदेश पहचाना जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर लगा था जिसमें लगभग 87 से भी ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया बैंक पे। आप सोचिए कि इस लेवल पे उत्तर प्रदेश को लाने वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो आज जनता को पता है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में किस तरीके से उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार के साथ प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल शरद चौधरी चरण सिंह जी की, जो किसान मसीहा भारत रत्न रहे, उनकी विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे हमेशा थे, हैं और रहेंगे, वो हैं किसान के, ग्रामीण के, युवा के, महिला के, सबको साथ लेकर के। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी कहते हैं कि सीटों से ज्यादा, एक मिनट साहिल जी, आज ये कोई भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष और नेता के लिए सबसे बड़े हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता बोलते हैं कि आप जाकर के जनता से उनकी समस्याएं पूछिए और योजना
0: बताइए। आपका दल बीजेपी के साथ में नहीं था, मैं आपको बस एक चीज याद दिलाता हूँ, 2017 में यह वादा किया गया था कि अगले 5 साल में 70 लाख नौकरियां दी जाएगी, 70 लाख जॉब्स उत्तर प्रदेश के भीतर। 2017 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का फिक्स टारगेट रखा था 70 लाख जॉब्स का, ठीक है। 2023 में, अप्रैल 2023 में, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकती है, मेरे ख्याल से आप तो अभी अभी इस सरकार में आई हुई है, लेकिन 2023 से 23 में 1 करोड़ लोगों को 3 साल के भीतर, 1 करोड़ लोगों को 3 साल के भीतर नौकरियां दी जाएगी, ये वादा किया गया था। 70 लाख 2017 से लेकर 2022 तक और 2023 के बाद 3 साल के भीतर 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। अब मुझे आंकड़े आप जोड़ के बता दीजिए।
4: नहीं साहिल जी, एक चीज देखिए, जहां हम चौतरफा विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ा तो आप सोचिए रोजगार बढ़ा होगा, अगर MBBS की सीटें बड़ी हैं तो उससे
0: जवाब दीजिए ना, भविष्य में आंकड़ों का वादा तो हमारे तरफ, आंकड़ों का वादा तो आप ही के तरफ से किया गया था, आप ही के सरकार के तरफ से किया गया था। चलिए मान लेते 2017 में आप तो नहीं थी उनके साथ,
4: मैं तो
0: 22 से बात तो आप उनके साथ में है ना, दो अप्रैल 2023 की डेडलाइन है, अप्रैल 2023 एक करोड़ नौकरियां तीन साल के भीतर।
4: मैं तो वही कह रही हूँ साहिल जी कि हम जो आए हैं, हम जब से आए मैं तो उसके बाद की बात बता सकती हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाख नौकरियों के लिए तो अभी 6 महीने नहीं नहीं मैं तो उसी के बता रही हूँ। अभी अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बताया कि भाई हमने 10 लाख नौकरियां लगभग दे चुके, ठीक है, और उसमें 1 लाख नौकरियों की अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है।
0: ये मैं आपको बताऊँ आंकड़ा कहाँ से हो रहा है,
4: लेकिन क्या
0: 9.5 लाख का आंकड़ा कहाँ से हो रहा है आपको बताऊँ मैं, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स वगैरह सारी चीजें पकड़ के 9.5 लाख का आंकड़ा हो रहा है। आप तो 2024 के उनके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल 2024 से जुड़ा हुआ है, तो चलिए हम लोग 1 करोड़ में से इतना 1/3 हिस्सा निकाल देंगे, आगे के 2 साल का तो बता दीजिएगा।
4: 2 साल में भी
0: नौकरियों का वादा एक अलग बात होती है। अखिलेश प्रताप सिंह आप जवाब दीजिए उसका, उसके बाद
4: जवाब देंगे जो
0: सवाल मैंने रखा है।
1: मैं बोलूं, मुझे अवसर दिया, एक मिनट सुनिए साहिल भाई। साहिल भाई 1947 से लेकर के 1917 तक इस देश में करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली, वो सारी नौकरियां डाकिये ने लिफाफे में लाके दे दी हैं, लेकिन उसके बाद एक एक राजतंत्र का राजा का चरित्र हुआ बीजेपी में, मंच पे सिंहासन पे चढ़ करके और जैसे राजा प्रसन्न हुए कि लो मैंने आपको नौकरियां दी। अरे जिन नौकरियों को आप दे रहे हो नौजवानों ने अपनी मेहनत से पाया है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में आज सरकारी पद पे कितने कर्मचारी हैं यहाँ बैठे हैं बता दें बीजेपी के लोग, और कितने आउटसोर्सिंग से हैं, अब बचे टोटल कितने पद हैं नहीं बता पाएंगे। आप आउटसोर्सिंग को नौकरी बता रहे हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार और उसमें भी खेला जिसमें रिजर्वेशन भी नहीं रहता है आउटसोर्सिंग में, एक बार विशेष को आप दूर रखने के लिए ये तैयारी
0: तो कह रहे हैं। वादा तो नौकरी का है ना, आउटसोर्सिंग से करे या सरकारी दे,
1: नहीं नहीं
0: वादा ये तो नौकरी होता है। सर,
1: ये नौकरी नहीं है ये,
0: अच्छा
1: ये आप 10 महीने 11 महीने की नौकरी क्या होती है, जो चीज अस्थायी ना हो वो नौकरी क्या भाई, ये तो पार्ट टाइम जॉब है। अब 10 महीने 11 महीने के लिए दे रहे हैं फिर रिन्यूअल होगा, बीच में कह देते हैं अगर आप कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो बीच में कर देते हैं नमस्कार कल से मत आइएगा क्योंकि अब काम नहीं है। और आपने एक बहुत बड़े नौजवानों की पूरी पीढ़ी को बेरोजगार कर दिया। योगी जी 4 बार बोले आप दिखाइए कि मैं अनासन में 3 ट्रिलियन
0: चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह आपको, लेबर जो है 6,12,000 के उनको परमानेंट करा दीजिएगा। और दूसरा जो मैंने सवाल पूछा है 2023 का, आपको भी मुख्यमंत्री का बयान याद होगा 1 करोड़ नौकरियों का, दोनों चीजें बता दीजिए 3 साल का डेडलाइन था।
1: जी 2 करोड़ तो मोदी जी दे रहे थे, दोनों
6: ने बहुत अच्छा मैं उत्तर देता हूँ। आज तक में तो कोई नौकरी है ही नहीं है क्योंकि आज तक तो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देता है, तो आज तक की नौकरियों को नौकरी नहीं मानी जाए। आदरणीय साहिल जोशी जी 22 और 23
0: आज तक सरकारी चैनल नहीं है सर,
6: आज तक में दिखाई दे रहे हैं
0: आज तक सरकारी चैनल नहीं है, सरकार में आप कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी देंगे और उसका दावा करेंगे कि आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं,
6: रोजगार माने कि नहीं माने। मैं बहुत सावधान
0: तो आप यही कहेंगे, आप कह दीजिए ना कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर देंगे
6: आज तक की नौकरी को रोजगार,
0: तो आप बोल दीजिए ना कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर देंगे,
6: उस पर आ रहा हूँ ना मैं क्यों,
0: मैं आप बोल दीजिए कि सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर देगा।
6: आप अखिलेश सिंह को सुनना चाहते हैं,
0: सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखेंगे सरकारी नौकरी वो नहीं कहेंगे, आप बोल दीजिए उसको बांध लीजिएगा।
6: आदरणीय साहिल जोशी जी,
0: अरे आप बोलिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना,
6: चाहता हूँ आप भाजपा की बात
0: करते हैं,
6: मैं बोल रहा हूँ ना पूरा उत्तर दूंगा, आप उत्तर सुनने तो आप उत्तर सुने तो
0: दीजिए
6: ना, आप कर रहे हैं
0: जवाब,
6: आप उत्तर सुने मैं पूरा उत्तर
0: जवाब दीजिए,
6: 30 सेकंड सुन तो ले,
0: सुन
6: आप मुझे 10 सेकंड सुनने को तैयार नहीं है,
0: 40 सेकंड सुन
6: सुनने को तैयार नहीं,
0: 40 सेकंड
6: अगर निजी क्षेत्र में है तो उसको रोजगार न माना जाए आज से, रोजगार सृजन अगर निजी क्षेत्र में है तो उसको रोजगार न माना जाए ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता का दावा है जिसे आदरणीय साहिल जोशी जी एज इट इज स्वीकार रहे हैं। भाई सरकारी नौकरियां भी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां चाहिए, हमको नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट की भी नौकरियां चाहिए, हमको परमानेंट नौकरियां भी चाहिए। अगर आज तक कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे रहा है तो उसकी नौकरी को गलत कहा जाए, अगर आज तक अपने कर्मचारियों की
0: तो आज तक नौकरी दे रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार थोड़ी है।
6: उसके
0: आज तक में कोई नौकरी देता है तो सरकार उसका सरकार नहीं कह सकती कि हमने नौकरी दी है। वो तो आज तक ने नौकरी दी है।
6: मैं कहां कह रहा हूं सरकार जिम्मेदार है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को नौकरी माने
7: यूपी में
0: हम वादा करके वोट थोड़ी ले रहे हैं जाके कि हम नौकरी देंगे। वादा तो आप लोग कर रहे हैं
6: कि नहीं माने मुझे इतना ही छोटा।
0: अरे हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को नौकरी मान रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जाके वोट थोड़ी मांगता है नौकरी देने के लिए।
6: नहीं तो रोजगार
0: वोट तो आप मांग रहे हैं प्रेम शुक्ला जी।
6: 1 करोड़ सरकारी नौकरी ने कहा था सरकारी
0: तो हम नौकरी देंगे
6: उसका रोजगार
0: हम नौकरी देंगे। आज तक अगर नौकरी देगा ये बड़ा अजीब तर्क है आपका। आज तक नौकरी देगा आज तक नौकरी ये कुतर्क लगा रहे हैं आप। आज तक नौकरी देगा तो उसके लिए भी आप ही कहेंगे कि हमने नौकरी दे दी प्रेम शुक्ला जी।
6: हाँ रोजगार सृजन को माना जाएगा ना, उसको रोजगार सृजन न माना जाए। आज तक की नौकरी को रोजगार सृजन न माना जाए, उसको रोजगार का खत्म करना माना जाए।
0: चलिए नौकरी नहीं दे रहे हैं आप, रोजगार सृजन कर रहे हैं। चलिए ठीक है
6: मोहन सिंह, देखिए अर्थव्यवस्था की क्रांति का
0: प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे रोजगार सृजन होगा।
6: मुझे बताइए
0: रोजगार सृजन
6: कर्म के लिए
7: अगर
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये रोजगार नहीं है सॉरी ये नौकरी नहीं है रोजगार सृजन है। नौकरी नहीं है रोजगार सृजन है, सही है ना प्रेम शुक्ला जी? रोजगार सृजन है
6: नहीं नौकरी है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी नौकरी है उसको नौकरी ना माने।
7: देखिए पलट गए
6: प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को नौकरी ना माने। अखिलेश सिंह ने नया फार्मूला लाया है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को नौकरी नहीं मानी जाएगी। ये अखिलेश सिंह ने नया चीज लाया है, ये नई चीज लाया है भाई। गजब
7: भाई मैं बोलूं
6: गजब का कुतर्क आपका होता
7: है। साहिल भाई
6: नहीं प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है कि नहीं?
7: साहिल भाई सरकारी नौकरी है। अब ये सुनेंगे तब ना,
6: ये नया है आपका तर्क।
7: साहिल भाई देखिए बीजेपी की सोच देखिए भैया, ये आप तक वाले आप लोग लड़ा लो बैठे आराम से, आप लोग एक कर लो।
6: आपका नया तर्क है
7: तब लगा लो पीसीआर वाले ने भाई लड़ा लो
0: अंग्रेजी बोलिए जवाब
6: कर लो वो कर लो।
7: अरे तो ये
6: कर लो
7: बात करने दे, मैं तो किसी के पीछे बोलता नहीं हूँ। मैं तो
6: तर्क तो होता नहीं आपको।
7: साहिल
0: बोलिए अखिलेश जी बोलिए
7: देख लिया।
0: चलिए समय खत्म हो रहा है अखिलेश जी, पहले आप जवाब दीजिए उसके बाद जवाब देंगे।
7: बीजेपी
0: का दिखा दीजिए तीनों को एक फ्रेम में।
7: बीजेपी का चरित्र आपने
6: 15
7: बीजेपी का चरित्र आपने देख लिया कि किस प्रकार से वो बता रहे हैं और खुद जो है अपने आउटसोर्सिंग के लोगों को जिनको कुछ दिन की बता रहे उसको नौकरी बता रहे हैं। अरे उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलिए कि उनको रोजगार सृजन इतने दिन का किया
6: सिर्फ 47,000
7: किया है। जैसे आप अगर अस्थायी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या क्या किया थे, क्यों पदरिक्त हैं आपके प्रदेश में पदरिक्त क्यों हैं? 12 लाख पदरिक्त क्यों है? 10 लाख से ऊपर आउटसोर्सिंग के लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? आप अस्थायी पद क्यों नहीं भरते हैं? केंद्र सरकार में 9.5 लाख पद क्यों रिक्त हैं? देखिए क्यों नहीं भरते हैं ये, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि अगर सर्विस ये इन शब्दों का
0: ठीक है। एक सवाल मैं भी उठाना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी थोड़ी आवाज को आराम दीजिएगा प्लीज प्रेम शुक्ला जी एक मिनट अमित जमी जी जरा आप भी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। क्या सरकारी नौकरी का वादा ही असली रोजगार निर्मिति का वादा है या रोजगार निर्मिति अलग तरीके से भी हो सकती है? अमित जमाई जी जल्दी से आपका जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे दिखाना है जरा कि नंबर्स क्या कहते हैं वो भी दिखाना है। चलिए
2: देखिए जब आप उत्तर प्रदेश की जनता से वादा करते हैं कि 70 लाख नौकरी देंगे, आप 70 लाख नौकरी देंगे, आप कह रहे हैं कि आज तक में जितने एम्प्लॉई हैं वो सरकार के द्वारा हैं। अरे अगर मानी अखिलेश यादव जी ये कहें कि हमने किसी मीडिया संस्थान को यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने जमीन दी उससे सृजन हुआ तो बात समझ में आती है। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? कल आप कहेंगे साहिल जी आपके एम्प्लॉई है। अरे कहो ठेकेदारी की नौकरी योगी जी ने 5.5 लाख अनाउंस करी, इसमें बुराई क्या है? अनाउंस करो मानिकेश जी ने बहुत साफ कहा कि जो नया उत्तर प्रदेश बनेगा 2027 में नई समाजवादी सरकार में जितनी बैकलॉग की नौकरियां जाएंगी और नौकरी जितनी भी
1: उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार
2: अखिलेश यादव जी की सरकार में होगा
1: विभागों में जो पद रिक्त
6: है वादा करके जा रहे हैं
1: उन रिक्त पदों के भर्ती नहीं है ये सरकार तो ये सरकार को बेईमान सरकार
0: जरा जल्दी से दर्शकों को मैं कुछ नंबर दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये लड़ाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज की स्थिति में जेन जी वोटर सबसे बड़ा वोटर बनता जा रहा है प्लीज जरा वो नंबर्स दिखा दीजिएगा जल्दी से यूपी में 17.63 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार आ रहे हैं 18 से 25 साल के करीब 2.50 करोड़ वोटर इस बार वोट डालेंगे कुल मतदाताओं के 23% मतदाता ये युवा मतदाता रहे 23% ऑलमोस्ट 1/4 और इसी के वजह से अगर हम देखें तो 2022 में बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा हिस्सा इन यंग वोटर्स का था 43% वोट बीजेपी के पास गए थे 36% एसपी प्लस यानी कांग्रेस और एसपी दोनों को अलग अलग मिले थे लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का युवा वोटर 45% तक उनका हिस्सा रहा जबकि एसपी प्लस यानी इंडिया गठबंधन 43% तक जाके पहुंचा था इसीलिए इन युवा वोटर्स की लड़ाई जमीन पर साफ नजर आ रही है युवा वोटर्स के लिए लड़ाई दरअसल जमीन पर साफ नजर आ रही है चलिए मेरे साथ बस इतना ही फिलहाल ब्रेक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी आप देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
9: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, RDF, there's nothing small about them.
9: Okay.
10: Ujjivan, nothing small about us.
11: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटी जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार धोती ठुमका लगाने बस।
15: मेरे पास एक आइडिया।
14: क्या?
15: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
16: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
17: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
18: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
15: कौन सी बनानी है?

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: किसी भी देश को जब भी आज़ादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
3: कौन भय में जी रहा है?
2: नागरिक जी रहे हैं।
3: हाँ, भारत में
2: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव उस भरोसे का नाम है जिसके नतीजे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन वही स्तंभ सियासत के बरमुड़ा त्रिकोण में जब से फंसा है उसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। भारत में चुनाव कराने वाली संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। एक मीडिया रिपोर्ट आई, सवाल उठे और विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि मामला कितनी दूर तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, दो बार सफाई और स्पष्टीकरण आ चुका है। 26 सितंबर को सीसी ज्ञानेश कुमार, ईसी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की फुल बेंच की बैठक हुई। उसके बाद बताया गया कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। जो सवाल मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूटे हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने के निर्देश दिए हैं। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले ही भर चुके हैं। विपक्ष इसे पर्याप्त जवाब नहीं मान रहा। इस बीच दिल्ली में 30 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल से सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने मुलाकात की, कल ममता बनर्जी के साथ बात हो चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव आयोग को नसीहत भी दे रहे हैं और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। जब विपक्ष के तेवर में बदलाव नहीं दिख रहा है तो भला बीजेपी कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती। लिहाजा बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाद मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग शुरू कर दी। बीजेपी का सीधा और सपाट आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है।
2: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
0: लेकिन अभी सवाल बाकी है। चुनाव आयोग संधू और जोशी की 14 आपत्तियों की पूरी कहानी क्या है? ईसीआई नेट को रिव्यू की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और एसआईआर में छूटे मतदाताओं की जवाबदेही तय कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ फैसला महत्वपूर्ण नहीं होता, फैसले तक पहुँचने की पारदर्शिता भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है। चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, लेकिन क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? यही सीसी ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद का अगला अध्याय है। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अल्लाह बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। बीजेपी बोली केजरीवाल के गुंडों ने पीटा हरसिमरत का तंज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। उज्जैन मस्जिद के हिस्से पर बुलडोजर एक्शन पर बवाल। पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका। सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। सीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष। देश भर में भारी प्रदर्शन। नड्डा का पलटवार। माहौल बिगाड़ने की साजिश। 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। टीएमसी नाम निशान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सभी पक्षों की दलील के लिए 4 हफ्ते का वक्त तय। इसके बाद चुनाव आयोग 3 महीने में सुनाएगा फैसला। सूरत के कपड़ा बाजार में फिर भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद। कारोबारियों से लेकर खरीददारों तक दहशत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना।
3: देखिए, इमरान मसूद अधिकृत नहीं है गठबंधन में बोलने के लिए। इमरान मसूद की कोई समाजवादी पार्टी से लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी को इमरान मसूद से लड़ाई नहीं है।
4: Well, that the Rajya Sabha election nomination is there in you. It's what he told the Congress president. Senior leaders from his party, all other seniors are coming.
5: बीजेपी कौन है? बीजेपी इसमें पार्टी है क्या? चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे हैं लोग।
6: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए। वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
7: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए। झूठ को 100 बार दोहराने से वह

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने आज एक बार फिर देशभर में बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की। कांग्रेस की जिला इकाइयों ने 1000 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने का दावा किया है। कांग्रेस से अलग आज लेफ्ट अगर आप देखिए तो वाम दलों ने भी पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। सीसी के बहाने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा विपक्ष 30 सितंबर को बैठक करने वाला है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए सहयोगी दलों को बुलाने का फैसला किया। हालांकि इस बैठक से अखिलेश यादव नहीं उसमें शामिल होंगे, उनके प्रतिनिधि बैठक में जरूर जाएंगे। आधिकारिक तौर पर इसे यूपी में होने वाले राज्यसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश की व्यस्तता कही गई है, लेकिन अखिलेश के ना जाने को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर हंगामा मचा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 2027 के यूपी चुनाव पर सीट समझौते को लेकर लगातार मनमुटाव वाले बयान आए हैं। सवाल है कि अखिलेश व्यस्त हैं या सीट शेयरिंग पर त्रस्त हैं? सीसी पर इंडिया की बैठक में कौन कौन आएगा, संग्राम ज्ञानेश पर या फिर जनादेश पर? यही आज का हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीसी ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी का चेहरा करार देकर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई खड़ी करने की कोशिश कर रही है। पार्टी की जिला इकाइयों ने आज देश भर में 1000 से ज्यादा जगहों पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जोरदार हंगामा किया। लेकिन इस सियासत को देश का मुद्दा बनाने के लिए एकजुट विपक्ष की जरूरत है। राहुल गांधी की पार्टी ने मंगलवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है और बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में साझा रणनीति की तैयारी है। लेकिन सवाल है कि क्या 30 सितंबर को विपक्ष की एकता दिखेगी? अखिलेश यादव ने बैठक में खुद नहीं आने का फैसला किया है, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2027 के यूपी चुनाव के सीट समझौते को लेकर सुनाई पड़ रही खटपट के बीच अखिलेश यादव नहीं आ रहे तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद खरी खरी कहने से नहीं चूके।
1: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
0: हालांकि दोनों दलों की ओर से अखिलेश के न आने के मसले को तूल न देने की कोशिशें भी हुई है।
2: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट्स व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट। सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी विल, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
3: अखिलेश यादव जी समय समय पे इस बात को कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है और समान विचारधारा वाले सभी दलों को एक साथ एक मंच पे आना चाहिए और इसकी बड़ी जिम्मेदारी बड़े दल की भी है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की आगामी जो प्रस्तावित बैठक है उसमें जाने का सवाल है तो समाजवादी पार्टी उस बैठक में शामिल होगी।
0: इस बीच कयास लग रहे हैं कि 30 सितंबर को इंडिया अलायंस के कौन कौन से बड़े नेता आएंगे। उद्धव ठाकरे की ओर से ऑनलाइन बैठक में शामिल होने की बात कही गई।
4: कौन? बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है तो उनकी वकीली कर रहे हैं लोग।
0: 30 सितंबर की बैठक को लेकर जेएमएम ने अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन हेमंत सोरेन ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। डीएमके का फैसला क्या होगा अभी ये तय नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके की नाराजगी सामने आई थी। शरद पवार की पार्टी का रुख अभी साफ नहीं। ममता बनर्जी और लेफ्ट दलों के बड़े नेता बैठक में आ सकते हैं। तेजस्वी यादव 30 सितंबर की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बीच आज लेफ्ट ने पटना में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते बिहार में लेफ्ट और आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था। उधर जब सीईसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है तो इधर शनिवार को आए चुनाव आयोग के बयान के बाद एनडीए को हमला करने का मौका मिला है।
5: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
6: राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश

0: वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
1: विपक्ष जब बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहां पे एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहां पे इनकी सरकारें हैं?
2: चुनाव आयोग पर सियासत की जंग पहले से हो रही है, लेकिन अब ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं, राजनीतिक हार जीत का सबसे बड़ा प्रश्न बन रहा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं हमारे साथ, अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, और रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, विपक्ष तो आज भी, आप देखिए अलग अलग एक बार तस्वीरें दिखाइए, विपक्ष आज भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कर रहा है। अब सवाल यह है कि पूरी प्रक्रिया पर आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं ना। खबर तो यह आई कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक कर ली है, लेकिन ना तस्वीरें आई ना सामने आकर तीनों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो विपक्ष तो लगातार हमलावर है चुनाव आयोग को लेकर अभी भी, और 31 को आप देखिए कि महाबैठक होने वाली है विपक्ष के नेताओं की।
3: नमस्कार अंजना जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखिए ये नाराज फूफा हैं, इनका कोई और काम नहीं है, ये पहले चुनाव लड़ते हैं, जब जनता इनको नकार देती है तो मुंह फुला के कभी निर्वाचन आयोग को, कभी वीवीपैट को, कभी एसआईआर प्रक्रिया को, कभी सर्वोच्च न्यायालय को गाली देने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक जब मैं आपकी चर्चा में आया था तब बात करी कि निर्वाचन आयोग में जो तीनों कमिश्नर हैं इनके बीच में मतभेद हैं, तो हम लोगों ने एक बात रखी कि देखिए जितने भी फैसले लिए गए हैं एक साल में वो सारे के सारे सर्वसम्मति से लिए गए हैं, और विचारों का आदान प्रदान होना या अपनी बात रखना और सभी उस पर सहमत ना हो, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, आंतरिक लोकतंत्र दिखाता है, और ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जब आरोप लगाया था कि पूरा निर्वाचन आयोग मोदी जी चला रहे हैं, उनके इशारे पे चल रहा है, और इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम ले लेकर बताया था कि कितने खराब हैं वो, और स्वायत्तता उनकी कहीं ना कहीं धूमिल हो रखी है, तो मैं पूछना चाहता हूं अब बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर वो कैसे अच्छे हो गए?
2: गौरव जी,
3: दूसरी बात, आपने
2: गौरव जी एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, सुनिए ना गौरव जी, ये सब बातें तो आपने पिछली बार जब हमने थर्सडे फ्राइडे को डिबेट किया था तब भी आपने यही बातें बताई थी। आज के दबाव पर आपसे एक प्रतिक्रिया मैं चाह रही थी कि भाई पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर में, अब ये तो यही मानते हैं ना कि अब दबाव में आपकी पार्टी जो है वो इस्तीफे लेती है, तो क्या होगा अब? ये देखिए, ये देश भर में कहां कहां पर प्रोटेस्ट हुआ है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
3: सबसे पहले ये मंद बुद्धि 56 साल के अपरिपक्व बालक राहुल गांधी कह सकते हैं कि सरकार इस्तीफे लेती है दबाव में? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 संविधान का है, उसमें एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो इस्तीफा सरकार मांगेगी लेगी ये प्रश्न ही नहीं उठता है, ये केवल अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष ही कह सकता है। और आज मैं जो अब बात कहने जा रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, आपने एक बात कही कि निर्वाचन आयोग की एक बैठक हुई, लेकिन तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो साथ आए इसकी तस्वीर नहीं आई। अंजना जी, ये 26 सितंबर का मेरे हाथ में प्रेस नोट है, और इसी के साथ मेरे पास एक तस्वीर है जो आप पुष्टि कर सकती हैं, तीनों निर्वाचन आयोग साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तीनों निर्वाचन आयोग के जो कमिश्नर हैं ये एक साथ आए,
2: तो
3: इन्होंने मंथन किया और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए।
2: हाँ, हम वीडियो की बात कर रहे थे,
3: आप भी पुष्टि करिएगा।
2: हाँ नहीं नहीं, ये तो है, ये है, फोटो दिखा दीजिए, ये फोटो तो हम भी दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब अतुल जी के पास चलते हैं। अतुल जी एक एक पहले तो बता रहे हैं आपकी जो ये बैठक है 30 सितंबर को, कौन कौन आ रहा है? जाहिर तौर पर सोनिया गांधी तो रहेंगी ही, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही मुख्यतः इसे लीड कर रही है। एक बार दिखा दीजिए सबके चेहरे, कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव का नहीं आना, हालांकि राज्यसभा के चुनाव से जोड़कर देखिए हमने वो पहले ही बता दिया है, लेकिन ये तो वो वक्त है ना भाई कि आप लोगों

0: के अस्तित्व की लड़ाई है, आप लोग कहते हैं लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये फोटो हमने दिखा दी है गौरव जी, जो तीनों की फोटो उस दिन जारी हुई है। अब जरा नेताओं की तस्वीर दिखा दीजिए जो जो आ रहे हैं 30 सितंबर की बैठक में, क्योंकि माना जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक बहुत बड़ा मोर्चा सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ खोल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव नहीं आएंगे, कंफर्म हो गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिनिधि आएगा। उद्धव ठाकरे, ये देखिए सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नेता तो आ ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव पर क्रॉस लगना कि वो नहीं आएंगे, उनका कोई प्रतिनिधि आएगा। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़ेंगे और संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हम 3 तारीख को मुंबई में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, अगर आना है तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, ममता बनर्जी का भी लगभग तय है। अब ऐसे में हमारा सवाल आपसे ये है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, अगर वाकई मतलब चुनाव आयोग, अभी हेमंत सोरेन जी का भी तय नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है?
1: पहले तो मैं गौरव जी के कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, और जिस भाषा में उन्होंने बात की मेरे नेता के बारे में, उससे बेकार भाषा में मैं उनके नेता के बारे में बात करूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री फेकू है, झूठा है, क्रिमिनल है, संसद में झूठ बोलता है, जनता में झूठ बोलता है। इतना बड़ा फेकू नेता किसी देश में ना पैदा हुआ है ना कभी पैदा होगा। मुझे एक बात बताइए, 4 महीने मीटिंग नहीं होती है, तीनों कमिश्नर जो है वो साथ में नहीं आते, 4 महीने मीटिंग नहीं होती है, किसी को पता नहीं है कि अगर आए हैं और असहमति हुई है तो उसके एजेंडा कहाँ है, उसके मिनट्स कहाँ है, क्योंकि कल के मीटिंग में कबूलीनामा आया है कि इसी नेट की समीक्षा होगी, लेकिन डीजीआईटी सीमा खन्ना क्यों पद पर बैठी है, डीएआई क्यों पद पर बैठा है मनीष गर्ग, इसका जवाब नहीं देंगे। फॉर्म नंबर 6 पुराना जो है वही लागू होगा अभी इसके बाद, और मिनट्स लिखे जाएंगे इसके बाद। तो चोरी की कबूली तो जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन ने दिया है, क्योंकि चोरी का माल इनको फायदा हुआ है, इसीलिए ये लोग जो है वकालत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, उनकी उनके बाजू से खड़े हो रहे हैं, जबकि इनका काम नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात करना। अभी सवाल ये खड़े होते हैं कि अस्तित्व अभी मोदी जी को देश ने तो नकार दिया है, अभी चुनाव नहीं है लेकिन मोदी जी को देश ने नकार दिया है।
0: अच्छा, कैसे?
1: ये सरकारी जलाए गए, किसी ने जलाए नहीं, आज हर कोई उठ के मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो मोदी जी का तो कोई हिम्मत नहीं है, अभी तो वर्टिकल वीडियो भी नहीं आ रहा है, तो ये सब अस्तित्व की अगर लड़ाई किसकी है तो बीजेपी की है, मोदी की है, मोदी के चेहरे की है, उनकी अस्तित्व की लड़ाई है, और इस देश में जिस तरह से तार तार किया है संवैधानिक।
0: अतुल जी आपसे भी एक काउंटर क्वेश्चन है,
2: मैं
0: मतलब आप बैठे बैठे बस बोल दें कि भैया उनका अस्तित्व को नकार दिया है, अरे चुनाव लड़के जीता जाता है अतुल जी, कांग्रेस पार्टी भूल गई है क्या?
1: अंजना जी
0: सुनिए ना, इसीलिए बीजेपी कहते हैं, वो कहते हैं बिना मेहनत के कह देना चाहते हैं कि हमारी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार तो गई
1: नहीं है, जो आज रस्ते पर नहीं है, सड़क पर नहीं है, किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, हर कोई आंदोलित है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, स्पेशली बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो है ही, लेकिन स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। कल पूरे सीएम आए थे इलेक्शन कमीशन को बचाने, बिना प्रेस नोट पड़े इलेक्शन कमीशन ने क्या कबूलीनामा दिया है, और आ गए मंद बुद्धि जो ठहरे, बोल दिया है जो बोलना है, स्क्रिप्ट आई है वैसा लिखना है वैसा बोल दिया है। तो ये अस्तित्व जो है, अस्तित्व का सवाल उनका है और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सामने दिखता है। अब चोरी करके कर रहा है सब हिसाब, तो उसको लग रहा है कि हम चुनाव जीत रहे, चुनाव जीत नहीं रहे, चुनाव चोरी कर रहे, पार्टी चोरी कर रहे, वोट चोरी कर रहे, ये सब जो है।
0: केरला और तमिलनाडु को भी कैंसिल करना है ना साथ में,
1: ऐसा है कि मैच फिक्सिंग जब होती है ना अंजना जी, मैच फिक्सिंग होती है तो हर नो बॉल जो है, हर बॉल नो बॉल नहीं होता, पर्टिकुलर बॉल नो बॉल होता है।
0: मैं मान रही हूँ आपकी ये दलील, मैं मान रही हूँ, आप लोग ये कहते हैं कि बीजेपी कुछ चुनाव जीत लेती है, कुछ चुनाव जानबूझ के हार जाती है, सब कुछ फिक्स हो रहा है, वोटर का वोट का कोई तब मतलब भी नहीं है देश में। लेकिन अगर कैंसिल करना, रुकिए ना सर, एक सवाल पूछ लेने दीजिए गौरव जी, अगर कैंसिल करना है तो केरला और तमिलनाडु का भी करना है या नहीं करना है?
1: कैंसिल पूरा ही करो ना, कोई दिक्कत नहीं है,
0: पूरा करो,
1: 2023 के बाद हर प्रक्रिया को कैंसिल कर दो।
0: ठीक है, एक बार जल्दी से आपको सुना देते हैं, तमाम मुख्यमंत्री, आप ही अतुल जी जो कह रहे थे ना कि सारे मुख्यमंत्री मैदान में आ गए हैं, एक बार सुन लीजिए क्या क्या कहा है सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने।
3: कांग्रेस जैसी पार्टी वो लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, कभी इन दलों को स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।
4: ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो जितनी बार भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं हर बार उनका ये नैरेटिव जो है झूठा साबित होता है।
5: रोज प्रश्न उठ रहे,
2: वैसी पार्टी आज देश में प्रश्न उठा रही है जिसके लोकतंत्र पूरी पार्टी में लोकतंत्र नहीं।
5: मैं ये समझती हूं कि इस तरह की जो गतिविधियां माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई भी नेता कह रहा है वो देशद्रोह से कम नहीं है, इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए।
6: ममता बनर्जी को मैं बोल रहा हूं, आप एमएबीबी और राहुल गांधी जाकर केरला में भी आंदोलन कीजिए, वहां एसआईआर अच्छा है, कांग्रेस जीता है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत खराब हो गया।
0: क्या ये मतभेद के संकेत है सुनील सिंह यादव जी? मैं अब मुख्यमंत्रियों ने जो कहा है उस पर आऊंगी मैं, गौरव जी थोड़ा देर बाद जवाब दीजिएगा। लेकिन सुनील सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है, अखिलेश यादव और मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अन्य मुद्दे हैं वहां पर, शायद राज्यसभा के चुनाव की चर्चा हो रही है, लेकिन इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्या ये बात सच है कि जो अखिलेश यादव एसआईआर की प्रक्रिया से ऑफिशियली सहमत है, उनका मानना है कि एसआईआर होना चाहिए, वो अनियमितताओं को लेकर बोल रहे हैं और पिछली बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें भी उन्होंने जीती थी यूपी में, इसलिए वो अपने आप को ऐसे मोर्चे से अलग कर रहे हैं क्या? स्ट्रेट सवाल है।
7: नहीं अंजना जी, अंजना जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम पहले से ही कहीं तय था और ये बैठक बाद में तय हुई है, तो ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी
0: का कार्यक्रम
7: है।
0: सुनील जी, कौन सा कार्यक्रम है सुनील जी
7: शामिल हो रहे हैं?
0: कौन सा कार्यक्रम है 30 तारीख को?
7: प्रतिनिधि के रूप में तो कोई ना कोई शामिल होगा, हम वो भी आपके पास खबर आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे नेता कोई कार्यक्रम में शामिल हो या कहीं बैठक करें और आप तक ना आए या आपके माध्यम से देश तक न जाए। सवाल यह है कि क्या इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी खत्म करके मानेगी? हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है, अगर हमको लगता है कि सरकार की कोई नीति, कोई कार्यक्रम, कोई योजना अगर गलत है, समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो उसको गलत कहेंगे। हमारे नेता ने जब अंजना जी पहली बार कहा कि भगवान राम के मंदिर में चोरी हो रही है, लूट हो रही है, तो सब लोग आ गए कि नहीं नहीं ये तो सनातन के खिलाफ है। फिर बाद में क्या हुआ? हमारी पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी पिछड़े और दलितों का आरक्षण लूट रहे हैं, अंततः क्या हुआ? सच हो गया, 69,000 की आप शिक्षक भर्ती देख लीजिए। हम लोगों ने कहा कि जाति धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार काम कर रही है, वो भी हमने सबने देख लिया। पेपर लीक पर हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद शामिल हैं। अंत में क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। अभी इन लोगों को लग रहा है कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, आंदोलन से ये देश आजाद हो गया तो आपसे तो आजादी पाने में कितनी देर लगेगी? अगर, और मैं एक बात को स्वीकार करता हूं लोकतंत्र में अंजना जी, इस देश में किसानों ने भरोसा किया ना मोदी जी पे, तभी तो मोदी जी को जिताया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया या बीजेपी सरकार ने क्या किया? उनको आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, धोखेबाज कहा, उन पर लाठी चलवाई, उन पर गोली चलवाई, अपने नेताओं से उन पर थार चढ़वा दी। बेरोजगार नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी, देश की बेटियों को बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद व्यापारियों को थी जो छोटे व्यापारी हैं, बड़ी उम्मीद तो सबको थी, लेकिन सबकी उम्मीद टूटी है। चंद लोगों की उम्मीद पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है,
0: ठीक है। लेकिन सुनील जी, मुझे समझ गए, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे लगता है दर्शकों को भी लग रहा होगा, सुनिए ना सुनील जी, कि असल मुद्दे से ना आप थोड़ा सा भटक रहे हैं। तमाम मुद्दों को आप उठाइए, हमेशा हम लोग डिबेट करते ही हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जो विपक्ष का मोर्चा है उससे अपने आप को अलग करना डायरेक्टली अखिलेश यादव का कुछ संकेत जरूर दे रहा है। आप इसको स्वीकारें ना स्वीकारें, अपनी जगह पर है। जल्दी से एक कमेंट गौरव जी ले लें, उसके बाद से मैं बाकी दुबे जी आपके पास आ रही हूं। गौरव जी, दोनों की ही बातों का जवाब दीजिए।
8: हाँ अंजना जी, थोड़ा समय देंगी तो दोनों की बातों का उत्तर
0: मैं पूरा समय दूंगी, बस अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा।
8: तीन शब्दों का
0: बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है आप दोनों से, अब शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के नेता के लिए मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। बोले गौरव जी।
8: बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, सबसे पहले झूठा क्रिमिनल और फेकू कहा, तो झूठा रफेल में चौकीदार चोर है कह के सर्वोच्च न्यायालय के सामने माफी मांगी बिना शर्त राहुल गांधी, झूठे साबित हुए। क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में सजा हुई राहुल गांधी को हुई, और फेकू राहुल गांधी जो विदेशी धरती पे कहते हैं भारत के सिख, बीच में नहीं, आप जिस बदतमीजी से बात करो मैंने तीनों तथ्य दिए, अगर दम हो, कोई बदतमीजी नहीं अंजना जी, क्या बदतमीजी है, तीन तथ्य हैं, तीनों तथ्य अगर काट सकते हैं आप बता सकते हैं मैंने गलत बात बोली, झूठ बोला तो जरूर बताइएगा, वरना शांत रहिएगा। तीसरा, इन्होंने फेकू कहा, विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के सिख पगड़ी और कंगन नहीं पहन सकते, ये भी टेक नहीं है और कुछ नहीं है। लेकिन आज के मुद्दे पे आते हैं जो बड़ी बात है, और जो प्रेस नोट जिसकी मैं बात कर रहा था अंजना जी, मैं आपको उसके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, उस प्रेस नोट में जो बड़ी बातें आई हैं, वो प्रेस नोट स्वयं कहता है कि इस प्रेस नोट में जो जो जानकारी दी गई है ये यूनानिमस दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, ये तीनों निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमिश्नर्स मिले, इन्होंने जो भी निर्णय लिए वो सर्वसम्मति से लिए, प्रेस नोट भी जो निकला वो यूनानिमस निकला। दूसरी बात इसी प्रेस नोट में लिखी है कि 32 जो प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी है, यहां पे SIR होगा, ये यूनानिमस डिसीजन था, सर्वसम्मति से लिया गया था, ये इस प्रेस नोट में लिखा हुआ है। और मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है उससे एक लाइन पढ़ दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, द इम्प्यून्ड SIR एक्सरसाइज नीदर स्टैंड्स इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द RP एक्ट नॉर डज इट डिट्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब मोहर लगाई कि SIR की ये जो पद्धति है, जो ये निर्णय है, ये ठीक है। दूसरी बात, एक और यूनानिमस डिसीजन हुआ था, और वो यूनानिमस डिसीजन हुआ था फॉर्म 6 को लेके, और फॉर्म 6 को लेके आपकी चर्चा में मैं बैठा था। मैं फिर से सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है उस पर जाऊंगा, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश को ये सुनना चाहिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही ये सही है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के अंतर्गत विहित प्रपत्र 6 दस्तावेजीकरण का एक ढांचा प्रस्तुत करता है, तथापि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत परिकल्पित पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया के अनुरूप बनाया गया है, और सभी परिस्थितियों में वर्तमान प्रकृति की कवायद पर अक्षरशः लागू किए जाने योग्य नहीं भी हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन को पावर दी कि वो ये जो हमने प्रोफॉर्मा ऐड किया है वो ये कर सकता है आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326 में। अंजना जी, अब मेरा सवाल है, जो बात आपने भी उठाई, मैंने तो कहा कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, निर्वाचन आयोग सही है कि गलत है, हमारी सरकार कुछ गलत करती है कि नहीं, राहुल गांधी सही है कि गलत, लेकिन क्या ये पैमाना और मापदंड हो सकते हैं कि आप केरला में चुनाव जीत गए हैं और वहां पे आपने ये नहीं कहा कि हम इस्तीफा देंगे, आप मैच खेलेंगे, क्लीन बोल्ड होंगे, हिट विकेट होंगे, उसके बाद कहेंगे पिच खराब है, रेफरी खराब है, ऐसा नहीं होता है। और सपा की बात का भी उत्तर दे दूं, देखिए समाजवादी पार्टी आज ये समझ नहीं पा रही कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी स्वयं है। इमरान मसूद के मैं बयान देख रहा था, इमरान मसूद ने कहा कि जब मैं बात पूरी कर लूं,
0: करिए करिए,
8: इमरान मसूद की आज की लाइन बता रहा हूं, समुन्दर में उफान हो तो केवल बड़ा जहाज ही झेल पाता है, छोटी मोटी कश्तियां तो डूब जाती हैं। मतलब टूटी साइकिल को छोटी मोटी कश्ती बता दिया अंजना जी, इमरान मसूद ने बताया है। और ये बयान तब आया है सामने जब राजेंद्र पाल गौतम, इनका भी बयान आया है, वो भी सपा को ही अटैक कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है, इनका आपसी द्वंद है, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और जब योगी आदित्यनाथ जी की आएगी आंधी तो उड़ जाएगा राहुल गांधी और टूटी साइकिल वाला।
0: जवाब दीजिए फिर मैं दुबे जी आपके पास।
8: ये बात बिल्कुल स्पष्ट है,
0: इसीलिए कांग्रेस पर हमला किया।
1: नहीं, ऐसा है कि फॉर्म नंबर 6 के बारे में इतना झूठ जो है बोला जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर तो झूठा है, अप्रूवर बन जाए तो बच जाएगा, नहीं तो बड़ी प्रक्रिया से सामने जाना पड़ेगा। अभी ऐसा है कि फॉर्म नंबर 6 के लिए जो परमिशन दी थी SIR में, अदर स्टेट के लोग जो आएंगे उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसके लिए दी थी। और उसके बाद संधू जी और जोशी जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि इस तरह का जो चेंज करना है रेगुलर फॉर्म नंबर 6 में चेंज करना है और उसमें रिलेटिव के लेकर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सर रिलेटिव ऐसा यार 2002 में मैं बीच में बोला नहीं मैं बीच में बोला नहीं सच बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ सुनो
8: मैं अभी सच बता रहा हूँ
1: कहा है मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कानूनी अधिकार नहीं है बिल्कुल नहीं है
8: सवाल
1: ये देखिए अंजना जी इस तरह से होता
0: है गौरव जी ऑब्जेक्शन वो गौरव जी
1: मैं बता रहा हूँ सुनो अरे सुनो रे भाई मेरे सुनो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हो झूठ बोलते हो आके तो फॉर्म नंबर 6 में कोई भी एसआईआर में पिछले आपके पेरेंट्स के नाम थे नहीं थे ये इस तरह का बदलाव के लिए सरकार को पार्लियामेंट में जाकर ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं इसके बारे में था वो फॉर्म 6 में सिर्फ अदर स्टेट से आए हुए लोग थे वो बदलाव उसमें रैशनल क्या है वो रैशनल की बात जो है वो कोर्ट ने कही थी तो ये जो है सरासर गलत है जिसके ऊपर संधू जी और जोशी जी ने ऑब्जेक्शन लिया था वो 14 ऑब्जेक्शन जो है वो इट इज ऑन टेबल और इस सरकार ने मिनट्स लिए इस इलेक्शन कमिश्नर ने मिनट्स नहीं बनाए है एजेंडा नहीं बनाया है इसीलिए इस प्रेस नोट में अभी कहा गया है कि एजेंडा बनेगा मिनट्स भी बनेंगे पुराना फॉर्म नंबर 6 लागू किया है और ईसीआई नेट की समीक्षा भी की जा रही है जो ऑब्जेक्शन उठाया गया उसको मान लिया है कबूलीनामा जो है तो सामने आ गया है 50 अधिकारियों के तबादले हो गए लेकिन अब तक एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे इनके साइन नहीं हो चुके हैं तो ये सब चीजें है सामने आ गई। अब मैंने फेकू क्यों कहा था 15 लाख रुपए आए सारा ब्लैक मनी आ गया था 15 लाख रुपए लोगों के जेब में आने वाले थे इनकम टैक्स नहीं लगने वाला था ट्रांजैक्शन टैक्स लगने वाला था इन्होंने कहा 35 रुपए का पेट्रोल मिलने वाला था 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले थे इसमें से कुछ नहीं फेकू कहा झूठा क्यों कहा पार्लियामेंट में मैं बीच में बोला नहीं अंजना जी
0: गौरव जी का ऑडियो डाउन कीजिए गौरव जी प्लीज वेट बोलियो
1: इस देश के जाबाज सिपाहियों ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी शहादत दी थी उसके बारे में पार्लियामेंट में झूठ बोलने वाले रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश ने देखे हैं। राफेल में क्यों रात को आपने सीबीआई डायरेक्टर आलोक कुमार के वहां रेड करवाई थी देने वाला था सुप्रीम कोर्ट को जेपीसी ने लगाई आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी खरीद में इतनी बड़ी खरीद में अगर आरोप लगे है और चेंजेस आए हैं कॉन्फ़िगरेशन से लेके सारे चेंजेस आए 526 का 1700 करोड़ तक गया है तो जेपीसी लगाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई तो चोर के दाड़े में तिनका है जो गलती से आपको मिल गया था मैंडेट उस मैंडेट का आपने गलत उपयोग किया इसलिए मैंने कहा था क्रिमिनल है। तो संस्थाओं का जिस तरह से दोहन किया गया है संस्थाएं खत्म की गई है तो मैं मुद्दों के साथ सारी बातें की है तो एक बात स्पष्ट तरीके से सामने आती है अंजना जी आज देश का लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का चीरहरण हो चुका है सबूत के साथ मुद्दों के साथ बात करता हूँ मैं ऊपर की कोई बात नहीं करता हूँ अगर कोई है
0: अतुल जी अगर आप फैक्ट्स पे बात करते हैं तो आपने कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला क्या झूठ बोला बताइए
1: इस देश के सिंदूर में
0: क्या बोला
1: ऑपरेशन सिंदूर में जवानों ने कोई जवान की हताहत नहीं हुई रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री ने दोनों पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है इट इज ऑन रिकॉर्ड तुमको मंजूर करना पड़ा अरे अपने देश के जवानों की शहादत मंजूर नहीं करने से बड़ा गुनाह क्या हो सकता है जी
0: गौरव जी डायरेक्ट सवाल है डायरेक्ट जवाब दीजिए
8: आप देखिए चलिए हाँ अंजना जी सबसे पहले देखिए बहुत जिम्मेदारी से अब मैं ये बात कहना चाहता हूं जो मेरी बात पूरी हो केवल और केवल चाहे पूरा कार्यक्रम इसी बिंदु पे चर्चा हो पूछते रहिएगा आपके शो पे इन्होंने कहा कि संधू जी और जोशी जी ने ऑब्जेक्ट किया एसआईआर के लिए और फॉर्म 6 के लिए इन्होंने खुद कहा मैं चुनौती दे रहा हूं आज तक पे वो दस्तावेज दिखाए जिसके
1: फॉर्म 6 के बदलाव के लिए किया उन्होंने
8: आप बीच में बात अब अंजना जी बीच में ना बोले बीच में
1: मैं आप अपना झूठ बताइए आप तो भारद्वाज ने जो अर्जियां लगाई थी भारद्वाज ने जो अर्जियां लगाई
8: ना बोलिए ऐसा यार कृपया करके
1: बीच में ना बोलिए लिया ऐसा
8: देखिए आप अंजना जी आप
0: नीचे कर दीजिए अतुल जी की
8: डाउन करिए
0: चलिए बोलिए
8: देखिए
0: पूरा
8: धन्यवाद अब देखिए अंजना जी आपके चैनल पे ये बात बोली गई है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं संधू जी और जोशी जी इनका नाम लेकर इन्होंने आपत्ति दर्ज करी और विरोध किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बात कही मैं प्रमाण मांग रहा हूं देश की जनता प्रमाण मांग रही है आज तक पे कह रही है डंके की चोट पे किस दस्तावेज में ये लिखा है प्रमाण दे दो अतुल लौंडे सल्यूट करेंगे हम लोग और अगर नहीं दे पाओगे तो जैसे दोगला झूठा अपरिपक्व राहुल गांधी है वैसे ही प्रवक्ता है। दूसरी बात मैंने अगर कहा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कहा फॉर्म 6 को स्वीकृति दी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस नोट में 26 सितंबर के लिखा हुआ है और मैं एक लाइन पढ़ दूंगा दर्शकों के लिए कैसे ये अनुमति दी और उस पर मोहर लगाई कि फॉर्म सिक्स जो बदला गया है ठीक बदला गया है. द कमीशन देयरफॉर रिटेन्स अ डिग्री ऑफ रेसिडुअल अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क सूटेड टू द एक्सिजेंसीज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. ये प्रमाण है, मैंने प्रमाण दिया अंजना जी, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार नेता है, हम एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है. क्या कांग्रेस पार्टी से अब आप पूछेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कहता है, क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? तीसरा, इन्होंने रफेल की बात करी, आपने कहा चौकीदार चोर है, 2019 का चुनाव आप हार गए, ये सच्चाई है. 2024 में इन्होंने झूठ फैलाया संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने. 2025 में बिहार के चुनाव में इन्होंने कहा ऐसा यार गलत है, हम लोग चुनाव जीते या हारे, पश्चिम बंगाल में इनका सुपड़ा साफ हो गया, हम लोग चुनाव जीते. मैं पूछना चाहता हूं, रफेल का जजमेंट पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, सीबीआई जांच की मांग की गई, सर्वोच्च न्यायालय ने उस मांग को ठुकराया और कहा कि जो भी फैसला लिया गया है ये देश हित में है. तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी आप आरोप आज तक पे आके लगा सकते हैं? मैं समझता हूं ये अपने आप में दिखाता है, ये केवल नाराज फूफा नहीं है, ये लोग विध्वंसक हैं, ये भस्मासुर हैं, ये भारत में अफवाह फैलाते हैं. जैसे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने कहा और जेपी नड्डा जी ने कहा कि आओ झूठ फैलाओ, भ्रम की राजनीति करो, उसके बाद गायब हो जाओ. और जो सवाल मैंने पूछे हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है आप पूछेंगी और उसका उत्तर जरूर लेंगी.
0: सुन ही रहे थे पाटिल जी, तो उनको जवाब देने का मौका दे ही देते हैं.
1: बोलिए, अभी फॉर्म नंबर सिक्स के बारे में इन्होंने बात कही, वो जो फॉर्म नंबर सिक्स की बात
0: जी, इसके बाद आऊंगी मैं, भरोसा रखिए.
1: वो जो फॉर्म नंबर सिक्स की बात कही थी, उस फॉर्म नंबर सिक्स में जब एसआईआर हुआ था बिहार का, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बाहर के स्टेट्स के लोग आने वाले जो है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, उनका इन्फॉर्मेशन, जेंडर का, तो वो हो सकता है. ये बीच में मत बोलो, मैं बीच में बोला नहीं गौरव भाटिया जी, आप सच बोल रहा हूँ, फेकू नेता का फेकू प्रवक्ता.
0: आनंद दुबे जी, दोनों का ऑडियो डाउन कर दिया. आनंद दुबे जी आपके पास आ रहे हैं. दुबे जी देखिए, आज अगर विपक्ष लोकतंत्र के सामने ये बात रख रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो न्यूट्रल अंपायर नहीं है, चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जितवा रही है, गंभीर आरोप है ना भाई. हम अपना प्रोटेस्ट मुंबई में करेंगे, राउत जी कह रहे हैं, और जब कांग्रेस इतना बड़ा एक विपक्ष का पूरा यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रही है, तो ऑनलाइन उद्धव जी जुड़ रहे हैं, अखिलेश जी आ नहीं रहे हैं, क्या वजह है? क्या आप लोग गंभीरता से ले नहीं रहे हैं इस इशू को?
9: अंजना जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम. हम लोग बहुत गंभीर हैं अंजना जी, और मैं तो यही कहता हूं कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपों शीतल होए. अभी आदरणीय गौरव भाटिया जी ने विपक्ष को, फूफा जी का, कोई बात नहीं, हम लोग हैं नाराज फूफा जी, लेकिन हम तो आपके रिश्तेदार भी हुए स्वाभाविक रूप से. अगर आप हमें फूफा कहते हैं तो आप हमारे प्यारे मौसा जी हैं गौरव भाई, और मौसा और फूफा में थोड़ी बहुत तो बातचीत होने दीजिए. ये सारा रायता फैला कहाँ अंजना जी, आप जानती हैं? एक देश के चर्चित अखबार में खबर आई कि तीनों ही हमारे चुनाव आयुक्त, चाहे सुखबीर सिंह संधू जी हों, विवेक जोशी जी हों, और चाहे ज्ञानेश कुमार जी हों, ये पिछले 10 महीनों में आपस में मतभेद का शिकार हो रहे हैं. हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा, अखबार ने कहा, उस पर चर्चा हुई. अच्छा, चर्चा चुनाव जिताने हराने की भी नहीं हुई है, चर्चा एसआईआर को लेकर हुई है. स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बिहार में हो रहा था, पश्चिम बंगाल में हो रहा था, महाराष्ट्र में शुरू है, अब यूपी में शुरू. तो उसमें क्या कोई गलत ढंग से एसआईआर हो रहा है, क्या गलत ढंग से नाम काटे और जोड़े जा रहे हैं, इसी पे चर्चा था. अब इस चर्चा को कहां से कहां कोई ले जा रहा है, उसका कोई अर्थ थोड़ी है. हमें तो सिर्फ ये जानना है कि हमारे देश का लोकतंत्र
0: दुबे जी
9: क्या वो सचमुच उसी तरह काम करता है.
0: ए दुबे जी, मेरा सवाल सुने थे
9: जी? आपके सवाल पे आ रहा हूं, पहले तो मुझे भूमिका बनानी पड़ेगी.
0: हाँ,
9: पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर कैसा है
0: जी.
9: अच्छा, अब इतना क्लियर हुआ कि हम इस देश के एक देशभक्त हैं. अगर हमारे देश के चुनाव आयोग में कोई त्रुटि है तो ठीक होनी चाहिए, ये होगी पहली चीज. अब आता हूं आपके मूल सवाल पर कि एक बहुत बड़ा विषय है, इसको लेकर एक इंडिया गठबंधन के रूप में या एक महाविकास आघाड़ी के रूप में आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं. अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी, वो अपना एक आंदोलन कर रही है, हम अपने में उलझे हैं, हमारी तो पार्टी और चुनाव चिन्ह का जब नाम छीना जा रहा था तब तो ज्ञानेश कुमार थे भी नहीं, तब तो राजीव कुमार थे। ज्ञानेश कुमार तो आए ही 2025 के बाद, तो वो क्या कर रहे हैं हम उनके बारे में क्या बताएं? हम तो उनके बारे में कह सकते हैं जो पहले रायता फैला के चले गए। दूसरी बात, कोई कह रहा है वोट चोरी हो गया, कोई कह रहा है सरकार बदल दो बिगाड़ दो, तो इस पर तो जनता हंसती होगी हम लोगों की बातें सुन के। अरे वोट चोरी उनके होते हैं अंजना जी, जिनके वोट होते हैं, हमारे वोट महाराष्ट्र में है, वो चोरी होते हैं तो जरूर हमें तकलीफ होगी, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं वहां पार्टियों के वोट ही नहीं है, तो वो चोरी होते होंगे तो कहां से चोरी होते होंगे उस पर तो एक बहुत बड़ी समीक्षा करनी पड़ेगी। खैर मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा अंजना जी, हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संवैधानिक ताकत दी है लोकतंत्र में, अच्छे से चुनाव लड़ने और जीतने की, कहीं उसमें सेंध तो नहीं है, कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं उसमें कोई
0: दुबे जी, तो नहीं। थोड़ा वापस आपको ला रही हूँ बहस में। देखिए ठीक है, मैंने आपकी प्राथमिकता समझी, लेकिन आपने ये कहा कि हम सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। भाई कभी तो देश को भी प्रायोरिटी मानकर पार्टियों को चलना पड़ेगा, क्योंकि आरोप यही लगता है ना कि आप लोग इकट्ठा होकर इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। सब आरोप तो लगा देते हैं लेकिन बाद में जब आता है कि भाई चुनाव आयोग में जाकर बताना है कैसे कैसे हैकिंग हो रही है तो सब गायब हो जाते हैं। जब इकट्ठा आकर आपको कोई मुद्दा उठाना, रुकिए मौका दूंगी, तब उसमें से एक दो इंपॉर्टेंट नेता ही, मतलब यूपी में चुनाव है और अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं, तो इस पर क्या जवाब है आपका? क्योंकि ये तो इससे बड़ी प्राथमिकता तो नहीं होनी चाहिए किसी की कोई भी। लगातार जिस दिन से ये खबर आई है, लगातार कम से कम 4-5 दिन से हम लोग यही बहस कर रहे हैं भाई, रोज घंटों घंटों।
9: अंजना जी अब 10 सेकंड में बताता हूं ये हमारी टीम कैसी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी लड़ती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लड़ती है, कहीं कोई किसी के खिलाफ, कहीं कोई केरल में सीपीएम और कांग्रेस के खिलाफ। इस पूरे खेल में जो सबसे महत्वपूर्ण दल है वो कांग्रेस है। कांग्रेस जब तक हमारा नेता नहीं बनेगी कैसे ये टीम आगे बढ़ेगी? भैया एक कप्तान तो चाहिए, या तो आप कहिए कि आज से इस टीम के कप्तान उद्धव ठाकरे साहब होंगे, आज से इस टीम के कप्तान अखिलेश यादव जी होंगे, आज से इस टीम के कप्तान अरविंद केजरीवाल जी होंगे, बेशक हमारी टीम आगे बढ़ेगी।
0: अरे आप कांग्रेस पार्टी को कप्तान चाहते हैं ना, कंफर्म्ड है ना ये? मैं मानू कि उद्धव जी की तरफ से बोला जा रहा है।
9: अरे अरे बिल्कुल,
0: महाराष्ट्र चुनाव में तो लड़ रहे थे आपस में,
9: कांग्रेस पार्टी के कप्तानी में तो ये इंडिया गठबंधन बना था।
0: ठीक है रजत सेठी, आपका क्या एनालिसिस है इस पूरे सिचुएशन का? क्या हम सिर्फ चुनाव आयोग के इर्द गिर्द यही मिट्टी उछालना और ये आंदोलन और ये मतलब तस्वीर निकाल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञानेश कुमार को टारगेट होते हुए देखेंगे, या हम वाकई एक बदलाव देखेंगे?
10: अंजना जी ये अभी दुबे जी भी बोल रहे थे, ये विषय ज्ञानेश जी से तो बहुत पुराना ही विषय चल रहा है। जब ये हैकिंग का के एलिगेशंस लगते थे इलेक्शन कमीशन में, तो पहले बोला गया कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर ही पूरा हैक्ड है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा प्रयास किया कि चलिए हम ही हैकेथॉन करवाते हैं कि आए जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं आके समीक्षा कर लें, अपने अपने कोडर्स को ले आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ले आए, जिसको लाना है। पर उस दिन जब रखा गया तो कोई आया ही नहीं। अब इस बार भी, अब आप देखिए लगातार यूपी में जिस तरह से एसआईआर का काम राजनीतिक दलों में से समाजवादी पार्टी ने किया, उतना किसी ने भी काम नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि एसआईआर से आप एसआईआर के प्रोसेस को ही के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो कहीं कुछ हिलने नहीं वाला है। तो समाजवादी पार्टी ने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और ढंग से एसआईआर करवाया, इसलिए उनको एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां पर भी हम देखते हैं कांग्रेस लीडरशिप में आती है, जैसे बिहार चुनाव में हुआ, जैसे ही कांग्रेस ने विषय बनाया वोट चोरी का तो तेजस्वी जी किनारे हट गए, वो उनकी सभाओं में नहीं आते थे। आपको याद होगा बिहार चुनाव में जब ये वोट चोरी के लिए मोटरसाइकिल पे रैली कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो तेजस्वी जी नहीं थे। उसके बाद जब राहुल गांधी जी बाहर चले गए तो तेजस्वी जी ने रुख मोड़ने की कोशिश करी चुनाव की। उसके बाद यही चीज बंगाल में हुआ, जहां ममता जी बोल रही थी कि चुनाव रिग्ड है और इलेक्शन कमीशन की गलतियां हैं, उस समय कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे जो रस्साकसी चल रही है ये भानुमति के कुनबे में, ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें विषय सिर्फ केंद्र पे राजनीति ही है और स्वहित है। हर पार्टी अपना हित देख रही है, जिसको जहां पे जैसा हित समझ में आता है वैसा वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब अखिलेश जी कोई भी बहाना दे दें कि अभी राज्यसभा का चुनाव है, अब राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश जी का क्या काम है? उनको एबी फॉर्म जो है छापवाना थोड़ी ना अपने घर से, इतना मामूली चीज को अगर वो नहीं बताना चाहिए, डंके की चोट पे बोलने कि हम नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हमारी सीट की अलायंसेज में कांग्रेस हमसे बातचीत ठीक से नहीं कर रही है, या हमारा अलायंसेज में जो समस्या है हम उसको लेकर एक मंच नहीं आना चाहते हैं।
0: डायरेक्ट
10: कोई नहीं दे रहा, मैं पिछले आधे घंटे से सुन रहा हूं, कोई भी नेता डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है।
0: सुनील जी, सुनील जी बोलिए,
7: अंजना जी
0: बोलिए ना, वो कह रहे हैं अखिलेश जी का क्या करना है राज्यसभा चुनाव में।
7: जी जी अब अगर लोग राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया को नहीं समझते तो मैं क्या ही कह सकता हूं। राज्यसभा का चुनाव का मतलब सिर्फ एवी फार्म और नामांकन नहीं होता है। जिस तरीके से भाजपा विधायकों की चोरी करती है, आपको लग रहा है कि बहुत आसान है चुनाव? बहुत कठिन और बहुत टफ चुनाव है, बहुत निगरानी के बाद चुनाव होगा, लेकिन हम लोग चुनाव जीतेंगे। जहां तक सवाल अंजना जी, मैं आज तक पे आपके कार्यक्रम में हूं, कोई कांग्रेस का नेता बयान दे देता है, कोई किसी का दे देता है, मैं केवल आपके कार्यक्रम में एक बात कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव में जा रही है और यही गठबंधन, जिस गठबंधन ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया था, वही गठबंधन 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। हमारा गठबंधन तय है, हमारा नारा तय है, हमारी प्राथमिकता तय है कि हम पीडीए के नारे के साथ जा रहे हैं, हम पीड़ित लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम जनजी के लिए योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, हम रोजगार का इंतजाम कैसे करेंगे, जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कैसे ठीक करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, सड़कों को और एक्सप्रेसवे को कैसे ठीक करेंगे, और जो राजनीतिक वातावरण खराब किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस भाईचारे को और वातावरण को कैसे ठीक करेंगे, हम लोग इस योजना में हैं, इस कार्यक्रम में हैं। तो इस दुविधा में कोई न रहे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा कि नहीं होगा। और मैं आपके कार्यक्रम में एक बात और कह दूं, हालांकि वो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन गठबंधन पर हमारे नेता खड़गे साहब से और माननीय राहुल जी से सीधे बात कर रहे हैं, और हम तो आज तक पर कहेंगे उससे नीचे वालों को ना हमारी तरफ वालों को बात करनी चाहिए, ना कांग्रेस की तरफ वालों को बात करनी चाहिए।
0: उसके लिए कह रहे
7: पूरी ताकत के साथ भाजपा को हराना, एक ही मकसद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।
0: इमरान मसूद के लिए कह रहे हैं क्या?
7: नहीं, हम तो दोनों दलों के लिए कह रहे हैं, हम तो खुद के लिए भी कह रहे हैं।
0: ठीक, अतुल जी,
7: हम लोगों का काम है कि पार्टी नेतृत्व जो तय कर दे उस पर काम करना। और एक एक मिनट में मैं केवल चुनाव आयोग पर एक बात कह दूं कि भाई समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को लेकर के हमारी क्या आपत्ति है? आपने सच कहा कि SIR में जो गड़बड़ी हो रही थी, नंदलाल निषाद को भी हमारे नेता ने सामने रखा, दशरथ को भी सामने रखा, और हम लोग तो जब चुनाव आयोग को आज से शिकायत कर रहे हैं जना जी, 2022 में हम लोग चुनाव हारे, हम लोगों ने शिकायत की, चुनाव आयोग ने कहा कि हमको आप प्रमाण दीजिए, हम लोगों ने प्रमाण दिया, फिर चुनाव आयोग ने कहा नहीं, हम आपके ऐसे चीज नहीं मानेंगे पत्र पर या सोशल मीडिया पर, आप हमको एफिडेविट के साथ दीजिए। समाजवादी पार्टी ने अंजना जी 18,000 एफिडेविट के साथ प्रमाण दिए, चुनाव आयोग आज तक नहीं बोला। इसीलिए हमारे नेता के नेतृत्व में लोकसभा में हमारी पार्टी के सारे सांसद कफन लेकर के गए थे। हम लोगों ने मान लिया है कि चुनाव आयोग की आत्मा मर गई है, चुनाव आयोग मर गया है, उसको हम लोगों ने कफन समर्पित कर दिया।
0: ठीक है, गौरव जी इसका जवाब आप दीजिए। अतुल जी वेट, अभी टाइम है, गौरव जी जल्दी से।
8: हाँ, देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल पे एक और झूठ बोला सपा के प्रवक्ता ने, 18,000 हलफनामे दिए थे। निर्वाचन आयोग ने 18,000 हलफनामे लिए, उनका निरीक्षण किया, फैसला दिया, जो तथ्य बताए गए थे सब गलत थे। और मैं कहता हूं अगर निर्वाचन आयोग के फैसले से आप सहमत नहीं थे, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय गए थे, बता दीजिएगा। दूसरी बात, सपा की टूटी साइकिल का मतलब जंगल राज, जंगल राज किसके लिए ये इंतजार कर रहे हैं? 2016 के बाद सिफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ, ये सवाल जनता पूछती है। सरकारी धन आप उड़ाते थे, फिर नहीं किया। घास की रोटी बुंदेलखंड में यूपी के नागरिकों को खिला रहे थे, बीच में नहीं। प्लीज देखिए अजना जी, ये तरीका ठीक है? बीच में क्यों बोल रहे हैं? घास की रोटी बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के निवासियों को खिलवा रहे थे। आजम खान की भैंसे ढूंढने वर्दी जा रही थी, किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो एक रुपए का मुआवजा देते थे। मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, साल के 200 दंगे होते थे जब आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, और यहां पे आके बातें करते हैं। और मैं एक बात उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई दुबे जी को भी कहना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता, और उद्धव बोल रहे हैं राहुल गांधी से, अंजना जी फैल गया है रायता, गिर गई है बूंदी, राहुल गांधी के दिमाग में लग गई है फफूंदी। ये हालत तो है, आपस में लड़ते हैं उसके बाद कोसते हैं।
1: देखिए ये है ना, ये गौरव भाटिया क्या करते हैं पता है क्या, इनको कुछ मिला नहीं है बीजेपी में, तो ये चाहते हैं कि मोदी को गाली दे हम, ये इनकी चाहत है और इसलिए इस तरह की बदतमीजी करते हैं। देखिए रजत शेट्टी बीच में नहीं है, आप चाहते हो मोदी जी को गाली दे हम, आप चाहते हैं मोदी जी को गाली दे हम,
8: इसलिए
1: ऐसी बात करते हो। रजत शेट्टी जी ने विश्लेषण करते समय दो बातें छोड़ दी, मुझे बहुत बुरा लगा। 27 लाख वोटर्स हटा दिए और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस बार नहीं कोटिंग किया तो अगली बार कर देते, आप शायद आप विश्लेषक को बोल देते तो अच्छा लगता, क्योंकि उसमें से 91% जितने का भी आवेदन आए हैं और उसकी स्क्रूटिनीज हुई है, 91% लोग जो है सही वोटर पाए गए हैं, ये तो फंडामेंटल राइट है, छीना गए, आपने कुछ नहीं बोला। आपने हैकेथॉन की बात की, आप मुझे कोई भी इंजीनियर लेके आए दुनिया का, कोई भी एलन मस्क से लेकर, और वो बता दे कि मॉनिटर को लेकर, बैलेट यूनिट को लेकर कोई वहां पर हैकेथॉन चेक कर सकता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रोचिप जो है उसमें हैकेथॉन चेक होता सकता है, उसमें नकार दिया था नहीं, आप सिर्फ बैलेट यूनिट को हाथ लगाओ, वहां कुछ होता ही नहीं है, कंप्यूटर के डेस्क पे कोई होता है क्या, सीपीयू में होती है।
0: वक्त इतने की इजाजत देता है रजत जी, मैं आपसे रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगी इस पर। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दिखाएंगे क्या लवली यूनिवर्सिटी में बवाल करने वाले बाहरी हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि पहले धार्मिक अतिक्रमण और फिर पत्थर आक्रमण का मॉडल कब तक चलेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का संपूर्ण थप्पड़ कांड, और आखिर में स्कूटी पर गिटार को हेलमेट नहीं लगाया तो एआई ने कैसे चालान काट दिया, देखते रहे।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: यार लोन भूल गया मैडी।
15: इट्स
14: जस्ट अ गुड बैंक ना,
15: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
14: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
15: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
16: There's nothing small about it.
14: Ujjivan, nothing small about us.
17: Santa! Ekko!
18: Vishram!

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट।
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
12: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
11: असली शहद, असली स्वाद।
13: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
15: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
16: अब पे वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
17: मेरे पास एक आइडिया है।
15: क्या?
17: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना है,
18: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
16: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
19: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
20: तो कौन सी बनानी है?
21: एकदम सॉरी।
22: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
23: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
16: आई लाइक दिस ओनली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार रूटा बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आयवन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
9: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
11: तो कौन सी बनानी है?
12: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
13: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
14: आई लाइक दिस ओनली।
15: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
17: चौल में घर छोटे होते थे, बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
18: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
17: वॉरेन बफेट का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।
19: किसी भी देश को जब भी आज़ादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
20: कौन भय में जी रहा है?
19: नागरिक जी रहे हैं।
20: हाँ, भारत में
19: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।
21: आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। SIR को लेकर के जो भ्रम इन्होंने लगातार फैलाया है,
22: 2017 में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये विश्वास करते हुए, ये भरोसा करते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी से खिलवाड़ नहीं करेगा चुनाव आयोग। लेकिन 22 में जब परिणाम आया, मुझे याद है मैंने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों ने मिलकर के जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा। और याद होगा आपको जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय कौन सी बेईमानी नहीं की, वोटर लिस्ट की बेईमानी इन्होंने की, अपने मन मर्जी अपनी विचारधारा के अधिकारियों को पोस्ट किया, वोटरों को वोट डालने नहीं दिया। तो ये बेईमानी तो हो ही रही है, बस इतनी सी बात अब खुल गई है।

0: राम के आदेश पर या जनादेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक पर हम कर रहे थे चर्चा, ब्रेक नहीं ले रहे, अब देखिए 7 तक नेहा बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हम शाम के 7 बजने वाले आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिनभर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होकर की शुरुआत कर रहे हैं हेडलाइंस के साथ। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में पक्ष निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली केजरीवाल की गुंडों ने पीटा, हरसिमरत का तंज, आपने पंजाब को चौपट किया।

0: के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्ष, देश भर में भारी प्रदर्शन, नड्डा का पलटवार, माहौल बिगाड़ने की साजिश, 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। टीएमसी नाम निशान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सभी पक्षों की दलील के लिए अब 4 हफ्ते का वक्त तय, इसके बाद चुनाव आयोग 3 महीने में सुनाए फैसला। यूपी से बिहार तक गंगा में उफान, नेपाल से छूटा लाखों क्यूसेक पानी, कोसी गंडक के रौद्र रूप से मंडराया बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। शो की शुरुआत नेपाल में फिर से आई तबाही के साथ कर रहे हैं, 26 अगस्त को आप वहां विनाशकारी बाढ़ के 1 महीने भीतर ही नेपाल को एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है। गुरुवार से हो रही लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से अलग अलग जिलों में 24 लोगों की जान चली गई है, 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
1: ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका पाताल में समा गया। तस्वीरें नेपाल के मनांग जिले के चामे गांव की है, जहां ऐसा भूस्खलन हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। नेपाल में बरसात ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि नेपाल एक बार फिर त्राही त्राही कर रहा है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसने अगस्त में तबाही मचाई थी, और अब एक बार फिर से त्रिशूली नदी ने विकराल रूप लिया है। ये तस्वीर देखिए कैसे इस मकान को पानी अपने साथ बहा ले गया, घर का नामोनिशान तक नहीं बचा। नेपाल के चितवन में नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए हैं, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। नदी के किनारे बनी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। अब जरा रसुआ की तस्वीरें भी देखिए, अगस्त की आपदा में रसुआ भी तबाह हुआ था, बाजार बस्तियां सब मलबे में सिमट गए थे, और अब सितंबर में एक बार फिर वैसा ही खौफनाक मंजर दिख रहा है। नेपाल में आसमान से बरस रही आफत नदियों के रास्ते अब यूपी और बिहार में भी मुसीबत बढ़ानी शुरू कर दी है। मनांग से पंकज दास और चितवन से गणेश शंकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नेपाल में बाढ़ का मतलब है कि खतरा बिहार से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि नेपाल की नदियों का पानी बिहार की तरफ आ रहा है। वाल्मीकि बराज से लाखों क्यूसेक पानी गंडक में छोड़ा गया, इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार के कई इलाके जलमग्न हो गए।
1: जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी नजर आता है, घर डूबे हुए हैं, दुकानें पानी में है, खेत खलिहान पानी पानी है, सैलाब ने फिर से सितम ढाया है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं। नेपाल से आ रहे बेहिसाब पानी ने यहाँ बागमती का जलस्तर ऐसा बढ़ाया कि पानी गांवों में घुस आया। ये कटरा इलाके के गांव हैं, लोगों के घुटने तक पानी भरा हुआ है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये बगहा की तस्वीरें हैं, यहाँ गंडक नदी रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक का पानी कैलाश नगर में तबाही मचा रहा है, इलाके तालाबों में तब्दील हो गए हैं। अब वाल्मीकि नगर का हाल देखिए, रिहायशी इलाके झील बन गए हैं।
2: वाल्मीकि नगर के ही लक्ष्मीपुर में मौजूद हैं, और आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि जो जनजीवन है वो किस तरह से प्रभावित हुआ है। हमारे ठीक बगल में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, छोटी सी इमारत, ये दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र है जो बंद पड़ा है इस वक्त, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ अंदर तक जा चुका है।
1: इसी वाल्मीकि नगर की ये तस्वीरें भी देखिए,
2: पिछले 4-5 दिनों में जो बारिश हुई है नेपाल के अंदर, भारी बारिश, उसका असर सीधे गंडक के ग्रहण जल अधिग्रहण क्षेत्र में पड़ा है। और देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को भी, ये गंडक बराज है वाल्मीकि नगर का, और यहाँ इस वक्त जो पानी का उफान है, धार है, जो नारायणी नदी नेपाल से बहकर के बिहार में गंडक के रूप में पहुंचती है, वो आज सुबह 4 बजे 5,43,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ है, और अभी भी लगभग 5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज बना हुआ है। और ये पानी जो पश्चिम चंपारण के जिले में आ रहा है इस वक्त, वाल्मीकि नगर, बगहा और पूरा इलाका, गोपालगंज तक चले जाइए, वहां तक ये गंडक का पानी पहुंचता है। तो हर जगह जो पानी की मार है वो देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। और अगर पश्चिम चंपारण की बात करूं तो कल अलग अलग जगहों पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा, जो वाल्मीकि नगर और बघा को जोड़ने वाला SH-64 है स्टेट हाईवे, उस पे कमर भर से ऊपर मतलब तकरीबन 4 से 5 फीट पानी है।
1: अब गोपालगंज की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी लगातार हो रही बरसात से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ भी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। यहाँ प्रशासन लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहा है। तो मौसम के इस यूटर्न ने बिहार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और नेपाल का पानी उस मुसीबत को तबाही में बदल रहा है। वाल्मीकि नगर से शशिभूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नहीं, नेपाल का पानी यूपी में भी मुसीबत का सबब बन गया है। गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने से यूपी का महाराजगंज बाढ़ की चपेट में आ चुका है। यूपी के महोबा में भी बाढ़ है और प्रयागराज में भी गंगा यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

0: एक बार फिर गंगा ने दिखाया है रौद्र रूप। एक बार फिर प्रयागराज में गंगा का इलाका हुआ है पानी पानी। देखिए इनकी सारी घर गृहस्थी पानी के बीच है।
1: प्रयागराज में लगातार दोनों नदियों का जलस्तर दोबारा फिर से बढ़ने लगा है और यहाँ पर जो परेशानी है स्थानीय दुकानदारों तीर्थयात्रियों की बढ़ गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो दुकानदार यहाँ पर जो छोटा काम करते हैं, जैसे प्रसाद बेचने का काम करते हैं या कुछ आरती में कुछ सहयोग करने का काम करते हैं, तो उस तरह से

0: सामान निकालने के लिए लोग मजबूर हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं अपना सामान निकाल रहे हैं। ये तीर्थ पुरोहितों के तखत हैं, वो पूरे डूब गए थे, अब ये अपना सामान निकाल रहे हैं और ऊपर की तरफ सुरक्षित ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: अब ये तस्वीरें देखिए, ये यूपी का जिला महोबा है जहां पिछले कुछ दिनों में इतनी बरसात हुई है कि छोटे छोटे नाले भी उफान पर आ गए हैं। कुलपहाड़ का बेलासागर तालाब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। महोबा में बहुत कम ऐसा होता है जब बेलासागर में उफान आए, लेकिन सितंबर की मूसलाधार बरसात ने महोबा को जलमग्न कर दिया। बेलासागर के तट पर बना मंदिर भी पानी में डूब गया। खौफनाक लहरें निचले इलाकों को डरा रही हैं। बावजूद इसके लोग बेलासागर के तट पर पहुंच रहे हैं, वहां से फूटे झरनों को निहार रहे हैं। हालांकि पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है।
2: कम से कम 20 मीटर अंदर तक पानी पहुंच गया है विद्यालय के मेन गेट से अंदर।
3: बाउंड्री आपकी लगभग दो
2: तीन? बाउंड्री तो हमारी लगभग कम से कम 3-3.5 फुट डूब गई है। बाउंड्री बीआरसी के बगल में तो पूरे ही जलमग्न हो गया है, पूरा भर गया है।
1: अब जरा उन्नाव की तस्वीरें भी देख लीजिए। 36,000 करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे की हालत ये है कि लोग यहाँ मछली पकड़ने पहुँच गए। उन्नाव के सोनिक वशीरतगंज एग्जिट पर जलभराव हो गया है, जिसके बाद आसपास के लोग वहाँ जाल डालकर मछली पकड़ने पहुँच गए हैं। एक्सप्रेसवे पर मछली पकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। नेपाल और बिहार से सटे यूपी के महाराजगंज में भी बाढ़ का पानी लोगों को डरा रहा है। गंडक नदी में अचानक छोड़े गए पानी की वजह से महाराजगंज के निचले इलाके डूबने लगे हैं। नेपाल से आया पानी लोगों के घरों में घुस गया है। महाराजगंज जिले में 6 गांव गंडक की बाढ़ की चपेट में हैं। आज तक ब्यूरो।
4: तो यूपी में भी सभी दल इस वक्त चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटकर जनता जनार्दन को खुश कर रहे हैं, तो अखिलेश अलग अलग सभाएं कर रहे हैं। इन सब के बीच अब यूपी की लड़ाई दलित मतदाता के इर्द गिर्द घूम रही।
5: यूपी के चुनाव में सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, हर हफ्ते नौकरियां बांट रहे हैं और नौकरी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर करारा वार कर रहे हैं।
6: अब हर नागरिक सीना तान करके चलता है और माफिया सिर झुका करके चलता है, बच बच करके निकलता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी गरीब के झोपड़े पे कब्जा करने के लिए जाएंगे, किसी व्यापारी से फिरौती मांगने के लिए जाएंगे तो वहीं काम तमाम न हो जाए।
7: और यूपी के प्रतिभाशाली नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज वे नए नए रूप में, नए नए स्वरूप में, नए स्लोगन के साथ गिरगिट की तरह रिंग ब रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन गिरगिटों से सावधान होने की आवश्यकता है।
5: उधर अखिलेश अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अब दलित वोटों को साधने की रणनीति भी तेज हो गई है। आज बीएसपी की मुखिया मायावती ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर पर करारा हमला बोला।
8: आजाद समाजवादी पार्टी का सांसद है जिसका नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर कुछ भी जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे षड्यंत्र के तहत खासकर बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ईवीएम में धांधली करा के उसे जितवा दिया।
5: मायावती चंद्रशेखर पर हमलावर हैं और चंद्रशेखर अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
9: पीडीए पीड़ित है, ये बात सही है, मगर उनके वाला नहीं पीड़ित है, उनका तो बदलता रहता है। अगर उनका जो है पीढ़ी पंडित जो पता नहीं क्या क्या बदलते रहते हैं, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति, उनका कौन सा पीड़ित है तो वही तय करेंगे, उनका तो बदलता रहता, हमारा नहीं बदल रहा है।
5: इन सब के बीच ओवैसी भी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी अब श्रावस्ती से शुरू करके आजमगढ़ और फिर पश्चिमी यूपी के रामपुर, कैराना और मेरठ तक अपने प्रचार का अभियान चलाएंगे, जिसमें 4 अक्टूबर को श्रावस्ती के भिनका में, 11 अक्टूबर को आजमगढ़ में, 18 अक्टूबर को रामपुर में, 25 अक्टूबर को कैराना में और 14 नवंबर को मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी रैली होगी।
10: ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, चाहे रामपुर का हो।

0: मेरठ का हो या फिर कैराना का हो, मेरठ में हम लोगों को 1,28,000 वोट नगर निगम के चुनाव में, मेयर चुनाव में आया था, जो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था। उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट इस बार रहेगा।
1: मतलब सबने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये लड़ाई और धारदार होगी। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो इसमें उन्हीं का नुकसान है। तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि अखिलेश यादव की अगुवाई में ही चुनाव होगा।
3: एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मेल मिलाप का कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस सन्नाटे में है क्योंकि अखिलेश ने प्रचार के लिए कांग्रेस को हरी झंडी नहीं दिखाई है और इसीलिए दोनों दलों के बीच दूरियां दिख रही हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि अखिलेश यादव खुद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में नहीं जाकर अपना प्रतिनिधि दल भेजेंगे।
4: समाजवादी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कई प्रतिनिधि मीटिंगों में जा चुके हैं, बैठ चुके हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई नई बात ये नहीं है।
5: तो आप ही के सांसद हैं इमरान मसूद, कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव नाराज है तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं।
4: देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पर आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
3: दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली की बैठक को चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी सियासी लीड लेने के लिए बुलाई है। अखिलेश उस लीड को कबूल नहीं करते दिख रहे हैं।
6: कि हमारा गठबंधन वही होगा जो 2024 में था, उसी गठबंधन से हमने केंद्र में रोका था, इसी गठबंधन से हम उत्तर प्रदेश में रोकेंगे।
3: समाजवादी पार्टी के इन्हीं बयानों से कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस सांसद कहते हैं कि अखिलेश नाराज हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
7: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता।
3: यूपी कांग्रेस के नेता गठबंधन की तस्वीर साफ करने और सीटें क्लियर करने का दबाव लगातार बढ़ा रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी की शर्तें सामने आने लगी हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगेगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा। उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये देखा जाएगा। जाति समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला हाल ही होगा।
7: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
6: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए, इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है, समाजवादी पार्टी की वो कुर्सी भी जानती है जो जिस कुर्सी में बैठने वो आए थे। तो इसलिए किसी से कुछ छुपा नहीं है, उतना बोला जाए जितना सम्मान सबका बना रहे।
3: दरअसल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है। तो अखिलेश अपने पीडीएफ फॉर्मूले को, समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, तो कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और इसीलिए मामला उलझा हुआ है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और बात मुख्य चुनाव आयोग को लेकर जारी सियासी घमासान की। देश भर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। दिल्ली में जहां यूथ कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका इस्तीफा मांगा, वहीं पटना में वामपंथी पार्टी और संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। जयपुर, रांची, नागपुर, पुणे और हैदराबाद में प्रदर्शन हुए। कहीं कांग्रेस तो कहीं लेफ्ट पार्टियां सड़क पर उतरी। निशाने पर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इस मामले में पूरा विपक्ष आक्रामक है। 30 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार के खिलाफ विपक्षी रणनीति को और धार दी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी के नाम और फूल पत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय कर दी है। कोर्ट ने दोनों गुटों को एक महीने में अपनी दलीलें पूरी करने के बाद इसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का वक्त देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। रबाज शेयर बाजार के कारोबार के दौरान आज घरेलू शेयर बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1124 अंक टूटकर 72,772 और निफ्टी 308 अंक की गिरावट के साथ 22,780 पर बंद हुआ। अमेरिका की तरफ से ईरान के प्रस्ताव को खारिज किए जाने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की चिंता रही। इसमें कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। ब्रेंट क्रूड 3.5% ज्यादा चढ़कर $108 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स में बिकवाली से बाजार पर दबाव बना रहा। शेयर बाजार में तेज गिरावट के बीच रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले 28 पैसे कमजोर होकर 96.03 रुपए पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और अमेरिकी डॉलर में मजबूती से रुपए पर दबाव रहा। आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप से गिरावट कुछ सीमित रही। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेज गिरावट रही। सोना 4,065 रुपए गिरकर 1,48,046 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 9,158 रुपए गिरकर 2,23,192 रुपए पर बंद हुई। कच्चे तेल की तेजी से महंगाई और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी, जिससे बॉन्ड यील्ड और डॉलर मजबूत हुए और सोने चांदी पर दबाव बढ़ गया है। बात अब अमेरिका और ईरान युद्ध की, जिसकी आशंकाएं बढ़ रही हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान का शांति प्रस्ताव खारिज कर दिया बल्कि जिस बयान के साथ खारिज किया वो मध्य पूर्व में डर बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, फिर घमासान तेज होने का संकेत था। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे।
1: एक तरफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वार पलटवार के बीच ईरान 7 दिन में शांति वाला प्रस्ताव लेकर आया, तो कुछ ही घंटों में ट्रंप ने पूरे के पूरे पीस प्लान की हवा निकाल दी।
8: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
1: ट्रंप के इस बयान के बाद इस बात का डर बढ़ गया है कि जल्दी ही अमेरिका फिर से ईरान पर हमलों की बौछार कर सकता है। लेकिन क्या ट्रंप मिड टर्म चुनाव की वजह से नवंबर तक रुकेंगे या फिर उससे पहले ही बमबारी शुरू हो जाएगी? ईरान एक तरफ जहां इस सवाल का जवाब खोजने में लगा है, वहीं किसी भी तरह के संभावित हमले की तैयारियों में भी जुट गया है। IRGC का दावा तो ये है कि वो अब पहले से मजबूत है और हर तरह के हमले का जवाब देने के काबिल भी।
9: मनोबल, हौसले, मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास के साथ साथ हथियारों और सैन्य उपकरणों के मामले में भी हमारी तैयारी बेहतर है। हमने अपने सैन्य उपकरणों को अपग्रेड करने, अपनी सेना में नई प्रणालियों को शामिल करने और उनके साथ प्रशिक्षण लेने पर काफी काम किया है।
2: और बात क्रिकेट की, रविवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट ऐलान हुआ। विराट कोहली ने कमाल कर दिया। कोहली ने पहले बार किसी वनडे में एक इनिंग में 9 सिक्सर्स लगाए हैं। वो वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
3: फिर आया विराट के बल्ले से तूफान। वनडे वर्ल्ड कप के लिए कोहली का विराट ऐलान। मैदान का हर कोना विराट के शॉट से गुलजार हो रहा था। गेंदबाजों को पीटने का उनका वही पुराना अंदाज दिख रहा था। फर्क यही था कि विराट अब छक्कों की बारिश कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लिहाजा उनके फैंस मस्त हैं और विरोधी ध्वस्त। वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में विराट की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। विराट कोहली ने 88 गेंद पर 139 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और 9 छक्के लगाए। इतने छक्के तो उन्होंने वनडे क्रिकेट के एक मैच में कभी नहीं लगाए थे। वैसे तो ये विराट का वनडे में 55वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 86वां शतक था। कोहली वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 303 पारियों के साथ सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 377 पारियों में यह कामयाबी हासिल की थी। पूरी दुनिया की नजरें विराट पर हैं और विराट की नजरें अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप पर। विराट कोहली ने पिछले 20 सालों में जो ठाना है उसे पाया है। अगले साल उनका बल्ला इतिहास की एक और सुनहरी इबारत लिख डाले तो किसी को शायद ही हैरानी हो।
10: आज तक ब्यूरो।
2: इस बुलेटिन में साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: पापा
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
11: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: वो तो चार्ज हुआ यार।
11: ओले बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट।
19: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स, जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
20: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
21: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
20: स्मॉल बैंक?
21: स्मॉल Privilege Savings Account, Garima Savings Account, Maxima Business, Edge Current Account, Business, Maxima Business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
20: Okay.
21: Ujjivan, nothing small about us.
22: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
23: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
18: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
4: कौन भय में जी रहा है?
3: नागरिक जी रहे हैं।
4: हाँ, भारत में
3: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं सड़कें जलमग्न हैं, कहीं खेतों में पानी भर गया है, तो कहीं बाढ़ और जलभराव से लोग परेशान हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा से लगे गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में पानी घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों और राहत शिविरों में पहुंचा रहा है। तेज आंधी और बारिश से जिले में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से NDRF, SDRF और PAC की टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। हरदोई में भी लगातार बारिश आफत बन गई है। वर्षा जनित हादसों में 8 लोगों की मौत की सूचना है। करीब 330 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि करीब 30 पशुओं की भी मौत हुई है। औरैया के बेला में 3 दिन की बारिश के बाद बस्ती में पानी भर गया। जल निकासी के लिए प्रशासन ने JCB से लिंक रोड कटवाकर पानी पांडू नदी की तरफ निकालने की व्यवस्था की। उधर बिजनौर में रामगंगा बांध का जलस्तर बढ़ने से 7 जिलों को अलर्ट किया गया है। जलस्तर तय सीमा से ऊपर जाने पर बांध के गेट खोलकर पानी छोड़े जाने की संभावना है। उन्नाव में 48 घंटे की बारिश के बाद कई मोहल्लों में 2-2 फीट तक पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी का भरोसा दिया है। उन्नाव में ही गंगा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास जल भराव हुआ। पानी इतना जमा हुआ कि स्थानीय लोगों के मछली पकड़ने का वीडियो सामने आया है। शाहजहांपुर में तेज बारिश और हवाओं से पक्की धान की फसल जमीन पर गिर गई। किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। यानी यूपी के कई हिस्सों में बारिश ने जहां जनजीवन प्रभावित किया है, वहीं बाढ़ जल भराव और फसल नुकसान ने लोगों और किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं प्रशासन राहत और बचाव के साथ जल निकासी की कोशिश में जुटा है। आज तक ब्यूरो।
1: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Yesterday, a serial practitioner of terrorism misrepresented facts before this assembly. Arguments were invoked to normalize terrorism and claim immunity from its consequences. That will not stand. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Mr. President, friendship and goodwill cannot coexist with terrorism, and understandings premised on that will naturally be called into question. It is for the perpetrator of terrorism to mend its ways.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव, लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंघस कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में पक्ष निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली केजरीवाल के गुंडों ने पीटा और सिमरत का तंज, आपने पंजाब को चौपट किया। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। यूपी में दलित सियासत में महासंग्राम, मायावती पर चंद्रशेखर का पलटवार, बोले जनता ने बता दिया कौन चंद्रशेखर, बीएसपी अध्यक्ष ने धांधली से नगीना सीट जीतने का लगाया था आरोप। फतेहपुर में गैस सिलेंडर फटने से गिरा घर, चार की मौत, सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान, अधिकारियों को राहत बचाव के दिए निर्देश।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष में बात करेंगे उज्जैन की, जहां सोमवार की सुबह सुबह एक बहुत बड़ा उपद्रव हो गया, जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। एक मस्जिद के कुछ हिस्से को ढाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है, जिसमें खूब अफवाहें फैली। उज्जैन पुलिस की माने तो इन अफवाहों को फैलाने में कुछ सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका रही, इसीलिए पुलिस ने 5 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है, पूरा विवाद क्यों हुआ इस रिपोर्ट में देखिए।
3: सोमवार की सुबह ये पूरा बवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ है, जहां 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ होना है। इसी महाकुंभ के लिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं और उसी की जद में एक मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे तोड़ने पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन अफवाह ऐसी फैली कि भयंकर दंगा हो। लोगों की भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, महिलाओं को आगे रखकर पत्थर फेंके जा रहे थे, छतों के ऊपर से, गलियों के अंदर से लगातार पत्थर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज भी किया। पूरे विवाद के बाद फोर्स तैनात की गई, लेकिन दोपहर होते होते फिर से पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठी चार्ज करके आंसू गैस छोड़ी। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन में कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक 1.5 किलोमीटर एरिया की सड़क 15 मीटर चौड़ी की जाएगी। इसके लिए 323 मकान तोड़े जाएंगे, इनमें से 15 धर्मस्थल हैं। अब तक 12 धर्मस्थल हटाए जा चुके हैं। सड़क के दायरे में शाही मस्जिद का भी करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा आ रहा है। दस्तावेज में इस मस्जिद के 100 साल से ज्यादा पुरानी होने की पुष्टि होती है, लेकिन कुछ लोग इसे 600 साल पुरानी मस्जिद बता रहे हैं। बीते 2 दिन से मस्जिद तोड़ने को लेकर मुस्लिम समाज लगातार विरोध कर रहा था। रात से चल रहे विरोध के बाद आपसी सहमति से चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को तोड़ने पर सहमति भी बन चुकी थी। खुद शहर काजी की तरफ से मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन जब सोमवार को सुबह से मस्जिद के हिस्से को गिराने की कार्रवाई मुस्लिम समाज ने खुद शुरू की, तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।
4: नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, ब्रादराने मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाजारों में न खड़े हों, बाजारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम आ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपना काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाह उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
3: प्रशासन कह रहा है कि खुद उनकी तरफ से मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाया गया, बल्कि आपसी सहमत के बाद खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ना शुरू किया था। सोमवार की सुबह और दोपहर को हंगामा हुआ, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ही मस्जिद का हिस्सा तोड़ा जा रहा है।
5: उज्जैन में जिस शाही मस्जिद को हटाने के नाम पर आज उपद्रव हुआ है, दरअसल उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे समाज के लोग खुद ही अपने हाथों से उस मस्जिद के हिस्से को हथौड़े से हटा रहे हैं। आप तस्वीरों में अगर आप सामने देखें तो यही वो तमाम लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं और इनको ही यहाँ भेजा गया है इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि जो सहमति बनी थी शहर काजी के साथ कल रात को, उस सहमति के बाद इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने हाथों से ही आकर के यहाँ पे उस हटाए उसे, लेकिन उसके बाद अचानक से सुबह जो है गुट यहाँ पे इकट्ठा होता है और उस वक्त यहाँ पे उपद्रव शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, लाठीचार्ज करना पड़ता है और उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ता है। तो ये हालात जो है फिलहाल इस वक्त उज्जैन में है, लेकिन इन सब के बीच में ये वो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे समाज के जो लोग हैं वो खुद अपने हाथों से उस मस्जिद को हटाने का काम अब शुरू कर चुके हैं।
3: अभी फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन सुबह से पत्थरबाजी के बाद प्रशासन भी स्थिति को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा, इसीलिए डीएम और एसपी खुद घोड़ों पर सवार होकर इस पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं ताकि उनके पुलिस बलों में भी भरोसा जगे और उपद्रवी भी अब कुछ ऐसा दोबारा करने की हिम्मत न कर सके।
5: उज्जैन की प्रभावित गलियों में अब प्रशासन की टीम घोड़ों पे सवार होकर गश्त कर रही है और जो गोपाल मंदिर के आसपास का पूरा इलाका है वहां अगर आप देखें इस वक्त उज्जैन कलेक्टर, उज्जैन एसपी, तमाम बड़े अफसर जो हैं वो इन घोड़ों पे सवार होकर के अब गश्त कर रहे हैं प्रभावित इलाकों की, जहां पे सुबह उपद्रव हुआ था और पथराव हुआ था, लेकिन अब उन तमाम इलाकों में जाकर के जो स्थानीय प्रशासन है वो गश्त कर रहा है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके कोई अफवाह है तो उस पर वो ध्यान ना दें, और अगर आप देखें तो जो लोग अभी भी यहाँ हैं उनको ये साफ किया जा रहा है कि वो अपने अपने घरों में जाएं, बाहर ना निकलें, और अगर किसी भी तरीके कोई अफवाह फैल रही है तो उस पर वो लोग ध्यान ना दें, और इसीलिए अब यहाँ पे घोड़ों पे सवार होकर के फिलहाल सभी बड़े अफसर गश्त पे निकले हैं उज्जैन की प्रभावित गलियों में।
3: उज्जैन पुलिस की माने तो सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने अफवाहों को वायरल किया, जिसके बाद ये बवाल बढ़ा। उज्जैन पुलिस ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 5 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। कुछ लोग बाहर से उज्जैन आना चाहते थे, ऐसे लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मस्जिद का एक भारी हिस्सा तोड़ा जा रहा था, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि पूरी मस्जिद तोड़ी जा रही है, जिसके बाद ये बवाल और ज्यादा भड़का।
5: अभी क्या स्टेटस है, अभी आप लोग घोड़ों पे निकले हैं आगे पेट्रोलिंग के लिए?
6: जैसा आप देख सकते हैं शांति व्यवस्था पूरी तरह से, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। मस्जिद कमेटी द्वारा लगातार 9:45 बजे से जो एरिया उनकी चौड़ीकरण में आ रहा है उसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने का प्रयास किया गया था, उन सभी में 15 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 7 से ज्यादा हम एफआईआर कर चुके हैं। हमारी सोशल मीडिया की टीम लगातार सोशल मीडिया के कंटेंट को मॉनिटर कर रही है। 5 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके द्वारा भड़काऊ भाषण या फिर अफवाहों को वायरल किया जा रहा था उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर किए। कुछ लोग उज्जैन के बाहर के हैं जो यहाँ आके माहौल खराब करना चाहते थे, उन लोगों को भी हमने सीमा से हिरासत में लिया हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। यहाँ पर सभी समुदायों के साथ लगातार बातचीत के माध्यम से चौड़ीकरण का कार्य सभी के सहयोग से किया जा रहा है और निरंतर जारी रहेगा।
3: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
2: 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ होना है और उसी की तैयारी की जा रही। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये हनुमान मंदिर को हटाने के लिए हंगामा हुआ था, वो भी इसी सड़क पर था जहां ये मस्जिद है। तब ये कहा गया कि मंदिर में लगी हनुमान जी की मूर्ति को वहां से सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिलहाल अभी मंदिर में मूर्ति को हटाने के लिए प्रशासन सर्वे इत्यादि कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब ये मस्जिद के एक हिस्से को तोड़े जाने पर विवाद हो गया है।
3: उज्जैन में हुई पत्थरबाजी के निशान इस सड़क पर अभी भी मौजूद है। दंगाई भीड़ ने इतना पथराव किया कि कुछ नहीं बख्शा, यहां तक कि जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी उनके भी शीशे तोड़े गए, फिर चाहे वो ई रिक्शा रहा हो या कोई ऑटो, कुछ नहीं छोड़ा, जमकर तोड़फोड़।
5: उज्जैन की शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने के बाद जो हिंसा हुई है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे न केवल पुलिस को बल्कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। ये एक आप ई रिक्शा देख सकते हैं, इसकी हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब पथराव हुआ सवारियों के साथ ये ई रिक्शा यहां से उस वक्त गुजर रहा था, लेकिन उस वक्त यहां पे जैसे ही उसे रोका तो इसके ऊपर पथराव शुरू हो गया। और ये टूटे हुए कांच बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे उस वक्त माहौल रहा होगा जब इलाके में अचानक से पथराव शुरू हुआ। ये पथराव छतों से हुआ है, गलियों से हुआ है, और इसके बाद ये तस्वीर यहाँ उज्जैन में देखने को मिल रही है। लेकिन ये अकेली ऐसी गाड़ी नहीं, यहाँ कई और दूसरे वाहन भी हैं जो फिलहाल पुलिस की तरफ से हटा लिए गए हैं, और बताया जा रहा है कि उनमें भी जो है यहाँ पे उस वक्त तोड़फोड़ की गई थी। कुछ एक ही ऑटो जो खड़े हैं इसमें भी अगर आप देखें आगे के कांच हम आपको दिखाते हैं, देखिए कि किस तरीके से हालात थे यहाँ पे। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो इस तरफ से आए और दिखाएं आपको, ये आप देखिए आगे से ये हालात देख रखे आप, कांच का ये कांच भी टूटा पड़ा है इस ऑटो का, इसके बगल वाले ऑटो पे भी पथरा हुआ है और उस पे भी कांच के टुकड़े जो है आपको सीट पे बिखरे हुए दिख जाएंगे। और ये साफ गवाही दे रहे हैं कि ना केवल पुलिस पे पथरा हुआ, प्रशासन पे पथरा हुआ, बल्कि जो यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी उन पे भी जो उपद्रवी हैं उन्होंने पथराव करके माहौल को पूरी तरीके से यहाँ पे खराब करने की कोशिश की है।
3: हर तरफ से पथरा हुआ है, गलियों से, छतों से खूब पत्थर फेंके गए, इसीलिए पुलिस अब लगातार गश्त भी कर रही है और सड़कों पर बिखरे पत्थरों को भी हटाया जा रहा है ताकि अगर फिर से स्थिति खराब हो तो उपद्रवी इन पत्थरों को हथियार न बना पाए।
5: उज्जैन में छत्री चौक के पास शाही मस्जिद के इलाके में पथराव जो हुआ था उसके बाद एहतियातन अब प्रशासन सड़कों पर पड़े पत्थरों को हटा रहा है ताकि लोग उन्हें हथियार ना बना सके। आप देख सकते हैं फिलहाल इन पत्थरों को इकट्ठा किया जा रहा है और महिलाएं देखिए इस तरीके से उन पत्थरों को हाथों में लेकर के जो है वो यहाँ पे डाल रही हैं। और ये देख सकते हैं इसके जरिए पत्थर जो है वो हथियार ना बनाने लोग उन पत्थरों को, तो उसे अब हटाने की तैयारी यहाँ पे है। जो प्रशासन है वो यहाँ पे नगर निगम के जरिए इन पत्थरों को हटवा रहा है।
3: अब सवाल है कि सड़क चौड़ीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उज्जैन में हर 12 साल में महाकुंभ होता है और अभी तक होता आया है, तो फिर इसी बार प्रशासन सड़क क्यों चौड़ी कर रहा है, वो भी 1.5 साल पहले। असल में पिछले वर्ष प्रयागराज में हुए महाकुंभ में जो सनातनी भीड़ थी, उज्जैन में भी लगता है कि प्रयागराज की तरह ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी और उस दौरान कोई भगदड़ की स्थिति न बने, इसीलिए इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि इसी सड़क से लोग अखाड़े या पेशवाइयां शिप्रा नदी में स्नान के लिए जाएंगे।
5: जिस सड़क पे इस वक्त आज तक मौजूद है यहाँ से सीधी ये सड़क जाती है शिप्रा नदी की ओर। ये जो आप सामने सड़क देख रहे हैं ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, ये चौड़ा किया गया है सड़क को, और इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरीके के हालात प्रयागराज कुंभ में बने थे, प्रशासन को इस बात की उम्मीद है कि आने वाले 2 साल बाद करोड़ों लोग जब उज्जैन पहुंचेंगे तो वो इसी सड़क का इस्तेमाल करेंगे नदी की ओर जाने के लिए, क्योंकि जो प्रमुख पर्व पे जितने स्नान होते हैं, जो अखाड़े होते हैं, जो पेशवाइयां होती है वो इसी सड़क से गुजरती है। तो जाहिर सी बात है सड़क पे चौड़ीकरण होना था, और सड़क को चौड़ी करने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जो दुकानें हैं, इमारतें हैं, उन्हें तोड़ा गया यहाँ पे। कई धार्मिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों को भी यहाँ हटाया गया है, उन्हें विस्थापित किया गया है दूसरी जगह। सिर्फ यही नहीं, जिस खड़े हनुमान मंदिर को लेकर के इतना विवाद चल रहा था उस खड़े हनुमान मंदिर को भी हटा करके कहां शिफ्ट करना है वो तस्वीर भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। वो आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर सीमेंट का बना हुआ, वहां पे खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा आनी है, वहां से हटानी है उस सड़क को चौड़ीकरण के नाम पे, उसको भी हटा के यहां स्थापित किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो आप इलाका इतना खुला खुला देख रहे हैं ये बिल्कुल कंजेस्टेड था, यानी यहां से करोड़ों लोगों की भीड़ नहीं गुजर सकती थी, हालात भयावह हो सकते थे।
3: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उज्जैन के ही हैं, और सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में उनका पैतृक मकान भी आ रहा है। रविवार को मोहन यादव ने अपने पैतृक मकान पर भी सांकेतिक हथौड़ा चलाया। सड़क चौड़ी करने के लिए उनके मकान का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है।
7: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मकान टूटना शुरू हो गया है। यही वो पैतृक निवास है मोहन यादव का, जहां पे उनका बचपन बीता। और आप देखिए, आप हथौड़े की चोट शुरू हो गई है और मकान का हिस्सा जो है अब ये तोड़ना शुरू कर दिया गया है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहां पहुंचे थे, उन्होंने पहली कुदाल चलाई थी क्योंकि सड़क चौड़ीकरण की जद में ये मकान आ रहा है और तकरीबन 3 मीटर हिस्सा इस मकान का भी टूटा है। तो इसकी शुरुआत अब पहले मुख्यमंत्री ने कुदाल चला करके की और अब जो नगर निगम की टीम है उसने यहाँ पे मकान को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये बालकनी से इसकी शुरुआत हुई है और आप देखिए नगर निगम की टीम जो है यहाँ पे यहाँ मौजूद है।
2: वक्त ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: पापा
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ
9: तो भरोसा है।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
15: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
14: स्मॉल बैंक?
15: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
14: ओके
15: Ujjivan, nothing small about us.
16: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
18: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
19: मेरे पास एक आइडिया है।
18: क्या?
19: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
20: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
21: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
22: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
20: कौन सी बनानी है?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: मतभेद की खबरों के बीच चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। बैठक में मौजूद थे सीईसी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी। विपक्ष के सवालों के बीच ये मतभेदों को दूर करने की कवायद थी, संदेश देने की कोशिश थी कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक है।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के बीच 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने पहली मीटिंग की। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है, असल में वो कोई मुद्दा नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी, उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूट देते हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने का निर्देश दिया है। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले भर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले लिए, उनमें एक फैसला ये भी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ये समय सीमा 30 नवंबर की होगी, जबकि महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे किए जा सकेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने विवादों के बीच अपनी पहली बैठक की और तमाम आरोपों को खारिज किया, बीजेपी ने विरोधियों पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के बयान के बाद सच्चाई शीशे की तरह साफ है, साथ ही पार्टी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है।
2: राहुल गांधी जी, पहला सवाल है, आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ने चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस लगातार फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है।
3: तो प्रमुख शिकायत थी इन दोनों को, संधु जी को और जोशी जी को, तो यही न थी कि 1960 के रूल्स को अमेंड किए बगैर फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वो रूल्स बिना पार्लियामेंट में जाए नहीं बदल सकते।
0: इस मामले को लेकर विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष आगे के एक्शन प्लान पर मंथन करेगा। संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका। सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में विपक्ष के निशाने पर भगवंत मान सरकार, बीजेपी बोली केजरीवाल के गुंडों ने पीटा हरसिमरत का तंज, आपने पंजाब को चौपट किया। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार।

0: राहुल 727 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का दावा किया, बोले ये SIR नहीं वोट चोरी का तरीका है। यूपी में दलित सियासत पर महासंग्राम, मायावती पर चंद्रशेखर का पलटवार, बोले जनता ने बता दिया कौन चंद्रशेखर। BSP अध्यक्ष ने धांधली से नगीना सीट जीतने का आरोप लगाया था।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। रोजगार के मुद्दे पर हम रोज सरकारों को खबरदार कर रहे हैं, चुनाव कहीं भी हो यह अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, रोजगार के मुद्दे को लेकर सभी आक्रामक हैं। यूपी में रोजगार के इस दांव की बात हम करेंगे। बंगले पर आम आदमी पार्टी पंजाब में बुरी तरह से घिर गई है। पंजाब के मंत्रियों के घरों में कौन से बाहरियों के रहने के दावे हो रहे हैं, पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे। मंत्री हैं तो क्या थप्पड़ मारेंगे? दिल्ली के थप्पड़ कांड की गूंज चौतरफा सुनी जा रही है। प्रवेश वर्मा ने इसे लेकर सफाई भी दी है। लेकिन सबसे पहले आपको चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद आक्रामक हुए इंडिया गठबंधन से जुड़ी खबर से खबरदार करते हैं। कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है, उस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकता को अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने
1: पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नो

0: जोक हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
2: जहां पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहां पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
3: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है, हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
4: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है, वोट्स आर बीइंग स्टोलन, इलेक्शंस आर नॉट फेयर।
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं।
4: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई। ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
5: तो देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो NSY का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है, हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई। दिल्ली पुलिस यहां पर NSY के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ, डिटेन करता हुआ, पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो NSY के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक बुलाई है, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में। इसकी वजह अखिलेश यादव, जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इसकी वजह 2027 के UP चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है?
6: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
7: इतना कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
8: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट इज व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
9: कौन बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर JMM ने अभी तक फैसला नहीं लिया। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही DMK ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
0: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और

0: पटना के गांधी मैदान से जो है माले AISF, AISK, AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
2: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
3: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
4: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
5: तो अखिलेश ने क्यों दूरी बनाई, इस खबर पर हम नजर डालें। उससे पहले समय की एक बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, जहां थोड़ी देर पहले राहुल गांधी यमुना किनारे वेला एस्टेट पहुंचे। राहुल ने दावा किया कि यहां पर वोटर लिस्ट से 727 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह SIR नहीं, वोट चोरी का तरीका है। सुनिए।
6: वोट है, यहाँ पे एक व्यक्ति को आपने SIR में डाला है। वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम।
7: मकान से कुछ लेना देना नहीं होता है वोट का।
8: इन्होंने कहा चुनाव हम लोग के यहाँ पे बोला है कि भैया आप लोग का वोटिंग
6: आप यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपने बोला है, आप
8: इलीगल रह रहे हो आप।
6: 729 लोग हैं यहाँ पे, आपने एक वोट दिया है। देखिए भैया, पीरियड होता है वो सब ठीक है, मगर यहाँ पे इनका नाम वोटर लिस्ट, मेरी बात सुनिए, इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है। इनका नाम आपने आपने किस बेसिस वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम।
8: अरे सर, कोई मकान नहीं था सर, झुग्गी थी, झुग्गी से बोर्ड बना था।
6: देखिए आप ऐसे करिए, मैं आपको, आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा।
9: हम मन्ना लोग हैं,
10: जीवन मिल रहा है, तो मर गए।
5: तो लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को अपने मुद्दे के तौर पर सामने रख रही है, उसकी लड़ाई देश के अलग अलग इलाकों में लड़ रही है। क्या यही कारण हो सकता है कि अखिलेश नहीं जा रहे हो विपक्ष की इस लड़ाई में? क्या इसकी वजह यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बढ़ती तकरार हो सकती है? बहुत सारे कारण इस चीज को लेकर हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे पास, वैसे वैसे इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। क्योंकि जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, उन्होंने रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को उठाना बेहतर समझा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने वाला वादा भी किया है। ये वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम लागू करने का, और इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा होता है। साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जाती है।
1: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
11: यहाँ पे कोई विज्ञापन निकलता था
9: तो विज्ञापन के पहले ही आशंका

0: खड़ी होने लगती थी। हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
1: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
2: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
1: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
3: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा। समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था। संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
1: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
3: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
1: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
3: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में, हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
1: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
3: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
1: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, क्रांति रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
2: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
4: यूपी में 2027 की जंग से पहले दलित वोट को भी साधा जा रहा है। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगीना लोकसभा सीट और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला बोला। मायावती ने सीधा आरोप लगाया कि नगीना सीट पर बीजेपी ने साजिश करके ईवीएम में धांधली करके चंद्रशेखर को जिताने में मदद की ताकि बीएसपी के कोर दलित वोट बैंक को कमजोर किया जा सके।
5: उसे षड्यंत्र के तहत खासकर बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ईवीएम में धांधली करा के उसे जितवा दिया है, जो अब इस पार्टी के इशारों पर चलकर देश में जहां जहां खासकर दलितों पर अन्याय, अत्याचार आदि होता है तो वहां ये पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर इसको अधिकारियों से बात करने की बजाय, उनको न्याय दिलाने की बजाय ये करता क्या है? धीरे धीरे अब उनका वोट देने पर से ही विश्वास उठता जा रहा है, जिसका खास उदाहरण आजाद समाजवादी पार्टी का सांसद है, जिसका नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर कुछ भी जनाधार नहीं है।
4: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का ये रुख साफ संकेत देता है कि बीएसपी अब बचाव की मुद्रा से निकलकर सीधे हमले के मूड में है। इसकी वजह यह है कि बीएसपी के लिए 2027 का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल एक सीट और 12.8% वोट शेयर मिला था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला और उसका वोट शेयर घटकर करीब 9.3% पर आ गया। मायावती की इस छटपटाहट और आक्रामकता के पीछे का मुख्य कारण यह है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला और चंद्रशेखर का पश्चिमी यूपी में बढ़ता जनाधार बीएसपी के वजूद के लिए खतरा बन रहा है। अखिलेश यादव को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 24 के लोकसभा चुनाव में खेल पलटा। यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद खुलकर कहते हैं कि बीजेपी जैसे तूफान से निपटना कांग्रेस जैसे बड़े जहाज के ही बूते की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी दो टूक याद दिला रही है कि यूपी में अखिलेश ही नेता नंबर वन है।
6: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
1: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
7: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
6: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
8: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
1: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
7: आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
6: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है, और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी है। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
1: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा, उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जीताऊ प्रत्याशी पर जोर है, उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
7: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
6: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
8: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए, इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
1: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीएफ फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
6: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट होता है, यानी कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। प्रवेश वर्मा कल निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्रवेश वर्मा का दावा है कि इसी दौरान एक युवक ने उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और आवेश में आकर उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने पर मंत्री ने युवक को थप्पड़ मारा।
9: मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
1: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठहर गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
9: जो कल हमारे राउंड को खराब किया ये वही लड़का ही है जो इसको मार रहे हैं। ये मार ये उसका भांजा है जर्नैल सिंह का और ये वो लड़का है।
1: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
9: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटॉर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जा रहा है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
9: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह ने सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत की तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
10: बीजेपी के लोग कम्प्लेन कर
11: सड़क नहीं बना पाए, ना ये तो 15 घंटे नहीं चलेगी, ये तो 15 मिनट नहीं चली, 15 मिनट नहीं चली।
1: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहाँ से जाने लगे।
12: अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
1: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
8: जी जर्नैल जी।
13: जी प्रवेश भाई, क्या हाल चाल?
8: बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
13: मैं तिलक नगर में हूँ।
8: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
14: कहाँ रह गए सर?
1: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आए और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
9: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
1: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
15: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनके ऊपर FIR नहीं की जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
16: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
1: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ने उन्हें सुना दिया।
17: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
9: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके एलपीयू के अंदर हमला करवाते अरविंद केजरीवाल जी। छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी परवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने। उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
1: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: क्या पंजाब के मंत्रियों के सरकारी बंगलों में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं का कब्जा है? कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब सरकार के मंत्रियों के नाम पर आवंटित सरकारी बंगलों में वो मंत्री खुद नहीं रह रहे, बल्कि दिल्ली और अन्य जगहों से जुड़े आम आदमी पार्टी नेता रह रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पंजाब को बाहरी लोग लूट रहे हैं, जनता के पैसों पर ऐश कर रहे हैं।
18: कि ना पंजाबियों का खजाना पंजाबियों के हाथ में, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पंजाबियों के पास, ना ही हमारे सरकारी कोठियां, ना ही हमारे गमाडा गुना जमीन बेच के पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये दिल्ली के जो वहां से बड़े लुटेरे आए।
1: सरकारी कोठियों को लेकर पंजाब में चुनाव से पहले बड़ा घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी पर पंजाब को लूटने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि आपसे जुड़े नेता पंजाब के मंत्रियों को आवंटित सरकारी आवासों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल सवाल उठा रही है कि पंजाब के जरूरतमंद लोगों को घर देने के बजाय जनता के पैसे से बने इन आवासों में बाहरी लोगों को क्यों ठहराया जा रहा है।
18: लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेल, गवर्नेंस टोटली फेल, डेवलपमेंट टोटली फेल, चिट्टा रोकन से टोटली फेल, औरतों को 60,000 देन से टोटली फेल, एक गुरु दोखी भगवान मान जेड़ा रब दे उते अकाल तख्त दे उते चढ़ के आया हैगा, एनु रब ने इतनी बुरी तरह फेल करना है कि एनु कितने।
1: इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के एक वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब सरकार में मंत्री न होने के बावजूद आप नेता चुने हुए मंत्रियों को आवंटित सरकारी आवासों में क्यों रह रहे हैं।
19: रवजोत और हुन रवजोत को क्या जावेगा कि इस कोठी विच आण के चंद मीटिंगां अफसरां दीआं सद कोई ना कोई सोशल मीडिया दे उत्ते पोस्टां शेयर कर ता कि लगे कि रवजोत की कोठी। पिछले 2 साल विच रवजोत मिनिस्टर नूं इस कोठी विच वड़न दी आग्या नहीं दित्ती।
1: कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मंत्री के नाम पर आवंटित बंगले में गायत्री बिश्नोई रह रही हैं। इसके अलावा दिल्ली से नेताओं को लाकर मंत्रियों के सरकारी बंगलों में ठहराया जा रहा है।
20: पंजाब दे विच पीजीआई दे हजारां लोग जाना एडमिट हुंदे, ओ बेचारे नूं स्ट्रेचर नहीं मिलदा, उन्हां नूं कमरा नहीं मिलदा, उन्हां नूं सुबह फ्रेश होण वास्ते कोई जगह नहीं मिलदी। क्यों नहीं भगवंत मान सारियां कोठियां उन्हां लोगां से भी खोल दिंदियां।
1: तो मामला पंजाबी बनाम बाहरी का हो गया है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल भी कूद गया है।
21: पूरा पंजाब दे उत्ते कब्जा केजरीवाल पार्टी ने कर लिया, सारी सरकारी जायदादां ते कब्जा, कोठियां ते कब्जा, सारा खर्चा इन्हां दा, रहण बहण सारा कुछ ही आ ओह लगी जांदे आ। मैं कहना परमात्मा मेहर करे सरकार है, आजे अपनी अकाली दल दी सारा पैसा इन्हां दे एक एक दी जांच करके सारयां नूं अंदर करके सिट्टांगे ते सारा पैसा इन्हां तों कढ़ावांगे।
1: पंजाब में अगले साल चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार पर ये आरोप उसे भारी पड़ सकते हैं। विपक्ष भगवंत मान की सरकार से सफाई मांग रहा है कि इस तरह सरकारी बंगलों में बाहर से लाकर ठहराने की इजाजत किसने दी।
0: कितने मकान हैं जो मंत्रियों के लिए हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं, वो दिल्ली का जो दिल्ली दरबार तो उठ गया वहां से, अब पंजाब आके उन्होंने घर दिते जा। तू दसो मैं दिल्ली वाले पंजाब के घर क्यों दिते जा मंत्रियों के।
3: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, अगर सरकारी कोठी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है तो पहले ये भी देखा जाना चाहिए कि इस कोठी में उनसे पहले कौन रहता था और वहाँ क्या होता था।
22: जेओडी को थोड़ी मोटी ऐसी मदद कर रहे हैं, जो आपस में भी साडा प्यार है, साडी पार्टी इस तरह काम करती है। मैं भी जो पार्टी का प्रधान भी रहा, मैं मनीष सिसोदिया जी के घर च रहा, मैं गोपाल राय जी के घर च रहा, साडे कोल रिसोर्स नहीं है जी। इन्हें पहला उत्थे कौन रहा सी जी, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ 961 ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
3: ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸੇ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
23: पंजाब में 2027 में इलेक्शन है और इस वक्त पंजाब में बंगलो पॉलिटिक्स जो है वो गर्मा गई है। ये मुद्दा उस वक्त उठा जब कांग्रेस लीडर सुखपाल सिंह खेहरा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की नेता और पंजाब की ऑब्जर्वर जो है उनकी एक मिनिस्टर के घर में रह रही हैं। जैसे ही ये वीडियो आया, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, सभी अपोजिशन पार्टीज ने एक बड़ा हमला बोला और सवाल उठाया कि कैसे जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर के घर में कैसे रह सकते हैं।
3: पंजाब में अगले चुनाव से कुछ महीने पहले ही इन आरोपों ने सत्ताधारी पार्टी के लिए एक नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। अब जब विपक्ष कई आवासों को लेकर सफाई मांग रहा है तो ये सवाल कि पंजाब में मंत्रियों के बंगलों में रहने का हक किसे है और किसकी मंजूरी से चुनावों से पहले राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहेगा।
4: अब बात उज्जैन की, जहां आज भारी हंगामा हुआ। विवाद के केंद्र में एक मस्जिद है जिसका एक हिस्सा तोड़े जाने को लेकर पुलिस पर पथराव किया गया, जवाब में लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। सड़क के दायरे में शाही मस्जिद का भी करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा आ गया। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया है। 7 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। इनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं जिन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा है।
3: सोमवार की सुबह ये पूरा बवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ है, जहां 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ होना है। इसी महाकुंभ के लिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं और उसी की जद में एक मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे तोड़ने पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन अफवाह ऐसी फैली कि भयंकर दंगा हो गया। लोगों की भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। महिलाओं को आगे रखकर पत्थर फेंके जा रहे थे। छतों के ऊपर से, गलियों के अंदर से लगातार पत्थर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज भी किया। पूरे विवाद के बाद फोर्स तैनात की गई, लेकिन दोपहर होते होते फिर से पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठी चार्ज करके आंसू गैस छोड़ी। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन में कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक 1.5 किलोमीटर एरिया की सड़क 15 मीटर चौड़ी की जाएगी। इसके लिए 323 मकान तोड़े जाएंगे। इनमें से 15 धर्मस्थल हैं। अब तक 12 धर्मस्थल हटाए जा चुके हैं। सड़क के दायरे में शाही मस्जिद का भी करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा आ रहा है। दस्तावेज में इस मस्जिद के 100 साल से ज्यादा पुरानी होने की पुष्टि होती है, लेकिन कुछ लोग इसे 600 साल पुरानी मस्जिद बता रहे हैं। बीते 2 दिन से मस्जिद तोड़ने को लेकर मुस्लिम समाज लगातार विरोध कर रहा था। रात से चल रहे विरोध के बाद आपसी सहमति से चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को तोड़ने पर सहमति भी बन चुकी थी। खुद शहर काजी की तरफ से मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन जब सोमवार को सुबह से मस्जिद के हिस्से को गिराने की कार्रवाई मुस्लिम समाज ने खुद शुरू की तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।
2: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, बरादरान मिल्लत को इत्तला दी जाती है कि बेवजह बाजारों में न खड़े हों, बाजारों की तरफ न जाएं। मस्जिद का मसला रात को ही हल हो गया था और ऐसी कोई बात नहीं जिसके पीछे हम वहाँ जाएं। बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने।
3: प्रशासन कह रहा है कि खुद उनकी तरफ से मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाया गया, बल्कि आपसी सहमत के बाद खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ना शुरू किया था। सोमवार की सुबह और दोपहर को हंगामा हुआ, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ही मस्जिद का हिस्सा तोड़ा जा रहा है।
5: उज्जैन में जिस शाही मस्जिद को हटाने के नाम पर आज उपद्रव हुआ है, दरअसल उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे समाज के लोग खुद ही अपने हाथों से उस मस्जिद के हिस्से को हथौड़े से हटा रहे हैं। आप तस्वीरों में अगर आप सामने देखें तो यही वो तमाम लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं और इनको ही यहाँ भेजा गया है इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि जो सहमति बनी थी शहर काजी के साथ कल रात को, उस सहमति के बाद इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने हाथों से ही आकर के यहाँ पे उस हटाए उसे, लेकिन उसके बाद अचानक से सुबह जो है एक गुट यहाँ पे इकट्ठा होता है और उस वक्त यहाँ पे उपद्रव शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, लाठीचार्ज करना पड़ता है और उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ता है। तो ये हालात जो है फिलहाल इस वक्त उज्जैन में है, लेकिन इन सब के बीच में ये वो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं को कि कैसे समाज के जो लोग हैं वो खुद अपने हाथों से उस मस्जिद को हटाने का काम अब शुरू कर चुके हैं।
3: अभी फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन सुबह से पत्थरबाजी के बाद प्रशासन भी स्थिति को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा, इसीलिए डीएम और एसपी खुद घोड़ों पर सवार होकर इस पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं ताकि उनके पुलिस बलों में भी भरोसा जगे और उपद्रवी भी अब कुछ ऐसा दोबारा करने की हिम्मत न कर सके।
5: उज्जैन की प्रभावित गलियों में अब प्रशासन की टीम घोड़ों पे सवार होकर गश्त कर रही है और जो गोपाल मंदिर के आसपास का पूरा इलाका है वहाँ अगर आप देखें इस वक्त उज्जैन कलेक्टर, उज्जैन एसपी, तमाम बड़े अफसर जो हैं वो इन घोड़ों पे सवार होकर के अब गश्त कर रहे हैं प्रभावित इलाकों की, जहाँ पे सुबह उपद्रव हुआ था और पथराव हुआ था, लेकिन अब उन तमाम इलाकों में जाकर के जो स्थानीय प्रशासन है वो गश्त कर रहा है और लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके कोई अफवाह है तो उस पर वो ध्यान ना दें, और अगर आप देखें तो जो लोग अभी भी यहाँ हैं उनको ये साफ किया जा रहा है कि वो अपने अपने घरों में जाएं, बाहर ना निकलें, और अगर किसी भी तरीके कोई अफवाह फैल रही है तो उस पर वो लोग ध्यान ना दें, और इसीलिए अब यहाँ पे घोड़ों पर सवार होकर के फिलहाल सभी बड़े अफसर गश्त पर निकले हैं उज्जैन की प्रभावित गलियों में।
3: उज्जैन पुलिस की माने तो सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने अफवाहों को वायरल किया, जिसके बाद ये बवाल बढ़ा। उज्जैन पुलिस ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 5 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। कुछ लोग बाहर से उज्जैन आना चाहते थे, ऐसे लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मस्जिद का एक भारी हिस्सा तोड़ा जा रहा था, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि पूरी मस्जिद तोड़ी जा रही है, जिसके बाद ये बवाल और ज्यादा भड़का।
5: अभी क्या स्टेटस है, अभी आप लोग घोड़ों पे निकले हैं आगे पेट्रोलिंग के लिए?
6: जैसा आप देख सकते हैं शांति व्यवस्था पूरी तरह से, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। मस्जिद कमेटी द्वारा लगातार 9:45 बजे से जो एरिया उनकी चौड़ीकरण में आ रहा है उसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने का प्रयास किया गया था, उन सभी में 15 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 7 से ज्यादा हम एफआईआर कर चुके हैं। हमारी सोशल मीडिया की टीम लगातार सोशल मीडिया के कंटेंट को मॉनिटर कर रही है। 5 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके द्वारा भड़काऊ भाषण या फिर अफवाहों को वायरल किया जा रहा था उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर किए। कुछ लोग उज्जैन के बाहर के हैं जो यहाँ आके माहौल खराब करना चाहते थे, उन लोगों को भी हमने सीमा से ही हिरासत में लिया हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। यहाँ पर सभी समुदायों के साथ लगातार बातचीत के माध्यम से चौड़ीकरण का कार्य सभी के सहयोग से किया जा रहा है और निरंतर जारी रहेगा।
3: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
4: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
1: आगे आगे,
2: अरे उधर
1: उधर,
2: करेक्ट करेक्ट,
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
3: पापा
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: ओए, जहाँ कैसे खड़ी की?
14: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
13: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
14: क्या
15: बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
13: तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
17: यार लोन भूल गया। मैरी?
18: It's
17: just a good bank ना।
18: Ujjivan Small Finance Bank.
17: Small Finance Bank.
18: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
17: There's nothing small about them. Ujjivan, nothing small about us.

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रोटी थमका लगाने पर
4: मेरे पास एक आइडिया।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा TMT बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुमटा TMT से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
11: In association with
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: ।1960 के नियम को बदले बगैर आप फॉर्म 6 लाए, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल में कई लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, उनका वोट छीन लिया गया, तो वो गैर कानूनी तरीके से छीना गया। अगर वोट ही आपका गैर कानूनी तरीके से छीना गया बिहार और बंगाल में, क्या वो इलेक्शन कानूनी है? क्या वो इलेक्शन संवैधानिक है? क्या वो मैंडेट संवैधानिक है? बुनियादी सवाल है ये। इसका जवाब ना आपको नथुने फुला के रविशंकर प्रसाद भी नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहे साहब, जवाब दीजिए। तीसरा, आपने ECI नेट की बात की कि साहब अब एक कमिटी बनाई जाएगी जिसमें एक अफसर होगा, IIT IIIT IIM के लोग होंगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी, ECI नेट की, जिसने सब हर चीज का केंद्रीकरण कर दिया। ERO के अधिकार, इलेक्टोरल रोल में एडिशन और डिलीशन के जो अधिकार होते हैं, वो छीन लिए गए और केंद्रीकरण कर लिया गया, वो दिल्ली में ECI नेट करती है। एक कमिटी उसकी बनी हुई है, प्रोजेक्ट स्क्रूटिनी कमिटी।
14: एक अखबार के मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपोजिशन पार्टीज, विशेष रूप से कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी, जिस तरह का बेबुनियाद शर्मनाक आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए, FIR होना चाहिए।

0: लेकिन ये आदमी लगातार जब हमारी क्या सुनेगा, जब अपने साथ ही चुनाव आयुक्तों की नहीं सुन रहा है ना। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि इससे क्या हो रहा है, चुनाव आयोग की छवि को जितना नुकसान हो रहा है वह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
1: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मचे बवाल के बारे में बताएं, जहां कथित गैंगरेप के मामले में न्याय की मांग अचानक लूटपाट में बदल गई। जिस वक्त एलपीयू में इंसाफ के नारे लग रहे थे, ठीक उसी वक्त भीड़ में घुसे कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी मॉल के शटर्स तोड़ दिए। कपड़े, जूते, आईफोन, लैपटॉप लूट लिए गए। फ्री शॉपिंग के नारे लगे। सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन को कुछ लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत हाईजैक कर लिया था। देखिए, इस बवाल की शुरुआत हुई रेडिट पर लिखी एक गुमनाम पोस्ट से, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में कथित गैंगरेप और छात्रा की खुदकुशी का दावा किया गया। यह खबर व्हाट्सएप के जरिए बहुत तेजी से फैली। देखते ही देखते 2000 छात्र सड़कों पर उतर आए। पुलिस समझती रही, लेकिन गुस्सा इस कदर भड़का कि हाईवे जाम हुआ, पथराव हुआ, गाड़ियों में आग लगा दी गई। सवाल यह है कि क्या बेकाबू सोशल मीडिया अब हिंसक घटनाओं की वजह बन रहा है। इसके बाद आपको उज्जैन में सिंहस्त महाकुंभ के लिए मस्जिद पर बुलडोजर चलने का सच बताएंगे। रोड के चौड़ीकरण के दौरान शाही मस्जिद के कुछ हिस्से को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके विरोध में पथराव भी हुआ। प्रशासन की कार्रवाई को रोकने के लिए मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जो हिस्सा पहले से तय था कोर्ट के ऑर्डर से कि उसे टूटना है, उसे तोड़ा जाए। और इसके बाद प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच समझौता हुआ। कमेटी ने खुद ही 3 फीट का हिस्सा हटाने पर सहमति जता दी। देखिए, और इसके बाद आपको दिल्ली में हुए थप्पड़ कांड का संपूर्ण सच बताएंगे। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक सड़क के निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। आम आदमी पार्टी इसे गुंडागर्दी बता रही है। बीजेपी थप्पड़ खाने वाले लड़के की कुंडली निकाल रही है। आज हम इस पूरे विवाद से पर्दा उठाएंगे। अगली खबर नेपाल से, जहां एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। सैकड़ों घर पानी में समा चुके हैं और वहां अब तक 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए, ये भयावह तस्वीरें हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी आसमानी आफत टूट पड़ी है। लगातार हुई भारी बारिश से पूरा जो बैंकॉक शहर है वो जलमग्न हो चुका है। प्रशासन ने सभी 50 जिलों में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बारिश बाढ़ की वजह से 52,000 से ज्यादा परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, घर पानी में डूब गए।
1: เราก็จะเห็นรถของยกสูงนะครับอย่างเช่นรถบรรทุกหรือว่า
0: และอีกข่าวหนึ่ง ทราฟฟิกนิยมของการละเมิดกฎจราจรที่ทำให้รถติดขัด

और आप भरने में टाल मटोल कर रहे हैं, जो अब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नया फॉर्मूला सुझाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ई चालान नहीं भरा तो उसकी रकम बिजली के बिल में जोड़ दी जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ चालान काटने से काम नहीं चलेगा, जब गाड़ियों की जब्ती, फिटनेस पीयूसी रोकने और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने जैसे सख्त कदम उठाने का वक्त आ चुका है। जिस वक्त चालान को बिजली बिल से जोड़ने की बात हो रही है, तब आपको यह भी देखना चाहिए कि कैसे कैसे चालान काटे जा रहे हैं। खबर बड़ी दिलचस्प। बेंगलुरु में सड़क पर लगे हाईटेक एआई कैमरे ने स्कूटी पर गिटार ले जा रहे व्यक्ति का चालान काट दिया। अब ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, पीछे इसने गिटार टांगा हुआ है, लेकिन एआई की नजर में ये उसके पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसने हेलमेट नहीं पहना था। चालान कट गया।

42 साल का लंबा इंतजार और एशियाई खेलों के ट्रैक पर एक नया इतिहास। भारत की धाविका विथ्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में कांस्य पदक अपने नाम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने दिग्गज पीटी उषा के 1984 में बनाए गए ऐतिहासिक नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती है। उन्हें शहीद आजम यानी शहीदों में सबसे महान और सर्वोच्च इसलिए माना गया क्योंकि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक महान विचारक, लेखक और दार्शनिक भी थे। इतनी कम उम्र में मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़कर उन्होंने आजादी के बाद के भारत का एक स्पष्ट विजन यानी खाका तैयार किया था। उनके इस बौद्धिक स्तर ने उन्हें अन्य क्रांतिकारियों में आजम यानी सर्वोच्च महान बनाया। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी, तब उनके चेहरों पर डर का कतरा भी नहीं था। वो इनकलाब, जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमकर सूली पर इस देश के लिए चढ़ गए और इस अभूतपूर्व साहस ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए और वो देशवासियों के दिलों में सर्वोच्च स्थान पर बैठ गए। और आज भी आप भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। जब उन्हें फांसी दी गई तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल 5 महीने थी। क्या उम्र होती है? ये वो उम्र होती है जब आजकल के युवा करियर के विकल्प तलाश रहे होते हैं, जीवन के नए ख्वाब बुन रहे होते हैं। सोचिए उस उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते सिर्फ इस देश की मिट्टी के लिए, उसकी आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान जितना फौलादी था, उनका विवेक और बौद्धिक गहराई उससे भी कहीं अधिक गहरी थी। वो मानते थे कि ज्ञान ही असली ताकत है, किताबों से बड़ा कोई हथियार नहीं। हर युवा के जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और बिना उद्देश्य या मकसद के जीवन व्यर्थ है। और वो ये भी कहते थे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए। और हमें लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए शहीद आजम भगत सिंह से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है, देखिए।

लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अचानक लूटपाट और डकैती में बदल जाता है तो यह कितना खतरनाक और चिंताजनक है। जिस वक्त पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के कथित आरोपों के मुताबिक गैंगरेप और खुदकुशी के दावे को लेकर युवाओं का एक हुजूम न्याय मांग रहा था, उसी वक्त भीड़ में शामिल कुछ लोग एक मॉल के अंदर इस विरोध प्रदर्शन की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसको हाईजैक कर रहे थे। हम ये नहीं जानते कि ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र थे या बाहर से थे, तो कौन से लोग थे, और कोई दावा कर भी नहीं सकता क्योंकि इनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग एक मॉल के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की, लूटपाट कर रहे थे और इन

लोगों ने कई दुकानों के शटर तोड़कर वहां रखे कपड़े, महंगे जूते, आईफोन, लैपटॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स से बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान लूटा। और ना सिर्फ लूटा बल्कि इन लोगों ने वहां भीड़ के बीच फ्री शॉपिंग के नारे भी लगाए। इन नारों का मतलब ये था कि जो लोग इन दुकानों से जितना लूट सकते हैं उन्हें इसकी खुली छूट है और उन्हें आज ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा।

0: कि जो लोग इन दुकानों से जितना लूट सकते हैं उन्हें इसकी खुली छूट है और उन्हें आज ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा। और वहां हुआ भी है। करीब 2 से 3 घंटे तक इस मॉल को लगातार लूटा गया। और सोचने वाली बात यह है कि जो लोग लूटपाट कर रहे थे उन्होंने किताबों की दुकान का शटर तक छूने की कोशिश नहीं की, यानी किताब की दुकान की तरफ नजर भी नहीं फेरा। ये वो तमाम लोग सिर्फ कपड़े, महंगे जूते, आईफोन, लैपटॉप लूटने गए थे और किताबों की दुकानें इस लूटपाट में पूरी तरह सुरक्षित रही। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर तस्वीरों में लूटपाट करने वालों की उम्र यही 20-25 साल के बीच थी। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पुलिस वहां पर बता रही है। पहले देखिए।
1: चोरी किया सामान।

0: शॉपिंग कर रहे हैं, फ्री में शॉपिंग
1: भाई। शॉपिंग डन,
2: शॉपिंग डन, कुछ नहीं होगा।
3: लूटपाट की इन घटनाओं ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े किए हैं, और ये सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार ये कौन से लोग थे जो इस विरोध प्रदर्शन को हाईजैक करने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन यहां प्रदर्शनकारी छात्रों और लवली यूनिवर्सिटी के जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके प्रबंधन का ये भी आरोप है कि बाहरी लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल हो भी सकता है। हम भी मानते हैं कि बाहरी लोगों द्वारा इस छात्र आंदोलन को हाईजैक करना संभव है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये बाहरी लोग इस यूनिवर्सिटी में आए कैसे, इस यूनिवर्सिटी में उन लोगों को रोका कैसे नहीं, जबकि ये यूनिवर्सिटी छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। जब कोई छात्र इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आता है तो उस छात्र को बाकायदा एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि इस यूनिवर्सिटी जैसी सुरक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी, टॉप सिक्योरिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये सब हो रहा था और ये बाहरी लोग थे तो इस यूनिवर्सिटी के सुरक्षा इंतजाम कहां थे? ये यूनिवर्सिटी पूरे कैंपस में 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों, 7000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों, 7200 सीसीटीवी कैमरों और उनकी लगातार निगरानी करने का दावा करती है। और जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के एक साल की आमदनी कितनी है? इसका सालाना रेवेन्यू है 1153 करोड़ रुपए। लेकिन कल जब यह हिंसा हुई और हॉस्टल से लेकर मॉल तक दुकानों में तोड़फोड़, कैंपस में सब कुछ तोड़फोड़ लूटपाट, तब भीड़ को रोकने वाला कोई सिक्योरिटी नहीं। रोकने वाला तो छोड़िए, जिन लोगों ने मॉल को लूटा वो बाहर आकर कहां गए किसी को पता ही नहीं चला, जबकि यह मॉल किसी बाहरी इलाके में नहीं था। यह मॉल यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद है जिसे यूनिमॉल कहा जाता है, और यहां 50 से ज्यादा दुकानें भी मौजूद हैं। यही नहीं, ये पूरी यूनिवर्सिटी 600 एकड़ इलाके में फैली है। और जानते हैं ये इलाका कितना बड़ा है? गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 63 एकड़ की जमीन पर फैला है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद जैसे कुल 10 स्टेडियम समा सकते हैं, और यहां 5000 या 10000 बच्चे नहीं पढ़ते, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 40,000 बच्चे। और सिर्फ भारतीय बच्चे ही नहीं, चाइना, इंडोनेशिया, माली, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और डीआर कांगो जैसे देश के विदेशी छात्र भी इन छात्रों में शामिल हैं। अगर सिर्फ हॉस्टल की बात करें तो 25

0: 10,000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर बने हॉस्टल्स में रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कल जब छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की, तब उस दौरान ना तो पुलिस कुछ कर पाई, ना ही यूनिवर्सिटी का प्रशासन कुछ कर पाया, ना ही वो तमाम सुरक्षा के इंतजाम जिसका दावा ये अपने प्रोस्पेक्टस में करते हैं वो देखा। देखिए, आपको इस घटना की जड़ में लेकर चलते हैं, ये बताते हैं कि इस हिंसा में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। पिछले हफ्ते तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सब कुछ सामान्य था, सभी छात्र मिड टर्म परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। यह भी दावा है कि छात्रों या उनके किसी भी गुट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी थी और ना ही यूनिवर्सिटी में कोई आंदोलन बुलाया गया था। यह पूरी हलचल शुरू होती है 26 सितंबर, और 26 सितंबर को भी तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट में यह आरोप लगाया गया कि यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल GH3 के कमरा नंबर 504 में रहने वाली एक छात्रा के साथ 3 बाहरी लोगों या प्लंबर ने गैंगरेप किया है। यह पोस्ट क्योंकि रेडिट पर लिखी गई थी, इसलिए इसे लिखने वाले का नाम या इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी, और रेडिट पर ऐसा ही होता है। एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपनी पहचान छिपाकर कुछ भी लिख सकता है या बता सकता है, और इस पोस्ट के जरिए भी ऐसा ही करने की कोशिश हुई। इसमें यह तक आरोप लगाया गया कि इस कथित गैंगरेप के बाद जब यह पीड़ित छात्रा वार्डन के पास शिकायत लेकर गई तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बदनामी के डर से पूरे मामले को दबा दिया, पीड़ित छात्रा को घर भेज दिया और उसने आत्महत्या कर ली। जब रेडिट पर लिखा गया यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ, बाद में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के व्हाट्सएप पर पहुंचने लगा तो छात्रों का एक बहुत बड़ा धड़ा नाराज हो गया, और ये वाजिब बात भी थी। उन्होंने अपने व्हाट्सएप में ये लिखना शुरू कर दिया कि अगर अभी आवाज नहीं उठाई गई तो बाहरी लोग यूनिवर्सिटी में आकर लड़कियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहेंगे, कभी बंद नहीं होगा। अब दावा है कि यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कई छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के गैंगरेप और खुदकुशी के दावे को सच मान लिया, और हमें लगता है कि जब यूनिवर्सिटी को यह पता चल चुका था तो उसे बच्चों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा रेडिट पर लिखा गया यह पोस्ट आग की तरफ फैलने लगा, और इसमें दो चीजें और जोड़ दी गई। पहली बात, इसमें यह लिखी गई कि गैंगरेप की यह घटना 22 से 23 सितंबर के बीच हुई, और दूसरा इसमें 10 सितंबर की उस घटना को भी जोड़ दिया गया जिसमें तेलंगाना की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी और उस मौत का कारण अब तक सामने नहीं आया था। बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद उस छात्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और उस मामले को भी यूनिवर्सिटी ने अपनी राजनीतिक पहुंच से दबा दिया होगा, और यही सारी बातें सोचकर 2000 छात्र बुरी तरह भड़क उठे। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जुटकर ये बच्चे न्याय की मांग करने लगे। 27 सितंबर को सुबह 4 बजे तक नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया। हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। इस दौरान पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने की भी कोशिश की और यह भी कहा कि किसी भी छात्रा के गैंगरेप और खुदकुशी का कोई प्रमाण नहीं मिला है और यह एक अफवाह है, लेकिन छात्र फिर भी नहीं माने। छात्र लगातार विरोध करते रहे, कहते रहे कि पुलिस यूनिवर्सिटी के बड़े लोगों को बचा रही है, सच को दबाया जा रहा है। काफी हंगामा हुआ और उस हंगामे के बाद पुलिस ने छात्रों के भरोसे के लिए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर 5 छात्रों को शामिल करते हुए SIT का गठन किया और यह सोचा कि अब शायद यह पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल शाम को यह विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो गया। आरोप है कि कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर और हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ उनकी भिड़ंत हुई। पुलिस का दावा है कि उन छात्रों ने उन पर पथराव किया और इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि यह पुलिस का दावा है कि छात्रों ने उन पर पत्थरबाजी की। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाद में कुछ बाहरी लोगों ने पथराव किया और छात्रों के आंदोलन को बदनाम किया गया। इनमें भी सबसे ज्यादा तनाव गर्ल्स हॉस्टल यानी GH3 की बिल्डिंग और प्रशासनिक ब्लॉक्स के बाहर रहा, जहां इमारतों की खिड़की दरवाजों के शीशे तोड़ दिए गए और परिसर में रखी गई चीजों और कुछ हिस्सों में आग लगा दी गई। यही नहीं, जो वहां पर भीड़ हिंसक हुई उसमें शामिल कुछ लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मॉडल के तौर पर रखे गए टैंक, ट्रक, हवाई जहाज पर भी चढ़ गए और वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। आगजनी की तस्वीरें आप देख ही रहे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस की 3 गाड़ियों को पूरी तरह फूंक दिया गया और आरोप है कि वहां से गुजर रहे आम नागरिकों की गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी की कोशिश हुई, जिससे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। देखिए,
1: आप तोड़फोड़ कर रहे हो और सिर्फ ये नहीं, यूनी मॉल में घुसते हो, आप वहां मिठाई की दुकान खोलते हो, मिठाइयां चुराते हो, आप लैपटॉप्स की दुकान खोलते हो, आप लैपटॉप चुराते हो, ईयरफोन चुराते हो, मोबाइल के कवर चुराते हो, नीचे आप जाते हो स्टोर में आते शैंपू वगैरह ना जाने क्या क्या चीजें चुराते हो। तो आप प्रोटेस्टर्स नहीं थे, आप चोर थे उनकी आर में। भीड़ है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। इनने कोई भी अब्बा सुनी, कल एक मैसेज आ गया कि लड़की का रेप हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। अब किसी को ये भी नहीं, कोई मुझसे कह रहा 2 दिन पहले घर चली गई है, कोई कह रहा वो 3 दिन पहले घर चली गई है, किसी को पता ही नहीं है। टोटली बेसलेस चल रहा है कि वो लड़की है कहाँ, कहाँ की थी, उसके दोस्त कौन है। अरे कोई तो सामने आता।
0: अब इस हिंसा के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस घटना को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ वो घटना हुई या फिर अफवाह फैलाई गई जिसे रेडिट के जरिए फैलाया गया। अगर पुलिस की माने तो उसे अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। आपने इस बच्चे की भी बात सुनी, पुलिस कह रही है उसे कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि गर्ल्स हॉस्टल में गैंगरेप के बाद एक छात्रा ने आत्महत्या की है। उनके पास कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो छात्राओं के सभी रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में किसी छात्रा की मौत या आत्महत्या की अभी तक पुष्टि हुई नहीं है। अब इतना बड़ा कैंपस है, हजारों हजार छात्र हैं। हालांकि पुलिस ने छात्रों के गुस्से को देखते हुए एक FIR दर्ज की है और इस मामले की जांच के लिए एक SIT भी बना दी गई है जिसमें कुछ छात्र भी शामिल रहेंगे। यानी अब तक की जांच रेडिट पर लिखे गए दावों को सही नहीं मानती और हमने खुद भी इस पूरे मामले की पड़ताल की। गर्ल्स हॉस्टल के जिस कमरे में छात्रा के गैंगरेप का दावा हुआ था, उसी कमरे में रहने वाली 3 छात्राओं का आज तक की तरफ से हमारी सहयोगी ने इंटरव्यू किया और उनके मुताबिक वो 2 महीने से वहां रह रही हैं और इस कमरे में गैंगरेप और खुदकुशी का जो दावा किया जा रहा है वो उनकी नजर में, उनके दावे के अनुसार सही नहीं है। सुनिए।
2: रेप हुआ है और आप ही के रूम में हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या?
3: हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी रूम्स का हमें कोई आइडिया नहीं है।
2: आपका क्या कहना है? आपके पेरेंट्स ने फोन किया, वर दे नर्वस, कुछ बोला उन लोगों ने? कुछ क्या हुआ था, कुछ लोग क्या आए थे पूछने के लिए?
3: जी, सुबह सुबह पुलिस वाले आए थे हमसे पूछने के लिए कि क्या हुआ है, आपने कुछ सुना है क्या ये सब? हमने बोला कि हमें नहीं पता। क्वेश्चन किया कि आप लोगों को कोई आइडिया है ऐसा कुछ हुआ है? हमने बोला नहीं, हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है। बट सारा प्रोटेस्ट हमें रात को पता चला है, हमने खुद जाके देखा है और ऑब्वियसली अभी वार्डन हमें कुछ नहीं बता रही है, कुछ भी नहीं बता रही है केस से रिलेटेड कि हुआ है नहीं हुआ है किसी सवाल।
2: कितनी लड़कियां उस रूम में?
3: हम 3 है
2: बस। और आप बोल रहे हो कि आपके रूम में इस तरह से कुछ नहीं हुआ?
3: हमारे रूम का नाम फालतू में आ रहा है बस।
0: हम चाहते हैं कि इस मामले में जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरीके से कोई दावे को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत ना माना जाए। और हम ये भी कहेंगे कि अगर जांच के बाद ये साबित हो जाता है कि रेडिट पर लिखा गया पोस्ट पूरी तरह गलत था, कोई सच्चाई नहीं थी, तो आपको यहां ये भी समझना होगा कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है और सोशल मीडिया के जरिए कैसे झूठी कहानी गढ़कर दंगे तक भड़काए जा सकते हैं। ये सवाल आज सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी लड़की की जानकारी सामने नहीं आई है। आपने उन 3 बच्चियों का इंटरव्यू देख लिया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने एक स्टडी में बताया है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें जो है ना वो सच्ची खबरों की तुलना में जानते हैं कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा दूर, कहीं ज्यादा लोगों तक फैलती है और झूठी खबरों के रीट्वीट होने की संभावना सच्ची खबरों से करीब 70% ज्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि किसी झूठी खबर को 1,500 लोगों तक पहुंचाने में जितना समय लगता है, सच्ची खबर को उतने लोगों तक पहुंचाने में लगभग 6 गुना ज्यादा समय लगता है और झूठी खबरें तेजी से और ज्यादा बड़े रीट्वीट चेन बनाती हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ बॉट्स होते हैं, बॉट्स यानी मशीनों में होने वाली छेड़छाड़ को हटाने के बाद भी झूठी खबरों को तेजी से फैलने में कोई अंतर नहीं आता और इनमें भी एक्स और रेडिट पर लिखे गए पोस्ट लोगों को सबसे ज्यादा गुमराह और झूठ की दुनिया में ले जाते हैं। MIT की इस रिपोर्ट का यही दावा है। जैसे 2020 के दिल्ली दंगों में रेडिट पर कई गलत दावे किए गए, कहानियां लिखी गई, लोग गुमराह हुए, उन्होंने एडिटेड क्लिप्स को भी सही मान लिया। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रेडिट पर यह दावा किया गया था कि Washington DC के एक पिज्जा रेस्टोरेंट से हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एक गुप्त मानव तस्करी और बाल शोषण रैकेट चला रहे। अब इस अफवाह का असर यह हुआ कि एडगर वेल्च नाम का एक व्यक्ति असॉल्ट राइफल लेकर उस रेस्टोरेंट में घुस गया, उसने गोलियां चला दी, जबकि रेडिट पर लिखी गई ये बात पूरी तरह गलत और आधारहीन और फेक निकली। यानी आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मौजूदा वक्त में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खबरों और नई जानकारी के लिए विश्वास करते हैं। कई लोगों से आप बात कीजिएगा तो कहें, अरे हमने देखा है। कहां देखा है? सोशल मीडिया पर देखा है, व्हाट्सएप पर आया है। और सोशल मीडिया पर जो बातें बताई जाती हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर लिखी इन अपुष्ट जानकारियों से क्या हो सकता है वो सबने देख लिया है। अभी एक बार फिर हम कह रहे हैं, जब तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की घटना का पूरा सच सामने नहीं आता है, जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक किसी पर भी उंगली उठाना सही नहीं। मुमकिन है कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, लेकिन यह भी मुमकिन है कि उस कमरे में तीनों लड़कियां बता रही हैं कि हम कई महीने से रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें कुछ ऐसा पता नहीं है। और ऐसे में अगर वाकई गलत खबर फैलाई गई सोशल मीडिया के जरिए तो यह कितना भयानक है, ये आप देख रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। अब स्थिति यह है कि सैकड़ों छात्र छात्राएं अपना बैग पैक कर रही हैं, यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें वहां पर डर लग रहा है। देखिए,

0: कोई भी घुस रहा है अंदर कॉलेज के, कोई मना नहीं है, कोई भी घुस रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ले जा रहे हैं, बाइक बुलेट ले जा रहे हैं, फोर व्हीलर में भर भर के 10-10 लोग घुस रहे हैं अंदर।
1: ऐसा तो डरे हुए ना,
0: बहुत ज़्यादा डरे हुए, अभी भी डरे हुए हैं।
2: यूनिवर्सिटी हमें मैसेज करती है कि 10 डेज का हॉलीडे मिला हुआ है, लाइक क्लासेस नहीं रहेंगे। सो सबने टिकट्स किए अपने घर घर के एंड अभी जा रहे हैं अपने घर।

0: खैर, इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे तीन और थ्योरी चल रही है। इनमें पहली थ्योरी खुद बीजेपी ने दी है, जिसमें पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 30 सितंबर 2026 को जालंधर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और बीजेपी के मुताबिक इस रैली में जुटने वाले भीड़ और उसकी नशा मुक्त पंजाब यात्रा से घबरा कर पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने जानबूझकर जालंधर फगवाड़ा क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की है और ताकि रैली में बाधा डाली जा सके। यानी बीजेपी ये कह रही है कि जिस क्षेत्र में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वहां गृहमंत्री अमित शाह की रैली में रुकावट डालने के लिए हालात बिगाड़े जा रहे हैं। दूसरी थ्योरी भी बीजेपी ने ही दी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए यह पूरा विवाद जानबूझकर खुद पैदा किया है। असल में पंजाब से कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी करके पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया और पार्टी की पंजाब सह प्रभारी गायत्री बिश्नोई को लेकर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं और बहुत निजी आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया पंजाब के कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह को आवंटित सरकारी बंगले में अवैध रूप से रह रहे हैं और इसी सरकारी बंगले में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई भी रह रही हैं और सुखपाल सिंह खैरा ने दोनों की तस्वीरें भी जारी की। बहुत विवाद इस पर हो रहा है और अब बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने LPU में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हिंसा की ये स्क्रिप्ट लिखी है और बीजेपी कह रही है, जबकि गायत्री बिश्नोई ने इन आरोपों को गलत बताया और ये कहा है कि राजनीति के लिए उनका चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है। तीसरी थ्योरी आम आदमी पार्टी ने दी है। पार्टी का कहना है कि अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए विपक्ष पंजाब का माहौल खराब करने और यूनिवर्सिटी के बहाने सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा यहां एक और थ्योरी इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर को लेकर चल रही है, नाम है अशोक मित्तल। ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्हें साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने कोटे से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा था। उस समय वो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी भी माने जाते थे, लेकिन इसके बाद अप्रैल 2026 में ईडी ने अशोक मित्तल और उनसे जुड़े कुछ परिसरों पर छापेमारी की और इस छापेमारी के महज 10 दिनों के अंदर अप्रैल महीने में ही वो आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब इसे लेकर भी खूब विवाद हो रहा है, जहां कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि अशोक मित्तल अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की खबर को छिपा रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि अशोक मित्तल के बीजेपी में शामिल होने का बदला लेने और उनकी यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने के लिए इस अफवाह और हिंसा को हवा दी गई है। यहां एक और अजीब बात यह है कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर पंजाब की 2 यूनिवर्सिटी में हिंसक घटनाएं हुई और दोनों घटनाओं में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे बड़ी थी। सबसे पहले पंजाब के राजपुरा के पास चिटकारा यूनिवर्सिटी में हिंसक झड़पें हुई, फिर वहां से करीब 140 किलोमीटर दूर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ। 25 सितंबर की रात को जब चिटकारा यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ तब वहां भूत के कारण 2 लड़कियों के गायब होने की अफवाह फैल गई थी और इसके कारण यूनिवर्सिटी में बहुत तनाव रहा और जब ये बवाल शांत हुआ तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के आरोपों के मुताबिक हुए गैंगरेप और आत्महत्या के दावे को लेकर ऐसी हिंसा भड़की कि पूरे यूनिवर्सिटी परिसर को 10 दिनों के लिए बंद करना पड़ा और मिड टर्म की परीक्षाओं को भी अभी स्थगित कर दिया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 500 साल पुरानी शाही मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का सच क्या है और क्यों इस हिंसा के पीछे भी सोशल मीडिया को बड़ी वजह माना जा रहा है। यानी अब तक आपने ये देखा कि कैसे पंजाब की 2 यूनिवर्सिटीज में सोशल मीडिया पर किए गए दावों के कारण हिंसा भड़की, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि इसी सोशल मीडिया के कारण कैसे उज्जैन में आज पुलिस पर हिंसक भीड़ ने पथराव कर दिया। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आप इस पत्थरबाजी के पीछे की पूरी कहानी समझिए। उज्जैन में पिछले कई महीनों से 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां चल रही है और इसके लिए मुख्य रूप से कई सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इन्हीं में एक सड़क जो सड़क मार्ग है वो उज्जैन के कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक जाता है। 12 मीटर चौड़ा है और प्रशासन इसे करना चाहती है 15 मीटर चौड़ा। इसके लिए इस सड़क मार्ग में आने वाले कई मकानों, कई धार्मिक स्थलों का कुछ हिस्सा तोड़ा जा रहा है, जिनमें मंदिर भी है और मस्जिद भी है, दोनों शामिल। आज भी स्थानीय प्रशासन इस इलाके की शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाने के लिए आया था, जिस पर हाईकोर्ट ने खुद अपनी सहमति दी थी। ये परमिशन हाईकोर्ट की तरफ से मिला हुआ है। इसी महीने 9 सितंबर को हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने मस्जिद कमेटी हो और मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें नगर निगम के नोटिस को चुनौती दी गई थी कि भाई यहां पर ये डेमोलिशन नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये होगा। अब कोर्ट ने सार्वजनिक हित और सिंहस्थ महाकुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण को जरूरी मानते हुए सहमति से कुछ हिस्से को तोड़ा जा सकता है ये कह दिया और उसी फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की। जब रविवार रात को यानी कल रात को स्थानीय लोगों को ये पता चला कि प्रशासन शाही मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ने के लिए आने वाला है, तो दावा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, महिलाएं, बच्चे इस मस्जिद को बचाने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए और रात भर मस्जिद के अंदर और बाहर डटे रहे। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भी 2000 पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया। इसके बाद कार्रवाई से पहले प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच बैठकें भी होने लगी ताकि आपसी सहमति बने, कोई नतीजा निकाला जा सके। लगातार कई बैठकें की गईं और उसके बाद यह तय हुआ कि मस्जिद का करीब 3 फीट का ही जो हिस्सा है वो हटाया जाएगा, सिर्फ 3 फीट, और इस कार्रवाई में जितनी भी दुकानें प्रभावित होंगी उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने जब खुद इस पर सहमति दे दी तो आज सुबह 8 बजे कमेटी से जुड़े लोग खुद ही हथौड़े से उस हिस्से को तोड़ने लगे और यहां तक कोई विवाद या हंगामा नहीं, खुद ही तोड़ रहे थे। हलचल तब बढ़ी जब सुबह 9 बजे सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि स्थानीय प्रशासन मस्जिद पर बुलडोजर चला रहा है। कई हैंडल से तो फेक वीडियोस जारी कर दिए गए। इस अफवाह के बाद शाही मस्जिद के पास भारी भीड़ जमा हो गई और अचानक पुलिस पर पथराव शुरू हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इस झड़प में एक महिला थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद आज ही यह मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचा और मुस्लिम पक्ष ने तत्काल बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को फिर खारिज कर दिया और यह कहा कि मस्जिद का 3 फीट हिस्सा शांतिपूर्वक हटाना होगा। यहां कई लोग सोशल मीडिया पर यह दावा भी कर रहे हैं कि हिंदुओं के महाकुंभ के लिए सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही है, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह कहते हैं कि उज्जैन में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सबसे ज्यादा 12 मंदिरों को हटाया गया, जबकि मस्जिदों में केवल 3 जगहों पर सहमति से कुछ हिस्से तोड़े गए हैं और इनमें भी मस्जिदें पूरी नहीं हटाई गई हैं। मस्जिदों के उतने ही हिस्से को हटाया गया है जितना सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जरूरी था या फिर एनक्रोचमेंट था। यहां असल में मुद्दा यही है कि जब मंदिर हटाया जाता है तो वहां पर इस तरह का विरोध नहीं हुआ है और जब मस्जिद के कुछ हिस्से हटाए जा रहे हैं तो लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं और उसका विरोध सड़कों पर पथराव करके भी किया जा रहा है। हाल ही में उज्जैन में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने पर खूब विवाद हुआ था। जब ये प्रतिमा वहां से हटाई नहीं जा सकी तो हिंदू समुदाय के लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, अब मस्जिद को लेकर कार्रवाई हो रही है, अब मुस्लिम पक्ष इससे नाराज है। यहां असली मुद्दा यह है कि जब धार्मिक स्थलों की बात आती है तो सरकार के लिए काम आसान नहीं होता, चाहे हाईकोर्ट का ऑर्डर ही क्यों ना हो। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पैतृक घर पर खुद हथौड़ा चलाया था और लोगों से अपील की थी कि वो सहयोग करें, लेकिन धार्मिक मुद्दे कई बार इतने जटिल होते हैं कि लोग इसको आसानी से स्वीकार नहीं करते और ये पूरी दुनिया में होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे देशों में जब ऐसी कोई चीज होती है तो वहां धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं जाता बल्कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी की मदद से पहियों पर लाकर रिलोकेट कर दिया जाता है। और धार्मिक स्थल ही नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पेड़ भी काटे नहीं जाते, बल्कि उन्हें रिलोकेट किया जाता है। हमें लगता है कि हमारे देश की सरकारें भी इन विकल्पों के बारे में सोच सकती हैं। यहां हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब विकास के लिए धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की बात आती है तो इस पर हंगामा होता है, लेकिन जब इसी विकास के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो कितने लोग उसके खिलाफ सड़कों पर आते हैं। 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2020-2021 से 2023-24 के बीच नेशनल हाईवे के विकास के लिए कुल लगभग 57,11,000 पेड़ काटे गए। लेकिन सोचिए, पेड़ों के लिए इतना गुस्सा, पत्थरबाजी की नौबत कभी देखी है? अब आपको दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का संपूर्ण थप्पड़ कांड दिखाते हैं। ये घटना 27 सितंबर की है, जब प्रवेश वर्मा तिलकनगर इलाके में विकासपुरी रिंग रोड के पास गुरुद्वारे वाली सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान घटनास्थल पर आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह भी आ गए। उन्होंने नई बनी सड़क को अपने ही हाथों से उखाड़ा और उखाड़कर मंत्री प्रवेश वर्मा के हाथ में थमा दिया। जर्नैल सिंह ने कहा कि जो सड़क 15 घंटे भी ना चले उसकी क्वालिटी कैसी होगी। इस दौरान बहस बढ़ी तो मंत्री प्रवेश वर्मा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। इसी दौरान साहिब सिंह नाम का एक लड़का मोबाइल से लगातार वीडियो बनाते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। इस दौरान गाड़ी के पास पहुंचते पहुंचते माहौल गर्म हो गया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने आपा खो दिया, साहिब सिंह को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सामने आते ही बवाल मचा। आम आदमी पार्टी ने इसे सरेआम गुंडागर्दी करा देते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और मामला भी बड़ा था, सार्वजनिक रूप से एक मंत्री ने थप्पड़ जड़ दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह उस सत्ता का चेहरा है जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे भ्रष्टाचार छिपाने के लिए की गई मारपीट करा दिया। जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा उसने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी के बुलावे पर ही सड़क देखने आए थे। जब सड़क की स्थिति दिखाई तो मंत्री जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने कहा कि FIR दर्ज करा दी है और मंत्री को लिखित माफी मांगनी होगी। चौतरफा घिरे मंत्री प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी सामने रखी। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह कई दिनों से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स पर ठेकेदार से सेटिंग कराने, कमीशन दिलाने का दबाव बना रहे थे। जब कमीशन नहीं मिला तो रात में बनी सड़क को सुबह जानबूझकर उखाड़ कर वीडियो बनाया गया। मंत्री का दावा है कि निरीक्षण के दौरान साहिब सिंह नाम के इस लड़के ने उनके परिवार को लेकर भद्दी गालियां दी, जिसके बाद आवेश में आकर उन्होंने हाथ उठाया। इसके बाद बीजेपी ने इस लड़के को लेकर दावा किया है कि जिसे मासूम युवक बताकर पेश किया जा रहा है वो असल में तिलकनगर थाने का दर्ज अपराधी है। इसी साल 2 जून को कृष्णापुरी इलाके में गाड़ी रोकने को लेकर MCD के एक सफाई कर्मचारी को बेहोश होने तक पीटा गया था। उस मामले में साहिब सिंह आरोपी था और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। इधर बीजेपी ने तंज कसा कि अरविंद केजरीवाल गुंडों को विक्टिम कार्ड पहनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ जड़ा था। इधर बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि ये युवक विधायक जर्नैल सिंह का समर्थक है, उनका सोशल मीडिया हैंडल यही संभालता है। देखिए,
1: जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
2: हम यहाँ पर आए थे, इनकी पीडब्ल्यूडी के जवाब से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही, सर को यहाँ पे देखने के लिए आए थे, दिखाने आए थे रोड की क्या हालत है। उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है।
0: अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी पर जा रहे हैं और पीठ पर बैग, राशन की बोरी, गिटार लेकर जा रहे हैं तो जरा संभल कर, हो सकता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का AI कैमरा आपके सामान को बिना हेलमेट वाला इंसान समझ ले और चालान थमा दे। IT हब यानी स्मार्ट बेंगलुरु में सुपर स्मार्ट कारनामा हुआ है। यहाँ सौविक दत्ता नाम के एक जरा अपनी पत्नी की स्कूटी पर बड़े आराम से अकेले जा रहे थे। पीठ पर उनके गिटार टंगा हुआ था। जनाब ने खुद तो हेलमेट पहना था लेकिन गिटार बेचारा खाली सिर था। बस फिर क्या था, सड़क पर लगे अत्याधुनिक AI कैमरे की नजर गिटार पर पड़ी, उसके दिमाग की बत्ती जली और कट गया चलान। इस चलान पर जुर्म लिखा था, पीछे बैठी सवारी बिना हेलमेट के है। सौविक की पत्नी को चलान का मैसेज मिला तो वो हैरान रह गई और जब चालान में फोटो देखा तो पति पत्नी दोनों ने सिर पीट लिया। परेशान सौविक ने जब सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा सुनाई तो बेंगलुरु पुलिस ने बड़े प्यार से कहा, अरे साहब एक मेल कर दीजिए, ठीक कर देंगे। चलिए सिस्टम की मेहरबानी से चालान तो कैंसिल हो गया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। माना या AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी चीज है, लेकिन इसे ऑटो पायलट पर छोड़कर इंसानी दिमाग बंद कर देना, ये कौन सी अक्लमंदी है। दिसंबर 2022 में बेंगलुरु में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत AI इनबिल्ट कैमरेज लगाए गए, जहां अब चालान काटने की रफ्तार तो बुलेट ट्रेन जैसी है, लेकिन ये जो AI इनेबल्ड कैमराज हैं वो क्रॉस चेक की बात जब आती है तो सिस्टम सो जाओ मोड में चला जाता है। भाई AI कुछ कर रहा है तो उसका कोई ह्यूमन क्रॉस चेक होगा क्या? अफसर कहते हैं AI धीरे धीरे सीखता है, डेटा के साथ तेज होता है, तो अभी सीख रहा है। ठीक है, AI सीखता रहेगा, गलतियां करता रहेगा, लेकिन खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? कई शहरों में पहले भी शिकायतें आई हैं, जब 4 साल से छोटे बच्चे को तीसरी सवारी बताकर चालान, कभी जीब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता देने पर चालान, अब गिटार का हेलमेट नहीं पहनने पर चालान। कैमरे ऑटोमेटिक लगा दिए, चालान ऑटोमेटिक कट रहे हैं, तो क्या एक बार इंसानी आंखों से क्रॉस चेक करने का काम नहीं करना चाहिए? ये तो सही है कि AI को इंटेलिजेंट बनाने के चक्कर में इंसानी सेंस को ताक पर रख दिया गया है। अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो आम लोगों के लिए त्योहारी सीजन से पहले एक झटके की तरह है। 1 अक्टूबर से माना जा रहा है कि TV, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन 8% तक महंगे हो सकते हैं। बिल्कुल अंजना, अगर इस दिवाली घर में नया AC, LED, TV, फ्रिज या वॉशिंग मशीन लाने की तैयारी कर रहे हैं तो जेब थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने इन प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी कर ली है। त्योहारों से ठीक पहले ब्लू स्टार, गोदरेज, हायर, डाइकिन और LG जैसी बड़ी कंपनियों ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साल 2026 में ये तीसरी बार है जब कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं। AC की कीमतें 5% से 8% तक बढ़ेंगी, यानी 50,000 का AC सीधे 3,000 से 4,000 रुपए महंगा हो सकता है। छोटे स्क्रीन वाले LED TV 10% से 20% तक महंगे हो सकते हैं, जबकि बड़े स्क्रीन वाले TV 10% तक महंगे होंगे। फ्रिज और वॉशिंग मशीन के दामों में 3% से 4% की वृद्धि तय मानी जा रही है। सवाल ये है कि आखिर अब ये सामान महंगे क्यों हो रहे हैं? इसकी सबसे प्रमुख वजह है कच्चे माल का बेकाबू होना। खाड़ी देशों में जंग की वजह से कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। AC में इस्तेमाल होने वाला कॉपर बीते साल 800 से 900 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 1,400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, यानी इसकी कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ गई। AC में 3 से 4 किलो तक कॉपर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा समुद्री माल भाड़ा काफी बढ़ गया है और मजबूत होते डॉलर ने कंपनियों का बजट बिगाड़ दिया है। जंग की वजह से जहाजों को बंदरगाहों तक पहुंचने में 20 से 30 दिनों की देरी हो रही है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है। हालांकि आम खरीदार के लिए फिलहाल एक राहत की खबर भी है, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 1 से 1.5 महीने का पुराना स्टॉक जमा है, इसीलिए मुमकिन है कि बढ़ी हुई कीमतें दिवाली के बाद ही लागू हों। धन्यवाद अंजना 2.0। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
13: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना?
12: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
12: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मतभेद की खबरों के बीच चुनाव आयोग की पहली बैठक हुई। बैठक में मौजूद थे सीईसी ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। विपक्ष के सवालों के बीच ये मतभेदों को दूर करने की कवायद थी, संदेश देने की कोशिश थी कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक है।
1: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई। आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरों के बीच 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने पहली मीटिंग की। चुनाव आयोग ने कह दिया कि फॉर्म 6 को लेकर जो विवाद है असल में वो कोई मुद्दा नहीं है। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसका चुनाव आयोग के पॉलिसी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ईसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। आयोग ने सफाई दी है कि सीईओ गोवा ने संबंधित बीएलओ को छूट देते हुए मतदाताओं से उनके फॉर्म एकत्र करने के लिए घर घर जाकर दौरा करने का निर्देश दिया है। 97 में से 81 मतदाता नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 पहले भर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कई अहम फैसले लिए, उनमें एक फैसला ये भी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस, दावे और आपत्तियों के निपटारे की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ये समय सीमा 30 नवंबर की होगी, जबकि महाराष्ट्र में 10 नवंबर तक नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे किए जा सकेंगे। इस मामले में चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने विवादों के बीच अपनी पहली बैठक की और तमाम आरोपों को खारिज किया, बीजेपी ने विरोधियों पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के बयान के बाद सच्चाई शीशे की तरह साफ है। साथ ही पार्टी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है।
2: तो राहुल गांधी जी, पहला सवाल है, आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी ने चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अब चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस लगातार फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है।
3: तो प्रमुख शिकायत थी इन दोनों को, संधू जी को और जोशी जी को, वो तो यही न थी कि 1960 के रूल्स को अमेंड किए बगैर फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वो रूल्स बिना पार्लियामेंट में जाए नहीं बदल सकते।
0: इस मामले को लेकर विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। 30 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष आगे के एक्शन प्लान पर मंथन करेगा। संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब लोग आपकी तरक्की का राज नहीं खोज पाते तब वो चरित्र की तलाश शुरू कर देते हैं। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चुनाव आयोग में मोर्चाबंदी में जुटे राहुल का नया दावा, दिल्ली में एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप, यमुना किनारे बेला स्टेक का किया दौरा, बोले 727 लोगों के नाम काट दिए गए। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज एनसीआर, आपने किया हंगामा, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला, कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए हैं फ्रस्ट्रेट, जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली सरकारी हुंडों ने पीटा हरसिमरत का कटाक्ष, आपने पंजाब को किया चौपट। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से हंगामा, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंहस्थ गुम के लिए सड़क पर चौड़ीकरण पर हंगामा।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कि कैसे नेपाल में एक बार फिर से वाटर बॉम्ब फटा है तो तबाही बिहार तक मची है। आज हम आपको नेपाल की तबाही दिखाएंगे तो कैसे नेपाल के रास्ते बिहार में बर्बादी की बाढ़ आई है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात नेपाल की आइए करते हैं, क्योंकि नेपाल में सबसे बड़ी विनाश लीला के ठीक एक महीने बाद फिर से जल प्रलय जैसा दृश्य है। मूसलाधार बारिश भूस्खलन से अब तक नेपाल में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन ऐसा कि मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सवाल यही कि महातबाही के ठीक एक महीने बाद नेपाल पर फिर से कहर क्यों टूट रहा है, क्यों नेपाल के नदियों में जल विस्फोट हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? क्या हिमाचल में फिर से, हिमालय में फिर से कोई हलचल हुई है? आइए दिखाएं आपको नेपाल में एक और जल विस्फोट का सच।
1: महातबाही के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। बारिश और भूस्खलन का प्रकोप, दहशत में आए लोग, तबाही बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। भयंकर भूस्खलन जारी, इमारतें हो रही हैं धराशायी। 26 अगस्त की महातबाही से नेपाल अभी उबरा भी नहीं था कि एक और विनाश लीला ने दस्तक दे दी है। 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने और तिब्बत नेपाल सीमा पर झील फटने से जो महातबाही मची उसमें 1450 लोगों की मौत हो गई और 5500 लोग अब भी लापता हैं। अब फिर से नेपाल में जल विस्फोट हुआ है और 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 अगस्त को जिस भोटे कोशी नदी ने नेपाल के 3 जिलों को मलबे में मिला दिया, अब नारायणी नदी नेपाल में दहशत बनकर उफन नहीं है। आपको बता दें कि भोटे कोशी तिब्बत से निकलती है, नेपाल में इसे त्रिशूली नदी कहते हैं, जो आगे बढ़ते हुए नारायणी नदी में समा जाती है और नेपाल से आगे निकलकर नारायणी नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसे गंडक नदी कहते हैं। अब नेपाल में दो तरह से तबाही मची है। एक तो मूसलाधार बारिश के चलते नारायणी नदी ने अपना फैलाव बढ़ा दिया है, जिससे उसकी जद में आने वाले इलाकों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। दूसरा, भयंकर बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, यानी जमीन दरक रही है। और अब इस वीडियो को देखिए कैसे ये दो मंजिला इमारत महज 7 सेकंड में धराशायी होकर नारायणी नदी में समा जाती है। अब इसको दूसरे एंगल से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले भूस्खलन के चलते इमारत के नीचे से पूरी मिट्टी निकल गई और देखते ही देखते पूरी 2 मंजिला इमारत नदी में समा गई। भयंकर भूस्खलन के कहर की दूसरी तस्वीर भी देखिए, कैसे इस मकान के नीचे से जमीन खिसकी तो नींव समेत पूरा मकान उखड़ गया और गिरकर कई फीट दूर तक जा पहुंचा। और अब ये तीसरा वीडियो देखिए कैसे भूस्खलन के चलते एक बस मकानों पर जा गिरती है। और चौथा वीडियो और भी घातक है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पहाड़ ही बह गया। नेपाल के मुस्तांग जिले के लेते के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। बाढ़ और भूस्खलन से 747 परिवार सीधे प्रभावित हुए हैं। इनमें 143 मकान पूरी तरह और 51 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 270 अन्य घर खतरे की जद में हैं। लगातार बारिश के कारण नेपाल की कई नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल के देवघाट में नारायणी नदी रविवार सुबह 7:45 बजे 11 मीटर पर बह रही थी, ये खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। अधिकारियों ने नदी का जल स्तर और बढ़ने की आशंका जताई। बाढ़ का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में बिजली उत्पादन रोकना पड़ा है। सिर्फ बारिश और भूस्खलन ही नहीं बल्कि नेपाल के मनांग जिले के नार्पू क्षेत्र में 7126 मीटर ऊंचे हिमलुंग हिमाल पर हिमस्खलन यानी बर्फीली चट्टान ढह गई, जिसमें 9 पर्वतारोहियों और उनके 13 सहयोगी लापता हो गए। अब तक 2 पर्वतारोहियों के शव बरामद हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए काठमांडू से हेलीकॉप्टर भेजा गया था लेकिन खराब मौसम के कारण उसे भी वापस लौटना पड़ा। अब सवाल यह है कि अचानक से नेपाल में फिर से क्यों विनाश लीला मची है? क्या हिमालय में कोई बड़ी हलचल हुई है?
2: Climate change does not recognize borders.
1: क्यों जलवायु परिवर्तन से डरे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री? नेपाल में जल विस्फोट 2.0 का सच क्या है? आपको बता दें कि पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया। बालेन शाह ने भारत और चीन के बीच एक साझा अलर्ट सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि बाढ़ और ग्लेशियर से आने वाली आपदाओं का पहले से पता चल सके, जिसके तहत भारत, चीन और नेपाल आपस में सैटेलाइट से मिली जानकारी शेयर करेंगे, खतरनाक ग्लेशियर झील पर नजर रखेंगे, बाढ़ की पहले सूचना देने वाला सिस्टम मजबूत करेंगे, आपदा आने पर राहत बचाव में साथ काम करेंगे।
2: We propose that we establish Himalay climate resilience mechanism led by Nepal, India and China. Through this mechanism, let us share satellite data and expertise. Let us monitor dangerous glacial lakes. Let us strengthen joint early warning systems. And when disaster strikes, let us coordinate assistance across borders.
1: 26 अगस्त 2026 को तिब्बत नेपाल सीमा के पास लांगटांग लिरुंग चोटी पर करीब 5000 मीटर की ऊंचाई से ग्लेशियर और चट्टान का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे घाटी में गिर गया। इतनी ऊंचाई से लाखों टन मलबा जब नीचे गिरा तो घर्षण और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के कारण भारी गर्मी पैदा हुई, जिससे बर्फ तुरंत पानी में बदल गई, जिससे बारिश भी भयंकर हुई। और अब महातबाही के एक महीने बाद एक बार फिर नेपाल डरा हुआ है। मूसलाधार बारिश और भयंकर भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। वैसे तो इसे जाते हुए मॉनसून का प्रकोप बताया जा रहा है लेकिन हिमालय में जो खतरा पल रहा है नेपाल उससे बेहद डरा हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल में वाटर बम फूटा तो बिहार में भी तबाही मच गई। एक तो बिहार पहले से बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, ऊपर से नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ का पानी अब बिहार में भी जल तांडव मचा रहा है। जहां बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अब गंडक नदी अपना प्रकोप दिखा रही है, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर पूरा डूब गया है। तो आइए बिहार से आपको बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं।
1: ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर अब बिहार के वाल्मीकि नगर पर भी टूट पड़ा है। नेपाल की नारायणी नदी बिहार में आकर गंडक बनती है और गंडक कैसे उफन रही है वो आपको दिखाते हैं।
3: इस वक्त हमारी मौजूदगी वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज पे है और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये वाल्मीकि नगर गंडक बैराज है जहां से जो नारायणी नदी है वो गंडक बन करके आगे की तरफ बढ़ती है। एक तरफ डाउन स्ट्रीम है जो हमारे कैमरे के फ्रेम में है, जहां से पानी बिहार के अलग अलग जिलों में जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अप स्ट्रीम है जो

0: वो खुले हुए हैं और सामने जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो त्रिवेणी है, नेपाल का इलाका। और इस बैराज की सड़क को जब हम पार करते हैं तो सामने हम नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। और यही देखिए है तस्वीर इस वक्त, तमाम जो बैराज के फाटक हैं वो खुले हुए हैं और इनके जरिए ही पानी नीचे से बहता हुआ अब आगे की तरफ जा रहा है।
1: वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो जैसे पूरे इलाके में बाढ़ आ गई।
0: इस वक्त हम वाल्मीकि नगर के ही लक्ष्मीपुर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि जो जनजीवन है वो किस तरह से प्रभावित हुआ है। हमारे ठीक बगल में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये छोटी सी इमारत, ये दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र है जो बंद पड़ा है इस वक्त, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो यहां अंदर तक जा चुका है। अमूमन आंगनबाड़ी केंद्र में जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से गतिविधियां होती हैं वो होती हैं, बच्चों को पोषण आहार और बाकी चीजें दी जाती हैं, लेकिन अब सब कुछ थम गया है और वजह बनी है ये बाढ़। और जहां तक नजर जाती है देखिए ये घर डूब चुके हैं और तमाम लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और ये पानी आसानी से निकलने वाला भी नहीं है।
1: एक तो बिहार पहले से ही बाढ़ से त्रस्त है, इस साल बिहार में 50 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है, तो 15 जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई और इस बाढ़ में 10,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। और अब नेपाल की नारायणी नदी में आई बाढ़ के चलते बिहार में गंडक नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालात ये है कि पश्चिमी चंपारण में बना इमरजेंसी एयरपोर्ट भी डूबा है।
0: इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट पे, ये रनवे और हेलीपैड वाला बोर्ड आपको बता रहा होगा कि दरअसल यहाँ पे जो छोटे विमान हैं उनकी लैंडिंग होती है और साथ ही साथ जो चॉपर बिहार सरकार का या फिर दूसरे मुश्किल स्थितियों में जो लैंड करना होता है वो यहीं पे लैंडिंग उसकी होती है। और ये वाल्मीकि नगर पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त जलमग्न हो चुका है और जो गंडक नदी का पानी बढ़ा उसके बाद ये हालात पैदा हुए हैं। हमारे सामने जो ये स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है ये दरअसल एक छोटे प्लेन के उतरने के लिए रनवे है और यहीं पर बिल्कुल ठीक हमारे दाहिनी तरफ जो स्पेस दिख रहा है वो चॉपर लैंडिंग के लिए हेलीपैड बना है। सामने वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का कंट्रोल रूम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हर तरफ यहाँ पानी है और फिलहाल स्थिति ये है कि अगर इमरजेंसी में भी किसी चॉपर को लैंड करना होगा तो NH या फिर किसी दूसरी ऊंची जगह पर लैंड करना होगा, वो वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि घुटने भर पानी यहां पर इस वक्त है वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट पे।
1: बिहार का हर साल 73% उत्तरी हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। नेपाल से आने वाली नदियां कोसी, गंडक और बागमती बिहार में ही तबाही मचाती हैं। ऐसे में बिहार में बाढ़ के हालात का जायजा लेने CM सम्राट चौधरी भी निकले हैं। जी हां, सम्राट चौधरी ने मोतिहारी में गंडक नदी के बढ़े हुए जल स्तर का मुआयना किया। शशि भूषण, पश्चिमी चंपारण आज तक।
2: खबर महाराष्ट्र की, हमने 24 सितंबर को सूखे की मार झेल रहे किसानों की गुहार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाई थी। हमारी दस्तक का असर हुआ, किसानों की मांग महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुन ली, मान ली। 26 सितंबर को महाराष्ट्र के 32 जिलों की 265 तहसीलों में सरकार ने सूखा घोषित कर दिया। ये महाराष्ट्र के कुल 358 तहसीलों का करीब 74% हिस्सा है। दस्तक किसानों की आवाज बना तब जाकर महाराष्ट्र की सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हरकत में आए। सरकार के ऐलान से महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आर्थिक मदद के तौर पर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के निर्णय से रोते हुए किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।
1: आज तक की दस्तक का बड़ा असर, महाराष्ट्र के किसानों की आवाज बना दस्तक। बत्तीस जिलों में सरकार ने सूखा घोषित किया।

0: सूखे से जूझते महाराष्ट्र के किसानों को राहत। बारिश की कमी का कहर महाराष्ट्र के किसानों पर टूटा। मॉनसून तो आया लेकिन बारिश का इंतजार करते करते खेतों में सोयाबीन और कपास की फसल तबाह हो गई। फसल बर्बाद हुई तो किसानों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। किसानों की यही मांग थी कि सरकार सूखा घोषित करे। हमने किसानों की गुहार को महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाया।
1: आपके आंसू क्यों फूटा है, क्या इतना संकट आया है
2: साहब? स्कूल में जाने को जो मेरे बच्चों स्कूल में जाते, मेरे बच्चे के वास्ते स्कूल में जाने को पैसे नहीं मेरे पास। इसके वजह से मेरे पास 5 एकड़ खेती है, पूरा खेत बर्बाद हो गया मेरा। अब रोटावेटर करने को उसमें मजदूर बोलने को भी पाया नहीं, कुछ पैसा नहीं मेरे पास।
3: मांग सरकार की सबको, मांग सबको देना है हेक्टेयरी।
4: क्या मांग के
3: है? हेक्टेयरी 50-60 हजार देना
4: जल्दी से।
3: हाँ, जल्दी से जल्दी देना। अभी पोला चला गया, लक्ष्मी महालक्ष्मी का मौसम चला गया, अभी अभी और सन आने वाले है सब।
0: किसानों की पीड़ा पर हमारी दस्तक का असर हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूखे का ऐलान किया। मतलब किसानों के भविष्य पर छाया अंधेरा अब छट सकता है, क्योंकि खरीफ की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रबी की फसल बो सके।
5: आज हम सोलापुर में पानी के लिए तड़पते और तरसते किसानों की आवाज महाराष्ट्र की सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाएंगे। किसानों का आरोप यही है कि बीते 25 वर्षों से पूरा का पूरा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन जिम्मेदार और सरकार सुध लेने को तैयार नहीं। चुनाव के दौरान नेता आते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक तुलसी गांव में पानी नहीं पहुंचा। जिम्मेदारों की सरकार की अनदेखी से तंग आकर किसानों ने अपने घरों पर पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसमें लिखा है ये गांव बिकाऊ है। सवाल यही है कि सोलापुर के तुलसी गांव के लोगों की प्यास बुझाने में महाराष्ट्र की सरकार नाकाम क्यों है?

0: पोस्टर की शक्ल में सोलापुर के तुलसी गांव का दर्द घरों के बाहर कुछ यूं चस्पा है। इन पोस्टरों में गांव वालों ने मराठी में लिखा है, तुलसी गांव बिकाऊ है। गांव वालों के पास सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद है, क्योंकि कोई कितना अन्याय सह सकता है। मतलब यही है कि गांव वालों ने खुद पोस्टर लगाए कि गांव बिकाऊ है, क्योंकि यहां न तो पीने का पानी है और न ही फसल के लिए सिंचाई की कोई योजना।
1: मैं अभी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तुलसी में हूँ कि जो तुलसी गांव जो है वो माड़ा क्षेत्र में आता है। मेरे पीछे यहाँ तुलसी का जो ग्राम पंचायत का जो भवन है वो है, और वहाँ यहाँ के जो ग्रामस्थ है उन्होंने एक बोर्ड लगाया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तुलसी गांव है, ये गांव बेचना है।
0: दरअसल बीते 25 सालों से तुलसी गांव की सरकार से मांग यही है कि पानी के संकट से निजात दिलाए। तारीखें बदली, सरकारें बदली, लेकिन तुलसी गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। जिम्मेदारों की अनदेखी से आजिज आकर तुलसी गांव के लोगों को गांव बिकाऊ है वाले पोस्टर लगाने पड़े।
2: हमारा गांव बेचना है, क्योंकि हमारे पास अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो पानी की समस्या है ना, ये हमारी पिछले 40 सालों से है। हमारी अभी तीसरी पीढ़ी है जो कि पानी के लिए लड़ रही है। हमारा भारत देश आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या हमारा भारत देश सच में आजाद है? हम आज भी पानी के लिए तड़प तड़प कर सरकार से दुआ मांग रहे हैं कि सरकार हमें पानी दो, हमारे हक का पानी दो।
0: किसान फसल के लिए पानी नहीं जुटा पाता, खेतों में सिंचाई नहीं होने से फसल नष्ट हो गई। आलम यह है कि गांव वालों के लिए पानी का इंतजाम करना रोज किसी जंग जीतने जैसा है। देखिए, पूरा परिवार काम धंधा छोड़कर कुछ यूं कई किलोमीटर दूर से पानी साइकिल पर ढोने को मजबूर है।
1: कहाँ से पानी लाते हो?
3: अभी 2 किलोमीटर से आएगा।
1: वैसे?
3: हाँ, से।
1: उजनी डैम तो इधर नजदीक है, फिर भी ऐसी क्यों परिस्थिति?
3: बहुत परिस्थिति देख रहे, किसको बोलने का? तुमको बोलेगा, इसका नाम लेगा तो बोलेगा मेरा नाम क्यों लेगा? इसका नाम भी नहीं लेने का, भगवान तो जानेगा ना।
1: अभी ये गांव बेचने का बोर्ड लगाया, क्यों लगाया?
3: बेचने का है गांव, गांव बेचने के बाद तो कोई नहीं आएगा ना उधर।
1: कौन लेगा गांव?
3: कोई भी लेके जाओ,
1: सिर्फ पानी दे दो हमको।
3: हाँ, पानी दे दो हमको।
0: गांव वालों का आरोप है कि पिछले 25 सालों में कई आंदोलन हुए, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रहेगी। तुलसी गांव को अपने हाल पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। पानी की किल्लत ऐसी है कि गांव के नौजवानों के सामने पीने के पानी के साथ साथ शादी का संकट है।
4: इसके लिए पानी नहीं, इसके लिए लिया ना, पानी नहीं इसके लिए ले लिया। पानी होता है तो नहीं देते ना, लेते ही नहीं निर्णय।
1: क्या निर्णय लिया है? गांव की क्या परिस्थिति है?
4: गांव की बिकट, एकदम बिकट परिस्थिति है सर, पूरा गांव का बिकट परिस्थिति है। जिस गांव में 40,000 लीटर संकलन दूध का डीली होता था, अभी 10,000 रुपया आ रहा है। वो इसके लिए वो लोग बिकने के लिए तैयार हो गए। गांव
1: गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही क्या?
4: वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव में पानी नहीं, इसके लिए कोई लड़की देना रहे गांव में। पानी नहीं बोलते, पानी नहीं तो क्या हम कैसे लटकी देगा? लड़की हमारा पानी किधर से पिएगा?
0: बड़ी बात यह है कि उजनी बांध से साल 2000 से सेना माढ़ा उपसा जल सिंचाई योजना शुरू हुई, लेकिन जल सिंचाई योजना से तुलसी गांव को नहीं जोड़ा गया।
5: यहाँ नियर अबाउट 1 किलोमीटर से यहाँ कैनाल जा रहे हैं, सबकी खेती अच्छी फसल आ रही है, लेकिन हमारे गांव में तो पशुधन को अभी चारा भी नहीं है, हमें पीने के लिए पानी भी नहीं है, और हमारे हाथ को काम भी नहीं है।
0: आरोप यही है कि गांव को सिंचाई योजना से कागजों में जोड़ दिया गया, लेकिन हकीकत में योजना का पानी आज तक तुलसी गांव नहीं पहुंचा है।
6: हम चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति है इस देश में, तो अडानी अंबानी, वो हमारे गाँव की प्राइस सिर्फ जल है, पानी है। कोई भी भाई का लाल, हमें पानी दे दो, जल दे दो और हमारा गांव आप ले लो, ऐसे हम दरखास्त करते हैं आपसे।
0: अगर तुलसी गांव के लोगों ने गांव बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं, तो इसके जिम्मेदार हैं विधायक माढ़ा अभिजीत पाटिल, पार्टी एनसीपी शरद पवार, सांसद माढ़ा धैर्यशील मोहिते पाटिल, पार्टी एनसीपी शरद पवार, जल संसाधन मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र सरकार, सोलापुर के जिला कलेक्टर एस कार्तिकेयन। एक तरफ स्थानीय विधायक सांसद और कलेक्टर आंखें बूंद कर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ जिस मंत्री की जवाबदेही है वो भी तुलसी गांव को भगवान भरोसे छोड़ कर बैठे हैं।
7: दशक में एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे यूक्रेन ने रूस में उतारी रोबो आर्मी, क्या होती है ये रोबोट आर्मी, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: अब पे वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मेरे पास एक आइडिया।
3: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
8: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
9: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
4: आई लाइक दिस ओनली।
10: यार लोन भूल गया मैरी।
11: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
12: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
12: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
13: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
10: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
14: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
15: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
14: छक्का?
15: सब कैशलेस हो गया है।
14: हाँ
16: और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
19: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
20: जीके मैक्स।
21: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
20: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
21: जेके वॉल मैक्स
20: बेस्ट पेंट।
21: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
22: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
23: Oof! ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
24: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
23: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
25: In association with
26: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
27: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
28: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम्स।
29: नेपाल और बिहार से सटे यूपी के महाराजगंज में भी बाढ़ का पानी लोगों को डरा रहा है। गंडक नदी में अचानक छोड़े गए पानी की वजह से महाराजगंज के निचले इलाके डूबने लगे हैं। नेपाल से आया पानी लोगों के घरों में घुस गया है। महाराजगंज जिले में 6 गांव गंडक की बाढ़ की चपेट में हैं। जिन गांवों में बाढ़ आई है उनमें सोहगी बरवा, शिकारपुर, भोथा, टेलफाल, गेढ़हवा शामिल है। नेपाल ने नारायणी नदी में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ रहा है और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर 7 लाख क्यूसेक के करीब पहुंचेगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है।
0: 3 लाख के आसपास जब पानी आया था तो सूगी वरवा समेत हमारी जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, शिकारपुर, बुतहा और 8 हमारे राजस्व ग्राम हैं, वहाँ पे पानी लग गया है। और लगभग सूगी वरवा में लगभग 2000 और हम कहें शिकारपुर और बुतहा में लगभग 75-75 घर, तो लगभग 4500 के आसपास हमारी आबादी से प्रभावित है। उन सबको बाढ़ शरणालय में भेजा जा चुका है।
29: ये यूपी का जिला महोबा है जहां पिछले कुछ दिनों में इतनी बरसात हुई कि छोटे छोटे नाले भी उफान पर आ गए। कुलपहाड़ का बेला सागर तालाब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। महोबा में बहुत कम ऐसा होता है जब बेलासगर में उफान आए, लेकिन सितंबर की मूसलाधार बरसात ने महोबा को जलमग्न कर दिया। बेला सागर के तट पर बना मंदिर भी पानी में डूब गया। खौफनाक लहरें निचले इलाकों को डरा रही हैं। बावजूद इसके लोग बेला सागर के तट पर पहुंच रहे हैं, वहां से फूटे झरनों को निहार रहे हैं। हालांकि पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। महोबा की दुनई नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दुनई नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है। महोबा के शहरी इलाके में भारी बारिश की वजह से कई सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। राजकीय स्कूल भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। महोबा में दुनई नदी के आसपास के इलाकों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग डर के साय में हैं, क्योंकि दुनई नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। महोबा में भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई तो कई इलाकों में मकान भी। अब जरा उन्नाव की तस्वीरें भी देखिए। 36,000 करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे की हालत ये है कि लोग वहाँ मछली पकड़ने पहुँच गए। उन्नाव के सोनिक व शीरतगंज एग्जिट पर जलभराव हो गया है, जिसके बाद आसपास के लोग वहाँ जाल डालकर वहाँ मछली पकड़ने पहुँच गए। एक्सप्रेसवे पर मछली पकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्नाव में पिछले कुछ दिनों में तेज बरसात हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिहायशी इलाकों के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे एग्जिट पर भी पानी भर गया। कार्यदायी संस्था के लोग पानी निकालने की कोशिश में हैं, कई पंप लगाए हैं, लेकिन बारिश कम नहीं हो रही, इसलिए स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब जरा यूपी की राजधानी लखनऊ की भी तस्वीर देखिए। इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास सड़क धस गई है। ये सड़क लगभग 100 मीटर लंबी है। इकाना स्टेडियम के पीछे वाले हिस्से को जोड़ती है, लेकिन बारिश में पूरी रोड धस गई। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे यूक्रेन ने रूस में रोबोट आर्मी को उतारने का दावा किया, और तो और रोबोट और ड्रोन की मदद से रूस के करीब 3,000 सैनिकों को मारने का भी दावा किया जा रहा है। तो आइए दिखाएं आपको आखिर ये रोबोट आर्मी क्या है, और यूक्रेन ने इसे युद्ध में उतारने का प्लान क्यों और कैसे तैयार किया, और क्या रूस के पास यूक्रेन की इस रोबोट आर्मी का कोई तोड़ है।
3: और यूक्रेन की जंग में रोबोट आर्मी की एंट्री, ड्रोन हमलों के बाद अब रोबोट सेना तबाही मचाने उतरी। यूक्रेन ने जंग में बारूद से लैस रोबोट सैनिक उतारे। यूक्रेन का दावा, रोबोट आर्मी ने रूस के 3,000 सैनिक मारे। रूस यूक्रेन की जंग अब सबसे आधुनिक हथियारों से होगी। कहते हैं कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश लेकर आता है। इस वक्त दो महायुद्धों ने दुनिया भर के आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर जबरदस्त हलचल मचा रखी है। हर दिन विनाश लीला देखने को मिल रही है। इसकी वजह से देशों के आपसी रिश्ते बदल रहे हैं, भविष्य की रणनीति बदल रही है, और तेजी से बदलती तकनीक की वजह से बदल रहा है युद्ध लड़ने का तरीका। सैकड़ों मील दूर से एक ड्रोन या मिसाइल आते हैं और पल भर में सब कुछ तबाह कर डालते हैं। लेकिन अब ड्रोन ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध में रोबोट आर्मी उतारने का दावा कर दिया है। जी हां, यूक्रेन ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुसाइड जमीनी रोबोट का इस्तेमाल कर रूसी सेना पर हमला करने का दावा किया है। यूक्रेन की थर्ड आर्मी कॉर्प्स के मुताबिक ऑपरेशन विवाल्डी के तहत रोबोट और ड्रोन की मदद से रूस के करीब 3,000 सैनिकों को मार गिराया गया है। साथ ही पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स क्षेत्र में 5 गांवों और 3 बस्तियों पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया गया है। पिछले तकरीबन 4 साल से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग में ये सबसे नए और आधुनिक हथियार इस्तेमाल करने का दावा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक ये अभियान मई में शुरू हुआ था और सितंबर के आखिरी सप्ताह में पूरा हुआ। यूक्रेन की सेना ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। इस दौरान रोबोट ने 15,700 से ज्यादा मिशन पूरे किए। इस ऑपरेशन में 4 पहियों वाले ऐसे रोबोट इस्तेमाल किए गए जिनमें विस्फोटक भरे थे। बड़े ड्रोन इन्हें रूसी सेना की सीमा के 14.5 किलोमीटर अंदर तक ले जाकर छोड़ते थे। इसके बाद ये रोबोट जमीन पर चलते हुए रूसी सैनिकों के ठिकानों तक पहुंचते और हमला करते। रोबोट में लगे कैमरों से आसपास के इलाके पर नजर रखी जाती थी। इनकी मदद से रूसी सेना के कमांड सेंटर, सैनिकों के ठिकाने, हथियार और सामान रखने की जगहों और नदी पार करने के रास्तों पर हमले किए गए। इस रणनीति का मकसद यूक्रेनी सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना रूसी ठिकानों पर हमला करना था। थर्ड आर्मी कॉर्प्स के कमांडर जनरल आंद्री बिलेत्स्की के मुताबिक यूक्रेन दुनिया में पहली बार ड्रोन से रोबोट को दुश्मन के इलाके में उतारकर हमला कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये सुसाइड रोबोट कैसे काम करते हैं। सुसाइड जमीनी रोबोट छोटे वाहन होते हैं जो पहियों से चलते हैं। इन्हें दूर बैठकर ऑपरेटर रिमोट से चलाता है। इनमें विस्फोटक भरे होते हैं। ये दुश्मन के सैनिकों या ठिकानों तक पहुंचकर धमाका करते हैं। इन रोबोट की मदद से सैनिकों को बारूदी सुरंगों, गोलियों और दुश्मन के हमलों के बीच सीधे जाने का खतरा कम होता है। ड्रोन इन्हें दुश्मन के इलाके में पहुंचाते हैं और रोबोट में लगे कैमरों से ऑपरेटर आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता है। हालांकि ये रोबोट हर काम अपने आप नहीं करते। इन्हें चलाने और हमले करने का फैसला लेने में इंसान की भूमिका अहम होती है। आपको बता दें कि अब यूक्रेन पूरी रोबोट सेना बनाने की तैयारियों में जुट गया है। यानी इंसानों की जगह अब मशीनें युद्ध में घातक हमला करेंगी। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव ने 26 सितंबर को आर्मी ऑफ रोबोट्स प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इसके तहत युद्ध के मैदान में ऐसे रोबोट तैनात करने की योजना है जो जोखिम भरे काम कर सकें। प्रोजेक्ट में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जाएंगे। ये मशीन गन में गोलियां भरने, बैटरी बदलने और सेंसर लगाने जैसे काम करेंगे। इससे सैनिकों को हथियारों और दूसरे उपकरणों की देखरेख के लिए सीधे मोर्चे पर जाने की जरूरत कम हो सकती है। योजना में ड्रोन, जमीन पर चलने वाले मानव रहित वाहन यानी यूजीवी, कम लागत वाले इंटरसेप्टर और एआई की मदद से हमला करने वाले सिस्टम भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए यूक्रेन पश्चिमी देशों के इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और निवेशकों से सहयोग जुटा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन के अलावा रूस, चीन और इजराइल समेत कई देश जंग में इस्तेमाल होने वाले जमीनी रोबोट बना रहे हैं। रूस इनका इस्तेमाल हथियार और जरूरी सामान पहुंचाने जैसे कामों में कर रहा है। चीन ऐसे रोबोट बना रहा है जो हथियार ले जाने और मिलकर काम करने में सक्षम हो। वहीं इजराइल भी रोबोट से चलने वाले लड़ाकू वाहन विकसित कर रहा है। भारत भी इस तकनीक पर काम कर रहा है। डीआरडीओ एआई की मदद से चलने वाले रोबोट और मानव रहित जमीनी वाहन बना रहा है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर रोबोट सैनिकों से हमला करने का दावा किया है, यकीनन ये युद्ध को और भड़काने वाला है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर अमेरिका और ईरान युद्ध की। ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि बहुत जल्द वो ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने सीधा पलटवार किया। ईरान ने चेतावनी दी और कहा, अमेरिका ने नया हमला किया तो अब युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अब की बार ईरान की तैयारी अमेरिका को सीधी चोट पहुंचाने की है।

0: शांति समझौते की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच वार और पलटवार के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले की नई डेडलाइन तय की है, जबकि ईरान की तरफ से हुर्मुज संकट को खत्म करने का एक प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को भेजा गया था।
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too. But...
0: एक तरफ ईरान के साथ ट्रंप डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान पर हमले की धमकी देते हैं। सवाल यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है?
2: واکنش رو از رئیس جمهور آمریکا دیدیم، ولی هنوز از میانجی ها چیزی ما منتقل نشده. البته رئیس جمهور آمریکا هم خب حرفای ضد و نقیض متاسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
0: ایران نے بھی صاف کر دیا ہے کہ ٹرمپ کے بیان اور ان کی دھمکیوں کو اب گمبھیرتا سے نہیں لیتا ہے. اسی بیچ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای نے حزب اللہ کے پور مہا سچیو نصر اللہ کی دوسری برسی پر ایک سندیش کے ذریعے امریکہ پر نشانہ سادھا ہے. ईरान को कभी आत्मरक्षा के सीमित साधन विरासत में मिले थे, लेकिन तब से लेकर अब तक ईरान ने अपने दुश्मनों का सामना करने की जबरदस्त क्षमता विकसित कर ली है. आज ईरान इस्लामी जगत में ज्यादा प्रगति, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का स्तंभ बन चुका है. ईरान के वो दिन बीत चुके हैं जिन्हें दुश्मन फिर से वापस लाना चाहते हैं, और वो कभी दोहरा नहीं पाएंगे. जो लोग कभी ईरान पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, उन्हें आज देश की सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा. ईरान की रक्षा क्षमताओं ने पिछले दशकों की तुलना में संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया है. ईरान हर दिन हर क्षेत्र में कामयाबी के नए झंडे गाड़ रहा है, जबकि हमारे दुश्मनों को हार और अपमान का सामना करना पड़ा है और आगे भी करना पड़ेगा. मुश्तबा की टिप्पणी का मतलब यही है कि अमेरिका की धमकियों से ईरान डरेगा नहीं, बल्कि आखिरी दम तक लड़ेगा. यही नहीं, सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने हुर्मुज से अमेरिकी सेना उल्टे पांव खदेड़ने का दावा किया है. दावे के मुताबिक ईरानी सेना का खौफ ऐसा है कि अमेरिकी सेना अरब सागर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है. खामिनई के बयान की टाइमिंग को देखें तो ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने हुर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट वाला पोस्टर जारी किया था.

0: बड़ी बात यह है कि हुर्मुज पर अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद ईरान की इजाजत के बिना किसी टैंकर का हुर्मुज से गुजरना असंभव है। हुर्मुज से गुजरने वाले टैंकर ईरानी सेना के निशाने पर हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है कि 14 सितंबर को हुर्मुज में ईरान के हमले में अमेरिका के 8 मरीन सैनिक जख्मी हो गए थे। वहीं बीते दिन ईरान ने हुर्मुज में अमेरिकी नौसेना की एक और ड्रोन पनडुब्बी को पकड़ा है। ये ड्रोन पनडुब्बी हुर्मुज में ईरान के बिछाए बारूदी सुरंगों का पता लगा रही थी। इसी दौरान ईरानी नौसेना ने अंडरवाटर ड्रोन को ट्रैक किया और पकड़ने का दावा किया है। इसे अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। जबकि अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक हुर्मुज में उनका कोई अंडरवाटर ड्रोन नहीं पकड़ा गया है। हालांकि ईरान के टॉप सैन्य कमांडर मानते हैं कि अमेरिका अपनी हार पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। लेकिन अमेरिकी सेना की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान तैयार है।
1: अमेरिका इस क्षेत्र में अच्छी स्थिति में नहीं है, यह एक तथ्य है। अगर अमेरिका वास्तव में मजबूत स्थिति में होता तो वह हालात बदलने के लिए इतनी कोशिशें नहीं करता। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए न तो फायदेमंद है और न ही उसकी इच्छा के मुताबिक है। इसलिए अमेरिका किसी तरह की सैन्य कार्रवाई, आक्रामक कदम या हमला कर सकता है, पर आज हम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार है। 28 फरवरी को युद्ध और हमले की शुरुआत के समय की तुलना में अब हम वास्तव में बेहतर तरीके से तैयार हैं। मनोबल, हौसले, मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास के साथ साथ हथियारों और सैन्य उपकरणों के मामले में भी हमारी तैयारी बेहतर है। हमने अपने सैन्य उपकरणों को अपग्रेड करने, अपनी सेना में नई प्रणालियों को शामिल करने और उनके साथ प्रशिक्षण लेने पर काफी काम किया है।
0: अमेरिकी धमकी के बाद ईरान ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। ईरान ने मिडल ईस्ट के देशों को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी दी है। दावा यही है कि ईरान पर हुए हमले में मिडल ईस्ट की जमीन का इस्तेमाल हुआ तो खाड़ी देशों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। हम इस क्षेत्र के सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो अमेरिका के इस दुस्साहस में शामिल न हो। अगर वो ईरानी विमानों को यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं तो उनके अपने हवाई अड्डों पर भी उड़ानें नहीं हो पाएंगी। आप हमारे मित्र हैं, लेकिन आपको अमेरिका की सेना में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको युद्ध को फैलने से रोकना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की संभावना कम बची है क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है और ईरान अपनी शर्तों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो हमला करेंगे, तो ईरान की माने तो किसी दबाव में समझौता नहीं बल्कि महायुद्ध होगा।
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: No. किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो। और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
4: ईरान ने हॉर्मुज के बाद अब युद्ध का दायरा हिंद महासागर तक फैलाने की चेतावनी दी। आखिर ईरान का प्लान हिंद महासागर क्या है, आइए ये समझते हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी से। सुमित बताइए। ईरान ने हॉर्मुज के बाद अब युद्ध का दायरा हिंद महासागर तक फैलाने की चेतावनी दी। आखिर ईरान का प्लान हिंद महासागर क्या है, आइए ये समझते हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी से। सुमित बताइए।
5: बिल्कुल सही, डर इसी बात का है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है, अगर ये जंग बढ़ती है तो इसका दायरा भी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका भले ही ये बात कह रहा हो कि वो तैयारियां कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो इन सभी टाइम को लेकर नई तैयारियों में लगा हो, लेकिन जब आप ईरान की बात करते हैं, ईरान की बात आप देखिए कि ईरान ये बात सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, ईरान ने वो काबिलियत, वो तैयारियां भी कर रखी हैं। अगर इंडियन ओशन तक या फिर हिंद महासागर तक ये चीजें पहुंचती हैं तो ना सिर्फ अब ये कह सकते हैं एशिया के कई देशों तक बल्कि यूरोप के कई देशों तक ये वॉर पहुंच जाएगी। अभी ताजा हालात में देखिए, ईरान के पास जो काबिलियत है, चाहे वो उनके अंडर वाटर ड्रोन हो, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, और लगातार उनके जो ड्रोन यानी जो नॉर्मल यूएवीज हैं, वो ये काबिलियत रखते हैं कि वो इंडियन ओशन तक किसी भी टैंकर को या किसी चीज को अटैक कर सके। लेकिन क्या इसे रोक पाने के लिए अमेरिका के पास पुख्ता मैकेनिज्म है? अमेरिका चाह कर भी वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी बानगी है, उसके एग्जाम्पल हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गल्फ ऑफ ओमान में भी देख लिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, ये ईरान का साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल एक तरीके से तरीका भी हो सकता है, क्योंकि वो भी अमेरिका को दिखाना चाह रहा है कि अगर आपने हम पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाला, अगर आपने हम पर लगातार इसी तरीके से दबाव बनाते रहे, तो फिर हम भी आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ये काबिलियत हमारे पास है, और इंडियन ओशन तक इस जंग का पहुंचने का मतलब है पूरी दुनिया के अंदर सीधे तौर पर इसका असर देखे जाना, क्योंकि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, रेड सी हो, लेकिन अगर तीसरा मोर्चा खुल जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कंसर्न होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नहीं है, ये मैसेज इनडायरेक्टली उन देशों को भी है जो लगातार मक्का पैक्ट के तहत लगातार एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हूती के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या वो सऊदी के साथ खड़े हो रहे हैं। ये उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है।
4: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एकदम दो तीन झुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो पीएमटी बाहर वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
6: पापा सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया
6: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू
8: मिनट चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
11: In association with
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: is a crime. Gyanesh Kumar should turn approver.
1: Election Commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
2: जब तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी गणेश कुमार की तब तक हम लोग चुप बैठने वाले हैं.
3: Completely illegal and unethical.
4: एक खुलासा हुआ और विपक्षी दलों को वोट चोरी पर फिर से प्रहार करने का भरपूर मौका मिल गया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक सबके सब चुनाव आयोग पर टूट पड़े हैं. लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग के सवाल पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या क्षेत्रीय हितों को अलग रखकर साझा मोर्चाबंदी हो पाएगी? क्या विपक्ष आपसी मतभेद को भुलाकर एक मंच पर आ पाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष की एकजुटता कई मोर्चों पर बिखरी और दरकी नजर आ रही है. यूपी में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के सवाल पर खींचतान है. पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है और वहाँ भी कांग्रेस आप में तीखी तनातनी है. यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर किस कदर घमासान मचा है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अखिलेश ने अपनी रथ यात्रा रायबरेली से शुरू की जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है. रायबरेली में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नई टेंशन की वजह बन गई.
5: चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है. अखिलेश जी रायबरेली या मिठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है. पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है. राहुल गांधी आज जिस तरीके की बात आम आदमी को उठा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने पहले दिन से जिस तरीके से सीरीज के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताई चुनाव आयोग की सत्यता कैसे चोरी करा रहे हैं, सिवाय राहुल गांधी के अलावा मजबूती के साथ इस बात को किसी ने नहीं उठाया.
6: जहां जहां कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, सभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता उन सभी के साथ खड़े हैं बड़ी मजबूती के साथ.
7: क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जाने के पीछे वजह भी यही है कि जो विधायक राहुल लोधी के साथ हुआ उसको लेकर?
6: जहां जहां भी पीडीए का अपमान होगा वहां वहां समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी.
4: इससे पहले गठबंधन के सवाल पर भी दोनों दलों के नेता खुलकर एक दूसरे से टकराते दिखे. ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या 30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की साझा बैठक में कोई बात बन पाएगी? ये बैठक इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद विपक्ष की साझा रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है और अभी तक की खबरों के मुताबिक इस बैठक में जिन नेताओं के आने की पूरी संभावना है उनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एमए बेबी के आने की उम्मीद है. अखिलेश यादव नहीं आ रहे. तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है.
8: नहीं, हमारा अलग कार्यक्रम है, वो अपने आप पता लग जाएगा कहाँ जाएंगे. ये इंडिया गठबंधन की बैठक है.
4: विपक्ष के लिए अच्छी खबर ये है कि सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने ममता बनर्जी से बात की है. दोनों दल पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन नए हालात में नई पहल हुई है. एमए बेबी ने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है. अगर इतना सब होने के बाद भी 30 सितंबर की बैठक से बड़े नेता दूर रहते हैं तो विपक्षी एकता की कोशिश एक बार फिर धराशायी हो सकती है. आज तक ब्यूरो.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी. अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ. आप देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल गांधी का नया दावा, दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी के लगाए आरोप, यमुना किनारे वाले स्टेट का दौरा किया, बोले 727 लोगों का काटा गया था नाम। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एनसीआर, आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला का, पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए हैं फ्रस्ट्रेट, जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा हरसिमरत कौर का तंज, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी में बना तब्दील हुआ इलाका, सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई। उनकी बहू शालू को आखिरकार 20 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई। शालू सोमवार शाम कानपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गई। दरअसल शालू की रिहाई का आदेश कानपुर की एक कोर्ट ने दिया था। खुद कानपुर पुलिस ने शालू की रिहाई की अदालत से सिफारिश की थी, क्योंकि विनीत मिनोचा का असली कातिल शालू नहीं बल्कि उसका पति सुब्रत था। बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के पूरे 22 दिन जेल में रहने के बाद 28 सितंबर यानी सोमवार की शाम शालू कानपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गई। अब शालू आजाद है। खुद कानपुर पुलिस ने उसकी आजादी की सिफारिश अदालत से की थी। खुद कानपुर पुलिस ने अदालत के सामने यह कबूल किया कि कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के कत्ल में या कत्ल की साजिश में शालू का कोई रोल नहीं था। उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले, इसीलिए उसके खिलाफ जांच बंद कर दी गई है। कानपुर पुलिस ने ही शालू को रिहा करने की अदालत से सिफारिश की थी। पुलिस ने कोर्ट में 25 सितंबर को ही शालू की बेगुनाही के दस्तावेज सौंप दिए थे, लेकिन शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के चलते शालू की रिहाई 2 दिनों के लिए टल गई। पर सोमवार को कोर्ट ने शालू को फौरन रिहा करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद शालू देर शाम जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद शालू ने हमारे सहयोगी सिमर चावला से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान शालू ने बताया कि वो अब भी हैरान है कि उसके पति सुब्रत ने ऐसा क्यों किया। शालू ने खुद पर लगे तमाम इल्जामों, अपने ससुर विनीत मिनोचा के कत्ल और घरेलू नौकर विशाल के बारे में तफसील से बातचीत की। शालू जेल से निकलने के बाद सीधे लखनऊ अपने मायके जाकर अपने बेटे से मिलना चाहती है।
1: विनीत मिनोचा हत्याकांड में जिस शालू को पुलिस ने मास्टरमाइंड माना, जांच में सामने आया कि वह पूरी तरह निर्दोष है, जिसके बाद 21 दिन बाद कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार शालू जेल से बाहर आई हैं और इस वक्त आज तक से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं। शालू, बहुत चुनौतीपूर्ण दिन आपके लिए रहे हैं 21 दिन, जिस तरीके की खबरें चली जिसमें हम भी शामिल हैं। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं हम माफ़ी मांगना चाहेंगे जिस तरीके से हम लोग ने आप लोग के ऊपर खबर चलाई, हालांकि वो सिर्फ जो पुलिस द्वारा तथ्य दिए गए थे उस पर आधारित थी, लेकिन तब भी जो आपके ऊपर बीता वो आप समझ सकती हैं। फिलहाल कैसा महसूस कर रही हैं जेल से आने के बाद, क्योंकि मिक्स फीलिंग्स होगी, आप तो जेल में हैं और आपके पति जो हैं वो अंदर हैं।
2: अभी तो मैं बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं हूँ, बट बहुत खुशी है मुझे कि मैं अपने परिवार और अपने बच्चे से मिलने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे अपने बच्चे से समय मिलने की उत्सुकता हो रही है।
1: ये जब पूरा मामला सामने आया, आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया था, ये इल्म था कि सुब्रत जो आपके पति हैं वो पूरे मास्टरमाइंड निकलेंगे या फिर इस तरीके की जो प्लानिंग है इनके द्वारा की जा रही है?
2: नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि सुब्रत या कोई, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये सब क्या हुआ है। मेरे लिए तो बिल्कुल शॉकिंग सिचुएशन थी जो हुआ है, जो भी मेरे साथ हुआ है, जैसे भी मुझे मेरे साथ हुआ है, मुझे बिल्कुल ही, मेरे लिए शॉकिंग था, बिल्कुल शॉकिंग था।
1: हमने देखा कि वो सीसीटीवी सामने आया जिसमें आप और वो उस पार्टी में थे, वहाँ जो आपकी बातचीत हो रही थी, क्या अब लगता है कि आप पूरे समय साथ में थे, पूरी बातचीत हो रही थी, लेकिन उस वक्त सुब्रत ने कुछ और ही प्लान कर रखा था? आपके मन में कहीं ना कहीं आपको कहीं इसमें विश्वास किया कि बोले शक हुआ कि क्या चल रहा है, या कहीं ना कहीं इसमें अंदेशा हुआ आपको?
2: नहीं, मुझे कोई अंदेशा नहीं था। हम लोग बाकी पार्टी में थे, बहुत इंजॉय किया, हम लोग वहाँ पे होस्ट थे तो जल्दी गए थे। कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ प्लान्ड है या कुछ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था किसी चीज़ का भी।
1: पुलिस के सामने आपकी जो है सुब्रत के सामने बैठा के पूछताछ भी हुई, उस वक्त क्या आपने पूछा सुब्रत से कि तुमने ऐसा क्यों किया या मुझे क्यों फंसाया? क्या उस वक्त सुब्रत ने आपको बोला जब पुलिस के सामने पूछताछ चल रही?
2: सुब्रत यही बोले थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बाकी मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी, तो वही बोल रहे थे बस कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ बस।
1: आपको कब एहसास हुआ कि इस पूरी घटना के पीछे सुब्रत का हाथ है? क्या पुलिस कस्टडी में या फिर जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, या आपको बीच में विश्वास हो गया था?
2: नहीं, मैं अभी भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं, यकीन नहीं हो रहा कि सुब्रत ने किया है ये सब, मुझे अभी भी नहीं यकीन हो पा रहा है बिल्कुल भी,
1: एक्सेप्ट नहीं कर पा रही।
2: नहीं कर पा रहे हम एक्सेप्ट.
1: हालांकि सुब्रत ने हमसे भी बात करी थी आज तक से, जब उनको रिमांड में लेके जाया जा रहा था, उन्होंने आज तक के कैमरा पर ये बताया कि उनको कोई मलाल नहीं है अपने पिता की मौत का. साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी, उनके अवैध रिश्ते थे दूसरी महिलाओं से. ये सुब्रत ने बताया आज तक पे ऑन रिकॉर्ड. आप कैसे देखती हैं, आप क्योंकि साथ में रही हैं, कैसे रिश्ते थे दोनों के बीच में, क्या बातचीत होती?
2: डिफरेंसेस ज़रूर थे दोनों के बीच में, बट कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना हद तक चीज़ें बेकार हो जाएंगी, इतने हद तक चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. कभी भी नहीं थॉट प्रोसेस. मैं पूरी कोशिश करती रहती थी कि घर में बैलेंस बना रहे, घर में सब कुछ ठीक रहे, मगर मुझे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी फैमिलीज़ में. मतलब मेरे सामने तो इतना जाहिर नहीं हुआ कभी, क्योंकि दुकान में क्या होता था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि दुकान से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था.
1: ये इश्यूज खुल कर सामने आए जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई, या महिलाओं के जो बात है ये सुब्रत ने उठाई हो कभी?
2: नहीं, मेरे सामने नहीं उठाई है कभी भी ऐसी चीज़. सुब्रत थोड़ा सीक्रेटिव थे तो इतना जल्दी वो शेयर नहीं करते थे.
1: आपको कहीं ना कहीं दुख है कि खुद तो चलो नहीं उनको करना चाहिए था, लेकिन आपका जो नाम लिया वो, उससे आपको दुख पहुँचा कहीं ना कहीं?
2: बिल्कुल. मतलब मैं अभी कुछ स्टेट ऑफ माइंड ही मेरी हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ. एकदम से बिना कुछ करे मुझे इतनी सज़ा मिली, मैंने कुछ भी नहीं किया. बाकी मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ इसके अलावा.
1: क्या आपके बेटे को कुछ पता है इसके बारे में? छोटा है वो अभी, क्या
2: 3 साल का है. अभी कुछ भी नहीं पता, वो मेरी मम्मी के पास है, मेरी बहन के पास है, अभी उसे कुछ भी नहीं पता है. ना मैं कभी बताना चाहूँगी उसको.
1: कभी आपका एक तरीके से परिवार ख़त्म सा हो गया, पति आपके नहीं रहे, ससुर की आपकी हत्या हो गई, अब आप कहाँ, आपने सोचा है आगे रहने का या क्या करने का? जो कानपुर में आपका घर है वहाँ पे तो अब कोई है नहीं, आप अपनी जो ज़िंदगी की शुरुआत, क्या आपने सोचा है उसके बारे में कुछ?
2: अभी मैंने इस बारे में कुछ विचार नहीं किया. मैं स्टेट ऑफ माइंड ही में नहीं हूँ कि अभी मैं कुछ भी सोच पाऊँ. मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को संभालने में.
1: पूरी तरीके से समझते हैं, हमारी संवेदना भी आपके साथ है. हमने आपको पहले बताया कि खेद है कि किस तरीके से आपको जो सफ़र करना पड़ा इस 21 दिन के अंदर, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो बाहर जो चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया, जो फंसाने की कोशिश करी, जिसका एक मुख्य पॉइंट जो है विशाल है. ये आधार बताया गया कि विशाल से आपकी बहुत सारी बातचीत थी फ़ोन पर, लेकिन बाद में पता लगा कि उसको फ्रेम किया गया. आपसे विशाल ने जब फोन करा तो आपको लग रहा था कि इस मानसिकता से फोन कर रहा है या फंसाने के लिए?
2: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो छोटे मोटे काम करता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे कि पीछे ये सब हो रहा है या कुछ भी प्लान्ड है, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे.
1: एक विशाल ने नया नंबर लिया हत्या के पहले, जो सुब्रत ने उसको कहा कि आप के नंबर पे फोन करें. जब आपके पास वो आया तो आपको लग रहा था कि ये किसी योजना का एक?
2: बाकी उसका फोन आया, मैं तो उस दिन बिजी थी जन्माष्टमी की सब तैयारियां करने में. उसका फ़ोन आया, मैंने फूल वूल मंगवाने के लिए बस फूल मंगवाए थे उससे, दिया और बस इतना ही था. बाकी उसी ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने नहीं किया था.
1: एक सवाल मैं लूँगा आपसे ख़त्म करने से पहले, गार्ड को लेकर जो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा उसका आधार बनाया गया कि आपने एंट्री करवाई थी विशाल की शुभम के नाम से गार्ड से, जो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा था.
2: मैंने बस ये बोला था कि मेरा स्टाफ आ रहा है उसको आने दीजिएगा बस. इसके अलावा मेरी स्टाफ नीचे कोई गार्ड से बात नहीं हुई थी, उन्होंने जिस नाम से एंट्री करी बस मैंने ये जरूर कहा था कि मेरा स्टाफ आ रहा है उसको आने दीजिएगा बस.
1: ऐसा भी कुछ कहा गया था कि उसकी रजिस्टर में एंट्री मत करना?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है. मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि उसकी एंट्री मत करिएगा आप.

0: विशाल ने आपसे खुद से करी आपकी सुब्रत ने कहा था कि आप एंट्री कर रहे हैं?
1: वो हमेशा होती है, कोई भी आता है तो रतन ऑर्बिट में होती है एंट्री।
0: आप कोर्ट से निकली, हमने देखा कि कैमरे की तस्वीरों के बीच में आप भावुक थी। उस वक्त तो शायद नहीं पुलिस अपना स्टैंड क्लियर कर पाई थी, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं दुख था इस बात का। दुख अभी भी है जो आपके साथ हुआ। कैसे दिखती हैं इस पूरी चीज़ों को जो आपके सामने बीते दिनों घटी?

0: बीते दिनों घटी।
1: मैं बस थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने, आईयू ने, शिवाकांत दीक्षित ने मुझे जस्टिस दिलाया है। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती हूँ।
0: हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति किस कैसी है, लेकिन आपने इतनी बात जो रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल एक लूँगा सुब्रत को लेकर, उसके परिवार को लेकर। सुब्रत ने कहीं ना कहीं ये बताया हमारे कैमरा पे, इसको मलाल है आपको फंसाने का। आपकी सुब्रत से इन्वेस्टिगेशन के तौर पर या उसके बाद से कोई बातचीत हुई, या कभी बाहर सुब्रत आए तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगी या फिर उनसे बातचीत करेंगी? आपके उनसे रिश्ते कैसे रहने वाले?
1: मैं जवाब नहीं देना चाहती इस चीज़ का, क्योंकि मैं अभी इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं कुछ रिश्ते सोच पाऊँ। इस समय सिर्फ मुझे अपने बच्चे से मिलने का हो रहा है बस।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थी शालू, जिन्होंने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखी। क्या उनको सहना पड़ा इन 21 दिनों के बीच में? सुब्रत से फिलहाल क्या रिश्ते हैं या फिर क्या उनको इस पूरी घटना के बारे में पता था? ये सब कुछ आपने सुना। अब देखने वाली बात ये है कि आखिरकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं और आखिर इस केस को क्या अंजाम मिलता है।
2: वैसे शालू की रिहाई की बुनियाद 23 सितंबर को ही पड़ गई थी, जब 24 घंटे की पुलिस हिरासत के लिए शालू को इसी जेल से बाहर निकाल कर लाया गया था। तब पुलिस हिरासत में हुई पूछताछ के दौरान शालू और सुब्रत को आमने सामने बिठाया गया और उसके बाद ही सारी कहानी सामने आई थी। ये कानपुर सेंट्रल जेल है। तस्वीर 23 सितंबर की है। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की बहू शालू पुलिस पूछताछ के लिए जेल से बाहर लाई गई थी 24 घंटे के लिए। इस दौरान शालू को पुलिस अपने साथ कई जगह ले गई। फिर एक मौका ऐसा भी आया जब 16 दिन बाद शालू और उसका पति सुब्रत इसी थाने के कमरे में आमने सामने बैठे थे। 24 घंटे की पूछताछ के बाद बेशक शालू वापस इसी जेल में पहुंच गई, लेकिन ये 24 घंटे शायद शालू की जिंदगी के सबसे अहम और कीमती 24 घंटे थे, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में खुद कानपुर पुलिस ने यह साफ कर दिया कि ससुर विनीत मिनोचा की कातिल शालू नहीं बल्कि शालू का पति और विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत है। 24 सितंबर को कानपुर पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शालू की बेगुनाही का ऐलान किया था। इसके बाद 25 सितंबर को कानपुर पुलिस के आला अफसरों ने लीगल टीम के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में विनीत मिनोचा मर्डर केस में आए नए मोड़ और नए सबूतों के मद्देनजर शालू की बेगुनाही के कागजात तैयार किए गए। कानपुर पुलिस की ये रिपोर्ट 25 सितंबर को ही अदालत को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में शुरुआती जांच और उस जांच के बाद शालू के खिलाफ जाते सबूत और फिर शालू की गिरफ्तारी, फिर इसके बाद उसकी बेगुनाही के सबूतों का जिक्र किया गया है। इसी के बिना पर कानपुर पुलिस ने अदालत से शालू को जेल से रिहा कर देने की सिफारिश की। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने 24 सितंबर को ही आज तक से बातचीत के दौरान इस बात की तस्दीक की थी कि शालू की रिहाई के लिए पुलिस कोर्ट का रुख करेगी।
3: मैं आपको और आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मन में ये था कि कोई गलत नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने पीसीआर लेकर के और स्वयं मैं भी उसमें रहा हूं टीम के साथ, हमने पूरा थोरो इंटेरोगेशन करा ढंग से, चूल ये जो जितने गैप्स के उन गैप्स को करने की कोशिश करिए और उसको न्याय दिलाने के लिए। अभी हमने तुरंत क्लीन चिट तो नहीं दी है, लेकिन हमारी ये जो विवेचना है उस डायरेक्शन में जा रही है कि जब जो है जो कॉन्ट्रडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स हैं विशाल ने पहले महिला को पूरा का पूरा आरोप इन पर मढ़ा और अब जो है वो उसने कहा कि भैया ने करवाया था, तो उसकी भी हम लोग गहराई से विवेचना कर रहे हैं और बहुत जल्द ही जो न्यायिक है उसको निर्दोष है तो उनके संबंध में, क्योंकि जांच विवेचना का विषय है, उसके संबंध में हम आख्या माननीय कोर्ट के समक्ष रखेंगे और माननीय कोर्ट जो है उसमें डिसीजन लेंगे। पहले मुझे हमें कहीं इसने ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ने कोई जानबूझ करके उसको फंसाया हो, जो उस समय की परिस्थितियां जो साक्ष्य है उसके अनुरूप ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई कराई गई।
2: शालू की जल्द रिहाई के सिलसिले में कानपुर पुलिस ने अदालत को जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट में वो चार वजहें बताई गई हैं जिनकी वजह से शुरुआत में शालू को गिरफ्तार करना पड़ा। जबकि बाद में पता चला

0: कि वो बेगुनाह है। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
1: झारखंड के इतिहास की यह अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती। 5 लुटेरे जमशेदपुर के कैनरा बैंक की एक शाखा से 23 किलो सोना और करीब 42 लाख रुपए नकद लूट कर ले गए। खुद बैंक स्टाफ ने लूटे गए सोना की कुल कीमत 33 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगाई है। हालांकि पांचों लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं, उनके चेहरे भी सामने हैं, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक एक भी लुटेरा पुलिस के हाथ नहीं लगा है।
0: कहानी शुरू हो उससे पहले चंद झलकियां।

झलकियां लुटने जा रहे एक बैंक की। झलकियां लूटे जा रहे एक बैंक की। झलकियां लुटकर भाग रहे लुटेरों की। और झलकियां एक घंटा और 8 मिनट में 34 करोड़ रुपए लुटवा चुके एक बैंक। तो पहले सारी झलकियां देख लीजिए।

0: अभी अभी आपने जो देखा यानी जो झलकियां देखी, ये सिर्फ झलकियां नहीं, आपने एक पूरा इतिहास देखा। इतिहास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये झारखंड के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। झारखंड में इससे पहले किसी बैंक से इतनी बड़ी रकम या बैंक के लॉकर से इतना सारा सोना इससे पहले कभी नहीं लूटा गया। 42 लाख रुपए कैश और 23 किलो 80 ग्राम सोना, जिसकी कीमत खुद बैंक ने लगाई है 33 करोड़ 20 लाख रुपए। ये झारखंड का जमशेदपुर शहर है, वैसे इसे टाटा नगर भी कहते हैं। इसी शहर के गोलमुरी इलाके में ये कैनरा बैंक की शाखा है। 24 सितंबर की सुबह 9 बजे वक्त पर बैंक का दरवाजा खुल चुका था। स्टाफ, गार्ड सब बैंक पहुंच चुके थे, लेकिन बैंक का कामकाज शुरू होता उससे पहले ही 9:10 पर 5 लड़के हाथों में तमंचा लिए बैंक के अंदर घुस जाते हैं। बैंक के अंदर ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है। एक शख्स हाथ में तमंचा लिए साफ दिखाई दे रहा है। बैंक में घुसते ही सबसे पहले लुटेरों ने बैंक स्टाफ और गार्ड के हाथ पैकिंग टेप से बांध दिए, उन सभी के मुंह पर भी टेप लगा दी। एक गार्ड को तो धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। बैंक स्टाफ को काबू करने के बाद हथियार के दम पर लुटेरों ने स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट खोलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। स्ट्रॉन्ग रूम में बहुत सारे लॉकर थे, लेकिन लुटेरों ने सिर्फ एक खास लॉकर को ही खुलवाया। दरअसल उस लॉकर में वो सोना रखा हुआ था जो लोग गिरवी रखवाते हैं। आसपास में आम लोगों के और भी बहुत सारे लॉकर थे, लेकिन लुटेरों ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। जिस लॉकर में लोगों के गिरवी सोने रखे हुए थे, वो पूरा लॉकर उन्होंने खाली कर दिया। फिर वो सारा सोना अपने साथ लाए, काले, हरे और लाल रंग के बैग में भर लिया। भागने से पहले वो कैशियर के पास रखे 42 लाख रुपए भी अपने साथ ले गए। बैंक से बाहर निकलने के बाद लुटेरे पहले पैदल फिर मोटरसाइकिल पर भागते हुए नजर आए, उन्हीं 3 बैग के साथ। कुल 1 घंटा और 8 मिनट की इस डकैती की खबर बैंक के बाहर तब आई जब लुटेरे भाग चुके थे।
1: मैं अपने मेडिकल के अंदर था, तो वहाँ से भी बैंक से हमारे पास 10:15 बजे आए उनका कुछ ड्रेसिंग कराने के लिए, फर्स्ट एड लेने आए। तो पता चला कि बैंक में 5 युवकों ने डकैती किया है रिवॉल्वर के नोक पर। ये हमारे साथ में बैंक है, हमारा मेडिकल में कैमरा भी लगा हुआ है जिसके माध्यम से वो दिखते हुए है। 2 लड़का रेनकोट पहन के भागते हुए गए, बस्ती की तरफ मुड़े हैं। नहीं, ये लोग पैदल भाग रहे हैं, 2 लड़का। हाँ, 2 लड़का के पास एक बैग लटका हुआ था, एक हाथ में लेके भाग रहे थे।
0: अब बात पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी, पुलिस मौके पर आई। अब तक बैंक के स्टाफ कैश तो गिन चुके थे कि 42 लाख रुपए लूट गए, लेकिन सोने का हिसाब किताब तब तक नहीं लगा पाए थे। अलबत्ता बैंक स्टाफ को ये जरूर पता चल चुका था कि लूटा गया सोना वो सोना है जो लोगों ने गिरवी रखा हुआ था।
2: कुल 5 लोगों की संलिप्तता अभी सामने आ रही है, सीसीटीवी में देखने के बाद हमको पता चला है। और 43 लाख कैश इन्होंने यहाँ से डकैती किया है। और गोल्ड है इसमें, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो गोल्ड है वो मॉर्गेज गोल्ड है, जो लोग अपना गिरवी रखते हैं लोन के लिए वो है। और जिनका लॉकर है उससे कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है, मतलब कुछ ही अफवाह भी फैल रही है कि लॉकर से भी जो है गोल्ड निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मॉर्गेज वाला गोल्ड होता है वो इन लोगों ने चुराया है। और टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी है तो अभी उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि टोटल अमाउंट कितना है जो गोल्ड यहाँ से डकैती हुई है।
0: बाद में जब बैंक स्टाफ ने गिरवी रखे सोने का हिसाब किताब जोड़ा तो पता चला कि लॉकर से कुल 23 किलो 80 ग्राम सोना गायब है। आजकल सोने के दाम के हिसाब से इसकी कीमत बैंक स्टाफ ने जो FIR में लिखवाई है वो है 33 करोड़ 20 लाख रुपए। अब जैसे ही पुलिस को एहसास हुआ कि वो झारखंड के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की तफ्तीश कर रही है, जाँच की दिशा ही बदल गई। बैंक के अंदर और बाहर के सीसीटीवी कैमरों ने लुटेरों का चेहरा वैसे ही पुलिस तक पहुंचा दिया था, बस अब पुलिस को उन तक पहुंचना था। लेकिन अफसोस, चेहरा आंखों में होने के बावजूद 4 दिन बीत जाने के बाद भी पांचों लुटेरे अब भी पुलिस को परेशान किए हुए हैं। इतना परेशान कि अब पुलिस को उनकी तस्वीरें जारी कर अपील करनी पड़ रही है कि इन्हें पहचानिए और इन्हें पकड़वाने में मदद कीजिए।
3: बैंक डकैती की घटना है कल सुबह की, उसमें एसआईटी का गठन किया गया है सिटी एसपी के नेतृत्व में, और मैं समय देख रहा हूँ 20 ऑफिसर्स की तैनाती की, जो अलग अलग रीडिंग टीम है, इंट्रोगेशन टीम है, टेक्निकल सर्च उसमें संकलन टीम है, और उसमें लगातार हम लोग लीड टू लीड आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्लूज भी आए हैं जो बैंक डकैती की है, उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सत्यापन किया गया है, उस पर फुटेज के आधार पर कुछ हम लोग पिक्चर्स रिलीज करेंगे। आप लोग मीडिया से भी अपील रहेगा, उन पिक्चर्स पे हम लोग रिवॉर्ड डिक्लेयर करके अमाउंट निर्धारण कर रहे हैं, अमाउंट निर्धारण करके हम चाहेंगे आप लोग उसको मीडिया में जारी करें, छापे और उसको बताएं, ताकि हम लोग उसको जल्द से जल्द उन पर पहुंच पाए।
0: पुलिस ने लुटेरों की जो तस्वीरें जारी की है वो ये है। यही है वो पांच लुटेरे जो करीब 34 करोड़ रुपए लूट कर भाग चुके हैं। वैसे ये बैंक डकैती अभी पुलिस के लिए मुसीबत बनी हुई थी कि चोरों और लुटेरों ने जमशेदपुर पुलिस को फिर एक चुनौती दे दी। बैंक डकैती के कुछ घंटों बाद ही एक और जौहरी की दुकान लूट ली गई।
4: झारखंड बिहार का सबसे बड़ा रॉबरी, बैंक रॉबरी, उसके बावजूद पुलिस का मुस्तैदी का ये आलम था कि उसी रात अपने एक सोनार भाई के यहाँ रात को एक बड़ी घटना घटती है। जो व्यापारी 50 वर्ष से गोलमुरी में अपना व्यापार कर रहे हैं, सोनार का व्यापार कर रहे हैं, और उनका पूरा दुकान झाड़ दिया जाता है। तो इससे साबित होता है कि पुलिस कितना मुस्तैद है, प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है, इससे ये महसूस होता है।
0: हालांकि पुलिस जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि बैंक में जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो पूरी तरह नहीं थे। इमरजेंसी में बैंक का जो सायरन बजना चाहिए वो भी नहीं बजा। वैसे पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि लुटेरों ने सिर्फ वही लॉकर क्यों खुलवाया जिसमें गिरवी वाला सोना रखा हुआ था। बैंक में और भी लॉकर थे, लेकिन सबसे ज्यादा सोना उसी गिरवी वाले लॉकर में ही रखा था। तो क्या बैंक के किसी स्टाफ ने लुटेरों को ये जानकारी दी थी या फिर ये महज एक इत्तफाक था? फिलहाल जमशेदपुर पुलिस हाल के वक्त की सबसे बड़ी जांच और सबसे बड़ी तलाश में जुटी हुई है। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: कौन सी बनानी है?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक दो तीन ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

लेकिन ये आदमी लगातार जब हमारी क्या सुनेगा, जब अपने साथ ही चुनाव आयुक्तों की नहीं सुन रहा है ना। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि इससे क्या हो रहा है, चुनाव आयोग की छवि को जितना नुकसान हो रहा है वह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल गांधी का नया दावा, दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी के लगाए आरोप, यमुना किनारे वाले स्टेट का दौरा किया, बोले 727 लोगों का काटा गया था नाम। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एनसीआर, आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला का, पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए हैं फ्रस्ट्रेट, जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा हरसिमरत कौर का तंज, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी में बना तब्दील हुआ इलाका, सिंहस्त कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: सीजी के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष, देश भर में भारी प्रदर्शन और नारेबाजी, नड्डा का पलटवार, माहौल बिगाड़ने की साजिश, 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने तत्काल सुनवाई से किया है इनकार। महाराष्ट्र एसआईआर चुनाव आयोग के 14 फैसलों को चुनौती, याचिका में वोटर का नाम बहाल करने और एसआईआर पर रोक की मांग। आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की आखिरी फोन कॉल का खुलासा, दोस्त से कहा परीक्षा खत्म हुई और गलती हो गई। आईआईटी बॉम्बे का छात्र साहिल वाकोडे की मौत का मामला, माता पिता आजाद मैदान में करेंगे भूख हड़ताल, प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग। पालघर में सड़क में गड्ढे ने ली 75 साल के बुजुर्ग की जान, स्कूटी फिसलने से कंटेनर के पहिए के नीचे आ गए। मुंबई के सांताक्रूज ईस्ट में हाउसिंग सोसाइटी में दो मजदूर सीवर में गिरे, एक मजदूर की मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर है। पेपराजी ट्रोल्स और एआई के मिसयूज पर भड़के हैं सलमान खान, का सेंसर लगाने की सख्त जरूरत है, मैं सीरियस हूं, मेरे भी फर्जी वीडियो आते हैं। 52वें हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है, 400 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 401 करोड़ के पार। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है फिल्म। सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बीच दिवाली सीजन में चांदी की खरीदारी 17-18% तक बढ़ने का अनुमान है, आयात नियमों में ढील के बाद बाजार में चांदी की भरपूर सप्लाई भी बने रहने का भरोसा। जरूरी कच्चे माल से महंगा होने के 1 अक्टूबर से एसी की कीमतों में 5-8% तक बढ़ोतरी की आशंका है, टीवी वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के दाम 3-4% बढ़ने की संभावना। यूएफ बीयू और आईबीए के बीच देर रात हुई बैठक के बाद 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल टल गई है, 5-डे वर्क वीक और पेंशन जैसी मांगों को तय समय सीमा में सुलझाने का भरोसा मिलने के बाद फैसला। 28 सितंबर से शुरू हो रहे हफ्ते में 20 कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे और 20 नई कंपनियों की लिस्टिंग होगी इस साल, अब तक 96 मेन बोर्ड आईपीओ से 1.13 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। एनआईक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून में एफएमसीजी की वैल्यू ग्रोथ केवल 0.8% रही है, ग्रामीण बाजार में वॉल्यूम में 5% की गिरावट से कुल वॉल्यूम में 2% की कमी आ गई है। एशियन गेम्स में यूपी की बेटी का कमाल, महिलाओं की 5000 मीटर की रेस में पारुल चौधरी ने ब्रॉन्ज जीता। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 1500 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। धाविका विथ्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। विमेंस 25 मीटर पिस्टल में भी भारत के नाम एक और रिकॉर्ड, ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। भारत का बॉक्सिंग में 4th मेडल पक्का हुआ, लवलीना बोरगोहिन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। राहुल गांधी के हमले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार पलटवार किया, वहीं मिशन एसआईआर पर लगे राहुल गांधी यमुना किनारे दिल्ली की बेला स्टेट झुग्गी बस्ती पहुंचे, यहां उन्होंने 727 लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का मामला उठाया और एसडीएम से फोन पर भी बात की। राहुल गांधी का दावा यह है कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ एक नाम ही बचा है, वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बीएलओ ने घर घर जाकर सत्यापन किया है।

0: पूरे देश में आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली से महाराष्ट्र तक और पटना से हैदराबाद तक कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ आवाज बुलंद की।
1: 729 वोट हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति को आपने SIR में डाला है। वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम। मकान से कुछ लेना देना नहीं होता है वोट का।
2: इन्होंने कहा चुनाव, हम लोग के यहाँ पे बोला है कि भैया आप लोग का वोट नहीं,
1: आप लोग इलीगल कह रहे हो। कि आपने बोला है, आप
2: इलीगल रह रहे हो। आप
1: 729 लोग हैं यहाँ पे, आपने एक वोट दिया है। देखिए भैया, पीरियड होता है वो सब ठीक है, मगर यहाँ पे इनका नाम वोटर लिस्ट, मेरी बात सुनिए, इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है। इनका नाम आपने आपने किस बेसिस वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम।
2: अरे सर, कोई मकान नहीं था सर, झुग्गी थी, झुग्गी से बोर्ड बना।
1: देखिए आप ऐसे करिए, मैं आपको, आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से देखिए।
0: नागपुर में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा। इस दौरान कांग्रेस ने काले गुब्बारे भी उड़ाए, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की मांग है कि ज्ञानेश कुमार जल्द से जल्द इस्तीफा दें और देश में SIR बंद हो। नागपुर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन नागपुर के संविधान चौक से कलेक्टर ऑफिस तक किया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को उठाकर फेंक दिया।
3: हम निषेध कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार का, और ये गुब्बारे के साथ ज्ञानेश कुमार को भी उड़ाना चाहते हैं।
0: इधर शिवसेना UBT भी राहुल गांधी की उस मांग का समर्थन कर रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
4: कि बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग। एविडेंस है, एविडेंस सामने रखा है। देवेंद्र जी को समझना चाहिए कि उनका उसमें कोई रोल नहीं है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरा देश का मुद्दा है। देवेंद्र जी कहते हैं कि राहुल गांधी को दिमाग नहीं है, ऐसा कहा ना, तो आपको दिमाग है तो आप समझ लीजिए।
0: इससे पहले महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने ज्ञानेश कुमार का बचाव करते हुए राहुल गांधी पर प्रचंड प्रहार किया।
5: देश की संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये अराजकता के लिए कंफ्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चौकीदार चोर है इस प्रकार का नैरेटिव लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने देश के जवानों को भी हतोत्साहित करने में कोई कमी नहीं रखी, जिन्होंने हमारे देश ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किए उस पर सवालिया निशान उठाया, एयर स्ट्राइक किए उस पर सवालिया निशान उठाया।
0: महाराष्ट्र में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची में सुधार के लिए चल रहे SIR को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट और उसकी कोल्हापुर सर्किट बेंच में दो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें प्रक्रिया के उल्लंघन, मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने और अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
6: जो 14 निर्णय ज्ञानेश कुमार जी ने लिए हैं, जो विवादास्पद है और उन्होंने अकेले ने लिए हैं, बहुमत से वो लिए गए नहीं, वो निर्णय सभी खारिज होने चाहिए। उसी के साथ जो SIR के तहत वोटर्स डिलीशन हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर, उसमें अन्याय हुआ है वोटर्स के ऊपर, भारतीय नागरिकों के ऊपर, तो जो SIR के तहत अभी वोटर्स डिलीशन हुआ है वो डिलीशन स्थगित करना चाहिए। उसी के साथ जो आगामी इलेक्शंस महाराष्ट्र में होने वाले हैं वो इलेक्शंस भी नहीं होने चाहिए और उनके ऊपर भी स्टे देना चाहिए, ऐसे मांग की गई है। उसी के साथ जो निवडणूक आयुक्त है ज्ञानेश कुमार और निवडणूक आयोग भारत का, उन्होंने वो 14 निर्णयों के बारे में जो ज्ञानेश कुमार इन्होंने लिए हैं, सभी कागजात, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो आक्षेप लिए हैं उसकी जानकारी और उसके कागज उन्होंने कोर्ट के सामने पेश करने चाहिए, ऐसी मांग की गई है।
0: दूसरी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के बेंच के सामने एक याचिका दायर की है। इसमें घर घर जाकर सत्यापन करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
7: इस पिटीशन में सबसे बड़ी मांग है कि इलेक्शन कमीशन को किसी के नाम निकालने का अधिकार नहीं है। जब तक समिति उस पर निर्णय नहीं लेती तब तक इलेक्शन कमीशन निर्णय नहीं ले सकता है। इस पिटीशन को आज सुबह चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया और चीफ जस्टिस ने सोमवार 5 अक्टूबर को इस पर सुनवाई रखी है।
0: महाराष्ट्र में SIR और चुनाव आयोग को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर फिलहाल विराम लगता नहीं दिख रहा है।
8: फिलहाल SIR को लेकर उठे इन गंभीर सवालों पर अब अदालत का रुख अहम होगा। 5 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में यह साफ होगा कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची के इस विशेष संशोधन को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर अदालत क्या रुख अपनाती है। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ विद्या, मुंबई आज।
9: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बहाने विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहा है और इसी बीच शरद पवार ने चुनाव नतीजों में हेरफेर को लेकर AI और नई टेक्नोलॉजी का डर भी जताया है। हालांकि पवार चुनाव आयोग पर सीधे हमले से बचते हुए नजर आए। दूसरी तरफ मुंबई में ठाकरे बंधुओं से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी तक विरोध प्रदर्शनों की नई रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जबकि शरद पवार का रुख अभी भी साफ नहीं है, जिससे राहुल गांधी के लिए विपक्षी एकजुटता अब एक नई चुनौती बन गई है।

0: एसआईआर के बहाने विपक्ष को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रूप में बड़ा हथियार मिल गया है। ज्यादातर विपक्षी दल सड़कों पर उतरने को तैयार है, लेकिन दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बिंदु रहे शरद पवार चुनाव आयोग पर संभल कर वार कर रहे हैं। शरद पवार ने अपनी पार्टी की बैठक में विधायक जितेंद्र अवाड के बयान का समर्थन करते हुए बड़ा दावा किया। पवार ने कहा कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम साधनों और प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि रूस, अमेरिका और यूरोप के उदाहरणों से साफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के फायदों के साथ साथ गंभीर नुकसान भी हैं।
1: देखो, एआई के बारे में मेरे को ज्यादा तो मालूमात नहीं है, पर लेकिन एमटेक पीएचडी के से ज्यादा पढ़ाई एआई में साफ की हुई है। तो उन्होंने जो वक्तव्य किया है वो ये है कि एआई से चुनाव के रिजल्ट मशीन पे है, प्रोग्रामिंग पे है, तो कोई भी प्रोग्राम एआई हैक कर सकता है, इसमें अभी कोई शक है क्या?
2: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि कई सारे मुद्दे उजागर किए गए आपने और आपके पार्टी के दूसरे नेताओं ने?
1: ज्ञानेश कुमार के पहले कौन था? राजीव कुमार। पार्टी के 12 किसने बजाया है? राजीव कुमार। राजीव कुमार गया, ज्ञानेश कुमार आया, अब कोई जितेंद्र कुमार आएगा, फिर संजय कुमार आएगा। जब तक नीचे की व्यवस्था बदलते नहीं और जब तक मशीन उनके हाथों में है, कुछ नहीं हो सकता है।
0: एक तरफ तकनीक से नतीजे बदलने की आशंका है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़े आंदोलनों की तैयारी है।
3: एक तरफ जहां विपक्ष चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आर पार की जंग करने के मूड में दिख रहा है, तो वही दूसरे तरफ शरद पवार का ये रुख कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। एआई और रोबोट के खतरे गिनाकर जहां पवार चुनाव आयोग पर सीधे हमला करने से बचते दिख रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि पवार आज भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां विपक्ष आक्रामक आंदोलन करने पर तुला हुआ है, तो वही शरद पवार का ये संभला हुआ रुख महाविकास आघाड़ी के आगामी रणनीति पर क्या असर डालता है।
0: मुंबई पुलिस की इजाजत न मिलने के बावजूद कांग्रेस जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है।
4: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री, और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि बस लोगों के वोट नहीं चुराए जा रहे, जो इलेक्शन कमीशन में काम करे, जो दूसरे कमिश्नर से उनके भी वोट चुराए जा रहे, क्योंकि 3 थे, 3 में से 2 कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन उनका वोट भी गिना नहीं जा रहा है। ज्ञानेश कुमार वही कर रहा है जो उसकी मर्जी है।
5: अभिजीत का जो प्लान था वो हमारी कल की अरेस्ट के बेसिस पे था, लेकिन क्योंकि मुझे रिलीज कर दिया गया तो अभिजीत अभी नहीं आ रहा है। वो 2 अक्टूबर की जो हमारा प्रोटेस्ट एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर प्लान है, उस प्रोटेस्ट की तैयारी में लगा हुआ है।
0: वहीं 29 सितंबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें 4 अक्टूबर को दादर में बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। कांग्रेस पहले से ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और मंत्री संजय सिरसाट ने शरद पवार के बयान पर चुटकी ली।
6: शरद पवार साहब से परसों के दिन ही कई कार्यक्रम में रोबोट ने हाथ मिलाया था, तो वो भी उनके दिमाग में वो ठस गई हुई बात कि रोबोट अपने से भी हाथ मिलाता है, चैलेंज क्या दे रहा है क्या? देखो, ये जमाना है, टेक्निकल टेक्नीशियन और कुछ ये अलग अलग चीजें रोज नई आते जा रही है। एआई का जमाना आ चुका है, अब तुम कुछ करो ना करो तुम्हारा फेस लेके कुछ भी वीडियो बना सकते, तो इससे नुकसान भी है और फायदा भी है, तो अपन उसका यूज प्रॉपर किए तो मुझे लगता है अपने लिए कोई धोखादायक नहीं है और इसकी वजह से कोई चुनाव पे परिणाम भी नहीं हुआ।
0: लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह कांग्रेस मुखर है, उसे देश भर में बड़ा मुद्दा बनाने के लिए एकजुट विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस ने 29 सितंबर को CWC की बैठक बुलाई है और उसके बाद 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में साझा रणनीति की तैयारी है। लेकिन सवाल है कि क्या 30 सितंबर को विपक्ष की एकता दिखेगी? अखिलेश यादव ने बैठक में खुद नहीं आने का फैसला किया है, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जबकि 30 सितंबर को इंडिया अलायंस की बैठक में उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन की ऑनलाइन जुड़ने की बात कही जा रही है। डीएमके का फैसला क्या होगा अभी ये तय नहीं है। वहीं शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। ममता बनर्जी और लेफ्ट दलों के बड़े नेताओं के अलावा बिहार से तेजस्वी यादव 30 सितंबर की बैठक में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में एक तरफ एआई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरकर विरोध की रणनीति बन रही है। विपक्ष के आक्रामक तेवर और सत्ता पक्ष के पलटवार से सूबे का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: हमने 24 सितंबर को सूखे की मार झेल रहे किसानों की गुहार सीएम फडणवीस तक पहुंचाई थी। हमारी खबर का असर यह हुआ है कि किसानों की मांग महाराष्ट्र सरकार ने सुन ली है। 26 सितंबर को राज्य के 32 जिलों में 265 तहसीलों में सरकार ने सूखा उसे घोषित किया है और ये राज्य के कुल 358 तहसीलों का करीब 74% हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से रोते हुए किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।

0: पोस्टर की शक्ल में सोलापुर के तुलसी गांव का दर्द घरों के बाहर कुछ यूं चस्पा है। इन पोस्टरों में गांव वालों ने मराठी में लिखा है, तुलसी गांव बिकाऊ है। गांव वालों के पास सिर्फ एक ही विकल्प मौजूद है, क्योंकि कोई कितना अन्याय सह सकता है। मतलब यही है कि गांव वालों ने खुद पोस्टर लगाए कि गांव बिकाऊ है, क्योंकि यहां न तो पीने का पानी है और न ही फसल के लिए सिंचाई की कोई योजना।
1: मैं अभी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तुलसी में हूँ कि जो तुलसी गांव जो है वो माड़ा क्षेत्र में आता है। मेरे पीछे यहाँ तुलसी का जो ग्राम पंचायत का जो भवन है वो है, और वहाँ यहाँ के जो ग्रामस्थ है उन्होंने एक बोर्ड लगाया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तुलसी गांव है, ये गांव बेचना है।
0: दरअसल बीते 25 सालों से तुलसी गांव की सरकार से मांग यही है कि पानी के संकट से निजात दिलाए। तारीखें बदली, सरकारें बदली, लेकिन तुलसी गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। जिम्मेदारों की अनदेखी से आजिज आकर तुलसी गांव के लोगों को गांव बिकाऊ है वाले पोस्टर लगाने पड़े।
2: हमारा गांव बेचना है, क्योंकि हमारे पास अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो पानी की समस्या है ना, ये हमारी पिछले 40 सालों से है। हमारी अभी तीसरी पीढ़ी है जो कि पानी के लिए लड़ रही है। हमारा भारत देश आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या हमारा भारत देश सच में आजाद है? हम आज भी पानी के लिए तड़प तड़प कर सरकार से दुआ मांग रहे हैं कि सरकार हमें पानी दो, हमारे हक का पानी दो।
0: किसान फसल के लिए पानी नहीं जुटा पाता, खेतों में सिंचाई नहीं होने से फसल नष्ट हो गई। आलम यह है कि गांव वालों के लिए पानी का इंतजाम करना रोज किसी जंग जीतने जैसा है। देखिए, पूरा परिवार काम धंधा छोड़कर कुछ यूं कई किलोमीटर दूर से पानी साइकिल पर ढोने को मजबूर है।
1: कहाँ से पानी लाते हो?
3: अभी 2 किलोमीटर से आएगा।
1: वैसे?
3: हाँ, से।
1: बिजनी डैम तो इधर नजदीक है, फिर भी ऐसी क्यों परिस्थिति?
3: बहुत परिस्थिति देख रहे, किसको बोलने का? तुमको बोलेगा, इसका नाम लेगा तो बोलेगा मेरा नाम क्यों लेगा? इसका नाम भी नहीं लेने का, भगवान तो जानेगा ना।
1: अभी ये गांव बेचने का बोर्ड लगाया, क्यों लगाया?
3: बेचने का है गांव, गांव बेचने के बाद तो कोई नहीं आएगा ना उधर।
1: कौन लेगा गांव?
3: कोई भी लेके जाओ,
1: सिर्फ पानी दे दो हमको।
3: हाँ, पानी दे दो हमको।
0: गांव वालों का आरोप है कि पिछले 25 सालों में कई आंदोलन हुए, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रहेगी। तुलसी गांव को अपने हाल पर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। पानी की किल्लत ऐसी है कि गांव के नौजवानों के सामने पीने के पानी के साथ साथ शादी का संकट है।
4: इसके लिए पानी नहीं, इसके लिए लिया ना, पानी नहीं इसके लिए ले लिया। पानी होता है तो नहीं देते ना, लेते ही नहीं निर्णय।
1: क्या निर्णय लिया है? गांव की क्या परिस्थिति है?
4: गांव की बिकट, एकदम बिकट परिस्थिति है सर, पूरा गांव का बिकट परिस्थिति है। जिस गांव में 40,000 लीटर संकलन दूध का डीली होता था, अभी 10,000 रुपया आ रहा है। इसके लिए वो लोग बिकने के लिए तैयार हो गए। गांव
1: गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही क्या?
4: वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव में पानी नहीं, इसके लिए कोई लड़की देना रहे गांव में। पानी नहीं बोलते, पानी नहीं तो क्या इतना हम कैसे लटकी देगा? लड़की हमारा पानी किधर से पिएगा?
0: बड़ी बात यह है कि उजनी बांध से साल 2000 से सेना माढ़ा उपसा जल सिंचाई योजना शुरू हुई, लेकिन जल सिंचाई योजना से तुलसी गांव को नहीं जोड़ा गया।
5: यहाँ नियर अबाउट 1 किलोमीटर से यहाँ कैनाल जा रहे है, सबकी खेती अच्छी फसल आ रही है, लेकिन हमारे गांव में तो पशुधन को अभी चारा भी नहीं है, हमें पीने के लिए पानी भी नहीं है, और हमारे हाथ को काम भी नहीं है।
0: आरोप यही है कि गांव को सिंचाई योजना से कागजों में जोड़ दिया गया, लेकिन हकीकत में योजना का पानी आज तक तुलसी गांव नहीं पहुंचा है।
6: हम चाहते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति है इस देश में, तो अडानी अंबानी, वो हमारे गाँव की प्राइस सिर्फ जल है, पानी है। कोई भी माई का लाल, हमें पानी दे दो, जल दे दो, और हमारा गांव आप ले लो, ऐसे हम दरखास्त करते हैं आपसे।
0: अगर तुलसी गांव के लोगों ने गांव बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं, तो इसके जिम्मेदार हैं विधायक माढ़ा अभिजीत पाटिल, पार्टी एनसीपी शरद पवार, सांसद माढ़ा धैर्यशील मोहिते पाटिल, पार्टी एनसीपी शरद पवार, जल संसाधन मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र सरकार, सोलापुर के जिला कलेक्टर एस कार्तिकेयन। एक तरफ स्थानीय विधायक सांसद और कलेक्टर आंखें बूंद कर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ जिस मंत्री की जवाबदेही है वो भी तुलसी गांव को भगवान भरोसे छोड़ कर बैठे हैं।
7: हमारी कोशिश है कि हम सोलापुर में पानी के लिए तड़पते और तरसते हुए किसानों की आवाज महाराष्ट्र सरकार तक जरूर पहुंचाएं। किसानों का आरोप यह है कि बीते 25 सालों से पूरा का पूरा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन जिम्मेदार सुधरने के लिए लेने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के दौरान वादे जरूर किए जाते हैं बार बार, लेकिन आज तक तुलसी गांव में पानी नहीं पहुंच पाया है। जिम्मेदारों की अनदेखी से तंग आकर किसानों ने अपने घरों पर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये गांव बिकाऊ है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इसके बाद कोई असर होगा और यहां तक पानी जरूर पहुंचेगा। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल की सुसाइड केस में नया खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक साहिल के दोस्त ने जो बयान दर्ज करवाया है उसने बताया है कि आखिरी कॉल साहिल ने उसे की थी जिसमें उसने माना था कि वो एक पेपर खराब होने से काफी परेशान था। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि साहिल के दोस्त ने माना कि उसने कहा था कि वो नकल करते हुए पकड़ा गया है।
2: आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के खुदकुशी मामले में हंगामा जारी है। साहिल के माता पिता मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो लोग आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साहिल के पापा का आरोप है कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है।
3: आईआईटी बॉम्बे में जो सुसाइड हुआ था साहिल वाकोडे का, उस छात्र के सुसाइड के बाद परिवार जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहा है मुंबई के आजाद मैदान में। यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए। तो ये साहिल वाकोडे के फादर है रविंद्र वाकोडे जी, सोनाली वाकोडे जी है। पिछले 7 दिनों से ये देखा गया है कि क्राइम जो FIR पवई पुलिस ने किया उसको क्राइम ब्रांच के पास सौंपा गया और लगातार ये मांग हुई है कि जो आप कह सकते हैं कि जातिवादक जो कमेंट्स है वो करने के लिए जो प्रोफेसर डुला है उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उसी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। मैडम, प्रोफेसर डुला को अरेस्ट करना चाहिए, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाना चाहिए, मांग आज भी आप लोगों की है, साहिल के पेरेंट्स की है। साहिल, आप कह सकते हैं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं बॉम्बे IIT में साहिल के सपोर्ट में, उनको क्या कहना चाहेंगे?
4: तो केदार सर और डुल्ला सर को त्वरित अटक की जाए, जस्टिस चाहिए मुझे मेरे बच्चे के लिए।
3: क्यों अभी तक क्वेश्चनिंग के लिए उनको नहीं बुलाया गया क्राइम ब्रांच की तरफ से? आपको लगता है अभी तक उनको उनका जवाब स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ?
5: जांच का मामला है सर, वो जांच का मामला है, जांच हो जाएंगे।
3: जो बच्चे बैठे आज भी एक हफ्ते से जो IIT बॉम्बे में अंडर एंटर करते हैं तो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, उनको क्या संदेश देना?
5: उनको अभी कुछ नहीं, वो उनके हिसाब से कर रहे हैं।
3: लेकिन अरेस्ट नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर डुला की गिरफ्तारी की मांग पेरेंट्स जो हैं साहिल के वो कर रहे हैं, और ये आप कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, जो जांच है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात का उनका कहना है।
2: 18 सितंबर को IIT बॉम्बे के 20 साल के BTech छात्र साहिल वाकोडे ने कैंपस में ही खुदकुशी कर ली थी। साहिल के माता पिता का आरोप है कि प्रोफेसर दुल्ला जाति सूचक शब्दों के जरिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। साहिल के माता पिता प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला के साथ IIT बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष केदारे की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं।
5: हमारी एक ही मांग है, अरेस्ट करो, अभी तक तो हुई नहीं है, करके तो बैठे वाले हैं, करके तो यहाँ बैठे वाले हैं हम। प्रोफेसर डुल्ला और केदारे सर को, दोनों को भी अटक होने को होना।
6: सरकार की प्रतिनिधि मंडल से कोई बातचीत, कोई आश्वासन आपको दिया गया
5: है? नहीं, SC/ST कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी बस।
2: साहिल वाकोडे की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने उसके एक दोस्त का बयान दर्ज किया है। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने आखिरी कॉल उसी को की थी। पुलिस के अनुसार कॉल के अनुसार वाकोडे ने उसे बताया था कि उसका थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी का पेपर खराब हो गया था और परेशान था क्योंकि वो अच्छा स्कोर करना चाहता था। उसने ये भी बताया कि परीक्षा के दौरान उसे नकल करते हुए पकड़ा गया था।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा। दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप। यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा। बोले 727 लोगों को काटा गया नाम। आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश। जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर। आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला। कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट। जर्नल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा। हरसिमरत कौर का तंज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल। पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका सिंहस्थ। कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा।

उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल। पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी में बना इलाका सिंहस्थ। कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। बीजेपी बोली केजरीवाल के गुंडों ने पीटा। एलपीयू मामले में जारी सियासत संग्राम। हरसिमरत कौर बादल का तंज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट कर डाला। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश। जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। अमित शाह ने लॉन्च की प्रहार सीटी रणनीति। प्रहार के साथ स्तंभों पर फोकस। थाना स्तर तक आतंकवाद रोधी तंत्र मजबूत करने का आह्वान। नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी लॉन्च। यूपी में दलित सियासत पर महासंग्राम। मायावती पर चंद्रशेखर का पलटवार। बोले जनता ने बता दिया है कौन चंद्रशेखर। दलित सियासत पर जारी है बयानबाजी। बीएसपी अध्यक्ष ने धांधली से नगीना सीट जीतने का आरोप लगाया था। टीएमसी नाम निशान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सभी पक्षों की दलील के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग 3 महीने में सुनाएगा फैसला। सीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरा विपक्ष। देशभर में भारी प्रदर्शन और नारेबाजी। जेपी नड्डा का पलटवार। का माहौल बिगाड़ने की साजिश। 3 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल गांधी का नया दावा। दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी के लगाया आरोप। राहुल गांधी ने यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा। पहले 727 लोगों का काटा गया नाम। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर। आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला। कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट। जनरल पर एफआईआर दर्ज। सीसी के अनेश कुमार के खिलाफ याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट की। कोल्हापुर पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। महाराष्ट्र एसआईआर चुनाव आयोग के 14 फैसलों को चुनौती। याचिका में वोटर का नाम बहाल करने और एसआईआर पर रोक की मांग की गई। आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की आखिरी फोन कॉल का खुलासा। दोस्त से कहा परीक्षा खराब हुई और गलती हो गई। आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत का मामला। माता पिता आजाद मैदान में करेंगे भूख हड़ताल। प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग। पटना में बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के छात्रों ने काटा जमकर बवाल। पुलिस पर चलाया पत्थर तो पुलिस ने चटकाई लाठियां। यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर। यूपी के महोबा में 48 घंटे हुई बारिश के बाद जलभराव। दनई नदी में उफान से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। गोंडा में तूफान बारिश और देवीपाटन मंडल के चारों ही जिलों में छाया अंधेरा। राहत और बचाव का काम जारी। बिहार में भारी बारिश का दौर जारी। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। गोपालगंज के निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। गोपालगंज में उफान पर है गंडक और कई गांवों में घुस गया बाढ़ का पानी। पलायन को मजबूर हुए ग्रामीण। गंडक के बढ़ते जल स्तर में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। नेपाल में भारी बारिश का असर। गंडक बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। नेपाल के मुस्तांग में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा। एक यात्री ने अपने कैमरे में कैद किया भूस्खलन के बाद काली गंडकी नदी का बहाव बाधित हुआ। 2 पर्वतारोहियों की मौत हुई। 20 की तलाश जारी। राहत और बचाव का काम जारी। नारायणी और त्याऊ नदी में कटाव और जलजमाव की स्थिति बन गई है। बाढ़ भूस्खलन का कहर जारी। 195 घर तबाह हुए। 1500 लोग विस्थापित। उत्तरकाशी में खराब मौसम और बर्फबारी के बीच फंस गए पर्वतारोही। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के कालिंदी पास के पास करीब 5 से 7 फीट बर्फबारी। 21 पर्वतारोहियों की बचाई गई जान। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हेलीकॉप्टर भी तैनात है। मौसम सुधरने के साथ तेजी के साथ शुरू होगा अभियान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की पूरे हालात पर नजर है। प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के निर्देश। केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने लगाया ब्रेक। चिरबासा में पहाड़ी से लगातार गिर रही है बोल्डर। 2 दिन की बारिश से थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढका केदारनाथ धाम नजर आ रहा है बेहद भव्य नजारा। मौसम साफ होते ही शुरू हुई चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। मंदिर परिसर से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 18 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं बद्रीनाथ। चारधाम श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आए। होटल्स में यात्रियों ने नाच गाकर केक काटकर बिताया समय। बारिश के बीच होटल कारोबारियों ने यात्रियों की सुरक्षा का रखा पूरा ध्यान। होटल में ही की गई खाने पीने की विशेष व्यवस्था। मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट में हाउसिंग सोसायटी के 2 मजदूर सीवर में गिरे। 1 मजदूर की मौत हुई। दूसरे की हालत गंभीर है। मुजफ्फरपुर में एक्सयूवी लग्जरी कार से 414 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। 14 मामलों में वांटेड तस्कर गिरफ्तार। छत्रपति संभाजी नगर में 2 ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई। सड़क पर लोगों के आने जाने में दिक्कत। तेलंगाना के मंचेरियल तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे सवारी से भरे हुए ऑटो को टक्कर मारी। 2 लोगों की मौत कई घायल।
इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार दुर्घटना में घायल बाराबंकी में तैनात सीओ की इलाज के दौरान मौत हुई। दिल्ली से ले जाते समय बिगड़ गई थी हालत, सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तोड़ा दम। औरैया में ओवरटेक को लेकर विवाद के बाद महिला ने लोहे की रॉड से स्कॉर्पियो के शीशे तोड़ डाले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में घर के बाहर शौचालय बनाने को लेकर भिड़ गए थे दो पक्ष, महिलाओं समेत कई लोग लाठी

निशाना चार गिरफ्तार 19 सोलर पैनल और लोडर्स भी बरामद किए गए। लखनऊ में ऐसे अपार्टमेंट की दीवार भरभराकर गिरी, करीब 200 लोग इसमें मौजूद थे। एसडीआरएफ और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। इंदौर के राजवाड़ा में ई बस हादसे में दूसरी मौत हुई, तोड़फोड़ करने वालों पर भी केस दर्ज, दो लोगों की मौत, दो की गिरफ्तारी। गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला सातवीं क्लास के स्टूडेंट का ट्रेन से कटा हुआ शव, दोस्त की हत्या के बाद सुसाइड का शक है। कमरे में मिली थी सड़ी हुई लाश। कानपुर में नकली रेबीज एक्सेस इंजेक्शन सप्लाई करने वाले दो मेडिकल एजेंसी को पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दिल्ली में पकड़े गए नकली रेबीज इंजेक्शन से जुड़े हुए हैं दोनों ही फर्म। पालघर में 40 साल के व्यक्ति की हत्या हुई, अपार्टमेंट में सामने मिला खून से लथपथ शव। पालघर में सड़क में गड्ढे में ने ली 75 साल के बुजुर्ग की जान, स्कूटी फिसलने से कंटेनर के पहिए के नीचे आ गए थे। आनंद में दो बाइकों के आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई, तीन युवकों की मौके पर मौत हुई। समस्तीपुर में सब्जी की चोरी के आरोप में आक्रोशित लोगों ने पेड़ में बांधकर पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। गोरखपुर में पुलिसकर्मी और अधिवक्ता के बीच विवाद हुआ, वायरल वीडियो निकला फर्जी, दो लोग पुलिस हिरासत में लिए गए। सूरत में चोरी करने घुसे दो युवक फैक्ट्री में फंसे, फायर ब्रिगेड ने ग्रिल काट कर निकाला बाहर। भोजपुर में 20 साल के युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। फतेहपुर में गैस सिलेंडर फटने से गिरा एक और घर, चार लोगों की मौत हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मऊ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हुई, शादी के घर में छत पर टेंट का पाइप लगाते समय ऊपर से जा रहे हाई टेंशन तार से टच होने के कारण हादसा हुआ। सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर काबू पाया। बेतिया में सरकारी हथियार के साथ सोशल मीडिया वीडियो बनाना भारी पड़ गया, साठी थाने की महिला सिपाही निलंबित की गई। नवसारी में तेज रफ्तार ऑडी कार ने बुजुर्ग की जान ले ली, हादसे के बाद फरार आरोपी युवक चंद घंटों में गिरफ्तार। भारतीय तटरक्षक दल बने हैं वे देवदूत, 23 लोगों की जान बचाई समुद्र में संकट में फंसे हुए बेलीज के झंडे वाले एमटी सीगल 9 टैंकर को स्थिर किया गया। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला। प्रयागराज में ई पिंडदान का क्रेज बढ़ गया है, वीडियो कॉल से हो रहा है ई पिंडदान, अरेल घाट पर ऑनलाइन व्यवस्था। फ्लिपकार्ट ने बेंगलुरु के मेजेस्टिक मेट्रो स्टेशन पर अनोखा विज्ञापन लगाया, दीवार पर दिखाई चलती बिग बिलियन डेज ट्रेन। स्टैटिक बिलबोर्ड की जगह प्रोजेक्शन से बनाई गई चलती ट्रेन, मेजेस्टिक स्टेशन पर फ्लिपकार्ट की बीवीडी ट्रेन ने यात्रियों को किया हैरान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एशियन गेम्स में यूपी की बेटी का कमाल, महिलाओं की 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में 2026 में पुरुषों की 1500 मीटर रेस में जीता है सिल्वर मेडल। धाविका विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। विमेन्स 25 मीटर पिस्टल में भी भारत के नाम एक और पदक, ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। भारत का बॉक्सिंग में चौथा मेडल पक्का हुआ, लवीना बोरगोहिन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सोने के रिकॉर्ड कीमतों के बीच दिवाली सीजन में चांदी की खरीदारी 17 से 18 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है, आयात नियमों में ढील के बाद बाजार में चांदी की भरपूर सप्लाई भी बने रहने का भरोसा। जरूरी कच्चे माल से महंगा होने से 1 अक्टूबर से एसी की कीमतों में 5 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी की आशंका, टीवी वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के दाम 3 से 4% बढ़ने की संभावना। यूएबीयू और आईबीए के बीच देर रात हुई बैठक, 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल टली, 5 डे वर्क वीक और पेंशन जैसी मांगों को तय समय सीमा में सुलझाने का भरोसा मिलने के बाद फैसला वापस। 28 सितंबर से शुरू हो रहे हफ्ते में 20 कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे और 20 ही नई कंपनियों की लिस्टिंग होगी इस साल, अब तक 96 मेन बोर्ड आईपीओ से 1.13 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। एनआईक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून में एफएमसीजी की वैल्यू ग्रोथ केवल 0.8% रही है, ग्रामीण बाजार में वॉल्यूम में 5% की गिरावट से कुल वॉल्यूम 2% की इसमें कमी आई है। बोइंग 737 मैक्स विमानों के ऑटोमेटेड फ्लाइट गाइडेंस सिस्टम में सॉफ्टवेयर ग्लिच की बात मानी है, लैंडिंग के दौरान नेविगेशन फेलियर होने का भी डर, ऑपरेशंस को सिस्टम रीसेट करने की सलाह दी गई। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद क्रूड 1.5% बढ़कर $106 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के लेकर बने तनाव में वीटीआई क्रूड में भी तेजी आई है। रेलवे 10 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच मुंबई चेन्नई जैसे शहरों को जोड़ने वाले 102 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

ट्रेनों को चलाएगा। सफर के लिए स्पेशल चार्ज वसूलने वाली इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। बीएसई ने निवेशकों से ज्यादा प्रीमियम पर बिक रहे विदेशी ईटीएफ में निवेश को लेकर बेहद सावधान रहने की सलाह दी है। विदेशी निवेश की लिमिट पूरी भरने के बाद कीमत अचानक से गिरने का जोखिम। जीआई ग्रुप होल्डिंग के मुताबिक कंपनियों में डिग्री की जगह स्किल और प्रैक्टिकल अनुभव को प्राथमिकता। टियर टू और टियर थ्री शहरों में दो तिहाई कंपनियां सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप देकर करती हैं शॉर्टलिस्ट। सेफराजी ट्रोल्स हो रहा है कि मिसयूज पर बढ़के सलमान खान कहा सेंसर लगाने की सख्त जरूरत है, मैं सीरियस हूं, मेरे भी फर्जी वीडियोज आते हैं। 52वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया, 400 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 401 करोड़ के पार। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की द विवैन की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर फिर से किया भीषण हमला, राजधानी कीव, खार्किव और डिनिप्रो को बनाया गया निशाना, 3 की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की एकेडमी ऑफ साइंसेज में आग लग गई थी। यूक्रेन जंग पर ब्रसेल्स में यू के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक हुई, यूक्रेन को सैन्य मदद और हाइब्रिड खतरे से निपटने को लेकर चर्चा। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा रूस और अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण वार्ता बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, जब यह बातचीत शुरू हो तो सावधानी पूर्वक बातचीत की जरूरत है। इजरायली मीडिया का दावा पीएम नेतन्याहू को 2023 अक्टूबर के हमास के हमले की पहले से जानकारी थी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुपचुप तरीके से यूएई का दौरा किया, अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, दोनों ही देशों की तरफ से इस मीटिंग का नहीं जारी किया गया कोई आधिकारिक बयान। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते का बड़ा बयान, कहा आधुनिक युद्ध के लिए ड्रोन बहुत जरूरी है, इसीलिए ताइवान को लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर ड्रोन विकास पर काम करना चाहिए। हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री पीटर मोज़ॉर्को और दो अन्य नेताओं की संसदीय छूट खत्म कर दी, इस फैसले से उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच में मदद मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पोप से लिया मुलाकात की, यूरोप की शांति और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों को फ्रांस पुलिस ने खदेड़ा, उत्तरी तट के फ्रेंच बीच पर पुलिस ने प्रवासियों को खदेड़ने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले।

0: अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मचे बवाल के बारे में बताएं, जहां कथित गैंगरेप के मामले में न्याय की मांग अचानक लूटपाट में बदल गई। जिस वक्त एलपीयू में इंसाफ के नारे लग रहे थे, ठीक उसी वक्त भीड़ में घुसे कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी मॉल के शटर्स तोड़ दिए। कपड़े, जूते, आईफोन, लैपटॉप लूट लिए गए। फ्री शॉपिंग के नारे लगे। सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन को कुछ लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत हाईजैक कर लिया था? देखिए, इस बवाल की शुरुआत हुई रेडिट पर लिखी एक गुमनाम पोस्ट से, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में कथित गैंगरेप और छात्रा की खुदकुशी का दावा किया गया। यह खबर व्हाट्सएप के जरिए बहुत तेजी से फैली। देखते ही देखते 2000 छात्र सड़कों पर उतर आए। पुलिस समझती रही, लेकिन गुस्सा इस कदर भड़का कि हाईवे जाम हुआ, पथराव हुआ, गाड़ियों में आग लगा दी गई। सवाल यह है कि क्या बेकाबू सोशल मीडिया अब हिंसक घटनाओं की वजह बन रहा है? इसके बाद आपको उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए मस्जिद पर बुलडोजर चलने का सच बताएंगे। रोड के चौड़ीकरण के दौरान शाही मस्जिद के कुछ हिस्से को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके विरोध में पथराव भी हुआ। प्रशासन की कार्रवाई को रोकने के लिए मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जो हिस्सा पहले से तय था कोर्ट के ऑर्डर से कि उसे टूटना है, उसे तोड़ा जाए। और इसके बाद प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच समझौता हुआ। कमेटी ने खुद ही 3 फीट का हिस्सा हटाने पर सहमति जता दी। देखिए, और इसके बाद आपको दिल्ली में हुए थप्पड़ कांड का संपूर्ण सच बताएंगे। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक सड़क के निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। आम आदमी पार्टी इसे गुंडागर्दी बता रही है। बीजेपी थप्पड़ खाने वाले लड़के की कुंडली निकाल रही है। आज हम इस पूरे विवाद से पर्दा उठाएंगे। अगली खबर नेपाल से, जहां एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। सैकड़ों घर पानी में समा चुके हैं और वहां अब तक 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए, ये भयावह तस्वीरें हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी आसमानी आफत टूट पड़ी है। लगातार हुई भारी बारिश से पूरा जो बैंकॉक शहर है वो जलमग्न हो चुका है। प्रशासन ने सभी 50 जिलों में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बारिश बाढ़ की वजह से 52,000 से ज्यादा परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, घर पानी में डूब गए।
1: เราก็จะเห็นรถของยกสูงนะครับอย่างเช่นรถบรรทุกหรือว่า
0: और अगली खबर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से चालान कटा है और आप भरने में टालमटोल कर रहे हैं, जो अब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नया फॉर्मूला सुझाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ई चालान नहीं भरा तो उसकी रकम बिजली के बिल में जोड़ दी जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ चालान काटने से काम नहीं चलेगा, जब गाड़ियों की जब्ती, फिटनेस पीयूसी रोकने और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने जैसे सख्त कदम उठाने का वक्त आ चुका है। जिस वक्त चालान को बिजली बिल से जोड़ने की बात हो रही है, तब आपको यह भी देखना चाहिए कि कैसे कैसे चालान काटे जा रहे हैं। खबर बड़ी दिलचस्प। बेंगलुरु में सड़क पर लगे हाईटेक एआई कैमरे ने स्कूटी पर गिटार ले जा रहे व्यक्ति का चालान काट दिया। अब ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, पीछे इसने गिटार टांगा हुआ है, लेकिन एआई की नजर में ये उसके पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसने हेलमेट नहीं पहना था। चालान कट गया।

42 साल का लंबा इंतजार और एशियाई खेलों के ट्रैक पर एक नया इतिहास। भारत की धाविका विथ्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स में कांस्य पदक अपने नाम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने दिग्गज पीटी उषा के 1984 में बनाए गए ऐतिहासिक नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती है। उन्हें शहीद आजम यानी शहीदों में सबसे महान और सर्वोच्च इसलिए माना गया क्योंकि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक महान विचारक, लेखक और दार्शनिक भी थे। इतनी कम उम्र में मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़कर उन्होंने आजादी के बाद के भारत का एक स्पष्ट विजन यानी खाका तैयार किया था। उनके इस बौद्धिक स्तर ने उन्हें अन्य क्रांतिकारियों में आजम यानी सर्वोच्च महान बनाया। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी तब उनके चेहरों पर डर का कतरा भी नहीं था। वो इनकलाब, जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमकर सूली पर इस देश के लिए चढ़ गए और इस अभूतपूर्व साहस ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए और वो देशवासियों के दिलों में सर्वोच्च स्थान पर बैठ गए। और आज भी आप भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। जब उन्हें फांसी दी गई तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल 5 महीने थी। क्या उम्र होती है? ये वो उम्र होती है जब आजकल के युवा करियर के विकल्प तलाश रहे होते हैं, जीवन के नए ख्वाब बुन रहे होते हैं। सोचिए उस उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते सिर्फ इस देश की मिट्टी के लिए, उसकी आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान जितना फौलादी था उनका विवेक और बौद्धिक गहराई उससे भी कहीं अधिक गहरी थी। वो मानते थे कि ज्ञान ही असली ताकत है, किताबों से बड़ा कोई हथियार नहीं। हर युवा के जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और बिना उद्देश्य या मकसद के जीवन व्यर्थ है। और वो ये भी कहते थे कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए। और हमें लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए शहीद आजम भगत सिंह से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। देखिए,

0: लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अचानक लूटपाट और डकैती में बदल जाता है तो यह कितना खतरनाक और चिंताजनक है। जिस वक्त पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की कथित आरोपों के मुताबिक गैंगरेप और खुदकुशी के दावे को लेकर युवाओं का एक हुजूम न्याय मांग रहा था, उसी वक्त भीड़ में शामिल कुछ लोग एक मॉल के अंदर इस विरोध प्रदर्शन की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसको हाईजैक कर रहे थे। हम ये नहीं जानते कि ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र थे या बाहर से थे, तो कौन से लोग थे, और कोई दावा कर भी नहीं सकता क्योंकि इनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग एक मॉल के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की, लूटपाट कर रहे थे, और इन लोगों ने कई दुकानों के शटर तोड़कर वहां रखे कपड़े, महंगे जूते, आईफोन, लैपटॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स से बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान लूटा। और ना सिर्फ लूटा बल्कि इन लोगों ने वहां भीड़ के बीच फ्री शॉपिंग के नारे भी लगाए। इन नारों का मतलब यह था कि जो लोग इन दुकानों से जितना लूट सकते हैं उन्हें इसकी खुली छूट है और उन्हें आज ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा, और वहां हुआ भी है। करीब 2 से 3 घंटे तक इस मॉल को लगातार लूटा गया। और सोचने वाली बात यह है कि जो लोग लूटपाट कर रहे थे उन्होंने किताबों की दुकान का शटर तक छूने की कोशिश नहीं की, यानी किताब की दुकान की तरफ नजर भी नहीं फेरा। ये वो तमाम लोग सिर्फ कपड़े, महंगे जूते, आईफोन, लैपटॉप लूटने गए थे, और किताबों की दुकानें इस लूटपाट में पूरी तरह सुरक्षित रही। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर तस्वीरों में लूटपाट करने वालों की उम्र यही 20-25 साल के बीच थी, और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि पुलिस वहां पर बता रही है। पहले देखिए।
1: चोरी किया सामान।

0: कर रहे हैं फ्री में शॉपिंग
1: भाई। शॉपिंग डन,
2: शॉपिंग डन, कुछ नहीं होगा।
3: लूटपाट की इन घटनाओं ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार ये कौन से लोग थे जो इस विरोध प्रदर्शन को हाईजैक करने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन यहां प्रदर्शनकारी छात्रों और लवली यूनिवर्सिटी के जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके प्रबंधन का ये भी आरोप है कि बाहरी लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं और ऐसा बिल्कुल हो भी सकता है। हम भी मानते हैं कि बाहरी लोगों द्वारा इस छात्र आंदोलन को हाईजैक करना संभव है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये बाहरी लोग इस यूनिवर्सिटी में आए कैसे, इस यूनिवर्सिटी में उन लोगों को रोका कैसे नहीं, जबकि ये यूनिवर्सिटी छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। जब कोई छात्र इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आता है तो उस छात्र को बाकायदा एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस यूनिवर्सिटी जैसी सुरक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी, टॉप सिक्योरिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये सब हो रहा था और ये बाहरी लोग थे तो इस यूनिवर्सिटी के सुरक्षा इंतजाम कहां थे? ये यूनिवर्सिटी पूरे कैंपस में 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों, 7000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों, 7200 सीसीटीवी कैमरों और उनकी लगातार निगरानी करने का दावा करती है। और जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के एक साल की आमदनी कितनी है? इसका सालाना रेवेन्यू है 1153 करोड़ रुपए। लेकिन कल जब यह हिंसा हुई और हॉस्टल से लेकर मॉल तक दुकानों में तोड़फोड़, कैंपस में सब कुछ तोड़फोड़ लूटपाट, तब भीड़ को रोकने वाला कोई सिक्योरिटी नहीं। रोकने वाला तो छोड़िए, जिन लोगों ने मॉल को लूटा वो बाहर आकर कहां गए किसी को पता ही नहीं चला, जबकि यह मॉल किसी बाहरी इलाके में नहीं था। यह मॉल यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद है जिसे यूनिमॉल कहा जाता है और यहां 50 से ज्यादा दुकानें भी मौजूद हैं। यही नहीं, ये पूरी यूनिवर्सिटी 600 एकड़ इलाके में फैली है। और जानते हैं ये इलाका कितना बड़ा है? गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 63 एकड़ की जमीन पर फैला है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद जैसे कुल 10 स्टेडियम समा सकते हैं और यहां 5000 या 10000 बच्चे नहीं पढ़ते, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 40000 बच्चे। और सिर्फ भारतीय बच्चे ही नहीं, चाइना, इंडोनेशिया, माली, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और DR कांगो जैसे देश के विदेशी छात्र भी इन छात्रों में शामिल हैं। अगर सिर्फ हॉस्टल की बात करें तो 25000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर बने हॉस्टल्स में रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कल जब छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की, तब उस दौरान ना तो पुलिस कुछ कर पाई, ना ही यूनिवर्सिटी का प्रशासन कुछ कर पाया, ना ही वो तमाम सुरक्षा के इंतजाम जिसका दावा ये अपने प्रोस्पेक्टस में करते हैं वो दिखा। देखिए आपको इस घटना की जड़ में लेकर चलते हैं। ये बताते हैं कि इस हिंसा में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। पिछले हफ्ते तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सब कुछ सामान्य था, सभी छात्र मिड टर्म परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। यह भी दावा है कि छात्रों या उनके किसी भी गुट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी थी और ना ही यूनिवर्सिटी में कोई आंदोलन बुलाया गया था। ये पूरी हलचल शुरू होती है 26 सितंबर, और 26 सितंबर को भी तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट में यह आरोप लगाया गया कि यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल GH3 के कमरा नंबर 504 में रहने वाली एक छात्रा के साथ 3 बाहरी लोगों या प्लम्बर ने गैंगरेप किया है। यह पोस्ट क्योंकि रेडिट पर लिखी गई थी इसलिए इसे लिखने वाले का नाम या इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी। और रेडिट पर ऐसा ही होता है। एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपनी पहचान छिपाकर कुछ भी लिख सकता है या बता सकता है, और इस पोस्ट के जरिए भी ऐसा ही करने की कोशिश हुई। इसमें ये तक आरोप लगाया गया कि इस कथित गैंगरेप के बाद जब ये पीड़ित छात्रा वार्डन के पास शिकायत लेकर गई तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बदनामी के डर से पूरे मामले को दबा दिया, पीड़ित छात्रा को घर भेज दिया और उसने आत्महत्या कर ली। जब रेडिट पर लिखा गया ये पोस्ट तेजी से वायरल हुआ, बाद में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के व्हाट्सएप पर पहुंचने लगा तो छात्रों का एक बहुत बड़ा धड़ा नाराज हो गया और ये वाजिब बात भी थी। उन्होंने अपने व्हाट्सएप में ये लिखना शुरू कर दिया कि अगर अभी आवाज नहीं उठाई गई तो बाहरी लोग यूनिवर्सिटी में आकर लड़कियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहेंगे, कभी बंद नहीं होगा। अब दावा है कि यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कई छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के गैंगरेप और खुदकुशी के दावे को सच मान लिया था, और हमें लगता है कि जब यूनिवर्सिटी को यह पता चल चुका था तो उसे बच्चों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा रेडिट पर लिखा गया यह पोस्ट आग की तरफ फैलने लगा और इसमें दो चीजें और जोड़ दी गई। पहली बात, इसमें यह लिखी गई कि गैंगरेप की यह घटना 22 से 23 सितंबर के बीच हुई, और दूसरा इसमें 10 सितंबर की उस घटना को भी जोड़ दिया गया जिसमें तेलंगाना की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी और उस मौत का कारण अब तक सामने नहीं आया था। बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद उस छात्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और उस मामले को भी यूनिवर्सिटी ने अपनी राजनीतिक पहुंच से दबा दिया होगा, और यही सारी बातें सोचकर 2000 छात्र बुरी तरह भड़क उठे। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जुटकर ये बच्चे न्याय की मांग करने लगे। 27 सितंबर को सुबह 4 बजे तक नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया। हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। इस दौरान पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने की भी कोशिश की और यह भी कहा कि किसी भी छात्रा के गैंगरेप और खुदकुशी का कोई प्रमाण नहीं मिला है और यह एक अफवाह है, लेकिन छात्र फिर भी नहीं माने। छात्र लगातार विरोध करते रहे, कहते रहे कि पुलिस यूनिवर्सिटी के बड़े लोगों को बचा रही है, सच को दबाया जा रहा है। काफी हंगामा हुआ और उस हंगामे के बाद पुलिस ने छात्रों के भरोसे के लिए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 5 छात्रों को शामिल करते हुए एसआईटी का गठन किया और यह सोचा कि अब शायद यह पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल शाम को यह विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो गया। आरोप है कि कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर और हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ उनकी भिड़ंत हुई। पुलिस का दावा है कि उन छात्रों ने उन पर पथराव किया और इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि ये पुलिस का दावा है कि छात्रों ने उन पर पत्थरबाजी की। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाद में कुछ बाहरी लोगों ने पथराव किया और छात्रों के आंदोलन को बदनाम किया गया। इनमें भी सबसे ज्यादा तनाव गर्ल्स हॉस्टल यानी GH3 की बिल्डिंग और प्रशासनिक ब्लॉक्स के बाहर रहा, जहां इमारतों की खिड़की दरवाजों के शीशे तोड़ दिए गए और परिसर में रखी गई चीजों और कुछ हिस्सों में आग लगा दी गई। यही नहीं, जो वहां पर भीड़ हिंसक हुई उसमें शामिल कुछ लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मॉडल के तौर पर रखे गए टैंक, ट्रक, हवाई जहाज पर भी चढ़ गए और वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। आगजनी की तस्वीरें आप देख ही रहे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस की 3 गाड़ियों को पूरी तरह फूंक दिया गया और आरोप है कि वहां से गुजर रहे आम नागरिकों की गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी की कोशिश हुई, जिससे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। देखिए,
0: आप तोड़फोड़ कर रहे हो और सिर्फ ये नहीं, यूनी मॉल में घुसते हो, आप वहां मिठाई की दुकान खोलते हो, मिठाइयां चुराते हो, आप लैपटॉप्स की दुकान खोलते हो, आप लैपटॉप चुराते हो, ईयरफोन चुराते हो, मोबाइल के कवर चुराते हो, नीचे आप जाते हो स्टोर में शैम्पू वगैरह ना जाने क्या क्या चीजें चुराते हो, तो आप प्रोटेस्टर्स नहीं थे, आप चोर थे उनकी आर में। भीड़ और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। इनने कोई भी अब्बा सुनी, कल एक मैसेज आ गया कि लड़की का रेप हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। अब किसी को ये भी नहीं, कोई मुझसे कह रहा 2 दिन पहले घर चली गई है, कोई कह रहा वो 3 दिन पहले घर चली गई है, किसी को पता ही नहीं है। टोटली बेसलेस चल रहा है कि वो लड़की है कहाँ, कहाँ की थी, उसके दोस्त कौन है, अरे कोई तो सामने आता।
3: अब इस हिंसा के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस घटना को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ वो घटना हुई या फिर अफवाह फैलाई गई जिसे रेडिट के जरिए फैलाया गया। अगर पुलिस की माने तो उसे अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। आपने इस बच्चे की भी बात सुनी, पुलिस कह रही है उसे कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि गर्ल्स हॉस्टल में गैंगरेप के बाद एक छात्रा ने आत्महत्या की है। उनके पास कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो छात्राओं के सभी रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में किसी छात्रा की मौत या आत्महत्या की अभी तक पुष्टि हुई नहीं है। अब इतना बड़ा कैंपस है, हजारों हजार छात्र हैं। हालांकि पुलिस ने छात्रों के गुस्से को देखते हुए एक FIR दर्ज की है और इस मामले की जांच के लिए एक SIT भी बना दी गई है जिसमें कुछ छात्र भी शामिल रहेंगे। यानी अब तक की जांच रेडिट पर लिखे गए दावों को सही नहीं मानती और हमने खुद भी इस पूरे मामले की पड़ताल की। गर्ल्स हॉस्टल के जिस कमरे में छात्रा के गैंगरेप का दावा हुआ था उसी कमरे में रहने वाली 3 छात्राओं का आज तक की तरफ से हमारी सहयोगी ने इंटरव्यू किया और उनके मुताबिक वो 2 महीने से वहां रह रही हैं और इस कमरे में गैंगरेप और खुदकुशी का जो दावा किया जा रहा है वो उनकी नजर में, उनके दावे के अनुसार सही नहीं है। सुनिए,
1: रेप हुआ है और आप ही के रूम में हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या?
4: हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी रूम्स का हमें कोई आइडिया नहीं है।
1: आपका क्या कहना है? आपके पेरेंट्स ने फोन किया, वर दे नर्वस, कुछ बोला उन लोगों ने? कुछ
5: नहीं, कुछ फोन नहीं
1: आया। घर से क्या हुआ था? कुछ लोग क्या आए थे पूछने के लिए?
4: जी, सुबह सुबह पुलिस वाले आए थे हमसे पूछने के लिए कि क्या हुआ है, आपने कुछ सुना है क्या ये सब? तो हमने बोला कि हमें नहीं पता।
6: क्वेश्चन किया कि लाइक आप लोगों के आप लोगों को कोई आइडिया है ऐसा कुछ हुआ है? हमने बोला नहीं, हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है। बट सारा प्रोटेस्ट हमें रात को पता चला, हमने खुद जाके देखा है और ऑब्वियसली अभी वार्डन हमें कुछ नहीं बता रही है, कुछ भी नहीं बता रही है केस से रिलेटेड, ये हुआ है नहीं हुआ है किसी सवाल।
1: कितनी लड़कियां उस रूम में?
6: हम 3 हैं
1: बस। और आप बोल रहे हो कि आपके रूम में इस तरह से कुछ नहीं हुआ?
6: हमारे रूम का नाम फालतू में आ रहा है बस।
3: हम चाहते हैं कि इस मामले में जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरीके से कोई दावे को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत ना माना जाए। और यहां हम ये भी कहेंगे कि अगर जांच के बाद ये साबित हो जाता है कि रेडिट पर लिखा गया पोस्ट पूरी तरह गलत था, कोई सच्चाई नहीं थी, तो आपको यहां ये भी समझना होगा कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है और सोशल मीडिया के जरिए कैसे झूठी कहानी गढ़कर दंगे तक भड़काए जा सकते हैं। ये सवाल आज सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी लड़की की जानकारी सामने नहीं आई है। आपने उन 3 बच्चियों का इंटरव्यू देख लिया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने एक स्टडी में बताया है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें जो है ना वो सच्ची खबरों की तुलना में जानते हैं कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा दूर, कहीं ज्यादा लोगों तक फैलती है और झूठी खबरों के रिट्वीट होने की संभावना सच्ची खबरों से करीब 70% ज्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि किसी झूठी खबर को 1,500 लोगों तक पहुंचाने में जितना समय लगता है, सच्ची खबर को उतने लोगों तक पहुंचाने में लगभग 6 गुना ज्यादा समय लगता है और झूठी खबरें तेजी से और ज्यादा बड़े रिट्वीट चेन बनाती हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सिर्फ बॉट्स होते हैं, बॉट्स यानी मशीनों में होने वाली छेड़छाड़ को हटाने के बाद भी झूठी खबरों को तेजी से फैलने में कोई अंतर नहीं आता और इनमें भी एक्स और रेडिट पर लिखे गए पोस्ट लोगों को सबसे ज्यादा गुमराह और झूठ की दुनिया में ले जाते हैं। MIT की इस रिपोर्ट का यही दावा है। जैसे 2020 के दिल्ली दंगों में रेडिट पर कई गलत दावे किए गए, कहानियां लिखी गई, लोग गुमराह हुए, उन्होंने एडिटेड क्लिप्स को भी सही मान लिया। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रेडिट पर यह दावा किया गया था कि वॉशिंगटन DC के एक पिज्जा रेस्टोरेंट से हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एक गुप्त मानव तस्करी और बाल शोषण रैकेट चला रहे। अब इस अफवाह का असर यह हुआ कि एडगर वेल्च नाम का एक व्यक्ति असॉल्ट राइफल लेकर उस रेस्टोरेंट में घुस गया। उसने गोलियां चला दी, जबकि रेडिट पर लिखी गई ये बात पूरी तरह गलत और आधारहीन और फेक निकली। यानी आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मौजूदा वक्त में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खबरों और नई जानकारी के लिए विश्वास करते हैं। कई लोगों से आप बात कीजिएगा तो कहें, अरे हमने देखा है। कहां देखा है? सोशल मीडिया पर देखा है, व्हाट्सएप पर आया है। और सोशल मीडिया पर जो बातें बताई जाती हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर लिखी इन अपुष्ट जानकारियों से क्या हो सकता है वो सबने देख लिया है। अभी एक बार फिर हम कह रहे हैं, जब तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की घटना का पूरा सच सामने नहीं आता है, जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक किसी पर भी उंगली उठाना सही नहीं। मुमकिन है कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, लेकिन यह भी मुमकिन है कि उस कमरे में तीनों लड़कियां बता रही हैं कि हम कई महीने से रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें कुछ ऐसा पता नहीं है। और ऐसे में अगर वाकई गलत खबर फैलाई गई सोशल मीडिया के जरिए तो यह कितना भयानक है, ये आप देख रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। अब स्थिति यह है कि सैकड़ों छात्र छात्राएं अपना बैग पैक कर रही हैं, यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें वहां पर डर लग रहा है। देखिए,

0: कोई भी घुस रहा अंदर कॉलेज के, कोई मना नहीं है, कोई भी घुस रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ले जा रहे हैं, बाइक बुलेट ले जा रहे हैं, फोर व्हीलर में भर भर के 10-10 लोग घुस रहे हैं अंदर।
1: ऐसा डरे हुए ना,
0: बहुत ज़्यादा डरे हुए, अभी भी डरे हुए हैं।
2: यूनिवर्सिटी हमें मैसेज करती है कि 10 डेज का हॉलीडे मिला हुआ है, लाइक क्लासेस नहीं रहेंगे। सो सबने टिकट्स किए अपने घर घर के एंड अभी जा रहे हैं अपने घर।

0: खैर, इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे तीन और थ्योरी चल रही है। इनमें पहली थ्योरी खुद बीजेपी ने दी है, जिसमें पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि 30 सितंबर 2026 को जालंधर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और बीजेपी के मुताबिक इस रैली में जुटने वाले भीड़ और उसकी नशा मुक्त पंजाब यात्रा से घबरा कर पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने जानबूझकर जालंधर फगवाड़ा क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की है और ताकि रैली में बाधा डाली जा सके। यानी बीजेपी ये कह रही है कि जिस क्षेत्र में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वहां गृहमंत्री अमित शाह की रैली में रुकावट डालने के लिए हालात बिगाड़े जा रहे हैं। दूसरी थ्योरी भी बीजेपी ने ही दी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए यह पूरा विवाद जानबूझकर खुद पैदा किया है। असल में पंजाब से कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी करके पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया और पार्टी की पंजाब सह प्रभारी गायत्री बिश्नोई को लेकर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं और बहुत निजी आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया पंजाब के कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह को आवंटित सरकारी बंगले में अवैध रूप से रह रहे हैं और इसी सरकारी बंगले में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई भी रह रही हैं और सुखपाल सिंह खैरा ने दोनों की तस्वीरें भी जारी की। बहुत विवाद इस पर हो रहा है और अब बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने LPU में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हिंसा की ये स्क्रिप्ट लिखी है और बीजेपी कह रही है, जबकि गायत्री बिश्नोई ने इन आरोपों को गलत बताया और ये कहा है कि राजनीति के लिए उनका चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है। तीसरी थ्योरी आम आदमी पार्टी ने दी है, पार्टी का कहना है कि अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए विपक्ष पंजाब का माहौल खराब करने और यूनिवर्सिटी के बहाने सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा यहां एक और थ्योरी इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर को लेकर चल रही है, नाम है अशोक मित्तल। ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्हें साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने कोटे से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा था। उस समय वो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी भी माने जाते थे, लेकिन इसके बाद अप्रैल 2026 में ईडी ने अशोक मित्तल और उनसे जुड़े कुछ परिसरों पर छापेमारी की और इस छापेमारी के महज 10 दिनों के अंदर अप्रैल महीने में ही वो आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब इसे लेकर भी खूब विवाद हो रहा है, जहां कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि अशोक मित्तल अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की खबर को छिपा रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि अशोक मित्तल के बीजेपी में शामिल होने का बदला लेने और उनकी यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने के लिए इस अफवाह और हिंसा को हवा दी गई है। यहां एक और अजीब बात यह है कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर पंजाब की 2 यूनिवर्सिटी में हिंसक घटनाएं हुई और दोनों घटनाओं में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे बड़ी थी। सबसे पहले पंजाब के राजपुरा के पास चिटकारा यूनिवर्सिटी में हिंसक झड़पें हुई, फिर वहां से करीब 140 किलोमीटर दूर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ। 25 सितंबर की रात को जब चिटकारा यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ तब वहां भूत के कारण 2 लड़कियों के गायब होने की अफवाह फैल गई थी और इसके कारण यूनिवर्सिटी में बहुत तनाव रहा। और जब ये बवाल शांत हुआ तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के आरोपों के मुताबिक हुए गैंगरेप और आत्महत्या के दावे को लेकर ऐसी हिंसा भड़की कि पूरे यूनिवर्सिटी परिसर को 10 दिनों के लिए बंद करना पड़ा और मिड टर्म की परीक्षाओं को भी अभी स्थगित कर दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 500 साल पुरानी शाही मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का सच क्या है और क्यों इस हिंसा के पीछे भी सोशल मीडिया को बड़ी वजह माना जा रहा है। यानी अब तक आपने ये देखा कि कैसे पंजाब की 2 यूनिवर्सिटीज में सोशल मीडिया पर किए गए दावों के कारण हिंसा भड़की, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि इसी सोशल मीडिया के कारण कैसे उज्जैन में आज पुलिस पर हिंसक भीड़ ने पथराव कर दिया। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इस पत्थरबाजी के पीछे की पूरी कहानी समझिए। उज्जैन में पिछले कई महीनों से 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए मुख्य रूप से कई सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इन्हीं में एक सड़क, जो सड़क मार्ग है, वो उज्जैन के कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक जाता है। 12 मीटर चौड़ा है और प्रशासन इसे करना चाहती है 15 मीटर चौड़ा। इसके लिए इस सड़क मार्ग में आने वाले कई मकानों, कई धार्मिक स्थलों का कुछ हिस्सा तोड़ा जा रहा है, जिनमें मंदिर भी है और मस्जिद भी है, दोनों शामिल। आज भी स्थानीय प्रशासन इस इलाके की शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाने के लिए आया था, जिस पर हाईकोर्ट ने खुद अपनी सहमति दी थी। यह परमिशन हाईकोर्ट की तरफ से मिला हुआ है। इसी महीने 9 सितंबर को हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने मस्जिद कमेटी हो और मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें नगर निगम के नोटिस को चुनौती दी गई थी कि भाई यहां पर ये डेमोलिशन नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये होगा। अब कोर्ट ने सार्वजनिक हित और सिंहस्थ महाकुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण को जरूरी मानते हुए सहमति से कुछ हिस्से को तोड़ा जा सकता है ये कह दिया और उसी फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की। जब रविवार रात को यानी कल रात को स्थानीय लोगों को ये पता चला कि प्रशासन शाही मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ने के लिए आने वाला है, तो दावा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, महिलाएं, बच्चे इस मस्जिद को बचाने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए और रात भर मस्जिद के अंदर और बाहर डटे रहे। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भी 2000 पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया। इसके बाद कार्रवाई से पहले प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच बैठकें भी होने लगी ताकि आपसी सहमति बने, कोई नतीजा निकाला जा सके। लगातार कई बैठकें की गई और उसके बाद यह तय हुआ कि मस्जिद का करीब 3 फीट का ही जो हिस्सा है वो हटाया जाएगा, सिर्फ 3 फीट, और इस कार्रवाई में जितनी भी दुकानें प्रभावित होंगी उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने जब खुद इस पर सहमति दे दी तो आज सुबह 8 बजे कमेटी से जुड़े लोग खुद ही हथौड़े से उस हिस्से को तोड़ने लगे और यहां तक कोई विवाद या हंगामा नहीं, खुद ही तोड़ रहे थे। हलचल तब बढ़ी जब सुबह 9 बजे सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि स्थानीय प्रशासन मस्जिद पर बुलडोजर चला रहा है। कई हैंडल से तो फेक वीडियोस जारी कर दिए गए। इस अफवाह के बाद शाही मस्जिद के पास भारी भीड़ जमा हो गई और अचानक पुलिस पर पथराव शुरू हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इस झड़प में एक महिला थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद आज ही यह मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचा और मुस्लिम पक्ष ने तत्काल बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को फिर खारिज कर दिया और यह कहा कि मस्जिद का 3 फीट हिस्सा शांतिपूर्वक हटाना होगा। यहां कई लोग सोशल मीडिया पर यह दावा भी कर रहे हैं कि हिंदुओं के महाकुंभ के लिए सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही है, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह कहते हैं कि उज्जैन में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सबसे ज्यादा 12 मंदिरों को हटाया गया, जबकि मस्जिदों में केवल 3 जगहों पर सहमति से कुछ हिस्से तोड़े गए हैं और इनमें भी मस्जिदें पूरी नहीं हटाई गई हैं। मस्जिदों के उतने ही हिस्से को हटाया गया है जितना सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जरूरी था, या फिर एनक्रोचमेंट था। यहां असल में मुद्दा यही है कि जब मंदिर हटाया जाता है तो वहां पर इस तरह का विरोध नहीं हुआ है और जब मस्जिद के कुछ हिस्से हटाए जा रहे हैं तो लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं और उसका विरोध सड़कों पर पथराव करके भी किया जा रहा है। हाल ही में उज्जैन में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने पर खूब विवाद हुआ था। जब ये प्रतिमा वहां से हटाई नहीं जा सकी तो हिंदू समुदाय के लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, अब मस्जिद को लेकर कार्रवाई हो रही है, अब मुस्लिम पक्ष इससे नाराज है। यहां असली मुद्दा यह है कि जब धार्मिक स्थलों की बात आती है तो सरकार के लिए काम आसान नहीं होता, चाहे हाईकोर्ट का ऑर्डर ही क्यों ना हो। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पैतृक घर पर खुद हथौड़ा चलाया था और लोगों से अपील की थी कि वो सहयोग करें, लेकिन धार्मिक मुद्दे कई बार इतने जटिल होते हैं कि लोग इसको आसानी से स्वीकार नहीं करते और ये पूरी दुनिया में होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे देशों में जब ऐसी कोई चीज होती है तो वहां धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं जाता बल्कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी की मदद से पहियों पर लाकर रिलोकेट कर दिया जाता है। और धार्मिक स्थल ही नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पेड़ भी काटे नहीं जाते बल्कि उन्हें रिलोकेट किया जाता है। हमें लगता है कि हमारे देश की सरकारें भी इन विकल्पों के बारे में सोच सकती हैं। यहां हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब विकास के लिए धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की बात आती है तो इस पर हंगामा होता है, लेकिन जब इसी विकास के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो कितने लोग उसके खिलाफ सड़कों पर आते हैं। 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2020-2021 से 2023-24 के बीच नेशनल हाईवेज के विकास के लिए कुल लगभग 57,11,000 पेड़ काटे गए। लेकिन सोचिए, पेड़ों के लिए इतना गुस्सा, पत्थरबाजी की नौबत कभी देखी है? अब आपको दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का संपूर्ण थप्पड़ कांड दिखाते हैं। यह घटना 27 सितंबर की है, जब प्रवेश वर्मा तिलक नगर इलाके में विकासपुरी रिंग रोड के पास गुरुद्वारे वाली सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान घटनास्थल पर आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह भी आ गए। उन्होंने नई बनी सड़क को अपने ही हाथों से उखाड़ा और उखाड़कर मंत्री प्रवेश वर्मा के हाथ में थमा दिया। जर्नैल सिंह ने कहा कि जो सड़क 15 घंटे भी ना चले उसकी क्वालिटी कैसी होगी। इस दौरान बहस बढ़ी तो मंत्री प्रवेश वर्मा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। इसी दौरान साहिब सिंह नाम का एक लड़का मोबाइल से लगातार वीडियो बनाते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। इस दौरान गाड़ी के पास पहुंचते पहुंचते माहौल गर्म हो गया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने आपा खो दिया, साहिब सिंह को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सामने आते ही बवाल मचा। आम आदमी पार्टी ने इसे सरेआम गुंडागर्दी करा देते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की, और मामला भी बड़ा था। सार्वजनिक रूप से एक मंत्री ने थप्पड़ जड़ दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह उस सत्ता का चेहरा है जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे भ्रष्टाचार छिपाने के लिए की गई मारपीट करा दिया। जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा उसने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी के बुलावे पर ही सड़क देखने आए थे। जब सड़क की स्थिति दिखाई तो मंत्री जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने कहा कि FIR दर्ज करा दी है और मंत्री को लिखित माफी मांगनी होगी। चौतरफा घिरे मंत्री प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी सामने रखी। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह कई दिनों से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स पर ठेकेदार से सेटिंग कराने, कमीशन दिलाने का दबाव बना रहे थे। जब कमीशन नहीं मिला तो रात में बनी सड़क को सुबह जानबूझकर उखाड़कर वीडियो बनाया गया। मंत्री का दावा है कि निरीक्षण के दौरान साहिब सिंह नाम के इस लड़के ने उनके परिवार को लेकर भद्दी गालियां दी, जिसके बाद आवेश में आकर उन्होंने हाथ उठाया। इसके बाद बीजेपी ने इस लड़के को लेकर दावा किया है कि जिसे मासूम युवक बताकर पेश किया जा रहा है वो असल में तिलक नगर थाने का दर्ज अपराधी है। इसी साल 2 जून को कृष्णापुरी इलाके में गाड़ी रोकने को लेकर MCD के एक सफाई कर्मचारी को बेहोश होने तक पीटा गया था। उस मामले में साहिब सिंह आरोपी था और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। इधर बीजेपी ने तंज कसा कि अरविंद केजरीवाल गुंडों को विक्टिम कार्ड पहनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ जड़ा था। इधर बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि ये युवक विधायक जर्नैल सिंह का समर्थक है, उनका सोशल मीडिया हैंडल यही संभालता है। देखिए,
1: जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
2: हम यहाँ पर आए थे, इनकी पीडब्ल्यूडी के विभाग से फोन आया था मिनिस्टर जी का ही, सर को यहाँ पे देखने के लिए आए थे, उन्हें दिखाने आए थे कि रोड की क्या हालत है। उन्हें दिखाया कि हाथ कैसे रोड उखड़ रही है।
0: अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी पर जा रहे हैं और पीठ पर बैग, राशन की बोरी, गिटार लेकर जा रहे हैं तो जरा संभल कर, हो सकता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का AI कैमरा आपके सामान को बिना हेलमेट वाला इंसान समझ ले और चालान थमा दे। IT हब यानी स्मार्ट बेंगलुरु में सुपर स्मार्ट कारनामा हुआ है। यहाँ सौविक दत्ता नाम के एक जराम अपनी पत्नी की स्कूटी पर बड़े आराम से अकेले जा रहे थे। पीठ पर उनके गिटार टंगा हुआ था। जनाब ने खुद तो हेलमेट पहना था लेकिन गिटार बेचारा खाली सिर था। बस फिर क्या था, सड़क पर लगे अत्याधुनिक AI कैमरे की नजर गिटार पर पड़ी, उसके दिमाग की बत्ती जली और कट गया चलान। इस चलान पर जुर्म लिखा था, पीछे बैठी सवारी बिना हेलमेट के है। सौविक की पत्नी को चलान का मैसेज मिला तो वो हैरान रह गई और जब चालान में फोटो देखा तो पति पत्नी दोनों ने सिर पीट लिया। परेशान सौविक ने जब सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा सुनाई तो बेंगलुरु पुलिस ने बड़े प्यार से कहा, अरे साहब एक मेल कर दीजिए, ठीक कर देंगे। चलिए, सिस्टम की मेहरबानी से चालान तो कैंसिल हो गया लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। माना या AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी चीज है लेकिन इसे ऑटो पायलट पर छोड़कर इंसानी दिमाग बंद कर देना ये कौन सी अक्लमंदी है। दिसंबर 2022 में बेंगलुरु में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत AI इनबिल्ट कैमरेज लगाए गए, जहां अब चालान काटने की रफ्तार तो बुलेट ट्रेन जैसी है लेकिन ये जो AI इनेबल्ड कैमराज हैं वो क्रॉस चेक की बात जब आती है तो सिस्टम सो जाओ मोड में चला जाता है। भाई AI कुछ कर रहा है तो उसका कोई ह्यूमन क्रॉस चेक होगा क्या? अफसर कहते हैं AI धीरे धीरे सीखता है, डेटा के साथ तेज होता है, तो अभी सीख रहा है। ठीक है, AI सीखता रहेगा, गलतियां करता रहेगा लेकिन खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? कई शहरों में पहले भी शिकायतें आई हैं, जब 4 साल से छोटे बच्चे को तीसरी सवारी बताकर चालान, कभी जीब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता देने पर चालान, अब गिटार का हेलमेट नहीं पहनने पर चालान। कैमरे ऑटोमेटिक लगा दिए, चालान ऑटोमेटिक कट रहे हैं, तो क्या एक बार इंसानी आंखों से क्रॉस चेक करने का काम नहीं करना चाहिए? ये तो सही है कि AI को इंटेलिजेंट बनाने के चक्कर में इंसानी सेंस को ताक पर रख दिया गया है। अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो आम लोगों के लिए त्योहारी सीजन से पहले एक झटके की तरह है। 1 अक्टूबर से माना जा रहा है कि TV, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन 8% तक महंगे हो सकते हैं। बिल्कुल अंजना, अगर इस दिवाली घर में नया AC, LED, TV, फ्रिज या वॉशिंग मशीन लाने की तैयारी कर रहे हैं तो जेब थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने इन प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा करने की तैयारी कर ली है। त्योहारों से ठीक पहले ब्लू स्टार, गोदरेज, हायर, डाइकिन और LG जैसी बड़ी कंपनियों ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साल 2026 में ये तीसरी बार है जब कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं। AC की कीमतें 5% से 8% तक बढ़ेंगी, यानी 50,000 का AC सीधे 3,000 से 4,000 रुपए महंगा हो सकता है। छोटे स्क्रीन वाले LED TV 10% से 20% तक महंगे हो सकते हैं, जबकि बड़े स्क्रीन वाले TV 10% तक महंगे होंगे। फ्रिज और वॉशिंग मशीन के दामों में 3% से 4% की वृद्धि तय मानी जा रही है। सवाल ये है कि आखिर अब ये सामान महंगे क्यों हो रहे हैं? इसकी सबसे प्रमुख वजह है कच्चे माल का बेकाबू होना। खाड़ी देशों में जंग की वजह से कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। AC में इस्तेमाल होने वाला कॉपर बीते साल 800 से 900 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 1,400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, यानी इसकी कीमतें 1.5 गुना तक बढ़ गई। AC में 3 से 4 किलो तक कॉपर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा समुद्री माल भाड़ा काफी बढ़ गया है और मजबूत होते डॉलर ने कंपनियों का बजट बिगाड़ दिया है। जंग की वजह से जहाजों को बंदरगाहों तक पहुंचने में 20 से 30 दिनों की देरी हो रही है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है। हालांकि आम खरीदार के लिए फिलहाल एक राहत की खबर भी है। डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 1 से 1.5 महीने का पुराना स्टॉक जमा है, इसीलिए मुमकिन है कि बढ़ी हुई कीमतें दिवाली के बाद ही लागू हों। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जब लोग आपकी तरक्की का राज नहीं खोज पाते तब वो चरित्र की तलाश शुरू कर देते हैं। नमस्कार।
3: चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
4: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
5: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने की
4: पटना
6: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
4: जयपुर
7: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
4: रांची
8: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है, हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
4: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
9: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है, वोट्स आर बीइंग स्टोलन, इलेक्शंस आर नॉट फेयर।
4: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं।
9: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
4: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई। ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
5: तो देख सकते हैं कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसओआई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है, हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई। दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसओआई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ, डिटेन करता हुआ, पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
4: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में। इसकी वजह अखिलेश यादव, जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है।

0: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
1: इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
2: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
3: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट इज व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
2: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
4: कौन बीजेपी? बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे हैं लोग।
2: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
5: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले, AISF, AISK, AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
2: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आर पार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
6: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संगठन संरचनाओं पर सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
7: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
8: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
2: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
9: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है और ये वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
2: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।

0: पे कोई विज्ञापन निकलता था तो विज्ञापन के पहले ही आशंका खड़ी होने लगती थी, हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
1: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
2: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
1: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
3: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा, समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था, संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
1: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
3: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
1: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
3: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में, हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
1: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
3: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
1: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
2: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
4: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
5: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
1: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए, तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
5: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का ही है जो इसको मार रहे हैं। ये मार
6: लगा के मुझे बोल रहे थे, मुझे जान दे गया
1: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
5: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
5: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जनरल सिंह ने सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत की, तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
7: गलत नहीं बोलना सर, ऐसा कोई बोल दिया बीजेपी के लोग कंप्लेन कर
8: सड़क की बना पाए,
9: आप बना दो ना, ऐसी मत बनाओ ना, ये तो 15 घंटे नहीं चलेगी,
8: 15 साल में
9: ये तो 15 मिनट नहीं चली,
8: 15 साल में
9: ये तो 15 मिनट नहीं चली।
1: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे।
10: अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, रोड पर देख लो, अरे रोड पर देख लो।
1: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
11: जी जर्नैल जी।
12: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
11: चाल? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
12: मैं तिलकनगर में हूँ।
11: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
13: कहाँ रह गए सर?
1: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आए और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
14: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
1: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
15: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
16: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
1: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
17: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
18: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
1: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा। दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप। यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा। बोले 727 लोगों को काटा गया नाम। आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश। जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर। आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला। कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट। जर्नल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा। हरसिमरत कौर का तंज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल। पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका सिंहस्थ। कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है। और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास धरना प्रदर्शन करने
1: पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है। हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
6: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है। वोट्स आर बीइंग स्टोलन। Elections are not fair.
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके।
6: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई। ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
2: तो देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है। हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई। दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ। पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में। इसकी वजह अखिलेश यादव, जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे। उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है?
7: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
8: इतना कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
9: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट इज व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
10: कौन बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
3: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले, AISF, AISK, AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
11: राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
12: राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूल किट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
13: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है और ये वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
1: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
14: यहां पे कोई विज्ञापन निकलता था तो विज्ञापन के पहले ही आशंका खड़ी होने लगती थी, हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
1: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
15: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
1: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
16: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा, समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था, संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
1: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
16: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
1: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
16: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में, हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते, वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
1: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
16: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
1: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
15: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
0: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
17: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
1: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
18: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
17: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
19: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
1: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
18: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
17: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी है। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
1: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा। उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशी पर जोर है। उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
18: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
17: देखिए 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
19: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
1: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता है और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
17: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
20: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
1: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठहर गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए, तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
20: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का ही है, ये जो इसको मार रहे हैं, ये मार
21: रहे।
20: ये उसका भांजा है जगनेल सिंह का, और ये वो लड़का है।
1: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
20: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं, और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
20: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नल सिंह ने सड़क उखाड़ कर घटिया निर्माण की शिकायत की, तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
22: बीजेपी के लोग कंप्लेंट कर
4: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहाँ से जाने लगे।
21: मंत्री जी अब बताओ
22: जा रहे हैं जाने नहीं।
21: हेलो मंत्री जी,
23: अरे कहाँ जा रहे हैं, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
4: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
24: जी जर्नैल जी।
25: जी प्रवेश भाई, क्या हाल चाल?
24: बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
25: मैं तिलकनगर में हूँ।
24: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
25: कहाँ
24: रहे सर?
4: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आया और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
26: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
4: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुँच गए।
27: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
28: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है, और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
4: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
29: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच कर थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
30: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, छोटी छोटी बच्चियां जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
4: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: किसी भी देश को जब भी आजादी मिल जाए और उसके नागरिक भय में जिए, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन का हट जाना होता है या इससे बहुत ज्यादा होता है?
1: कौन भय में जी रहा है?
0: नागरिक जी रहे हैं।
1: हाँ, भारत में
0: आप पहले फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल पाओगे बहुत सारी चीजें।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा, दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप, यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा, बोले 727 लोगों को काटा गया नाम, आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर, आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला, कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट, जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा, हरसिमरत कौर का तंज, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास धरना प्रदर्शन करने
1: की पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है, हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया, कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
6: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है, वोट्स आर बीइंग स्टोलन, Elections are not fair.
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं।
6: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई, ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया, अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
2: तो देख सकते हैं कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है, हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई, दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ, पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके, लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में, इसकी वजह अखिलेश यादव जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं, क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है,
7: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
8: इतना कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
9: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट्स व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
10: कौन बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
11: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले AISF AISK AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
12: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर तो सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
13: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
14: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है और यह वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
1: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में

0: खड़ी होने लगती थी। हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
1: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
2: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
1: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
3: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा। समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था। संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
1: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
3: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
1: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
3: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में, हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
1: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
3: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहां पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी

0: नौकरी आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
1: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
2: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
3: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
4: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
1: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
5: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
4: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
6: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
1: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का, दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
5: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
4: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी हैं। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
1: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा, उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जीताऊ प्रत्याशी पर जोर है, उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
5: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
4: देखिए 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
6: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
1: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
4: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
7: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
1: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खट गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
7: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का ही है जो इसको मार रहे हैं। ये मार ये उसका भाजा जर्नैल सिंह का और ये वो लड़का।
1: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
7: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एनसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
7: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह ने सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत की तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए। जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे।
8: अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
1: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
6: जी जर्नैल जी।
9: जी प्रवेश भाई, क्या हाल?
6: बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
9: मैं तिलकनगर में हूँ।
6: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
10: कहाँ रह गए सर?
1: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आया और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
11: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
12: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
13: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे, समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है, और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
1: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
14: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
15: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
1: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
3: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा, दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप, यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा, बोले 727 लोगों को काटा गया नाम, आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर, आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला, कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट, जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा, हरसिमरत कौर का तंज, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: करने की कोशिश जो है की जा रही है भाई,
2: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
1: सकता है कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने की,
2: पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
2: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
2: रांची
5: निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है, हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
2: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया, कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
6: मैं ये 3 साल से कह रहा हूं और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है, वोट्स आर बीइंग स्टोलन, इलेक्शंस आर नॉट फेयर।
2: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं,
6: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
2: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई, ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया, अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
1: तो देख सकते हैं कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है, और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है, हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई, दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ, पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके, लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में, इसकी वजह अखिलेश यादव जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं, क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है,
7: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
8: इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
2: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
9: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट्स व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
2: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
10: कौन बीजेपी? बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
2: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
3: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले, AISF, AISK, AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
2: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
11: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में हैं, पर इस प्रकार से संवैधानिक संगठन संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
12: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
13: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
2: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है और ये वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
2: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
14: ये यहां पे कोई विज्ञापन निकलता था तो विज्ञापन के पहले ही आशंका खड़ी होने लगती थी, हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
2: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
15: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
2: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की छड़ी लगा दी है।
16: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा। समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था। संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
2: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
16: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
2: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
16: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
2: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
16: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
2: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
15: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
0: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
7: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
2: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
17: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
7: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
18: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
2: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
17: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
7: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है, और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी हैं। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
2: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा, उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशी पर जोर है, उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
17: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
7: देखिए 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
18: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
2: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीएफ फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
7: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
2: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
19: मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
2: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठहर गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए, तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
19: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का है, ये जो इसको मार रहे हैं, ये मार रहे
20: हैं।
19: ये उसका भाजा जर्नैल सिंह का और ये वो लड़का है।
2: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
19: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जा रहा है।
2: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
19: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
2: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह ने सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत की, तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
21: गलत नहीं बोलना सर, बोल दिया बीजेपी के लोग कंप्लेंट कर सड़क नहीं बना पाए, आप
22: बना दो ना, ऐसी मत बनाओ, ये तो 15 घंटे नहीं चलेगी,
21: 15 साल में नहीं,
22: ये तो 15 मिनट नहीं चली,
21: 15 साल में नहीं,
22: ये तो 15 मिनट नहीं चली।
4: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे।
5: अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
4: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
20: जी जर्नैल जी।
23: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
20: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
23: मैं तिलकनगर में हूँ।
20: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
24: कहाँ रह गए सर?
4: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आए और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
25: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
4: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
26: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
27: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे, समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है, और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
4: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
28: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी, 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
29: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
4: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा। दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप। यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा। बोले 727 लोगों को काटा गया नाम। आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश। जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर। आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला। कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट। जर्नल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा। हरसिमरत कौर का तंज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल। पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका सिंहस्थ। कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है। और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने
1: की। पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है। हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
6: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है। वोट्स आर बीइंग स्टोलन। Elections are not fair.
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं।
6: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर काली पोती गई। ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
2: तो देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है। हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया भाई, दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ। पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में। इसकी वजह अखिलेश यादव, जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे। उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है?
7: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
8: इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
9: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट इज व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
10: कौन बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? उसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
3: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले, AISF, AISK, AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
11: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संगठन संरचनाओं पर सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
12: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
13: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है और ये वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
1: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है।
14: यहां पे कोई विज्ञापन निकलता था तो विज्ञापन के पहले ही आशंका खड़ी होने लगती थी, हताशा निराशा इस कदर

0: पहुंच नहीं है, पर नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
1: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
2: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
1: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
3: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा, समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा। समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था। संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
1: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
3: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
1: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
3: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में, हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
1: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
3: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे।

0: उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
1: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
2: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
3: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
4: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
1: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
5: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
4: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
6: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
1: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
5: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
4: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, यह आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी हैं। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
1: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा। उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशी पर जोर है, उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
5: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
4: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
6: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
1: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
4: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
7: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
1: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठहर गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए, तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
7: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का है ये जो इसको मार रहे हैं, ये मार रहा
8: है।
7: ये उसका भाजा जर्नैल सिंह का और ये वो लड़का है।
1: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
7: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई ले, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
7: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह ने सड़क उखाड़ कर घटिया निर्माण की शिकायत की, तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
9: गलत नहीं बोलना सर, बीजेपी के लोग कंप्लेन कर
1: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे।
10: अरे कहाँ जा रहे हैं, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
1: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
11: जी जर्नैल जी।
12: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
11: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
12: मैं तिलकनगर में हूँ।
11: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
13: कहाँ रह गए सर?
1: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आया और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
14: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
1: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
15: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनके ऊपर FIR नहीं की जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
16: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
1: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
17: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
18: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते अरविंद केजरीवाल जी। छोटी छोटी बच्चियां जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
1: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
3: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा। दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप। यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा। बोले 727 लोगों को काटा गया नाम। आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश। जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर। आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला। कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट। जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा। हरसिमरत कौर का तंज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल। पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास धरना प्रदर्शन करने
1: पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है। हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
6: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है। वोट्स आर बीइंग स्टोलन। Elections are not fair.
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं।
6: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई। ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
2: तो देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है। हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई। दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ। पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में। इसकी वजह अखिलेश यादव जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है?
7: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
8: इतना कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
9: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू दैट्स व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
10: कौन बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
11: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले AISF AISK AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
12: राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
13: राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
14: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है और यह वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
1: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
15: यहां पे कोई विज्ञापन निकलता था तो विज्ञापन के पहले ही आशंका खड़ी होने लगती थी, हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
1: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
16: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
1: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
17: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा, समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था, संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
1: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
17: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
1: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
17: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में, हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते, वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
1: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
17: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
1: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
16: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
0: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
18: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
1: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
19: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
18: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
20: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
1: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
19: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
18: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, यह आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी हैं। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
1: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा। उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशी पर जोर है। उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
19: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
18: देखिए 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
20: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
1: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता है और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
18: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
3: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
1: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठहर गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए, तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद था।
3: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का ही है ये जो इसको मार रहे हैं, ये मार रहा
21: है।
3: ये उसका भांजा जगमेल सिंह का और ये वो लड़का है।
1: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
3: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
3: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह ने सड़क उखाड़ कर घटिया निर्माण की शिकायत की, तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
22: गलत नहीं बोलना सर, ऐसा कोई बीजेपी के लोग कंप्लेंट कर
4: सड़क नहीं बना पाए,
5: आप बना दो ना, ऐसी मत बनाओ ना, ये तो 15 घंटे नहीं चलेगी,
4: 15 साल में
5: ये तो 15 मिनट नहीं चली,
4: 15 साल में
5: ये तो 15 मिनट नहीं चली।
1: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहां से जाने लगे।
5: अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
1: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जरनैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जरनैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
6: जी जरनैल जी।
23: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
6: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
23: मैं तिलक नगर में हूँ।
6: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
24: कहाँ रह गए सर?
1: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जरनैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जरनैल अपने समर्थकों के साथ आया और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
25: जब वहाँ पे जरनैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
26: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
27: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे, समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है, और जनता इनको पहचान चुकी है, हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
1: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
28: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
29: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, छोटी छोटी बच्चियां जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
1: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा। दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप। यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा। बोले 727 लोगों को काटा गया नाम। आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार। गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश। जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर। आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला। कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट। जर्नल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार। बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा। हरसिमरत कौर का तंज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल। पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका सिंहस्थ। कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है। और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने
1: पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है। बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है। हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
6: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है। वोट्स आर बीइंग स्टोलन। Elections are not fair.
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके।
6: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम। ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर काली पोती गई। ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह काली पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
2: तो देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है। हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया भाई, दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ। पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में। इसकी वजह अखिलेश यादव, जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे। उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है?
7: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
8: इतने कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
9: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू विद व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
10: कौन बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
3: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले AISF AISK AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आरपार के मूड में है तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
11: राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है पर इस प्रकार से संवैधानिक संगठन संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
12: राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
13: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है और यह वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
1: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
14: यहां पे कोई विज्ञापन निकलता था तो विज्ञापन के पहले ही आशंका खड़ी होने लगती थी, हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।

0: संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
1: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तगाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
0: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
2: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा, समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा। समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था। संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
0: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
2: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
0: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
2: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में, हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
0: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
2: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार।

0: सरकार में।
1: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
2: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
3: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
4: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
1: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
5: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
4: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
6: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
1: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
5: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
4: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी हैं। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
1: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा, उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जीताऊ प्रत्याशी पर जोर है, उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
5: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
4: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
6: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए, इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
1: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
4: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
0: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
1: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए, तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
0: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का है ये जो इसको मार रहे हैं, ये मार रहे
7: हैं।
0: ये उसका भाजा जर्नैल सिंह का और ये वो लड़का है।
1: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
0: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एनसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जा रहा है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
0: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह ने सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत की, तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए। जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहाँ से जाने लगे।
8: अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
1: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहां प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
7: जी जर्नैल जी।
9: जी प्रवेश भाई, क्या हाल है?
7: बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
9: मैं तिलकनगर में हूँ।
7: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
10: कहाँ रह गए सर?
1: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आए और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
7: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
11: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
12: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे, समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है, और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
1: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
13: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी, 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
14: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
1: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
3: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा, दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप, यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा, बोले 727 लोगों को काटा गया नाम, आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर, आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला, कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट, जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा, हरसिमरत कौर का तंज, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास धरना प्रदर्शन करने की।
1: पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे

0: पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
2: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले AISF AISK AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
3: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
4: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
5: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
6: उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश के 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारियों को खुश करने का वादा किया है, और यह वादा है सरकार बनते ही पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इसके जवाब में योगी सरकार की तरफ से 9 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
1: सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटते योगी आदित्यनाथ एक बात याद दिलाना नहीं भूलते, वो ये कि उनके राज्य में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पारदर्शी और बेईमानी से मुक्त हुई। उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
7: यहाँ पे कोई विज्ञापन निकलता था तो विज्ञापन के पहले ही आशंका खड़ी होने लगती थी, हताशा निराशा इस कदर, पहले इतनी बातें सामने आ जाती थी कि कोई गरीब परिवार का बच्चा और कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है वो नौकरी की बात कर ही नहीं सकता था।
1: इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नौजवानों को दी गई नौकरियों की संख्या भी बार बार दोहराते हैं।
8: 9.5 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हमने सरकारी नौकरी दी है। ये लगातार हर सप्ताह मैंने तो कहा विपक्षियों को कि भाई आप काम नहीं कर पाए थे, आपको आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का तकाजा है, आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, आप बोलिए, गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवान को नौकरी देते देते नहीं थकेंगे।
1: 2027 की लड़ाई में केंद्र में नौजवान आ गए। योगी आदित्यनाथ लगातार 9.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने का

0: दावा करते फिर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने भी नौजवानों से जुड़े वादों की झड़ी लगा दी है।
1: शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदोन्नति एवं तदर्थ प्रधानाचार्यों के वेतन से संबंधित धारा 12, 18, 21 को बहाल किया जाएगा। मदरसों के साथ भेदभाव का व्यवहार सरकार ने किया है। मदरसों की सभी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। आधुनिक मदरसा शिक्षकों का वेतन बहाल किया जाएगा और बकाया वेतन भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा, समाजवादी सरकार में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बीजेपी की सरकार में हमेशा भेदभाव होता रहा। समाजवादी सरकार में संस्कृत शिक्षकों को भी शिक्षक बनाने का काम सरकार में हुआ था, उनको सम्मान देने का काम हुआ था। संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं का भी समाधान होगा।
0: सरकारी कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दावा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किया है, जिसे वो सरकार बनते ही सबसे पहले लागू करेंगे।
1: समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये शामिल किया गया था कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। पुनः हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, जनता का समर्थन मिलने जा रहा है जनता के लिए, और जिस वर्ग कर्मचारी वर्ग की ये पुरानी मांग रही है कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उस पर समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर काम करेगी, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
0: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। उस चुनाव में मिली कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में भी इसे लेकर पुख्ता प्लान बनाए जाने का दावा किया है, ताकि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आए।
1: सरकारी कर्मचारियों के संगठन के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी बैठ करके हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि उसको वित्तीय रूप से कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, वो इंतजाम क्या होगा फाइनेंशियल, क्योंकि कल जब देना पड़ेगा भविष्य में जो सरकार होगी कभी ये ना कह पाए कि जो पुराना फैसला था वो गलत था, आज हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में हम फाइनेंस की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। वो पूरी व्यवस्था मॉडल बना करके हम लोगों ने आपके सामने पेश किया था।
0: पुरानी पेंशन स्कीम का वादा चुनाव में जीत का बड़ा दाव साबित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस को इससे जीत मिली, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी चुनावों में इसे लेकर किया वादा फायदेमंद साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का एक वर्ग लगातार प्रदर्शन कर रहा है। माना जाता है कि 8 लाख कर्मचारियों से जुड़ा ये सीधा मामला है, जिसमें अखिलेश यादव शिक्षक और मदरसा टीचरों को जोड़कर चुनावी प्लान बना रहे हैं।
1: शिक्षा मित्र, बीजेपी ने ही ये टेम्पररी व्यवस्था शुरू की थी। यहाँ पर जितने भी साथी हैं, जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, जो जानते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये आधी अधूरी नौकरी, आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम, उनको पूरा सम्मान देने का फैसला समाजवादी सरकार में हुआ था। आने वाले समय में शिक्षा मित्रों की भी व्यवस्था को हम लोग बनाने का काम करेंगे, उन्हें भी शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम होगा। अनुदेशक, रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी, इन सब की समस्या का समाधान किया जाएगा समाजवादी सरकार में।
0: योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए शिक्षकों, क्रांति रक्षक दलों के जवानों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए परिवार समेत कैशलेस मेडिकल इलाज की सुविधा देने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए, वहीं सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का योगी ऐलान कर चुके हैं। मतलब योगी के चुनावी एजेंडे के केंद्र में रोजगार और नौजवान ही है।
2: 96 लाख एमएसएमई यूनिट में आज के दिन पे 3.25 करोड़ युवा कार्य कर रहा है, और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल यूपी के अंदर होने का परिणाम क्या है? 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए, उसमें लगे हुए उद्योग में 65 लाख से अधिक युवाओं को वहां नौकरी प्राप्त हुई है।
3: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके पीडीए के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया, और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
4: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
0: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
5: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
4: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
6: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
0: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
5: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
4: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है, और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी है। हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
0: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा। उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशी पर जोर है, उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
5: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
4: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
6: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए, इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
0: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
4: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
7: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
0: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए, तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
8: जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का है ये जो इसको मार रहे हैं, ये मार रहे
9: थे।
8: ये उसका भांजा है जर्नैल सिंह का, और ये वो लड़का है।
0: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
7: 3 महीना पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एनसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रेक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं, और जो एक्सटोर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं, ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जा रहा है।
0: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई ले, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
7: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
0: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जर्नैल सिंह ने सड़क उखाड़कर घटिया निर्माण की शिकायत की, तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
10: गलत भी बोलना सर, कोई बोल दिया बीजेपी के लोग कंप्लेन कर
11: सड़क की बना पाए उन्हें बनवाई
10: आप बना दो ना, ऐसी मत बनाओ ना, ये तो 15 घंटे नहीं चलेगी,
11: 15 साल में
10: ये तो 15 मिनट नहीं चली,
11: 15 साल में
10: ये तो 15 मिनट नहीं चली।
0: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहाँ से जाने लगे।
10: अरे कहाँ जा रहे हैं, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
0: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे, तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
12: जी जर्नैल जी।
13: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
12: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
13: मैं तिलक नगर में हूँ।
12: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
14: कहाँ रह गए सर?
0: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आए और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा, उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
7: जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
0: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
9: हैरानी की बात यह है कि जब यह वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर FIR नहीं की जाती, हम यहां से नहीं हटेंगे।
15: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे, समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है, और जनता इनको पहचान चुकी है। हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
0: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
16: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी, 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
7: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके LPU के अंदर हमला करवाते अरविंद केजरीवाल जी। छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी प्रवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
0: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
3: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को 1 महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग में मोर्चेबंदी में जुटे राहुल का नया दावा, दिल्ली एसआईआर में भी वोट चोरी का लगाया आरोप, यमुना किनारे बेला स्टेट का किया दौरा, बोले 727 लोगों को काटा गया नाम, आरोपों पर ईसी ने भी दिया जवाब। आतंकवाद पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जीरो टॉलरेंस का बड़ा संदेश, जड़ से मिटाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान तैयार। थप्पड़ कांड में प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एनसीआर, आम आदमी पार्टी ने आज भी हंगामा किया, केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का हमला, कहा पंजाब चुनाव में हार की आशंका से हो गए फ्रस्ट्रेट, जनरल पर एफआईआर दर्ज। एलपीयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, बीजेपी बोली सरकारी गुंडों ने पीटा, हरसिमरत कौर का तंज, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को चौपट किया। और उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से पर बुलडोजर एक्शन से बवाल, पथराव और लाठीचार्ज के बाद छावनी बना इलाका, सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण पर हंगामा। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
2: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने की,
1: पटना
3: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
4: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है, हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया, कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
6: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है, वोट्स आर बीइंग स्टोलन, Elections are not fair.
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं।
6: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई, ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह काली पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
2: जो देख सकते हैं कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है, हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई, दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ, पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में, इसकी वजह अखिलेश यादव जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे, उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं, क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है,
7: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
8: इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
9: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू इट्स व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
10: कौन बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है तो उनकी वकीली कर रहे लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
3: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले AISF AISK AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस जहां आर पार के मूड में है तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
11: राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है पर इस प्रकार से संवैधानिक संगठन संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
12: राहुल गांधी जी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
13: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रस्साकशी पहले से हो रही है लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अखिलेश को लगता है कि 2024 में इंडिया गठबंधन को उनके PDA के फॉर्मूले ने जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा उठाया उसने 2024 के लोकसभा चुनावों में खेल पलट दिया और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेता टकराव भरी बातें कर रहे हैं।
7: राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, निश्चित रूप से आपको बता दूं। और ये मैंने एक बार पहले कहा था कि समंदर में जब तूफान हो ना तो बड़ा जहाज ही थपेड़े झेल पाता है, छोटी मोटी नाव उड़ जाती है।
1: सवाल तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर था। इमरान मसूद ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया वो सियासी तौर पर खबरदार करता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लड़ेगा, राहुल या अखिलेश।
14: लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
7: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना।

0: के बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो
1: उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के दम पे ही लड़ा जा रहा है।
2: माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी गठबंधन और सीट बंटवारे की तस्वीर साफ करने का दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इसीलिए पार्टी की तरफ से कभी 150 सीट पर लड़ने का दावा होता है तो कभी राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने में भलाई बताई जाती है।
3: आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बिना क्या वहां पर मजबूती हो सकती?
0: देखिए, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल जी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है वो राहुल जी के नाम पर ही है, और वो आप सोचेंगे राहुल जी को हटा के कुछ होगा, मुझे तो लगता नहीं कुछ भी होगा, कोई नतीजे नहीं होंगे। हाँ, राहुल जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा वो बेहतर प्रदर्शन दिखाई देगा। हम कोई मांग रहे हैं, कोई भिखारी थोड़ी हम बार बार आप कहते हैं मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? हमें लड़ना है, अपनी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, बस इतनी सी तो बात है।
2: कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रही जुबानी हमलों के बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी शर्तों पर बात आगे बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कांग्रेस से मजबूत प्रत्याशियों के नाम और सीट की लिस्ट मांगी जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है ये पूछा जाएगा। उस दावेदारी के पीछे जनाधार के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी समाजवादी पार्टी देखेगी। जातीय समीकरण के हिसाब से जीत की संभावना क्या बनती है ये परखा जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशी पर जोर है, उधर कांग्रेस डरा रही है कि समाजवादी पार्टी वक्त रहते गठबंधन कर ले, वरना तो फिर 2022 वाला ही हाल होगा।
3: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
0: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे।
1: ये समाजवादी पार्टी पे तंज करके क्यों कर रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं, देखिए, इमरान मसूद का इतिहास आप भी जानते हैं, इमरान मसूद का इतिहास समाजवादी पार्टी भी जानती है।
2: साल 2024 की कामयाबी के पीछे कांग्रेस राहुल के संविधान वाले मुद्दे को बड़ी वजह मानती है, लेकिन अखिलेश को लगता है कि पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन को यूपी में जीत मिली। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यूपी में अखिलेश का बड़ा जनाधार है, वहीं कांग्रेस समझती है कि राहुल गांधी बड़े नेता है और इसीलिए मामला उलझा हुआ है।
0: कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है। राहुल जी के बिना ये काम मुमकिन ही नहीं है।
2: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रचार के मोर्चे पर यूपी में गायब है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर हुए हालिया खुलासों और वोट चोरी के मुद्दे पर पार्टी 2024 वाला कमाल दोहरा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की तरफ से सीटों की संख्या की बजाय जीतने की क्षमता को आधार बनाने की बात कही जा रही है। आज तक ब्यूरो।
4: और अब बात करेंगे दिल्ली के थप्पड़ कांड की। इस मामले में एनसीआर दर्ज की गई है। एनसीआर का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, यानी कि कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
5: केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना, इनको गाली गलौज करना और हमारे काम में बाधा डालना।
2: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मारने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठहर गई। प्रवेश वर्मा जहां इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए तो अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर पहुंचे जहां ये सारा विवाद हुआ।
5: ये जो कल हमारे राउंड को खराब किया, ये वही लड़का है ये जो इसको मार रहे हैं, ये मार
6: रहे।
5: ये उसका भांजा जर्नैल सिंह का और ये वो लड़का है।
2: प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
5: तीन महीना

0: पहले जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है वो ऐसे अपने गुंडे को बचाने के लिए आप आ रहे हैं? जो व्यक्ति एमसीडी के छोटे से एक वो कर्मचारी को पीटता है, कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी को पीटता है, उसको अधमरा कर देता है, आज आप उसको बचाने के लिए आ रहे हैं? ये दिखाता है कि ये गुंडे भी आपके हैं और जो एक्सटॉर्शन का रैकेट आपके सारे विधायक चला रहे हैं ये भी आप ही के लोग हैं और आपके इशारे पर किया जाता है।
1: प्रवेश वर्मा चाहे जो सफाई दे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने को किस तरह से सही ठहराया जा सकता है?
0: उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
1: दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज सड़क निरीक्षण के दौरान सुनी गई, जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। ये मामला सड़क के घटिया निर्माण के आरोप के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने इसे लेकर शिकायत की, दावा किया कि विकासपुरी रिंग रोड गुरुद्वारा के पास बन रही नई सड़क में घटिया काम हो रहा है। मंत्री के सामने ही जनरल सिंह ने सड़क उखाड़ कर घटिया निर्माण की शिकायत की तो प्रवेश वर्मा ये कहते सुने गए कि गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए।
2: गलत ही बोलना
3: सर, ऐसा बोल दिया
2: बीजेपी के लोग कम्प्लेन कर
3: सड़क ही बना पाए, बना
2: दो ना ऐसी मत बनाना, ये तो 15 घंटे नहीं चलेगी,
3: 15 साल में
2: ये तो 15 मिनट नहीं चली,
3: 15 साल में
2: ये तो 15 मिनट नहीं चली।
1: जब दोनों में बहस बढ़ी तो प्रवेश वर्मा वहाँ से जाने लगे।
2: अरे कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, रोड तो देख लो, अरे रोड तो देख लो।
1: प्रवेश वर्मा जब अपनी कार के करीब थे तभी जर्नैल सिंह भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ प्रवेश और जर्नैल के बीच बातचीत शुरू होती है कि तभी सामने से वीडियो बना रहे शख्स पर प्रवेश वर्मा भड़क गए और जड़ दिया तमाचा। बाद में इस पूरे मामले का वीडियो प्रवेश वर्मा की तरफ से जारी किया गया।
4: जी जर्नैल जी।
5: जी प्रवेश भाई, क्या हाल
4: है? बढ़िया, आप कहाँ पर हो?
5: मैं तिलकनगर में हूँ।
4: अच्छा, एक बार यहाँ पे आओ जहाँ पे वीडियो बना रहे थे आप।
6: कहाँ रहे थे सर?
1: प्रवेश वर्मा का कहना था कि उन्होंने सड़क दिखाने के लिए खुद जर्नैल सिंह को बुलाया था। 45 मिनट इंतजार कराने के बाद जर्नैल अपने समर्थकों के साथ आया और बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा उसने उनके परिवार को गाली दी थी।
0: जब वहाँ पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहाँ पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया।
1: प्रवेश वर्मा की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पार्षद विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए।
7: हैरानी की बात यह है कि जब ये वारदात हुई तो विकासपुरी थाने के SHO यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने, पर जब तक मंत्री प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनके ऊपर FIR नहीं की जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
8: जब जब केजरीवाल बदतमीजी करे समझ लो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इनका कोई दलाल पकड़ा गया है, कोई कमीशन खोर पकड़ा गया है और जनता इनको पहचान चुकी है, हार के डर से हर बार ये बदतमीजी करता है।
1: लेकिन ये मामला यही नहीं रुका, केजरीवाल उसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू, लेकिन इसे लेकर BJP ने उन्हें सुना दिया।
9: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा कहाँ तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
10: अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए
0: जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके एलपीयू के अंदर हमला करवाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी परवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने, उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
1: सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
10: सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के नाम और फूलपत्ती चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय सीमा तय की है। कोर्ट ने दोनों ही गुटों को एक महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और उसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने का निर्देश दिया, यानी कि पूरी प्रक्रिया चार महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी जिसमें टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल रोक दिया गया था। चुनाव आयोग विवाद के बीच कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की बुधवार को बैठक बुलाई गई है, और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में आएगा। मतलब जिस चुनाव आयोग में उठापटक के दावों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है।
11: करने की कोशिश जो है की जा रही है भाई।
1: वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली
11: सकते हैं कि जो एनएसओआई के कार्यकर्ता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने की।
1: पटना
12: लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहाँ नोकझोंक हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।
1: जयपुर
13: जहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों ने यहाँ पर रैली निकाली है और चुनाव आयोग जयपुर के दफ्तर में जाना चाहते हैं।
1: रांची
14: निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन कर रही है, हाथों में कार्यकर्ताओं के झंडे हैं।
1: पुणे और नागपुर समेत देश भर में प्रदर्शन किया, कांग्रेस की मांग साफ, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे।
15: मैं ये 3 साल से कह रहा हूँ और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है, वोट्स आर बीइंग स्टोलन, इलेक्शंस आर नॉट फेयर।
1: ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी देशद्रोही करार दे चुके हैं।
15: एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवल।
1: इसकी झलक आगरा में भी दिखी, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर कालिख पोती गई, ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चले गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर लिखे गए शब्दों को साफ कर दिया। अब वहां पुलिस का पहरा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर इस तरह कालिख पोत कर कांग्रेस को कितना चुनावी फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें लेकर आक्रामकता बरकरार रहेगी, जो आज अलग अलग शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन में दिखी भी।
11: तो देख सकते हैं कि ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो एनएसवाई का चल रहा है, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार का मखौटा पहनकर जो एक व्यक्ति है उसे खींचा जा रहा है। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का मुख्यालय है, हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी एरिया है भाई, दिल्ली पुलिस यहाँ पर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को खींचता हुआ डिटेन करता हुआ, पर वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हट रहे और अपना जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर कर रहे हैं।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का रोडमैप तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई, ताकि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मामले को मजबूती के साथ साझा किया जा सके। लेकिन बुधवार को होने वाली इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता सवालों में, इसकी वजह अखिलेश यादव जो खुद इस बैठक में नहीं आएंगे। उनकी जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी अहम बैठक से अखिलेश दूरी बनाकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इसकी वजह 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीटों का कांग्रेस से बंटवारा है?
16: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
17: इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपना उनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रकरण है और इसके पहले भी मीटिंग्स में उनके प्रतिनिधि के तौर पे आ चुके हैं और मुझे लगता है कि निश्चित, क्योंकि देश हित का मामला है।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव की दूरी बनाने की वजह राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्तता बताई जा रही है।
18: राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन इज देयर इन यू, दैट इज व्हाट ही टोल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स फ्रॉम हिज पार्टी विल, ऑल अदर सीनियर्स आर कमिंग।
1: तो जिस मामले को राहुल गांधी सबसे अहम मुद्दा मानते हैं, उस वोट चोरी के मामले पर इस अहम बैठक में शामिल होने को लेकर बाकी नेताओं के शामिल होने पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे।
19: कौन बीजेपी बोल रहे हैं? बीजेपी को क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना वकील लॉयर अपॉइंट किया है क्या? कौन है बीजेपी? कौन है बीजेपी? इसमें पार्टी है क्या? बीजेपी पार्टी है क्योंकि चोरी का माल उनको मिला है ना। चोरी का माल जो है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, तो उनकी वकीली कर रहे हैं लोग।
1: उद्धव की तरह हेमंत सोरेन के भी ऑनलाइन शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि बैठक में शामिल होने को लेकर जेएमएम ने अभी तक फैसला नहीं लिया। इसी तरह शरद पवार की पार्टी का रुख भी अभी साफ नहीं है। तमिलनाडु चुनाव के बाद से कांग्रेस से नाराज चल रही डीएमके ज्ञानेश कुमार पर अपने मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियां इस बैठक में आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वो भी आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद पिछले हफ्ते बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, तब आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह लेफ्ट के प्रदर्शन में कांग्रेस नहीं ली थी।
12: पटना में आज वामपंथी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान से जो है माले और सभी वामपंथी संगठन जो है सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान से जो है माले, AISF, AISK, AIYF के हजारों लोग देखिए पटना की सड़कों पर हैं। लेकिन
1: सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जहां आरपार के मूड में है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्ञानेश कुमार को अवार्ड दिए जाने की मांग हो रही है। संदेश साफ है कि विपक्ष के दबाव में सरकार और बीजेपी नहीं आएगी।
20: राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
21: राहुल गांधी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता। यह वही टूलकिट मानसिकता है जो हर सुबह देश के विकास की गति को रोकने के लिए एक नई साजिश बुनती है।
22: विपक्ष बार बार भ्रम फैलाता है, उनको वो राज्य तो जरूर दिखते हैं जहाँ पे NDA या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बट क्या इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पे इनकी सरकारें हैं?
1: चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक रसाकशी पहले से हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग के अंदर खटपट की खबरों ने इस विवाद को नए सिरे से हवा दे दी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष नए सिरे से एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
10: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।